0: वो धब्बा सा बनता है, काला धब्बा जो ब्लाइट अपियरेंस एक देता है वहाँ पे। हम लोग देखते हैं पत्तियाँ वहाँ काली होकर गलनी शुरू हो जाती हैं, और इस तरीके का लक्षण हम लोग देखते हैं कि पत्तियों पे फैलने के बाद जो फल निकलते हैं उन फलों में वो उस तरीके का लक्षण शुरू हो जाता है। वो काले पहले छोटे से दाग धब्बे बनते हैं, वो देखते देखते फिर पूरे पौधे पूरे फल को गला देते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर अगर किसी एरिया में अगर किसान भाई इस परवर लगाते हैं और इस तरह की समस्या दिखती है, तो बीमारी हो या ना हो, हम लोग मैंकोजेब का एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर करेंगे। उसको छिड़काव करने के बाद में भी अगर हमको कहीं पे दिख रहा है इस तरीके से कोई लक्षण, तो हम लोग को मैंकोजेब और मेटल एक्सिल का कॉम्बिनेशन वाला दवा आता है जो मिक्स होता है, उसको हम लोग 2.5 से 3 ग्राम के हिसाब से घोल बना करके उसको प्रति लीटर के हिसाब से उसको हम लोग छिड़काव करेंगे। तो इससे हम लोग देखते हैं कि वो जो समस्या होती है उसको हम लोग ख़त्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे खेत के अंदर से। लेकिन इसका साथ समय छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंतज़ार करेंगे कि फल फूल आने लगे, या हम लोग भिंडी में इंतज़ार करें कि अब फल के तुड़ाई का वक्त आ गया, या मिर्च में हम लोग सोचें कि मिर्च में अब फल आ रहा है या है अब बीमारी आ गई तो कोई छिड़काव करें, तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा नहीं मिलता। हम लोगों को समय से डरना है, बीमारी आने से पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि बीमारी आने से पहले हम लोग सचेत रहेंगे और उस टाइम बताए गए दवाओं का अगर हम लोग सही समय पर छिड़काव करते रहेंगे, तो हम लोग बीमारियों को निश्चित तौर पर रोक देंगे और हम लोगों को अच्छी उपज प्राप्त होगी।
1: जी, तो किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके परिश्रम का पूरा मुनाफा मिले, तो ज़रूरी है कि आपके जो सब्जियों के पौधे हैं वो रोग मुक्त रहें। और डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं आपके सब्जियों के पौधे में, और आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ज़रूर आशा करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप इस वार्ता को सुनेंगे, आप बहुत कुछ जानेंगे, रोगों को पहचानने की जो क्षमता है वो भी आप में विकसित होगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की

संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूले। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ

तक की प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजा जी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: अब आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।

0: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
0: श्रोताओ, इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी, अश्रोताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे घर के सारे सामान बह गए। हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी
3: फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस

0: गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, मैं मेरा भी क्या देख रहा काट।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, तो और काट, दस्ते क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
5: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते,
2: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
8: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
1: क्या? हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
8: सारी फसल बह गई।
7: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
8: जल्दी
7: से ऊपर ले जाना होगा।
8: चलो जल्दी ऊपर,
7: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी, चलो
8: चलो चलो,
7: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
8: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा।

0: को काटकर नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
1: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार। अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
2: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता, मैं ही जीवन हूं धरती का। मुझे नष्ट मत करो, मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी।
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
5: हाँ चाची।
6: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है
1: हाँ?
4: कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
1: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
6: छत्ते? सात आठ छत्ते? कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
1: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
6: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पर फाड़ गए।
1: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
6: क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
2: ठीक है ना, चल चलते हैं।

रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो चलो। खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: वहाँ में देखो। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे। मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं। अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा रहेगा।
0: तो बस फिर क्या,

0: गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
3: हाँ, ठीक है, ठीक है। मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
3: हाँ,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
3: बिल्कुल
2: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
5: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
2: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो। आप हम पेड़ों से चिपक गई हैं। अब चलाओ कुल्हाड़ी।
6: मैं देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती है।
2: हम जान दे देंगे, मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या है, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
7: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो।
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
8: चिब्बू भाग ले यहां से,
9: बाद में बाल काटेंगे।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
10: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया। ऐसी चिपकी पेड़ से कैसे छोड़ा ही पेड़ को। अरे
2: सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज

0: सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
1: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को
1: कुसुमलता
2: जगबंधु
1: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, जो ले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली तक। और हरियाली की बातें हम करते हैं और उसमें खेती बाड़ी की बात ना करें तो थोड़ा अधूरा बिल्कुल रहता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। जी हाँ, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग प्रकार की खोज कर रहे हैं, और उसी में से एक है डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड और साथ ही मृदा सूचना प्रणाली। आज इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी अगर आप हमारा आज का ये वार्ता सुनते हैं तो। जी हाँ, इस खास विषय को आपको बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर नींटू मंडल, और मैं आपको बता दूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल यानी बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहला डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो डॉक्टर साहब से हमारे जो सवाल है वो ये है कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है, वो बताएं हमारे सभी श्रोताओं को।
7: नमस्कार। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का बारे में आप लोग पहले से ही जानकार है। ये भारत सरकार का कृषि मंत्रालय से चलाया जा रहे पूरा देश में सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम।
6: जी,
7: सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का क्यों जरूरत हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कृषि में मृदा एक ऐसा मीडियम है जिसका ऊपर कोई भी तरह का फसल, कुछ भी फाउंडेशन हम लोग करते हैं, लेकिन मृदा को सटीक उपाय में उसका मेंटेन नहीं किया जाएगा तो ये फ्यूचर के लिए बहुत ही घातक हो सकता है हमारा आने वाले

0: के लिए। इसलिए मृदा का सटीक उपाय में उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है,
1: मतलब उनकी देखरेख करना, टेस्ट करना कि इस सॉइल में, इस पर्टिकुलर सॉइल में क्या कुछ पोषक तत्व की कमी है या फिर किस प्रकार इसमें ज़्यादा लवण है, ये कुछ इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं।
0: हाँ, जैसे हम लोगों का तबीयत खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले ही थर्मामीटर से टेम्परेचर, उसके बाद ब्लड शुगर, इस टाइप का टेस्ट होता है।
1: जी जी,
0: सेम वे में मृदा में भी
1: लैब से टेस्ट होता है। जी,
0: टेस्ट होता है अगर मृदा स्वस्थ है कि नहीं, ये देखने के लिए बहुत पैरामीटर है। तो मृदा सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम में ऐसा 12 पैरामीटर है।
1: अच्छा।
0: इसके अंदर में फास्ट है पीएच, पीएच का मतलब है मृदा आम्लिक है कि अल्कलाइन है।
1: अच्छा।
0: वो देखने के लिए फिर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, वो भी मृदा में नमक का मात्रा ज्यादा होगा तो वो भी प्रॉब्लम होता है, वो देखने के लिए है। ऐसे पोषक तत्व में से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी एलिमेंट जैसे गंधक, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे लोहा, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरन, ये सब कुल मिला के 12 पैरामीटर है जिसका मात्रा कितना है मिट्टी में और उसके बाद जो फसल उगाया जाएगा उसमें भी कितना जरूरत होगा। तो जो मिट्टी में है और जितना जरूरत होगा दोनों का माइनस करके उसमें खाद का उपयोग करना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम भारत सरकार का कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरा देश में चलाया जा रहा है। हमारा बिहार में भी इसका हर जिला में ये प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारा यूनिवर्सिटी, इसका कृषि विज्ञान केंद्र और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जितना है, इसके साथ जो स्टेट डिपार्टमेंट का भी जितना लेबोरेटरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वो भी इसमें शामिल है। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसका लाभ हमको लगता है किसान भाई लोग ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, ये आपने जाना कि जो मृदा को हम समय समय पर उनका टेस्ट करते रहें कि ये स्वस्थ है या नहीं, और तब अगर हम फसल उस पर उगाते हैं तो ज़रूर मुनाफा होगा और आपको कोई भी हानि नहीं होगा, क्योंकि पहले से जो प्लानिंग की जाती है सारी चीज़ें देखकर तो सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से होता है और सफल खेती आप कर सकते हैं तब। और इसका उपयोग डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे?
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड में एक तो 12 पैरामीटर का मात्रा रहेगा, उसके बाद एक कितना खाद, कितना कंपोस्ट डालना चाहिए इसका भी मात्रा उसमें लिखा रहेगा।
1: अच्छा।
0: यानी कि साइंटिफिक बेसिस में जो खाद उपयोग, उसका सटीक विधि, कौन सा टाइप का खाद डालना है, कौन सा फसल के लिए, तो उसका भी रिकमेंडेशन रहता है। पहले जैसे हम लोग बताए थे पीएच अगर कम होगा तो एसिडिक है, आम्लिक है मिट्टी, उसको सुधार डालने के लिए भी चूना का प्रयोग, लाइम का प्रयोग करना है, उसका भी मात्रा उसमें लिखा रहेगा। जैसे जिसमें नमक का मात्रा ज़्यादा है, सलाइन है, उसको भी सुधारने के लिए क्या करना चाहिए ये भी उसमें रहेगा। उसका मतलब है सिर्फ पोषक तत्व प्रबंधन ही नहीं, मृदा में अगर प्रॉब्लम होगा उसमें भी सुधार लाने के लिए क्या हमको डालना होगा, इस कौन सा उत्पादन होगा, उसका मात्रा कितना होगा, ये भी उसमें रिकमेंडेशन लिखा रहेगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का यूज करने से लॉन्ग टर्म में सटीक उपाय में मृदा को ठीक रखते हुए अच्छा पैदावार हम लोग ले पाएंगे।
1: जी, तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि सिर्फ उसमें टेस्टिंग ही नहीं की जाती कि उसमें क्या कमी है या फिर ज़्यादा एसिडिक है, लवणीय है, उसको आप एसिडिक को फिर एसिडिक अगर आपका मिट्टी है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, एसिड कम कर सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर्स हमें दवाइयाँ देते हैं हमारा टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट करके, उसी प्रकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग किया जाता है। साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक जो है फिर आपको बताते हैं कि कैसे, अगर ज़्यादा लवणीय है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, सारी विधियाँ आपको बताई जाती है। तो ये तो बात हो गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं डिजिटल। आज वैसे भी देख रहे हैं कि हमारा देश जो है डिजिटल की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसे भी जोड़ा गया है, तो क्या है ये डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड?
0: डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये भी भारत सरकार का कृषि कल्याण मंत्रालय का एक नया स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कोई भी किसान का, जैसे एग्जांपल ले लीजिए,

0: भागलपुर जिला का शाबोर एरिया में कोई किसान उसका खेत में मिट्टी का नमूना लिया गया
1: जी।
0: तो जब नमूना लिया जाएगा तब उसका जीपीएस मोबाइल में भी अभी उपलब्ध है, उससे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद फिर जिस किसान का खेत में जीपीएस से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले के नमूना लिया गया, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण वो पोर्टल में एक अवेलेबल है
1: जी।
0: उसके बाद नजदीक कौन सा एरिया में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वो भी इंफॉर्मेशन पोर्टल में अवेलेबल है। जैसे भागलपुर जिले में और हमारा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान विभाग में भी लेबोरेटरी है। कितना नजदीक में आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पहुंच सकते हैं ये भी इंफॉर्मेशन उस वेब पोर्टल में अवेलेबल है। उसके बाद उसका प्रयोगशाला में जांच किया जाएगा, जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आया जो टेस्ट करेंगे वो उस वेब पोर्टल में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद अगर कोई किसान उस पोर्टल में ये वेब पोर्टल का एड्रेस भी आप लोगों को हम बता देते हैं, ये जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार का ये वेब एड्रेस है www.soilhealth.dac.gov.in। ये गूगल में भी सर्च किया जाएगा तो ये सॉयल हेल्थ वेब पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें क्लिक करके एक किसान पोर्टल है उसके थ्रू में जो नमूना लिया गया है किसान का नाम, जिला का नाम, उसके बाद शाबोर ये नाम देके किसान का नाम देने से वो पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। यानी कि 12 जो पैरामीटर है कौन सा कितना मात्रा में है, उसके बाद उसमें ऑप्शन है अगर क्लिक करेंगे किसान भाई लोग, जैसे इसके बाद हमको धान लगाना है और गेहूं लगाना है उसके हिसाब से फिर कितना खाद डालना पड़ेगा। खाद डालने के लिए भी एक तो रिकमेंडेशन आएगा, उसके बाद मान लीजिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है उसी टाइम में डीएपी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यूरिया है और म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आपका जिला में अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन भी रियल टाइम में आप लोग पता कर सकते हैं। उसका मतलब है ये जो डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसका थ्रू से एक स्पेसिफिक आपका लोकेशन में किसान का नाम, उसका मिट्टी में क्या क्या चीज है, क्या उसको डालना पड़ेगा, उसके बाद ये कोई खाद आपको कहाँ मिलेगा, नियर बाय कौन सा एरिया में मिलेगा, उसका भी कीमत कितना है, इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक ही प्लेटफॉर्म में
1: जी।
0: तो ये राष्ट्रीय लेवल में बनाया गया है, हमारा बिहार स्टेट ही नहीं पूरा देश का जितना राज्य है सबका इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा
1: जी। तो ये फायदे हैं कुछ डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड के किसान भाइयों। और तो क्या पूरे देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए क्या कोई सॉफ्टवेयर अभी उपलब्ध है डॉक्टर साहब?
0: पूरा देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए भी सॉफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया गया है
1: जी।
0: ये भी जो वेब एड्रेस पहले मैंने बताया उसमें अवेलेबल है, उसके अंदर में साइंटिफिक तरीका से जो खाद कितना मात्रा में डालना होगा ये रिकमेंडेशन अवेलेबल है। उसके इतना नहीं, उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया जा सकता है स्पेसिफिक कुछ एरिया में, जैसे कि ऐसा एरिया कुछ हो सकता है जिसमें जिंक का कमी बहुत है, ऐसे बहुत नहीं होता है, किसी में लोहा का कमी है, किसी में बोरोन का कमी ज्यादा है, वो भी आपको डिजिटल में दिखाएगा। उसके बाद उस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोरोना का टाइम में आप लोग सब जानते हैं टेलीमेडिसिन शुरू हुआ था, उसमें डॉक्टर को फोन करके हम लोग पूछ सकते थे ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रहे तो हमको क्या करना
1: क्या
0: चाहिए,
1: करना चाहिए।
0: सिमिलरली इसमें स्पेसिफिक अगर कोई पोषक तत्व का आपका कमियां है और किसमें बहुत ज्यादा होगा यानी कि टॉक्सिक लेवल में है, उस केस में भी क्या करना चाहिए, इसके लिए भी आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, ये नंबर भी अवेलेबल है
1: जी। तो इसके बाद बात करते हैं हम मृदा सूचना प्रणाली की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में तो आप सभी जान गए होंगे, अब मृदा सूचना प्रणाली क्या है डॉक्टर साहब ये बताएं सभी श्रोताओं को।
0: मृदा सूचना प्रणाली एक ये भी भारत सरकार का एक प्रोग्राम है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मृदा सूचना प्रणाली में जैसे भागलपुर जिला का हम लोग उदाहरण लेते हैं, भागलपुर जिला में बहुत सारा ब्लॉक है, जैसे ये सॉयल हेल्थ कार्ड मिशन चलाया जा रहा है तो पूरा जिला

0: का एक डिजिटल मैप बनाया गया है। डिजिटल मैप में पूरा डिस्ट्रिक्ट का, पूरा बिहार राज्य का, पूरा देश का भी ऑफ डिजिटल फर्टिलिटी मैप ये बनाया गया है। फर्टिलिटी मैप मतलब उसके अंदर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जितना पैरामीटर 12 पैरामीटर है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और GIS बोला जाता है, GIS का माध्यम से ये मैप बनाया गया है। इस मैप से आपका मिट्टी का क्या स्टेटस है ये रियल टाइम आप मॉनिटर कर सकते हैं। रियल टाइम का मतलब है सिर्फ एक बार भी नहीं, टाइम इंटरवल में इसका रिविजिट किया जाएगा, दोबारा टेस्ट किया जाएगा किसमें आप जो फसल उगा रहे हैं, जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसके बाद भी किस तरह का चेंजेस आ रहा है ये भी हम लोग रियल टाइम में देख पाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे हमारा हेल्थ भी डायनेमिक स्टेटस का मतलब है आज ठीक है कुछ दिन के बाद खराब भी हो सकता है, इसलिए ऐसा भी मिट्टी का भी ऐसा हाल है, इसलिए इसको डायनेमिक प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम में एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का थ्रू से जोड़ के पूरा राज्य तथा पूरा देश में बनाया गया है।
1: मतलब उसमें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो मृदा है उसमें क्या कुछ है, क्या कुछ की कमी है, जो 12 पैरामीटर्स आपने बताए उस हिसाब से
0: उस हिसाब से प्लस टाइम स्केल में एक साल में दो साल में कितना चेंजेस आ रहा है।
1: मतलब एक बार ही सिर्फ वो डाटा उपलब्ध नहीं रहता है, उस रिन्यू होता जाता है।
0: रिन्यू होता है, इसलिए इसको रियल टाइम बोला जाता है।
1: जी जी,
0: तो ये इंफॉर्मेशन आज हम लोग सब लोग परेशान है, सब लोग देख रहे हैं क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका क्या इम्पैक्ट सबका ऊपर आ रहा है। एग्रीकल्चर में भी बहुत क्लाइमेट चेंज का प्रभाव फसल का पौधावर में भी आने वाला है, तो इसलिए मृदा भी ये जो चेंजिंग क्लाइमेट के साथ कैसे चेंज हो रहा है इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो ये जो सॉयल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और रियल टाइम बेसिस में ये पूरा देश, जैसे हमारा देश में है ऐसा करके पूरा वर्ल्ड में भी ये चलाया जा रहा है, उसमें भी हमारा देश एक पार्टनर है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी खासियत के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो आपने बता दिया कि इसके क्या कुछ फायदे हैं, लेकिन एक किसान भाइयों को थोड़ा समझाएं कि क्या खासियत है मृदा सूचना प्रणाली की।
0: मृदा सूचना प्रणाली का खासियत, पहले जैसे हम लोग डिजिटल सॉयल हेल्थ कार्ड में पहले भी चर्चा किए है, इसमें जो वेब एड्रेस मैंने बताया था उसमें जो एक किसान पोर्टल है जिसमें जाकर आपके पास आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: उसमें जैसे नमूना पंजीकरण मोबाइल ऐप,
1: ऐप का कोई नाम है उसका?
0: नहीं, ये वेब पोर्टल जो सॉयल हेल्थ DAC.gov.in है और किसान का जो ऐप है इसका नाम है किसान सुविधा।
1: अच्छा, किसान सुविधा ऐप का नाम है।
0: हाँ, इसके अंदर में नमूना पंजीकरण, सॉयल हेल्थ जो टेस्ट रिपोर्ट इसका ऐप है, फिर सॉयल हेल्थ कार्ड ऑनलाइन नहीं एक ऑप्शन रखा, ऑफलाइन के लिए भी रखा गया है अगर कोई प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो। फिर किसान कॉर्नर में जाके आपका नमूना आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मतलब आपका सैंपलिंग हुआ, उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसमें प्रिपेयर हुआ कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, ये ट्रैकिंग किया जा सकता है। फिर आप अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। फिर जैसे बताया था कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा, किसका टॉक्सिसिटी है और डिफिशियंसी है, उसके लिए भी वो ब्लिंक करेगा, ब्लिंक मतलब रेड ब्लिंक करेगा, उसका मतलब है इसमें समथिंग प्रॉब्लम है, कोई टॉक्सिसिटी है और कोई डिफिशियंसी है ज़्यादा, तो उसके लिए भी एक्सपर्ट ओपिनियन का ऑप्शन उसमें है। फिर फसल के लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीन्स सटीक मात्रा में कौन सा टाइप ऑफ खाद देना है, सिर्फ खाद ही नहीं उसके साथ अगर आपके पास ऑर्गेनिक अवेलेबल है जैसे फार्मी कंपोस्ट है, फार्मी एंड मैन्योर है और दूसरा टाइप का कोई भी ऑर्गेनिक लोकल लेवल में अवेलेबल है वो भी आप डाल सकते हो। फिर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा कितना खाद ऑर्गेनिक डालने से आप बचा सकते हो, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं ऑर्गेनिक को हम उपयोग करेंगे तो मृदा स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मृदा का जितना भी क्वालिटी है
1: उसको बनाए रखता है,
0: उसको बना के रखता है।
1: जी, तो किसान भाइयों, आज एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर हमारे बीच डॉक्टर निंटू मंडल सर थे और उन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और मुझे लगता है कि इसका उपयोग आप सभी करेंगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा मृदा के बारे में जानने के लिए कि आपके क्षेत्र में, आपके खेत में जो मिट्टी है

0: उसमें क्या कुछ कमी है या फिर कुछ तत्वों की अधिकता है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और बताई ही नहीं जाती हैं, उसको आप कैसे सुधार सकते हैं वो सारी भी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ आप सबके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. See you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करे जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले और बुआई के समय प्रति

30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 हैं। जिनके खेत में मूंग लगे हैं, उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस दर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है, या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ हैं टीकन भाभी भी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बाहर ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अब भी है, क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूं, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बच्चियां आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल लगते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है। क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं हैं।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करे?
2: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
0: ये फर्क समझना जरूरी है। किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल, बांझपन, शायद सबसे खतरनाक अफवाह।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा, आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे मां हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से मां है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
1: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो, अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें

0: तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
0: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजार घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: हाँ, घर में भी यही होता है। पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
0: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अधेरों में पनपता है।
2: ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं? कुछ लोग कहते हैं, इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों, बाद में ले लेंगे।
0: पर आधिकारिक जनसंदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है, ये बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
0: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
2: अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
0: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया।
0: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
2: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज मां है। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है।
0: जब आप ऐसे एक एक करके बताते हैं ना तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब गड़मड़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, मुद्दे को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी

0: बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है। ये टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो पूछे, क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा? तो कहो, नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वो पूछे, क्या इससे मैं आगे चलकर माँ नहीं बन पाऊंगी? तो कहो, ये झूठी अफवाह है।
2: ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
0: हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
1: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि ये किस लिए है। ये भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
2: बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
0: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वो बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
1: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता है।
0: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए। वहां तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौ चढ़ा लेते हैं।
1: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी अफवाह उतनी कम चलेगी।
2: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
0: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
1: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है। अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से, जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
0: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
2: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाह तेज होती है पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
0: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है न पूछना ही बड़ी गलती है।
1: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और

0: स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों, तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
1: ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
0: एक बात और, मैंने देखा है जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
1: और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है, उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
0: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसीलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ चलें, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुंचेगा।
1: अब एक छोटा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी। आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
0: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले बस घबरा जाती थी।
2: यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरे को समझा पाना भी है।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे? कहां जाए? कितना खर्च होगा? क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा? क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा? और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए? इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर हैं टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूसरी है, प्रक्रिया की। कहां जाएं, किससे पूछें, कागज क्या लगेंगे, भीड़ होगी या नहीं, कहीं लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती है।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम की है जब वो लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म व बिना डर सेवाओं के लाभ उठा सकें। इसीलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं, कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना। उपलब्ध सरकारी प्रचार सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: ये बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर ये बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते। हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्च डराता है।
2: और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आई है तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथा, जहां लागू हो, यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए, पूछने में शर्म ना करें। स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: यूविन का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़े आता है।
2: बिल्कुल सही, इसलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो। तकनीक मदद के लिए है, छाटने के

0: लिए नहीं।
1: ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
0: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं। तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चले। बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तब तक हमारे स्रोतों को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए।
1: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टेकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करें।
0: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली। पर जब वहां बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वही उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहां बैठा इंसान भी होता है। अगर वो सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है।
1: और यही एक बड़ी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
0: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहां महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा ये अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
1: और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना।
0: यही बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कुछ लक्षण होंगे तब देखेंगे, पर तब तक देर हो जाए तो।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
1: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में ये सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर। ऐसे में क्या करे।
0: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने निकलूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का अधिकार नहीं है।
0: और अब मुझे ये भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वो सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वो जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
1: ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए SSL के जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।

0: लेकिन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगी। किसी ने यूएन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल। पर तुमने पूछा ना? हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प हैं। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
1: यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
2: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवा में जानकारी मांगना झिझक का नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं।
0: और एक बात, जब मैंने सुना कि ये लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
1: यही सूचना असमानता है। सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है। इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है।
2: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
0: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
1: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बात होती है।
2: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, एएनएम या डॉक्टर से पूछें कि एचपीवी वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो यूविन पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच न माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से न हिचकें।
0: ये सूची मैं लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है पर लिखी चीज साथ रहती है।
1: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
2: बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
0: टीकन, अब मैं बेटी के टीके को लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
1: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
0: मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वो हमेशा कहती है, हमारे लिए कौन सा समय है? अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है।
1: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है।
2: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
1: और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
2: बहुत सही, यही है सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक।

0: पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। 1. 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। 2. जहां सुविधा हो यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है, जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3. डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण है। 5. परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6. सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7. जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना और उसे लेना दोनों आपकी ताकत हैं। और साथियों, यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में न लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
1: और जवाबदेही दो तरफ की होती है, व्यवस्था को समझाना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
2: अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनना पड़ता है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी संदेश जीवित रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा। नहीं, असली काम तब पूरा होता है जब घर की महिला कहे, मुझे समझ में आ गया।
2: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्यों है, कहां मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
1: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: और एक अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी न मिले या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
2: अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिककर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर

0: या A&M से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और A&M से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
0: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर लें और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 cm की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों

मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: placing their pawns on the marked intersections. An intersection can have at most one pawn. Second, once all the pawns are placed, the players take turns to move one of their pawns to adjacent empty intersections to form lines of three. The line can be horizontal or vertical. Third, once a player makes a line with their pawns, they can remove any one of the opponent's pawns as long as it is not a part of one of their lines. A player wins if the opponent has less than three pawns or is unable to make a move. Here we also have picture of some cute kids. They are wondering at this game Nav Kankari. Chapter 5 ends here.
1: Ganit Prakash, you were just listening to this audiobook, textbook of mathematics for grade 8. Narration, Swarnlata Sharma. Sound recordist, Virendra Rawat. Production assistant, Chetna Sharma. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET-NCERT, New Delhi, India.
2: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन टीबी के कारण को जानो खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो टीबी रोग हवा में फैले रखो अपना औरों का ध्यान घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे रोग मुक्त हम हो जाएंगे खांसी खोखो खांसी बलगम में है भरे कीटाणु रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो रहे न टीबी नाम मिटा दो खांसी खोखो खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए
3: खुद भी बचे देश भी बचाए
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
6: So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
8: Yo, what's up?
9: Baby, let's go!
10: Bihar Krishi Vishwavidyalay Sabaur se, aap sun rahe hain 90.8 Green FM.
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन आइए जानते हैं मौसम का हाल मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है आपको बता दें बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए किसान भाई बहनों आपको बता दें अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात शुष्क सम्राट सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है किसान भाई बहनों श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं मोटे अनाजों की

खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ಕೃಷಿ. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. और बहुत सारी बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी के लिए किसान भाइयों और बहनों, और बहुत कुछ जानने को भी आपको मिलता है. तो आज भी एक बहुत ही लाभप्रद बातें आप सभी के बीच हम रखेंगे. और आज हमारे आज विषय हैं, हम आपको बता दें कि कार्बन का प्रबंधन आप कैसे करेंगे. और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर श्वेता सांभवी मैम. और मैं आपको बता दूँ, ये सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर. और बहुत सारी जानकारी आज मैम हमें देंगी. तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद अनु. किसान भाइयों, आज जो मैं आपको थोड़ा कार्बन प्रबंधन मिट्टी में हम कैसे करेंगे इस पे मैं आपको थोड़ा बताऊंगी. और आज के समय में जलवायु परिवर्तन, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, कि समय के साथ जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है. तो मिट्टी है, मिट्टी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है या सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी में आपका कार्बन
0: जी.
1: तो कार्बन को मिट्टी में बनाए रहने से मिट्टी में जो जीवाणु है उनकी आपको नंबर्स या उनका जो की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. और इससे हम कार्बन को मिट्टी में बनाए, और जितने भी पोषण तत्व है मिट्टी में वो आपको कार्बन के मिट्टी में रहने की वजह से, जिसको हम जनरली ऑर्गेनिक कार्बन या आप उसको कहो कि जो जैविक कार्बन होता है, हम उसको वो कार्बन कहते हैं. वो ऐसा नहीं है जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो कार्बन वो आपको मिट्टी में कैद रहता है और उससे आपके जितने भी जीवाणु है मिट्टी में उसी की वजह से वो जिंदा रहते हैं.
0: अच्छा.
1: तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जो पिछले कुछ दशक में, 2-3 दशक से पहले तो यूरोप इन सब में हुआ, एक संरक्षित खेती, संरक्षण खेती यानी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. तो आपको जैसा कि पता होगा कि भारत जो है ना, भौगोलिक विभिन्नताओं से परिपूर्ण एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है
0: जी.
1: हमारे देश के लगभग 58% से ज्यादा लोग अपनी जीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है. और इस प्रकार कृषि रोजगार और जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. जिस तरह से जलवायु परिवर्तन से देश की कृषि प्रभावित हो रही है, ऐसे समय में जरूरत है कि कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना, जिससे फसल उत्पादन पे कोई असर ना पड़े, अच्छा उत्पादन मिलता रहे. और ऐसी ही तकनीक है संरक्षित खेती या संरक्षण कृषि, जिसको हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, या इसको किसान भाई जीरो टिलेज या सीड ड्रिल इन सब के माध्यम से जो खेती कहते हैं वो कहते हैं. यह एक पद्धति है जिसमें कि कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है. और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है. संरक्षित कृषि की वजह से जमीन की उत्पादकता में काफी इजाफा होता है, साथ ही साथ यह पानी, ऊर्जा और जमीन की उर्वरकता का भी संरक्षण करती है. संरक्षित खेती में हम क्या करते हैं ना, कि सब मिट्टी की न्यूनतम जुताई की जाती है, जिससे क्या होता है कि आपको ईंधन, मानव श्रम, इन दोनों की बहुत ज्यादा बचत होती है. आजकल आज के समय में आपको भी पता होगा कि ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोई भी मशीन है वो उनसे चलता है, और उसकी कीमत में कितनी अत्यधिक वृद्धि हो गई. पेट्रोल आज 100 के पार है, डीजल भी लगभग 100 पहुंच चुका है. तो जब हम न्यूनतम जुताई करेंगे तो इनकी बचत होती है. और आज के समय आपको जो मजदूर है, मजदूर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो हम मजदूरी को भी बचा सकते हैं, क्योंकि हम जुताई अगर कम करेंगे तो हमें मजदूर भी कम जरूरत होगी और आपको ईंधन भी आपका कम लगेगा.
0: तो ये कुछ बातें हैं इससे जुड़ी हुई. और प्रबंधन की बात करते हैं मैम, तो किस प्रकार से हम प्रबंधन करें कार्बन प्रबंधन?
1: देखिए, कार्बन प्रबंधन के लिए क्या है ना, कि मिट्टी में जैविक जो कार्बन है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए सबसे जो

0: महत्वपूर्ण है वो है आपका देसी खाद। देसी खाद जैसे हम गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब हरा खाद, बहुत सारे जब हम धान की खेती करते हैं तो धान से पहले हमें जो समय मिलता है उस समय हम लगा देते हैं, आपको कुछ भी ढेंचा ये सब हरा मूंग ये सब लगा देते हैं, इसको हम हरा खाद कहते हैं और इसको हम फिर जमीन में आप डाल देते हैं। तो इनका पर्याप्त उपयोग करने से हम जैविक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। अगर जमीन में जैविक कार्बन बढ़ता है उससे नाइट्रोजन की मात्रा खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन को जो जितना एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में उसको अपने आप में खींचता है। तो संरक्षित खेती में मिट्टी को की स्वास्थ्य और उससे पैदावार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो मिट्टी का सतह है उसमें फसल अवशेषों का पर्याप्त आवरण हो। आवरण मतलब कि फसल अवशेष, जैसे हम फसल काटते हैं उसके जड़ और जो ऊपर की थोड़ी ठूंठ रह जाती है उसको हम अगर अच्छी तरह से प्रबंधन करें कि उसको मिट्टी में वापस डाल दें, उससे हम क्या कहते हैं कार्बन वो जब सड़ता है कंपोस्ट बनता है, उससे आपको मिट्टी में कार्बन और दूसरे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, दूसरे जो है वो आपको नाइट्रोजन ये सब मिट्टी में आते हैं। अब मृदा में फसल अवशेष का स्थायी आवरण होने के कारण उसमें जो सूक्ष्म जीव है उनकी जैविक गतिविधियां बढ़ जाती है और इससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ना फसल को समुचित मात्रा में जितने भी पोषक तत्व है वो प्राप्त होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थों का मृदा में भौतिकी गुण जैसे उसकी संरचना, जो मिट्टी की संरचना है, जल धारण की क्षमता है, उसका भार है, जो हम जितना उर्वरक है जो हम यूरिया पोटाश ये सब जो ऊपर से डालते हैं इसका उपयोग, इसके जो उपयोग क्षमता मतलब हम जितना डालते हैं उतना आपको जो आपके पैदावार है या हम जो लगाते हैं उसको वो मिल सके, जो पौधे लगाते हैं उसको वो मिल सके। अगर कार्बन रहेगा तो वो कार्बन उसको जितना प्रदान करने में उसको उपयोग करने में मदद करता है। जो पोषक तत्व है अगर हम जैसे बारिश हो गई तो पोषक तत्व क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व आपका बारिश के पानी के साथ निकल जाते हैं, उसको बह जाता है। तो हम रिटेंशन मतलब कि उसको रोकना, तो अगर कार्बन मिट्टी में रहता है तो उसको रोकते हैं। और जो ये खाद, ये कंपोस्ट, जो हम देसी खाद जो हम गोबर खाद है या हम कचरा को खाद बना देते हैं, बहुत सारा अभी हम लोगों ने देखा है कि जो सिटी वेस्ट है या घर का कचरा उसको कहा जाता है कि अलग अलग रखिए, आप किचन के कचरे को अलग रखिए और जो प्लास्टिक है, शीशा है, इस टाइप का टिन वगैरह को अलग रखिए और इसको हम फिर खाद बना देंगे। और इससे क्या होगा कि उसको खाद बना के हम उसको खेत में डाल सकते हैं, जो मिट्टी के आसपास जो जड़ है, जो पौधे उसके जड़ के आसपास, उसको हम मतलब साइंटिफिक टर्म से राइजोस्फीयर कहते हैं। तो इन राइजोस्फीयर में क्या है ना कि जितने भी सूक्ष्म तत्व है आपके बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जीवाणु जो है ये मदद करते हैं सारे पोषण तत्व को उपलब्ध कराने में, उसकी उपलब्धता को बढ़ाने में। तो जितना खाद रहेगा उसमें उतने जीवाणु ज्यादा पैदा लेंगे। केमिकल्स में कभी भी जीवाणु नहीं हो सकते हैं। तो इन सब की वृद्धि के लिए हम केचुआ खाद और ये सब डालते हैं, जिससे मिट्टी में जैविक कार्बन जो है वो हम उसको बढ़ा सकते हैं और उसको हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं।
1: जी, तो मैम अगर जलवायु की हम बात करें तो जलवायु में इसकी क्या भूमिका है अगर हम ये सारे प्रबंधन करते हैं तो?
0: अब इन सारे प्रबंधन से क्या होता है कि जितना हम अभी तक देखिए कृषि क्या है, मुख्यतः कृषि के तीन मुख्य स्तंभ है, मिट्टी, पानी और बीज। लेकिन अभी जो परंपरागत कृषि तकनीक जैसे कि अत्याधुनिक जुताई हो रही है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है और जैविक खाद का उपयोग कम हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत गिरावट आ गई है। अब जितना मिट्टी में उपस्थित जितना जैविक कार्बन है उसको समान रूप से सभी जीवाणु इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उससे मिट्टी की जो भी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण है ये इसमें कमी आ रही है। अब इन कमी और जो जलवायु में जो परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी में देखिए मिट्टी में जो जितने भी जैविक आपके जीवाणु रहते हैं वो आपको एक तरह से बैलेंस करते हैं, बैलेंस मतलब बनाए रखते हैं। अगर मिट्टी में पानी ज्यादा रहता है तो वातावरण में वही पानी अगर रहता है तो वातावरण के टेम्परेचर को, उसके तापमान को नियंत्रण करने में मदद करता है, क्योंकि वो जब मिट्टी जब धूप होती है तो वही पानी पहले भाप बनता है, तो मिट्टी बहुत जल्दी गर्म नहीं होती और तो उस तरह से क्या होता है ना कि अगर जो वैश्विक उष्मीकरण है यानी जो गर्मी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इनको कम करने, इसको कम करने में जो ये जैविक कार्बन है ये मदद करता है। वो वातावरण से जो भी जो आपका उष्म है उसको

0: टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने में उसको मदद करता है। इस तरह के प्रबंधन से सिर्फ ये नहीं होता है कि हम उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, सिर्फ कि पौधों के आप उत्पादकता को बढ़ाते हैं, इसके साथ आप वातावरण में जो जितने भी हार्मफुल यानी जो आपके कीटनाशक इन सब का जो आपके जो निकलते हैं उससे जो भी आपको जो आपको हानि कर सके, हानिकारक जो पदार्थ सब निकलते हैं केमिकल्स, वो आपके वातावरण में जो जाते हैं उसको ये अपने अंदर सोख लेता है, उससे वातावरण आपका प्रदूषित नहीं होता। अगर वातावरण जो प्रदूषित होता उसी से आज की स्थिति में हमारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि जो ऊपर के सतह है उसमें ये केमिकल्स जाके जमा हो रहे हैं और उसकी सतह में छेद कर रहे हैं, जिससे हम जो आपका ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का मेन है कि हम उसमें आपका ओजोन लेयर जो है उसमें आपको छेद हो रहा है और वो ओजोन की परत पतली होने या उसमें छेद होने की वजह से वो किरणें हमारे तक पहुंच रही है। तो मेनली जो केमिकल्स है इनकी वजह से, अगर हम केमिकल्स को वातावरण में कम जाने दें, इसको हम जमीन में ही रख लें, तो ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा और उसके पोल्यूशन को रोकेगा, तो बहुत मदद करता है। अगर कार्बन मिट्टी में अच्छा रहे तो ये सिर्फ आपके पैदावार के लिए नहीं, आपके पौधों के लिए नहीं, आपके वातावरण को भी बहुत तरह से संरक्षण प्रदान करता है
1: जी। और एक अंतिम सवाल ये है जो अक्सर ये जानना चाहते हैं हमारे श्रोतागण और हमारे किसान भाइयों कि मिट्टी पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि मिट्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए कि मिट्टी अच्छी होगी तभी जो फसल है वो अच्छे होंगे, तो क्या इसका क्या असर होगा मिट्टी पर वो भी बता दें मैम।
0: देखिए, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन के बढ़ाने मात्रा बढ़ने से मिट्टी का स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, जो खाद्य सुरक्षा है मतलब जो आपके फूड है उसमें पेस्टिसाइड या किसी भी चीज के इनकी गुणवत्ता को हम कम बढ़ा सकते हैं। जैसे पेस्टिसाइड को हम मिट्टी में ही रख लेंगे, कार्बन अपने में रख लेगा, तो वो खाने में या उस फल फूल में नहीं जाने देगा। जो जल है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, और हम कार्बन अच्छे रहने से हम रसायन का प्रयोग हमको कम करना होता है, क्योंकि जो आपको जो भी पोषक तत्व है कार्बन की वजह से वो वातावरण से मिट्टी में जाता है और उससे आपको मिल जाता है। अब इसे भूमि को अपरक्षण को भी रोका जा सकता है, जो हम कहते हैं कि बारिश होती है और बहुत ऊपरी तह से बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो बह जाते हैं पानी में
1: जी।
0: हाँ, तो वो उसको वो रोकने में सफल रहता है,
1: मतलब बैलेंस बनाए रखने में जी।
0: हाँ, बैलेंस बनाया रहता है आपका पोषण प्रबंधन, खाद और इन सब का प्रयोग से आपका जल संरक्षण और इसका संरक्षण होता है, मतलब जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर का रिटेंशन, पानी का रिटेंशन, पानी को हम रोक सकते हैं मिट्टी में और लंबे समय तक वो पानी उपलब्ध होता है। एक अनुमान के अनुसार कहा गया है कि अवक्रमित मिट्टी में केवल 1 टन कार्बन युक्त मिट्टी बढ़ा देने से प्रति हेक्टेयर फसल को कई किलोग्राम तक बढ़ाया जाए। अगर हम किसी तरह 1 टन कार्बन 1 हेक्टेयर में हम उसको कार्बन को रिटेन कर सके मिट्टी के अंदर, तो हम कई केजी तक उसकी फसल को हम बढ़ा सकते हैं। और मिट्टी में जितने उपस्थित कार्बन से जितने भी जीवाश्म है उससे निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस को हम प्रतिवर्ष 75% तक अवशोषित करने की क्षमता रखती है, और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के दौर में यह सबसे बड़ी राहत की बात हो सकती है। अगर हम मिट्टी में कार्बन बढ़ाए तो 75% तक हम जितना भी आपके हार्मफुल है एलिमेंट्स जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, ऐसे हम जो भी गैसेस निकल रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कार्बन कितना ज़रूरी है मिट्टी के लिए, फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए। तो आशा करते हैं कि इस प्रबंधन को आप अपनाएंगे और अच्छे से खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे

0: को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो।
5: टीको क्यों है?

0: नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
3: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
4: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है, हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं। बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं, उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं। उसी के तरह बैसिलस हो गया, या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
3: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
4: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफूंद का जो माइसेलिया होता है या फफूंद की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से भी जो फफूंद की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया, फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करता है। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है, और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
3: तो मैम, अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बैसिलस बहुत

0: अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है
1: जी,
0: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है
1: जी।
0: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बेसिलस?
1: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते हैं कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीत ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
1: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज़ करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर, फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है, फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
0: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
1: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। अब अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंजीसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सिडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही

0: मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है, ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है, मधुमक्खी है, उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम, अगर अब किसान भाई बहन बेसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बेसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी, वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक, जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं, बैसिलस, सिडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सिडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कि ये बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए, तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बेसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिल।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बेसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
0: मुझे और एक बस जाते जाते बताना था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में, इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बेसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it's safe.

0: protects your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी शुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत

सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है, इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
4: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
6: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली 3-4 तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमा हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
4: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
6: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके के होती हैं। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे, तो उस केस में क्या कर सकते हैं,

जब हम वर्षा जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं बत्तर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरीगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लाविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुवाई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुवाई करना कैसे है, हम सीधी बुवाई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20 बाई 10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियाँ, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं, तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को, तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पडलिंग यानी कि हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे वो अच्छे अच्छे फाइन, मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं, तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया, तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला, और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी, जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का
स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको।

आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने प्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक मॉडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25 से 25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं, अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था, तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं, तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं, भी जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे,
तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम ऑल्टरनेट

0: एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियाँ होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उनको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्रीविधि के लिए बताया था डेपोग नर्सरी, तो ये डेपोग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है।

0: मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डपॉग नर्सरी। तो ये डपॉग नर्सरी हम श्रीविधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्रीविधि में यूजली डपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। 19 कृषि।
2: खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन

डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 cm की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी कद्दू खीरा नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड अरका कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम

व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ, तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, अंग उमंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम अंग की बात करते हैं, अंगिका की बात करते हैं, अंग प्रदेश की बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में, या फिर आप जो भागलपुर से नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने कभी ना कभी भागलपुर का नाम सुना है, तो वो सिल्क सिटी की बात ज़रूर करेंगे। सिल्क जो हमारे भागलपुर का बहुत मशहूर सिल्क है, तसर सिल्क, जो अपने देश में तो अलग अलग हिस्सों में जाता ही है, विदेशों में भी तसर सिल्क की बहुत मांग होती है। तो किस तरीके से हमारा भागलपुर, हमारा प्यारा भागलपुर सिल्क सिटी बन गया और क्या इसका इतिहास रहा है, क्या ये मुगलों के काल में शुरू हुआ या अंग्रेजों के समय पे शुरू हुआ या फिर इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, आज इस बारे में हम जानेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। और अगर हम बात करें ना कि भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जो जाना जाने लग गया है और इतनी प्रसिद्धि मिली है भागलपुर के सिल्क को, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? माना जाता है कि प्राचीन काल से भागलपुर का नाता सिल्क से रहा है। और अगर हम भागलपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो उनमें से एक नाम था चंपा, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। और चूंकि हमारा भागलपुर गंगा नदी के किनारे है और आपको ये पता है कि आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो शहर या जो भी राज्य नदी के किनारे बसा होता है, वहाँ पर जो व्यवसाय होता है वो काफ़ी फलता फूलता है। अपने इतिहास में ये सारी बातें पढ़ी होंगी। तो क्या हुआ कि गंगा नदी एक व्यापारिक मार्ग था और गंगा नदी के किनारे हमारा अंग महाजनपद, तो माना जाता है कि यहाँ रेशम और वस्त्र व्यापार की परंपरा काफी पुरानी है। और क्योंकि गंगा मार्ग से वस्त्रों का आदान प्रदान होता था तो उनमें एक सिल्क भी था। अगर बात करें तो खास तौर से पूर्वी भारत यानी कि मगध या बंगाल से यहाँ पर वस्त्रों का आवागमन होता था। अगर हम उस वक्त की, मतलब प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में प्रत्यक्ष रूप से जो कारखाना के स्तर हैं उसके प्रमाण काफ़ी कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उस वक्त वस्त्र की यहाँ पर बुनाई होती थी और रेशमी कपड़ों के व्यापार के भी संकेत कई सारे मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा भागलपुर है, यहाँ पर काफ़ी वन हुआ करता था, जंगल हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो वन आधारित तसर है यानी कि रेशम है, इसका उत्पाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता था और स्थानीय स्तर पर भी इसे काटा जाता था, बुना जाता था। इसी वजह से माना जाता है कि जो परंपरा रही होगी काफी प्राचीन रही होगी। और अंग जनपद को हम चंपा के नाम से इसलिए भी जानते थे क्योंकि यहाँ पर चंपा के पेड़ काफी ज्यादा थे। और वहीं अगर हम पाल काल की बात करें ना, मतलब कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच में, तो उस वक्त पे इस क्षेत्र में पाल शासकों का काफी प्रभाव था। और उस वक्त का जो प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसके कारण यहाँ पर काफी बौद्ध भिक्षु भी आते थे, उनका भी आवागमन बढ़ा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यात्रा काफी बढ़ी। और जब लोग बाहर से आते हैं तो व्यापार भी फलता फूलता है। तो ऐसे में जब उनसे संपर्क हो रहा था तो उनके वस्त्रों को देखा गया जिसमें रेशमी कपड़े भी शामिल थे, तो इन कपड़ों का भी आदान प्रदान बढ़ा। और वहीं अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में रेशम उत्पादन की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिसे ये संकेत मिलता है कि भागलपुर क्षेत्र भी इस कारीगरी से जुड़ा हुआ था। और अब तक तो हमने बात की कि प्राचीन काल और मध्य काल में क्या हुआ, लेकिन मुगल काल में देखा जाता

है कि सिल्क का जो व्यवसाय था इसे काफी विस्तार मिला। मुगलों ने क्या किया, वो कर प्रणाली लेकर आए, बाजार और संरक्षण भी उन्होंने दिया बहुत सारे मामलों में। तो इस माध्यम से क्या हुआ कि जो कारीगर थे जो इधर उधर फैले हुए थे, अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे, तो अब कारीगरों को संगठित मुगलों ने किया था। और इसके साथ ही शाही दरबार में रेशमी वस्त्रों की मांग काफी अधिक थी, तो इसकी वजह से भी रेशम का उत्पादन बढ़ा और इसकी जो पहचान है वो भी काफी मजबूत हुई। शाही दरबार में मांग थी तो पहचान तो मजबूत होनी ही थी। और प्राचीन काल में जो उल्लेख है रेशमी वस्त्रों के, वो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में इसके दस्तावेजी प्रमाण काफी प्रबल रूप से मिलते हैं और बड़े पैमाने पर इसका उल्लेख मुगल काल में दिखता है और बहुत स्पष्ट दिखता है। मध्य काल में रेशम उद्योग का काफी विकास हुआ। मुगल काल में माना जाता है कि भागलपुर रेशम बुनाई का प्रमुख केंद्र बन गया था और यहाँ पर स्थानीय कारीगर हथकरघा यानी कि जो अभी भी आप देखेंगे चंपानगर में हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता है, तो हैंडलूम से रेशमी कपड़े तैयार करते थे और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो तसर रेशम के लिए बहुत अनुकूल था, तो इस वजह से भी यहाँ पर तसर रेशम का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और तसर रेशम के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाही दरबारों में इसकी मांग काफी ज्यादा थी, तो ये एक विशेष परिधान में उस वक्त पे शामिल हो चुका था। वहीं अगर हम बात करें अब ब्रिटिश काल की, तो माना जाता है कि जो भी सिल्क के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए ये स्वर्णिम दौर था, क्योंकि 18वीं से 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भागलपुर के रेशम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया, क्योंकि वो देश से बाहर भी जा रहे थे और उनका मुख्य कारण तो यही था ना भारत में आने का कि वो व्यापार कर सके। और यहां भागलपुर का जो तसर सिल्क था इतना कमाल का था कि उन्हें इसमें भी अवसर दिखा, तो उन्होंने यहाँ पर के जो तसर सिल्क थे उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया और फिर यहां से रेशमी कपड़े यूरोप तक निर्यात होने लग गए थे ब्रिटिश काल में। तब भागलपुरी सिल्क की एक पहचान बन गई थी और ये एक ब्रांड बन गया था कि ये भागलपुरी सिल्क है। और इस समय में बहुत बड़ी संख्या में बुनकर परिवार इस उद्योग से जुड़ गए थे, पहले से जुड़े हुए थे लेकिन जब ये एक ब्रांड बन गया और भागलपुरी सिल्क को एक बहुत ही मजबूत पहचान मिली, तब बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए थे तसर सिल्क के व्यवसाय से। अगर हम भागलपुरी तसर सिल्क की विशेषताओं की बात करें तो इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा होता है थोड़ा, और ये काफी खूबसूरत दिखता है। ये हल्का होता है पर मजबूत होता है और काफी टिकाऊ भी होता है। और कहते हैं तसर सिल्क को कुछ लोग एसी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप तसर सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं या फिर चादर ओढ़ रहे हैं तो फिर ये गर्मियों में आपको ठंडे का एहसास कराते हैं और वहीं सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखने की क्षमता भी होती है तसर सिल्क में। और ख़ास तौर से अभी भी बहुत जो जिन्हें सिल्क की अच्छी पहचान है, जो सिल्क के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद करते हैं, वो ये भी पसंद करते हैं कि उनके पास जो सिल्क के उत्पाद पहुँच रहे हैं, जो कपड़े पहुँच रहे हैं, वो हाथ से बुने हों और पारंपरिक डिज़ाइन में हो। उसकी बात ही अलग होती है, उसका एहसास ही अलग होता है। और भागलपुर में अभी भी कुछ जगहों पर हाथ से बिल्कुल पारंपरिक तरीके से सिल्क के जो चादर हैं वो बनाए जाते हैं, सिल्क की साड़ियां बनाई जाती है। और लेकिन अब हम बात करें तो आज भी हजारों परिवार रेशम के उद्योग से जुड़े हुए हैं, पावर लूम है और आधुनिक डिज़ाइन का भी अब प्रयोग किया जा रहा है और ये प्रयोग बढ़ा भी है क्योंकि वो सस्ते होते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, तो वैसी भी डिमांड आज के वक्त पे बन रही है जिसकी वजह से आधुनिक डिज़ाइन का प्रयोग बढ़ा है। वहीं सरकार द्वारा भी कई सारे सिल्क क्लस्टर योजनाएं भी चलाई जाती है, लेकिन उद्योग को कच्चे माल की कमी होती है और मशीनों की जो लागत आती है और बाजार में भी एक प्रतिस्पर्धा आ गई है, एक कंपटीशन आ गया है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग सस्ता चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं, फिर चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। तो इस वजह से अब बाजार में आधुनिक डिजाइन आ गए हैं और जो हाथ से बनाया करते थे उनकी मांग थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी जिन्हें सिल्क की पहचान है, जिन्हें सिल्क के कपड़े काफी अच्छे लगते हैं, वो आज भी हाथ से बने हुए सिल्क की डिमांड करते हैं और ओरिजिनल सिल्क की डिमांड करते हैं। दोस्तों हमारे भागलपुर में तो तसर सिल्क काफी फेमस है, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक रेशम है वो पाए जाते हैं और जिनमें से कि चार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो मलबरी रेशम है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा उत्पादित रेशम है तो वो मलबरी रेशम ही है।
और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है तो शहतूत, जैसे कि हम अंग्रेजी में मलबरी कहते हैं, उसके पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उसी से मलबरी सिल्क का उत्पादन होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। और मलबरी सिल्क की ये विशेषता होती है कि ये काफी चिकना होता है, चमकदार होता है और मुलायम भी होता है। ये खास तौर से कर्नाटक, तमिलनाडु

वो नहीं चाहते हैं कि किसी को भी नुकसान पहुंचे, तो वो एरी रेशम का उपयोग ज्यादा करते हैं। वहीं एक और सिल्क है मूंगा रेशम, ये केवल असम में पाया जाता है। इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा पीला होता है और ये काफी टिकाऊ होता है और ये काफी महंगा भी होता है। तो ये जो कुछ प्रकार के रेशम है वो अपने भारत में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भागलपुर में खास तौर से तसर सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। और तसर सिल्क आज भी भागलपुर से देश के अलग अलग हिस्सों में और साथ ही विदेशों में भी इसकी मांग की जाती है तसर सिल्क की। तो आपके पास भी शायद कोई तसर सिल्क के कपड़े होंगे, कोई शॉल होगा और उस पे मंजूषा या फिर मधुबनी का काम करवा लीजिए, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको बाजार में भी ऐसे कपड़े मिल जाएंगे, जहां पर आप सिल्क के कपड़े लेने जाएंगे वो आपको ऐसे कपड़े दिखाएंगे जो कि हाथ से बुने हुए हैं, उसके ऊपर हाथ से उस पे कलाकारी की हुई है, तो वो अलग फील देता है। ऐसा महसूस कराता है जैसे आप अपने जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और अंग उमंग कार्यक्रम में हम यही तो करते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में बताते हैं, अपने अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए आज अंग उमंग कार्यक्रम में। इतना ही, बस जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि ध्यान रखें कि जहां भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो इससे सिर्फ आप खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाएंगे और इससे हमारे शहर की तस्वीर भी बदलेगी। तो थोड़ा भी जहां भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई का ख्याल जरूर रखें। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं कोदो मिलेट के बारे में। कोदो मिलेट जो कि काफी फायदेमंद होता है किसान भाई बहनों के लिए भी और जो उसका उपयोग करते हैं उनके लिए भी। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे कोदो मिलेट की खेती की जाती है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहला सवाल कि क्या कोदो एक जलवायु अनुकूल फसल है?
2: ये कोदो बिल्कुल ही जलवायु अनुकूल C4 क्रॉप है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की श्री अन्य फसलों में कोदो मिलेट्स भी एक महत्वपूर्ण श्री अन्य या पोषक अनाज अथवा मोटे अनाज की फसल है। ये सभी मोटे अनाज या कंदन फसलें या पोषक अनाज या फिर हम श्री अन्य की फसलें कहें, ये सभी के सभी जलवायु अनुकूल है, क्योंकि इन सबको बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। सुखाड़ की स्थिति में भी ये अपना उत्पादन दे जाती हैं और साथ ही साथ कम उर्वर जमीन में भी इनका उत्पादन मिल जाता है। उच्च तापमान पर भी ये सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो आज जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक लेवल पर जल की कमी हो रही है, सुखाड़ की स्थिति आ रही है, तापमान का बढ़ना आप लोग जान ही रहे हैं। तो ऐसे ही समय में श्री अन्य फसलों का महत्व बढ़ जाता है। बिहार में देखा जाए तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों सिचुएशन साथ साथ रहता है। साउथ बिहार में सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है, जबकि नॉर्थ बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इस वर्ष हमारे मौसम वैज्ञानिकों का जो पूर्वानुमान दिया गया है और हम लोग देख भी रहे हैं कि ई एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात विगत वर्षों की तुलना में कम हो रही है और अनुमान है कि इस वर्ष 40% तक बरसात में कमी होगी। तो ऐसे विषम परिस्थिति में ये जो श्री अन्य की विभिन्न फसलें हैं, सावा, कोदो, कौनी, चीना, ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

0: और निश्चित तौर पे किसान भाइयों के लिए एक लाभ की लाभकारी फसल है।
1: जी सर, अगर हम अब बात करें कि कैसे कोदो मिलेट की खेती करनी चाहिए और कब करनी चाहिए।
0: देखिए, कोदो मिलेट की खेती हमारे किसान भाई लोग बहुत परंपरागत तरीके से बहुत प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। हम 1960 के बाद ही गेहूं चावल पर निर्भरता डिपेंड किए हैं, तो ये कोई नई फसल नहीं है, ये प्राचीन फसल है। लेकिन चूंकि गेहूं और चावल की उत्पादकता ज़्यादा मिलने से ये सभी फसलें विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य की स्थिति है कि बरसात में कमी हर जगह होने लगी है, हर रीजन में बरसात कमी होने लगी है, तो वहाँ इन फसलों का महत्व तो बढ़ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कोदो मिलेट को, अपने बिहार राज्य की बात करें, तो जितने भी किसान भाइयों की ऊपरी ज़मीन है जहाँ जल जमाव नहीं हो पाता है, ऊपरी और मध्य जमीन में, हम कोदो मिलेट को बरसात शुरू होने से, या यो कहें कि 15 जून से लेकर के अगर हम 15 जुलाई के बीच में करते हैं, तो बहुत ही लाभप्रद खेती साबित होती है। इसके लिए हमें खेत की तैयारी कर लेना चाहिए, अच्छे से तैयार, 2 से 3 बार जुताई किया हुआ खेत ज़्यादा सही रहता है। हालांकि आजकल हम लोग इन सभी मिलेट फसलों को जीरो टिल विधि से भी बुआई कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो किसान भाइयों के लिए अपना ऑप्शन है, जीरो टिल मशीन है तो जीरो टिल से भी बुआई कर सकते हैं। अदरवाइज 2 से 3 बार जुताई करके पाटा चलाने के बाद खेत तैयार हो जाता है, उसमें खाद की मात्रा अभी जो हम बताएंगे उसको डाल करके इसकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जब भी समय मिले कर लेना चाहिए। बात आती है इसमें उर्वरक प्रबंधन की, क्योंकि जितने भी हमारी ये मिलेट की फसलें हैं इनको धान की कंपेयर में जस्ट आधी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। कोदो मिलेट को भी कहें तो किसान भाई लोग, आप अपने खेत में जितना धान के खेत में खाद देते हैं उसका जस्ट आधा देना है इसमें, आधे खाद में और बिना सिंचाई के भी ये खरीफ में आराम से फसल आपको प्रति एकड़ 9 से 10 क्विंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है कोदो मिलेट। तो अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो इसके लिए जो रिकमेंडेड है वो प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत पड़ती है। अब जो किसान भाई लोग नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए एक हम मोटी मोटा बता दें कि आपको लगभग 50 किलोग्राम यानी एक बोरा यूरिया, 45 से 50 किलोग्राम यूरिया और एक बोरा DAP, आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ पर्याप्त हो जाता है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें, जबकि नाइट्रोजन यानी जिसको हम यूरिया के रूप में दे रहे हैं, हमने बताया एक बोरा यूरिया पर्याप्त होता है जो 45 किलोग्राम की होती है, तो यूरिया की मात्रा 2 बार में देना है। पहला बुआई के 20 से 22 दिन पर जब इसमें कल्ले यानी टिलर निकलना शुरू करते हैं, दूसरा बुआई के करीब 55 से 60 दिन पर जब इसमें बालियां निकलने की स्थिति में होती हैं। चूँकि कोदो मिलेट जनरली 100 से 105 दिन की फसल है, तो नाइट्रोजन को लगभग कम से कम 2 बार में देना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप देखें तो जितना आप अपने धान में खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, उसका लगभग आधा मात्रा ही इसमें देने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसका बीज दर का, तो प्रति एकड़ की बात करें तो केवल 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त हो जाता है प्रति एकड़ के लिए। बुआई की विधि की बात किया जाए तो इसको कतारों में अगर बुआई किया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। कतार से कतार की दूरी आप 22 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं, अर्थात 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय विशेष ध्यान देना है कि बीज की गहराई उथली रहे। जैसे हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो 1 इंच से कम ही गहराई रखते हैं, मतलब गहराई किसी भी कंडीशन में 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर अगर बोते हैं तो सबसे अच्छा जमाव होता है। तो विशेषकर हमें यही ध्यान देना होता है जब हम मशीन से बुआई करते हैं, किसी कारणवश हमारा सीड ड्रिल 1 इंच से ज़्यादा गहराई पर बो रहा है तो दिक्कत होता है। उसके लिए ध्यान दिया जाता है कि जब हम सीड ड्रिल से या जीरो ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हों तो हमारा 10% बीज जमीन पर दिखना चाहिए। अब 10% बीज अगर जमीन पर इक्का दुक्का दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका गहराई सही है। अगर कोई भी बीज जमीन पर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप गहरा बो दिए हैं, फिर आपका जमाव नहीं होगा। तो इसलिए एक विशेष सावधानी देना है कि गहराई

0: सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में रखें, किसी भी कंडीशन में 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न बोएं। अब बात आती है इसमें
1: उत्तम प्रजातियों की जी सर,
0: क्योंकि हम अगर परंपरागत प्रजातियां लेते हैं तो उसका उत्पादन कम है। कोदो की अभी हमारी यूनिवर्सिटी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, अभी हम लोग के पास कोई अपनी प्रजाति नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर की प्रजातियों को पिछले 3 वर्षों में यहाँ टेस्ट किए हुए हैं, जिसमें इंदिरा कोदो 1, इंदिरा कोदो 1 बहुत ही अच्छी प्रजाति है। समझ लीजिए कि इंदिरा कोदो 1 लगभग 105 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ 12 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। 12 कुंटल दाने आपको प्रति एकड़ मिल जाते हैं मात्र 105 दिनों में। दूसरी प्रजाति है जेके 155 भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रजाति है और लगभग यह भी 11 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे देती है, करीब 105 से 110 दिनों के बीच में पककर तैयार हो जाती है। तीसरी प्रजाति है जेके 439 और अगला है जेके 65। इन सब प्रजातियों का भी उत्पादन करीब 10 कुंटल तक प्रति एकड़ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो हमारी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, हाई यील्डिंग प्रजातियां हैं, जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं, इनका ही सिलेक्शन करें। तो इसमें इंदिरा कोदो 1 अथवा जेके 155, जेके 65, इन प्रजातियों को का चयन कर सकते हैं। जो भी किसान भाई अभी इच्छुक हैं, वो अभी हम 20 किसानों को फ्री में बिल्कुल निशुल्क 2-2 केजी बीज डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर इंदिरा कोदो 1 और जेके 155 का यूनिवर्सिटी से उपलब्ध करा देंगे। आप इसको अपने खेतों पे लगाएं और दूसरे किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित करें।
1: जी सर, अगर अब हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो वो किस प्रकार से किया जाए?
0: कोदो देखिए एक बहुत ही मतलब खरपतवार के प्रति सेंसिटिव फसल है। अगर हम बुआई के 15 से 35 दिन के बीच तक खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं, उत्पादन में 50-60% तक की गिरावट हो जाती है। इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडी मिथिलीन का उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडी मिथिलीन का प्रति हेक्टेयर 500 से 800 लीटर पानी में आवश्यकतानुसार घोल करके छिड़काव करना चाहिए। अब सक्रिय तत्व का मतलब है कि 30% का आता है, तो बाजार का प्रोडक्ट जो है 3.3 लीटर हो जाता है। तो आप किसान भाइयों के शब्दों में कहें तो लगभग 1 एकड़ में 1.25 लीटर पेंडी मिथिलीन जो बाजार का प्रोडक्ट है वो पर्याप्त हो जाता है। आवश्यकतानुसार आप 400 लीटर पानी में घोल करके, या आप पानी कम भी कर सकते हैं, 200 लीटर में भी घोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ड्रोन से करेंगे तो मात्र 50 लीटर पानी में ही हो जाएगा, लेकिन आपका दवा जो है प्रति एकड़ 1.25 लीटर पेंडी मिथिलीन पड़ना चाहिए बाजार का प्रोडक्ट। तो इसे बुआई करके तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए खेत में, इसे अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए 2,4-D 58% का रसायन लिया जा सकता है, जिसका लगभग 25 ml दवा प्रति टंकी पानी में ले लिया जाए, या यूं कहे 1.5 ml प्रति लीटर की दर से आप व्यवहार करें तो आ जाता है करीब 24 से 25 ml प्रति टंकी, टंकी जो 15 लीटर की होती है उसे करिए। प्रति एकड़ लगभग आपको 10 टंकी पानी देना जरूरी हो जाता है। तो इससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मर जाते हैं, फील्ड में अन्य प्रकार के खरपतवार जो बच जाते हैं उसको हाथों द्वारा निराई करके समाप्त किया जा सकता है।
1: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप किसान भाई बहनों को 2 किलो बीज मुफ्त में दे रहे हैं,
0: जी
1: तो इसके बारे में एक बार थोड़ा विस्तार से बता दीजिए।
0: इसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, मिलेट उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट वैल्यू चेन। तो इस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट के तहत हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसमें हम जो अच्छी प्रजातियां हैं उन्हीं का बीज किसान भाइयों को देंगे। तो जो जेके 155 है उसका बीज हमारे पास उपलब्ध है, इंदिरा कोदो 1 का बीज भी उपलब्ध है। तो लगभग 20-25 किसानों को भी हम फ्री में जो पहले आएंगे पहले ले जाएंगे, 2 किलो बीज हम दे देंगे। बाकी जो इंटरेस्टेड किसान हैं वो बिहार सरकार

0: करके जो कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके वहां से भी बीज प्राप्त कर लेंगे, वहां भी फ्री में बीज मिल जाएगा। और वहां एक सुविधा और है, बिहार सरकार मिलेट उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपया प्रति एकड़ उनके खाते में इनपुट के रूप में पैसा दे रही है और 2,000 रुपये का ऑलरेडी इनपुट दे देती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बिहार सरकार प्रति एकड़ आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेट उगाने के लिए आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दे देती है, जिससे आपका इसके प्रति रुझान बढ़े। तो इस अवसर का लाभ लेना चाहिए।
1: सर, किसान भाई बहन क्या कैसे मतलब बीज प्राप्त कर सकते हैं वो डायरेक्ट यहाँ विश्वविद्यालय
0: में आकर के, मेरे यहाँ भी आकर के बात कर सकते हैं या डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म में जाकर के वहाँ से भी बीज ले सकते हैं।
1: जी सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई कोदो मिलेट के बारे में। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि,
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले एक ऐसे फसल के बारे में जो खासतौर से आजकल के जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावा मिलेट की उन्नत खेती के बारे में। और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
1: सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जब हम सावा मिलेट्स की बात करते हैं तो ये जलवायु अनुकूल फसल है?
0: देखिए, सावा मिलेट्स जिसको हम बार्नयार्ड बोलते हैं, ये जलवायु अनुकूल फसल है। जलवायु अनुकूल का मतलब ही है कि ऐसी सभी फसलें जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जो कम पानी में आसानी से उग जाएं और उच्च तापमान में भी चल सके, क्योंकि मौसम परिवर्तन में सबसे अधिक समस्या हो रही है तापमान का बढ़ना और दूसरा पानी की कमी होना। इस वर्ष अगर हम बात करें तो देखिए कि इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव से हमारे बिहार राज्य में लगभग 40% बरसात की कमी दर्ज की गई है। अर्थात जो बरसात आपके क्षेत्र में पिछली बार हुआ है या पिछले 30 वर्षों में हो रहा है उसकी तुलना में 40% कम होगा, अर्थात 2/3 से भी बरसात कम होगा। तो ऐसे समय में क्या हो संभावनाएं हैं कि जिन किसान भाई लोगों ने धान की खेती लगाया है या लगाने जा रहे हैं, विशेषकर ऊपरी जमीन या मध्यम जमीन में, उनकी धान की खेती प्रभावित होगी। प्रभावित होने का तात्पर्य है या तो उसका उत्पादन कम होगा या कहीं कहीं जो विशेष ऊपरी जमीन होगी उस जमीन में जल धारण की क्षमता भी नहीं होगी, वहां धान की फसलें सूख भी सकती हैं। तो उत्पादन कम होने से धान की खेती इस वर्ष घाटे की सौदा हो सकती है, विशेषकर ऊपरी एवं मध्यम जमीन में असिंचित अवस्था में। जहां सिंचाई की सुविधा है वहां हम धान की सिंचित रोपाई करेंगे, लेकिन धान वहां भी इतना ज्यादा पानी का डिमांड हो सकता है कि धान बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ऐसे सभी असिंचित क्षेत्र जो ऊपरी जमीन है, मध्यम जमीन है, जहां जल का जमाव नहीं होता है, उनके लिए जलवायु अनुकूल फसलें जैसे रागी, सावा, कोदो, चीना, कुटकी, इन सभी फसलों को हम लोग श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। 2023 से हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक लेवल पे इन सभी फसलों को श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। तो ये सभी फसलें जलवायु अनुकूल हैं, अर्थात एडवर्स कंडीशन में अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपको मुनाफे का सौदा करती हैं। आप इनको बो दीजिए, ये आपको कुछ न कुछ रिटर्न दे के ही जाएंगे। ये फसलें देखा जाए तो जलवायु अनुकूल ही नहीं, ये पारिस्थितिक अनुकूल भी हैं, क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग भी शामिल होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी होता है, एनिमल भी होता है, सब कुछ शामिल है। तो देखा जाए तो इन फसलों को लगाने से हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ है, पर्यावरण को हानि भी कम होगी, खेत की उर्वरता का लाभ भी

0: होता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी कम निकलती हैं, इनको जल भी कम चाहिए, इनको खाद भी कम चाहिए। जब खाद कम देंगे, जल कम देंगे, तो हमारा जो भूमिगत प्रदूषण है वो भी नहीं होगा, नाइट्रेट का उत्सर्जन भी नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस भी कम होगी और हमारा मानव स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जब हम सेवन करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के जो पोषण हैं, प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि से परिपूर्ण हैं। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि अपने पुराने समय में इन्हीं सभी कंदन फसलें, इनको बोलते हैं कंदन फसलों को, का सेवन करते थे, जिनको आज हम श्री अन्न की फसलें कह रहे हैं, जिसमें सामा भी शामिल है। इन सब का सेवन करके इन सब के ऊपर आधारित थे। और देखिए कि वो लोग का औसत आयु जो है 250 वर्षों की होती थी। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल पारिस्थितिक अनुकूल है, इकोसिस्टम के अनुकूल है। तो इस वर्ष हमारे पास चूंकि एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात कम हो रही है, इसलिए किसान भाइयों इसकी खेती को आप अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जलवायु अनुकूल तो है ही, साथ ही हमारी आय को बढ़ाता है और सबसे बेहतर बात कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो ऐसे में श्री अन्न और खासतौर से जब हम आज बात कर रहे हैं सावा मिलेट्स के बारे में, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो सर अभी सवाल ये है कि अब जो किसान भाई बहन अगर खेती करना चाहते हैं सावा मिलेट्स की, तो वो खेती कब करें और कैसे करें?
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि देखिए, सावा मिलेट्स एक ऐसा फसल है जिसको हम अपने बिहार राज्य में वर्ष में दो बार अच्छे से बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसके जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियां 90 दिनों से कम अवधि में, लगभग 85 दिन में पककर के तैयार हो जाती हैं, 80 से 85 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, अर्थात 3 महीने की बुआई से 3 महीने के अंदर ही आपके ये कट के तैयार हो जाती हैं। तो हम लोग देखिए, इसकी बुआई इवन मसूर है, चना है, सरसों है, और कुछ क्षेत्रों में गेहूं की कटाई के बाद भी गर्मी में इसका उपयोग बुआई कर लेते हैं। तो गर्मी में भी एक अच्छा समय होता है, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में हम बुआई कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा समय चल रहा है जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं, तो खरीफ में हमको जो ही बरसात का पानी मिल जाता है हम बुआई कर दें। अभी देखिए इस बार बरसात थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो अभी इसका उपयुक्त समय है। अभी हम आज के डेट से इसकी बुआई करें और 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर लेंगे तो हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे करें। तो देखिए, सावा मिलेट एक बहुत ही मोटा अनाज की फसल है, अर्थात इसको हम कहीं भी थोड़ा बहुत जुताई करके सीड को किसान फेंक देता था तो भी कुछ न कुछ उत्पादन दे देता था। आज हम लोग इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करने की सलाह देते हैं। तो इसके लिए होता है कि हम इसकी खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर लें, खेत जो है ऐसा कर रखें जिसमें पानी का कभी जमाव ना हो, ऊपरी जमीन में ही बुआई करें। तो खेत को अच्छे से तैयार करके अब हम इसमें बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ मात्र 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और किसान भाई इसकी बुआई जो करें वो बेहतर हो कि कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी हम लोग कहते हैं 22.5 सेंटीमीटर, अर्थात लगभग 9 इंच की दूरी पर कतार से कतार की दूरी रखना है। और गहराई जो बीज का हो उसका विशेष ध्यान देना है कि किसी भी दशा में 1 इंच से ज़्यादा गहराई पर बुआई इसकी नहीं करना है, अर्थात जो गहराई है बुआई की वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखनी है और कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर अर्थात 9 इंच पर करना है। किसी कंडीशन में हम 25 सेंटीमीटर पर अर्थात 10 इंच की 9 से 10 इंच तक हम इसको कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं, बहुत अच्छा इसका पौधा उत्पन्न होता है और अच्छा लाभ मिलता है। अब बात आता है इसमें जो है बोने की विधि का। तो बोने की हमारी कई विधियां हैं, जैसे हम कतारों में बोएं फ्लैट बेड पर, और जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जल जमाव की समस्या होती है वहां आजकल हम लोग क्या करते हैं, चौड़ी चौड़ी बेड बना देते हैं। बेड की चौड़ाई हम लोग लगभग 90 सेंटीमीटर रखते हैं, उस पर 4 लाइन समा की जाती है जिसको हम लोग BBF मेकर बोलते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो मेकर। तो जिन किसान भाइयों के पास रेज बेड मेकर या BBF मेकर है वो लोग थोड़ा सा रेज बेड पर या BBF पर इसकी बुआई करें और वहाँ भी स्पेसिंग 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार में बुआई करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जो BBF 90 सेंटीमीटर या BBF 150 सेंटीमीटर वाइड

0: बेड बनाते हैं तो उसके बाद 30 सेंटीमीटर का फरो भी होता है, तो जो बरसात ज्यादा होगा तो बेड पर का पानी फरों में जाते हुए कूड़ों में जाते हुए वो बाहर निकल जाती है। तो इससे कहता है कभी भी पौधे के जड़ के पास जल जमाव नहीं होता, उससे फसल का उत्पादन जो है 20 से 25% बढ़ जाती है, और कम खाद में 25% खाद भी कम देना पड़ता है उसमें। तो बेहतर होगा हमारे बिहार राज्य के सभी जिलों के किसानों से मैं जो है निवेदन करूंगा कि हो सके तो इसको रेज बेड या बीबी ब्रॉड बेड एंड फरो पर ही बुआई करें तो इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। अब बात आती है इसमें जो है इसका कौन कौन सी प्रजातियां कल सिलेक्शन करें। तो देखिए प्रजातियों के जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो अभी तक हमारे बिहार किसी विश्वविद्यालय में हम लोग बहुत से लोकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी हम लोग भी अपनी प्रजातियों को निकालने के स्थिति में आ चुके हैं, 1 साल में बाद हमारी प्रजातियां आ जाएंगी। लेकिन बाहर की जो प्रजातियां हम लोग टेस्ट किए हैं उसमें अधिक उत्पादन देने वाली एक प्रजाति है DHBM 23-3। ये प्रजाति इतनी अच्छी है कि इसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विंटल प्रति एकड़ है और मात्र 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर से निकली है, जिसको हम बोलते हैं RAU 3, और अगला प्रजाति है RAU 9। तो ये दोनों प्रजातियां राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं और इनकी उत्पादन क्षमता है करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक। तो इसको भी लगा सकते हैं और औसतन ये 85-86 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। और कुछ प्रजातियां हैं बाहर की, VL 207, VL 172, ये दोनों प्रजातियां भी लगभग 9 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन देती हैं और लगभग 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। VL 29 भी एक सांवा की अच्छी प्रजाति है, जिसकी उत्पादन क्षमता करीब करीब 10 से 11 क्विंटल है और ये बहुत ही हाई यील्डिंग है। इसकी भी प्रजाति कहीं से भी मिल जाए किसान भाइयों को तो लगा सकते हैं। तो VL 29 भी ले सकते हैं और इसका उत्पादन क्षमता है करीब 10 क्विंटल प्रति एकड़ और ये पककर तैयार होती है लगभग 88 दिन में। तो इस तरह से सांवा की जो 5-6 प्रजातियां हैं सिर्फ इन्हीं को लगाएं, और वैसे तो बहुत सी प्रजातियां हैं लेकिन कम उत्पादन वाली प्रजातियों को न लगाएं।
1: जी सर, अगर हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है?
0: देखिए सांवा मिलेट्स चूंकि एक तरह से ड्राई लैंड की फसल है, वर्षा आधारित फसल है, तो इस सभी फसलों में खरपतवार का ज्यादा अतिक्रमण होता है। खरपतवार का समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उत्पादन में भारी गिरावट हो जाती है। इन फसलों को कोशिश करना चाहिए कि बुआई के 10 दिन बाद से लेकर 35 दिन तक खेत जो है खरपतवार से मुक्त रहे। तो उसके लिए बहुत सी प्रजातियां, बहुत सी विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी अच्छे से करें। अगर हो सके तो गर्मी में अगर हम खेत को 7 से 8 दिन जोत करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत से खरपतवार जो पेरेनियल वीड्स हैं, बहुवर्षीय खरपतवार हैं, उनकी जो जड़ें हैं, सकर्स हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं धूप की वजह से। उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी बुआई करें, और बहुत से हमारे ड्राई लैंड वीडर हैं जैसे कि सिंह हैंड हुआ है, शर्मा हैंड हुआ है। आजकल क्या है कि 20-22 हज़ार रुपये में जो पावर वीडर आ रहे हैं उसका भी उपयोग करके हम कतारों के बीच में मैकेनिकल वीडिंग कर सकते हैं। अगर हमें केमिकल उपयोग करना है तो बुआई के तुरंत बाद हम लोग हर्बिसाइड है पेंडीमिथिलीन, इसका उपयोग करते हैं। उसके लिए 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। अगर हम किसान भाइयों के शब्दों में बोलें तो प्रति टंकी पानी में लगभग एक टंकी में 15 लीटर पानी होता है तो आपको 30 ml पेंडीमिथिलीन डालना है। 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति 15 लीटर पानी में डालना है और 1 एकड़ में करीब 8 से 9 टंकी पानी या 8 से 10 टंकी पानी उपयोग में करें। तो इस तरह से बुआई के 24 घंटे के भीतर, अर्थात आपने बुआई कर दिया, उसके तुरंत बाद आप इस पेंडीमिथिलीन को 30 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में होल करके आप स्प्रे कर दीजिए तो अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक दवा है 2,4-D। 2,4-D 3 ग्रुप में आती है, जो है एक 58% का होता है, एक जो है आपका करीब कम डोज का होता है 30% के आसपास। तो अब हमको देखना है कि हम कौन सा, एक पाउडर वाला तो है 80% का, तो अगर हम 58% वाला लेते हैं बाजार से तो उसका करीब 22 ml प्रति टंकी पानी यानी 1.5 ml प्रति लीटर की दर से देना है और बुआई के 20 से 22 दिन पर हमें स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, मुख्य रूप से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं।

0: और सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार बचते हैं या जो थोड़ा बहुत और खरपतवार बचते हैं उसको हमें दो चार लेबर लगा करके मैनुअली निराई करनी होती है। क्योंकि ये सभी फसलें जो है हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग करें या केमिकल का प्रयोग करें तो थोड़ा सा उचित नहीं होता है। इसलिए कम से कम हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। तो ये जो हमने विधि बताई, इस तरह से हम खरपतवार का कुछ हद तक प्रबंधन कर सकते हैं। बचा खोचा हमें मैनुअली ही मानव द्वारा खरपतवारों को निराई करके से बाहर करना है।
1: जी सर, अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो सावा मिलेट्स में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है?
0: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ये हमारी श्री अन्न की फसलें हैं इनमें कम खाद कम पानी की जरूरत होती है। अब ये देखिए कि कम खाद कम पानी में आपको ज्यादा पोषण देती हैं, इसीलिए इनके पोषण वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इनका नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने पोषक अनाज रखा। फिर इनके महत्वों को और देखते हुए इनको थोड़ा और सम्मान दिया गया, इनका नाम 2023 में श्री अन्न रखा गया। तो आज के डेट में हम श्री अन्न कहें या पोषक अनाज कहें या मोटा अनाज कहें, सब एक ही है। लेकिन मोटा अनाज अब कहने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं से इनके सम्मान को धूमिल करने के बराबर है, इसलिए श्री अन्न कह करके ही इनको हम थोड़ा सा सम्मान दें। तो जो श्री अन्न की फसलें जिसमें सावा भी शामिल है, इसमें जैसा हमने पहले कहा कि कम खाद की जरूरत पड़ती है, तो देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर मात्र 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की जरूरत पड़ती है। अगर किसान भाइयों को हम बोलें तो अपने फसल में ये लोग एक बोरी यूरिया, एक बोरी डीएपी और आधा बोरी पोटाश प्रति एकड़ व्यवहार करें। पोटाश एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेतों में कतारों के बीच में दें या खेतों में मिला करके जुताई कर दें, जबकि नाइट्रोजन को हम दो भाग में स्प्लिट करेंगे, दो भाग में बांट के देंगे। पहला नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से, हमने बोला एक बोरा यूरिया पर्याप्त हो जाता है, तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के जो है 20 से 22 दिन पर, अगला 20 किलोग्राम हम बुआई के लगभग 50 दिन बाद जब इसमें बालियां निकलनी होती हैं, बालियां निकलने के करीब एक महीने बाद ये पक्के तैयार हो जाते हैं। अगर 50-52 दिन पर बालियां निकल रही हैं तो 82-84 दिन पर ये पक्के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से यूरिया को कम से कम दो बार में बांटना है। तो किसान भाइयों, आपके लिए अगर हम थोड़ा सा आपकी भाषा में बात करें तो एक बोरा यूरिया, एक बोरा डीएपी और आधा बोरा पोटाश प्रति एकड़ आपको देना है। पोटाश और डीएपी की पूरी मात्रा बुआई के समय देना है, खेतों में मिला देना है, जबकि यूरिया का पहला डोज आपको 25 किलोग्राम से प्रति एकड़ देना है बुआई के 20 से 22 दिन पर। इससे देने से कल्ले और टीलर अच्छे निकलते हैं और ग्रोथ अच्छा होता है। दूसरा डोज देना है जब बालियां निकलने लगे, मतलब बुआई के लगभग 50-52 दिन पर, तो अच्छा आपको इसका लाभ मिलता है, उत्पादन अच्छी होती है। और मैं किसान भाइयों से बताना चाह रहा हूं कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सावा की जो अच्छी प्रजाति है DHBM 23-3, इसका बीज उपलब्ध है। इसकी उत्पादन क्षमता है 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़, मात्र 85 दिन में पक्के तैयार होने वाली प्रजाति है DHBM 23-3। इसका बीज यथाशीघ्र हमारे यहाँ से प्राप्त कर लें और ये बीज हम प्रगतिशील किसानों को निःशुल्क देंगे। दूसरी प्रजाति हमारे पास VL 29 भी है, इसका सीड थोड़ा कम है, लेकिन जो भी हमारे पास 10-20 किसान अभी आ जाएंगे उनको भी हम फ्री में ये बीज अभी देंगे, अपने खेतों पे लगाएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद।
1: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि श्री अन्न की खेती किस प्रकार से किसान भाई बहन कर सकते हैं और ये बहुत ही उपयोगी है जैसा कि आपने बताया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सावा मिलेट्स की खेती करेंगे और आप अधिक मुनाफा भी कमाएंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिन के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री

0: अन्य की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे अनु को और अभी आप सभी सुन रहे उन्नत कृषि कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम हमारे किसान भाइयों के लिए खेती से जुड़ी बातें लाते हैं और आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है अरहर की खेती कैसे करें। तो वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बताएंगे श्रोताओं। इस विषय को लेकर हमारे साथ हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक है, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अरहर कौन सा फसल है और इसकी खासियत के बारे में थोड़ा बताएं।
4: बहुत अच्छा प्रश्न मैडम। हम सभी परिचित हैं अरहर से और सब लोगों को पता है कि ये अरहर दलहन समूह का फसल है और इसको हम लोग तूर, राहर और अंग्रेजी में रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं। चना के बाद यह दूसरा प्रमुख दलहनी फसल है और ये काफ़ी खासियत को धारण करने वाली फसल है। खासकर दलहनी समूह का फसल है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है और इसमें लगभग 22.3

0: परसेंट प्रोटीन, 3.5% मिनरल्स, 1.7% वसा और 57.6% कार्बोहाइड्रेट के अलावे बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं, जैसे आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। इन सारी चीज़ों की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहती है अरहर में।
1: जी जी, आगे बढ़ते हुए हम अरहर की खेती कब की जाती है इसके बारे में जानना चाहेंगे और इसके लिए किस प्रकार का खेत होना चाहिए।
0: जहाँ तक अरहर की खेती की बात है तो बिहार में अरहर की खेती जो की जाती है वो खास करके जून जुलाई महीने में इसकी खेती की जाती है, परंतु विशेष परिस्थिति में अगर जून जुलाई में इसकी बुआई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश तो विलम्ब की स्थिति में इसकी बुआई सितंबर माह में भी की जाती है और इसका जो उपयुक्त समय है बोने का सितंबर माह में वो लगभग 25 अगस्त से 15 सितंबर है और इसके लिए उपयुक्त तापक्रम जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जहाँ तक खेत या मिट्टी का प्रश्न है तो इसके लिए ऊपर वाली ज़मीन जहाँ वर्षा के पानी का जमाव नहीं होता हो वह काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। खेत बलुई दोमट से दोमट जिसका पीएच मान 7 से 8.5 तक हो वह अरहर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है।
1: और अरहर के प्रभेद कौन कौन से उपयुक्त हैं और साथ ही बीज की कितनी मात्रा का प्रयोग होना चाहिए इसके भी जानकारी दें।
0: जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अरहर की खेती खरीफ और सितंबर दोनों समय की जाती है तो दोनों के लिए अलग अलग प्रभेद हैं और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर जून जुलाई माह में अगर अरहर की बुआई करनी होती है तो उसके लिए उपयुक्त प्रभेद हैं बहार, नरेंद्र अरहर 2, DA 11, आज़ाद। इस तरह के काफ़ी अच्छे प्रभेद हैं और सितंबर माह में अगर इसकी बुआई करनी है तो उसके लिए उपयुक्त प्रभेद हैं पूसा 9 और दूसरा है शरद। तो दोनों मौसम में दोनों समय में अरहर की बुआई के लिए बीज की मात्रा और उसके लिए दूरी जो है अलग अलग है। खरीफ मौसम में अगर इसकी बुआई हम करना चाहेंगे तो उसके लिए लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की ज़रूरत पड़ती है और जो अनुशंसित दूरी है पंक्ति से पंक्ति की दूरी ये लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम इसको सितंबर माह में बोएंगे या अगस्त से 25 अगस्त से 15 सितंबर तक बोएंगे तो इसमें बीज की मात्रा बदल जाती है क्योंकि उसमें पौधों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। तो इसके लिए लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है और इस बीज को पंक्ति से पंक्ति 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और पौधा से पौधा की दूरी 16 से 20 सेंटीमीटर रखते हुए पंक्ति से पंक्ति में बुआई करते हैं। तो इस तरह से दोनों स्थिति में दोनों समय में अलग अलग मात्रा में बीज का प्रयोग होता है और अनुशंसित दूरी भी अलग अलग है।
1: जी, क्या इसमें बीज उपचार करना ज़रूरी है?
0: जी हाँ, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीज को बोने से 48 घंटे पूर्व फफूंदनाशी दवा से अरहर के बीज को उपचारित करना चाहिए और इसके लिए जो सबसे अच्छी दवा है वो दवा है ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसकी 5 से 7 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर बोना चाहिए और अगर ये दवा उपलब्ध नहीं हो तो बीज को कार्बेंडाजिम दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर आप बो सकते हैं। बीज को बोने से ठीक आधा घंटा पहले राइजोबियम कल्चर जो अरहर के लिए है उससे निश्चित रूप से उपचारित करना चाहिए और साथ ही साथ PSB कल्चर से भी बीज को अनिवार्य रूप से उपचारित कर लेना चाहिए और इससे काफ़ी फायदा होता है किसानों को, किसान भाइयों को और अच्छी उपज मिलती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अरहर में पोषक प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
0: जैसा कि अभी हमने बताया कि राइजोबियम कल्चर से उपचार करना और PSV कल्चर से उपचार करना निहायत ज़रूरी है और ऐसा इसलिए कि दलहनी समूह का फसल होने के कारण इसमें राइजोबियम फिक्सेशन की क्रिया होती है जिसके वजह से वायुमंडल से नाइट्रोजन को

0: नेत्रजन को अवशोषित करके ये जड़ों में जमा करता है, एकत्रित करता है। तो राइजोबियम कल्चर से अगर हम उपचारित करते हैं तो लगभग 15-20% उपज में वृद्धि हो जाती है, और ये हमारे नाइट्रोजन की मांग को भी कम कर देता है, क्योंकि दलहनी ग्रुप का है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इस वजह से फसल की जो बढ़वार के लिए नाइट्रोजन की डिमांड है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ हम पीएसबी कल्चर से भी इसको उपचार करते हैं, तो पीएसबी कल्चर के कारण मिट्टी में जो अनुपलब्ध रूप में फास्फोरस है उसको पीएसबी जो कल्चर है उसमें जो बैक्टीरिया हैं उसको घुला करके पौधे को उपलब्ध कर देता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मांग को बहुत हद तक ये कम कर देता है। फिर भी स्टार्टर डोज के रूप में पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय उसमें 40 किलोग्राम डीएपी और 8 किलोग्राम गंधक यानी सल्फर को प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में समान रूप से छींटकर अच्छी तरह से मिला देने से जो अरहर फसल की जो भोजन की व्यवस्था है, मांग है, वो पूरी हो जाती है।
1: अब इसके बाद हम कीट और रोगों की बात करते हैं, तो अरहर में कीट और रोगों का प्रकोप भी देखा जाता है, तो इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं?
0: जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है अरहर की खेती में, और अरहर में मुख्य रूप से फली छेदक, फल मक्खी एवं प्लूम मौत कीट का प्रकोप होता है, और जिसके कारण फसल को काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इससे बचाव के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप जो 5 की संख्या में 1 एकड़ में लगाना है उसको लगाना चाहिए, और इसके अलावे इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG दवा का 88 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, अथवा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट की 5% का छिड़काव फूल आने के पहले, दूसरा छिड़काव 50% फूल आने पर तथा तीसरा छिड़काव 50% फली लगने पर करना चाहिए। ऐसा करने से इन तमाम कीटों से अरहर की सुरक्षा हो जाती है और नुकसान से बचा जा सकता है। रोग हेतु उपचार के लिए हमने जो पहले बताया बीजोपचार के लिए, अगर उससे उपचारित कर देंगे ट्राइकोडर्मा से या राइजोबियम ये कार्बेंडाजिम से, तो किसान भाई रोग की समस्या से अपने फसल को मुक्त कर पाएंगे, और बीजोपचार ही रोग नियंत्रण के लिए सबसे अहम चीज़ होता है, तो उसको निश्चित रूप से अपनाएं। और जहाँ तक खरपतवार की बात है तो खरपतवार के लिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि अपने फसल को 40 से 45 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रखें, और इसके लिए 25 से 30 दिन बाद यानी बोने के 25 से 30 दिनों बाद एक बार निराई अवश्य करवाएं। अगर श्रमिकों की समस्या है, उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में 1.2 लीटर मतलब 1.25 लीटर पेंडीमेथिलीन दवा का प्रयोग बुआई के दूसरे दिन 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर खेत की सतह पर छींटें, और इस प्रकार छींटें, छिड़काव करें कि उस पर दोबारा पैर नहीं पड़े। तो इस तरह से अगर करेंगे तो खरपतवार से उनको 40 से 50 दिनों तक फसल की सुरक्षा वो कर पाने में सक्षम होंगे, और फिर उन्हें अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि फसल की कटाई में भी थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है। जब आपकी फसल लगभग 80% पक जाए तो उसमें यानी छीमी 80% पक जाए तो उसमें फसल को काट कर बंडल बना लें, और बंडल को खड़ा रखें, सुला कर या लिटा कर नहीं रखें, और 1 सप्ताह बाद उसकी झराई ठीक से कर लें और दाने को अलग कर लें, दाने को अच्छी तरह से धूप में सुखा लें, और जिसमें उस दाने में जिसमें 10-12% तक नमी रहती है उस दाने को अच्छी तरह से साफ करके धातु कोठला में अच्छी तरह से एयर टाइट करके बंद कर दें, और बंद करने से पूर्व 1 क्विंटल बीज में 1 EDB एम्पल डालकर मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दें। और अगर इस तरह से किसान भाई खेती करेंगे तो निश्चित रूप से अरहर का की अच्छी पैदावार मिलेगी, और उन्हें 20 से 25 मन प्रति एकड़ का जुलाई माह में और सितंबर माह में अगर करते हैं तो 16 से 18 मन प्रति एकड़ का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए।
0: जी धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन एक अलग विषय के साथ। नमस्कार।

0: उन्नत कृषि।
1: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: लेडीज फर्स्ट।

लेडीज फर्स्ट, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लेडीज फर्स्ट कहने की नौबत क्यों आई? और क्या अभी भी समाज में ये लोग मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट यानी कि स्त्रियों को पहले मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, आज भी हमारा समाज उसी पुरानी सोच में जकड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि समाज ने अपने सोच के ऊपर एक बदले हुए रवैया का परत चढ़ा लिया है, लेकिन आज भी उसके अंदर सोच वही है। अगर ये सच नहीं है तो ये भी सच नहीं होता कि घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर लेडीज फर्स्ट जैसी बातों को हमने स्वीकार कर लिया होता, स्त्रियों को हमने बराबर का सम्मान दिया होता, ज्यादा की बात नहीं हो रही, बराबर की, बराबरी का सम्मान दिया होता, बराबरी का मौका दिया होता, घरेलू हिंसा की वजह से, दहेज की वजह से आज भी बहुत सारी स्त्रियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आए दिन हम नए नए केस सुनते हैं, पढ़े लिखे घरों में भी घरेलू हिंसा से तंग आकर स्त्रियां खुद को खत्म कर लेती है, या फिर घरेलू हिंसा इस कदर बढ़ जाती है कि उस स्त्री की मौत हो जाती है। तो इन सारी बातों को सोचकर जरा भी लगता है कि आज भी हमारा समाज लेडीज फर्स्ट को समझ पाया है? चलो लेडीज फर्स्ट ना सही, पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिल पाया है? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का हक मिलता है तो आप जमीनी सच्चाई से बहुत दूर हैं। हाँ, वक्त बदल रहा है, बहुत जगहों पर स्त्रियां अपना परचम लहरा रही हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है और कुछ जगहों पर तो वो काफी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी भी काम करना बाकी है। लोगों को ये समझना बाकी है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों एक समान होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार 2012 से 2022 के बीच करीब घरेलू हिंसा के 13 लाख मामले सामने आए और लगातार ऐसी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये तो वो महिलाएं हैं जो थाने तक पहुंची। बहुत सारी महिलाएं तो थाने तक पहुंचती ही नहीं है, उन्हें लगता है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। अगर घर पर उनके साथ घरेलू हिंसा होती भी है तो वो सह लेती हैं घर की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन घर की इज्जत बचाते बचाते वो अपना स्वाभिमान खो बैठती हैं। और इन महिलाओं के लिए उनका घर भी सुरक्षित नहीं रहता, उन्हें पता नहीं होता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक हिंसा की दीवारें आज भी उतनी मजबूत है, समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ने का दावा करता हो। दोस्तों, घरेलू हिंसा के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि आज भी लोगों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से कम हैं, ज्यादा ना हो पर बराबर की तो हैं, बराबर का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, दहेज प्रथा। दहेज के बारे में कितने कानून हैं, दहेज से जुड़े हुए बच्चे स्कूल में कितना पढ़ते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर दहेज लेते हैं। और विडंबना ये है कि लड़की वाले खुशी खुशी दहेज देते हैं, लड़की के जन्म के साथ ही उनके दिमाग में जो पहली सोच होती है कि इसके लिए मुझे इतने दहेज इकट्ठा करने होंगे। हमने दहेज जैसी समस्या को कितना आम बना दिया है कि ये हमें अब समस्या लगती ही नहीं है। कोई समस्या तभी खत्म होगी जब उसे हम समस्या समझेंगे। दहेज की वजह से बहुत सारी औरतें आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है और कई औरतें तो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसके बाद आता है शराब या नशा। शराब या नशे की वजह से भी घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, क्योंकि नशे की हालत में फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो जानवर से भी बदतर हो जाता है और फिर वो हिंसक व्यवहार करता है। और जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष नशे की हालत में ही घरेलू हिंसा को अंजाम देते हैं, और कई बार पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी घरेलू हिंसा का कारण बनती है। महिलाएं जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो फिर उनके साथ कुछ भी हो वो सहती रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जाएंगी कहाँ, करेंगी क्या। और कई बार जागरूकता की भी कमी होती है। हम अपने आसपास जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे माहौल को देखते हैं, हमें लगता है कि वही सच है। और जब आसपास घरेलू हिंसा आम हो तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि यही जीने का तरीका है, वो इसे मानकर अपने जीवन को जीने लगती है। और अगर कुछ महिलाओं को ये पता है कि ये गलत है, जो हो रहा है उनके साथ वो सही नहीं है, तो भी वो चुप रह जाती हैं, क्योंकि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर की इज्जत को बचाना है। ये तो कारण हो गए कि किन किन वजहों से घरेलू हिंसा होते हैं। और घरेलू हिंसा से बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो जागरूकता। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उसी चीज में ढल जाएं। उन्हें आवाज उठाना चाहिए। और ये बात कि अगर हम बाहर जाएंगे तो घर की इज्जत उछलेगी, कौन से घर की इज्जत? घर तो वो होता है ना जहाँ
आप

सुरक्षित महसूस करते हैं? घर तो वो होता है ना जहाँ आप थके मांदे आते हैं और कोई आपको पुचकारने वाला मिलता है, कोई आपका ख्याल रखने वाला मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा घर है कि जहाँ हर रोज हर पल आप आतंक में जीते हैं कि न जाने अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाए, न जाने कौन आपको क्या बोल दे, न जाने कौन आप पर हाथ उठा दे। उस घर को घर कहना उचित है क्या? यकीन मानिए समाज आपका साथ देगा जब आप अपने लिए आवाज उठाएंगी। यकीन मानिए आपके या आपके घर की इज्जत खराब नहीं होगी अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, बल्कि आपके आसपास की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। ना जाने कितनी सारी लड़कियां, अगर आपकी कोई बेटी है या फिर आपकी बहन है तो उसे भी ये समझ आएगा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आप चुप रहती हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास की लड़कियों को भी चुप रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब लड़कियां पढ़ती हैं और उनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वो अपने बल पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं तो फिर वो मजबूर नहीं होती है घरेलू हिंसा को सहने के लिए। इसके अलावा परिवार और समाज का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं। समाज के तौर पर भी हमारा फर्ज बनता है कि अगर अपने आसपास ऐसी कोई स्थिति देखे, ऐसी किसी औरत को देखे तो उसके हक के लिए, उसकी मदद के लिए आगे आए हम, तभी एक बेहतर समाज बनेगा ना। कल को आपके साथ ये हो सकता है, कल के आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ये हो सकता है। इसे रोकने के लिए आपको एक बेहतर समाज बनाना ही होगा। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके आसपास किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप महिला हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 181, 112। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में एक नंबर है 9771468006, यानी कि 9771468006। इस पर आप फोन कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 181, 112, इन नंबरों पर भी आप फोन कर सकते हैं। आप एनजीओ से मदद ले सकते हैं, आप महिला संगठन से जुड़ सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। और कई बार ये होता है कि काउंसलिंग से भी चीज़ें ठीक हो जाती है। जी हाँ, कई बार घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा नहीं होती है और घर के लोगों की और स्त्रियों की काउंसलिंग करके भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है समय पर शिकायत दर्ज कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप किसी अपने परिचित के साथ जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए। इसके अलावा अगर लगे कि आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसके आगे क्या, कितना बुरा, कितना बड़ा हो सकता है आप नहीं जानती हैं। घरेलू हिंसा में स्त्रियों की मौत तक हो जाती है, इसलिए समय पर शिकायत दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कानूनों के बारे में बात करें, हालांकि कानून तक पहुंचने से पहले महिलाओं को अपनी सोच से लड़ना होगा, समाज को अपनी सोच से लड़ना होगा और ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि हमारे समाज में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना ज़्यादा करना पड़ता है और महिलाओं को ये समझना होगा कि ये उनकी किस्मत नहीं है, ये उन्होंने खुद चुना है। आप अगर अभी एक कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी किस्मत खुद बदल लेंगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर हम कानूनों की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में एक कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं को ये भी डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, फिर वो जाएंगी कहाँ, वो रहेंगी कहाँ। तो ये कानून महिलाओं को घर में रहने का अधिकार देता है और ये कानून महिलाओं को संरक्षण देता है। इसके अलावा ये कानून महिला को भरण पोषण और मुआवजा से जुड़े भी सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के जंजीर को तोड़ें, हम अपने अंदर के बंधन को तोड़ें कि हमें चुप नहीं रहना है, हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। अगर आज आप चुप रह जाएंगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपके आसपास की लड़कियां भी कल को चुप रह जाएंगी कि उनके साथ भी तो यही हुआ था, वो चुप रही और उनका जीवन चल तो गया। उस इंसान के साथ उस घर में रहकर क्या फायदा जिनके साथ आप सुरक्षित ही नहीं है। याद रखिए कि घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं है कि घर की बात है, घर में निपटा लेंगे, नहीं है। ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है। चुप रहना समाधान नहीं है बल्कि आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आप शुरुआत में ही आवाज उठाएंगी तो ये बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सलाह कि स्त्रियों को अपने से कम आंकना बंद करें और वो जो पिता है, भाई है, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को

काबिल बनाएं कि कल को उन्हें घरेलू हिंसा चुप होकर ना सहना पड़े। तो आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। सुरक्षित रहें, खुश रहें और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन जैसे कि सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, मैम है उद्यान सब्जी विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद उमा।
6: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैंगन किस तरह की सब्जी है, और अगर हम प्रभेदों का जब चयन करते हैं तो किन प्रभेदों का हमें चयन करना चाहिए?
8: जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंगन सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद है, और विशेषतः हम लोग जैसे देखते हैं उजला बैंगन जो है वो मधुमेह की रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और इसके अलावा बैंगन में विटामिन ए और बी के काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और लोह जैसे खनिज पदार्थ भी जो है बैंगन में होते हैं, और ये सब्जी जैसे लिट्टी चोखा के साथ में, जो बैंगन की चोखा, लिट्टी के साथ में बैंगन की चोखा हमारी जो है एक डेलिकेसी है।

0: बिहार का एक बहुत ही उम्दा खाद्य हम लोग बोल सकते हैं। और इसके लिए जो है बिहार में बैगन की हर थाली में एक व्यंजन जो है, और वो व्यंजन में बैगन भी आता ही है। और इसीलिए बिहार के किसान भी बैगन खूब उगाते हैं। और बैगन सालों भर चलती है, ऐसे सब्जी है। और इसको हम लोग साल के विभिन्न समय पर लगाते हैं। प्रभेदों का चयन भी उस हिसाब से करना होता है। और ये भी हम लोग देखते हैं कि बैगन काफ़ी रंगों में होता है। हरे रंग में मिलता है, उजले रंग में मिलता है, या बैगनी रंग में मिलता है, गोल होता है, लंबा होता है। और हर 20 से 25 किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि बैगन का जो प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का, वो चेंज होता है। कहीं पे आप देखेंगे कि हरे वाले को प्रेफर करते हैं, कहीं गोल वाले को, बैगनी वाले को। भरता के लिए तो बैगनी वाला गोल वाला ही प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जैसे है जो किस्म है उसमें गोल में से पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, पूसा उत्तम है, स्वर्णमणि है, पूसा बिंदु है, काशी संदेश है, पंत ऋतुराज है, सबोर सदाबहार है। ये हमारी किस्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की। साथ साथ में लंबे किस्में अगर बोलेंगे तो उसमें राजेंद्र बैगन 2 है, पूसा हाइब्रिड 5 है, अरका शीरीष है, अरका कुसुमाकार है, अरका नीलकंठ है, अरका आनंद है। और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय की सबोर कृष्णकली भी शामिल है।
1: मैम, अगर अब हम बुआई की बात करें तो बुआई करने की क्या विधि होती है?
0: बैगन को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर फसल के लिए लगभग लगभग 400 ग्राम की बीज चाहिए होता है, अगर वो बीज मुक्त परागित किस्म की हो। यहीं पे अगर ये संकर किस्म की होती है तो बीज की मात्रा लगभग लगभग 250 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बीजों को पहले पौधशाले में लगाया जाता है। पौधशाले में लगाने के लिए जो है लगभग लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची पौधशाला बनाया जाता है, जो कि 1 मीटर चौड़ा होता है। और क्यारियों में लगाया जाता है बीज को। और दो जो जैसे क्यारी बनती है तो दो लाइन के बीच में लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। और बीजों, क्योंकि बैगन के बीज काफ़ी छोटे होते हैं, तो लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई पे उनको लगाया जाता है। और जो फसल हम लोग लगाते हैं, अभी बरसात शुरू होने वाली है, तो अभी का जो फसल है वो खरीफ फसल कहलाता है और यही शरद काल तक चलता है। तो इसमें बुआई हम लोग करते हैं लगभग मध्य जून से शुरू करके हम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक में उसको बुआई करते हैं। और ये जो पौध है उसका रुपाई का समय होता है 1 महीना लगभग बाद में, यानी कि जुलाई मध्य से लेके अगस्त अंत या सितंबर की पहली हफ्ते तक। और जो ग्रीष्म की फसल है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म की फसल है, उसके लिए हम लोग बीज की बुआई करते हैं नवंबर के मध्य में। और इसकी जो फसल जो रुपाई करते हैं इसका, क्योंकि ठंडा आ जाता है उसके बाद में, तो बीजों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है। धीरे धीरे जो सीडलिंग है वो बढ़ती है, इसीलिए जो है उसका रोपाई हम लोग लगभग जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में करते हैं। और वर्षा ऋतु का भी जो फसल होता है जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है, तो उस फसल को हम लोग लगभग लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में जिसकी बुआई करते हैं, और 1 महीने बाद में यानी कि अप्रैल तक में, मार्च एंड में या अप्रैल में जो है उसकी रोपाई करते हैं।
1: मैम, अगर हम बात करें खेत की तैयारी की, तो बैंगन के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है?
0: तो बैंगन का पहले तो हम लोग नर्सरी में बीजों को बना लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में रोपाई करते हैं मेन फील्ड में यानी कि खेत में। तो उसके लिए भूमि को 2 से 3 बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से। और जुताई जब करते हैं उसमें आखिरी जुताई के वक्त में जो है 25 से 30 टन सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसमें मिला देते हैं, और या फिर जो है कंपोस्ट भी हम लोग मिला सकते हैं। और लास्ट लास्ट में लगाने से पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है वो 80 किलोग्राम, और पोटैश भी 80 किलोग्राम हम लोग खेत में मिला देते हैं बेसल फर्टिलाइजर डोज के तहत में
1: जी। और रुपाई की विधि क्या होती है?
0: बैंगन की बिजरा जब एक महीने के लगभग हो जाता है उस समय पे हम लोग उनको पौधशाला से मेन फील्ड में ले जाके रोपाई करते हैं। तो रोपाई जो हम लोग करते हैं वो साधारण तो हम जो है शाम के वक्त में करते हैं, क्योंकि सुबह में अगर रोपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक की बात हो

0: होती है तो पौध बहुत सारे उसमें मुरझा जाते हैं और मरने की भी आशंका रहती है। तो इसीलिए शाम के वक्त में रुपाई करते हैं, और रुपाई करने से पहले अच्छे से खेत तो बना लेते हैं, लेआउट अच्छे से बना लेते हैं, और बैगन की जो पौधे हैं उनको पंक्तियों में रुपाई करेंगे और दो पंक्तियों में दूरी रखते हैं लगभग लगभग 75 सेंटीमीटर, और पौध से पौध में 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। ये लगभग जो भारी आकार वाली किस्म है इनके लिए है, और थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो अगर संकर किस्म है तो उसके लिए जो ज़्यादा फैलने वाला किस्म है या संकर किस्म है उसके लिए जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं दो पंक्तियों के बीच में, और दो पौध के बीच में 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अगर छोटे आकार वाले किस्म होते हैं या जो बौना किस्म होते हैं उसके लिए जो है हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और गर्मी की फसल में भी थोड़ा सा बढ़वार क्योंकि कम होती है इसीलिए हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर के दूरी रखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक चलता है। तो हम लोग ऑलरेडी बुआई जैसे करते हैं उसके एक महीने बाद में जो है उसको रुपाई करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
1: मैम, खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वो किस तरीके से करना चाहिए?
0: जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे लगभग 25 से 30 टन की गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है, साथ साथ में 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 किलोग्राम पोटाश। तो खेत के तैयारी के समय पे जो आधा मात्रा नाइट्रोजन के होते हैं यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरे मात्रा फॉस्फेट और पोटाश का हम लोग दे देते हैं, और जो बाकी आधा मात्रा नाइट्रोजन बची रहती है यानी कि 60 किलोग्राम जो बचा होता है उसको 3 बराबर खुराकों में टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग रुपाई के 30 दिन 45 दिन और 60 दिन बाद में दे सकते हैं।
1: मैम, सूक्ष्म पोषक तत्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो किसान भाई बहन सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें?
0: बैगन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फल की गुणवत्ता और पौधे की वृद्धि जो है ये उस सूक्ष्म पोषक की जो उपयोग है उसी पर निर्भर होता है, निर्भर करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 0.15% जो प्रतिशत कॉपर की प्रयोग से फूल या फलों में जो है संख्या इनका फूल का और फलों का भी बढ़ता है, और साथ साथ में अगर 0.5% जिंक का उपयोग करते हैं तो फलों की वजन भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो है हम लोग पौध के रोपाई के 4 से 6 हफ्ते बाद में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर मिलता है, उसका काफ़ी सारा ट्रेड नेम में मिलता है, एक मिक्सटालोल होता है, उसका 4 PPM के डोज से छिड़काव हम लोग कर सकते हैं, और सारे पौधों में जो है 1 हफ्ते के अंतराल पर जब रुपाई करते हैं उसके 60 से 70 दिन से शुरू होने के बाद में 2,4-D के 2 PPM का भी 2 छिड़काव अगर हम करते हैं 1-1 हफ्ते के अंतराल पर, तब फलों का संख्या अधिक हो सकता है और साथ साथ में उपज भी जल्दी मिलने लगता है।
1: जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मैम बैगन के फसल के लिए?
0: बैगन के फसल के लिए पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो रुपाई के तुरंत बाद करना ज़रूरी है क्योंकि उस समय पे रुपाई के बाद में हम लोग अगर जल अच्छे से देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसको हल्के मात्रा में ही देना चाहिए, तो उसमें फसल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है। उसके बाद में फसल की ज़रूरत अनुसार में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं, और जो खरीफ फसल है इसमें वर्षा को देखते हुए पानी देना ज़रूरी है। अगर वर्षा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि खेत से जल निकासी का व्यवस्था अच्छे से रहे, और जब शरतकालीन जो फसल होता है जब हार्वेस्ट होने लगते हैं फसल काफ़ी 2-3 महीने के हो जाता है, खरीफ फसल ही नवंबर दिसंबर के समय से जो है उस समय पे जो है 7 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम लोगों को एक एक सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पर जब ग्रीष्मकालीन जो फसल है उस समय पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उस समय पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर एक एक सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हम लोग नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद एक सिंचाई, हल्का सिंचाई देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
1: मैम, किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि खर पतवार बहुत उगाते हैं, तो खर पतवार का प्रबंधन कैसे?

0: करना चाहिए?
1: बैगन में खरपतवार की प्रबंधन करने के लिए हम लोग लगाने के लगभग लगभग 45 दिन बाद से जो है मैनुअल अगर निराई गुड़ाई से उसमें फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार को मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग पौध रोपण से पहले प्री इमर्जेंस स्प्रे के तहत से जो है पेंडीमिथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे अगर हम लोग उसको छिड़काव करते हैं ये पौध रोपण से पहले, तो भी जो है काफ़ी हद तक जो है ये शुरुआती जो है 2-3 महीने तक में जो है खरपतवार का नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके बाद में हल्का फुल्का निराई गुड़ाई करना आवश्यक रहता है। लगभग लगभग 60 से 90 दिन तक अगर हम लोग फसल को खरपतवार से मुक्त रखते हैं तब जो है उसमें अच्छे हिसाब से उपज आ सकता है।
0: कीटों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को, तो कीटों से बचाव कैसे करना चाहिए?
1: बैगन में कीट का बहुत ज़्यादा ही इन्फेस्टेशन रहता है। सबसे भयानक जो कीट हम लोग बोल सकते हैं बैगन का वो है तना एवं फल छेदक। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तना एवं फल छेदक के उसके लिए जो है फसल चक्र को हम लोग अपना सकते हैं। तो उसमें एक बार अगर बैगन लगाते हैं तो उसके बाद में तुरंत ही हम बैगन नहीं लगाएंगे, हम लोग फसल चक्र अपनाएंगे एवं तुरंत ही हम लोग बैगन नहीं लगाएंगे। एक बार बैगन लगाने के बाद में उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरा कोई फसल लगाए, हम लोग कद्दू वर्गीय फसल लगा सकते हैं या फिर कोई मटर वगैरह ये सब भी फसल लगा सकते हैं, लेकिन बैगन को हम लोग फिर जो है 2 से 3 साल ना लगाएंगे तो एक ही खेत में, तो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है कीड़ा जब लगता है पहले तो वो पौधे के तना में लगता है, तो जब पौधे के तना में लगेगा तो ऊपरी भाग हम देखेंगे कि उसमें हल्का सा मुरझा हुआ रहता है, तो जहाँ तक मुरझा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे तक हम अगर काट देते हैं उसको तना को छांट देते हैं तो उसमें देखेंगे उसके अंदर में जो है कीड़ा है, तो उतने भर हम तना को छांट देंगे और तना को खेत में फेंक के नहीं रखेंगे, उसको एक गमले में या किसी में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और सारे खेत में वो तना की छटाई अच्छे से करने के बाद में जो है उसको एक मिट्टी के अंदर में दफना देंगे, तो उससे भी जो है ये कीड़ा का मैनुअल जो है हम लोग मैनुअली कलेक्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा भी जो है बैगन के कीड़े के भी ये तना और फल छेदक का फेरोमोन ट्रैप आता है, तो फेरोमोन ट्रैप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग लगभग 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग 12 ट्रैप की इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है तना एवं फल छेदक का अच्छे से सप्रेशन हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें साइपरमेथ्रिन 5% प्लस क्लोरपाइरीफॉस 50% का जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दवा आता है तो उसको हम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करेंगे। इसको हम लोग ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इंडोक्सा कार्ब मिलता है एक दवा, उससे वो भी 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं, या फिर स्पाइनोसैड करके एक दवा आता है उसके 0.5 मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। याद हमको रखना पड़ेगा कि अभी हम लोग अगर केमिकल की छिड़काव करते हैं तो तुरंत ही हम लोग जो है उसका कटाई या फल की तोड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम केमिकल की छिड़काव कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोग 5 दिन रुक के फिर फल की तोड़ाई करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमने आज फल की तोड़ाई किया सुबह में, शाम में इसकी छिड़काव कर दिया, फिर 5 दिन रुक गए उसके बाद में तोड़ाई किया।
0: और मैम रोग भी काफ़ी लगते हैं बैंगन के फसल में, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
1: बैगन के फसल में शुरुआती एक जो रोग है नर्सरी का वो है डैम्पिंग ऑफ, वो काफ़ी लगता है, तो इसके लिए जो है नर्सरी को हम लोगों को पहले तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बीजों को लगाने से पहले बीज की उपचार करना पड़ेगा, बीज को हम लोग थायरम या कैप्टन 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करके लगा सकते हैं, या फिर जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से कार्बेंडाजिम से भी हम लोग बीज की उपचार कर सकते हैं। लेकिन डैम्पिंग ऑफ अगर जो सीडलिंग जब लगाए बीजड़ों पे अगर आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग मेटलाक्सिल प्लस मैंकोजेब नाम की केमिकल है वो मिलता है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करेंगे। जब फसल बड़े होने लगते हैं तो बैंगन में बैक्टीरियल विल्ट की प्रकोप होती है, जो कि जीवाणु

0: मुरझा रोग बोलते हैं। तो इस समय पे हम देखेंगे कि बैगन में जब फूल आने लगते हैं, इस समय पे मैक्सिमम टाइम पे देखते हैं ये रोग पहली बार फील्ड में देखा जाता है। तो इसके लिए जो है खेत की तैयारी के समय पे ही जो है जुताई के समय पे अगर 15 से 20 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब क्रॉप खत्म हो गई पिछली तो उस समय पे डीप प्लाउइंग करते हैं, तो उसमें गहरी जुताई करके नीचे की जो मिट्टी है ऊपर लाते हैं, तो उससे भी जो है नीचे की जिसे भी जो भी कीटाणु जीवाणु मिट्टी का था वो सूर्य की किरणों से जो है हाई सनलाइट जब पड़ता है उसकी जो ताप होती है उससे भी वो मर जाता है, तो उससे भी वो कीटाणु जीवाणु खत्म होते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, और 4.5 क्विंटल चूना भी उसके साथ साथ में मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इससे जो है मिट्टी का शोधन होता है, क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट का जो जीवाणु है वो उसी में रहता है, तो उससे वो खत्म हो जाता है। और साथ साथ में खेत का जल निकासी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, और अगर फिर भी फसल में आ जाता है तब जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम के साथ साथ में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, उसके साथ साथ में 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में, ये साथ में घोल करके हम लोग उसका अच्छे से पन्नियाँ छिड़काव करेंगे। और साथ साथ में ये भी देखना होगा कि जो पौध के जड़ के पास में इसका छिड़काव अच्छे से होना चाहिए, जिसको ड्रेंचिंग हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ करना ज़रूरी है।
1: मैम, अब बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। अगर हम बात करें तुड़ाई की सबसे पहले, तो तुड़ाई किस तरीके से और कब करनी चाहिए, और उपज कितना होता है बैंगन का?
0: हाँ, तो बैंगन का तुड़ाई हम तब करेंगे जब फल अच्छे से मुलायम रहे, पूरे साइज आ गया लेकिन फल मुलायम हो और कड़ा ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि कड़ा अगर हो जाता है बैंगन में बीज भी ज़्यादा भर जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छा नहीं रहता है। तो ध्यान देना होगा कि सही स्टेज पे इसकी तुड़ाई किया जाए। तो फल को जो है हम लोग चाकू से या कोई तेज यंत्र से या हाथ से भी जो है तोड़ेंगे, और तुड़ाई करने के बाद में फलों को छटाई करके विपणन के लिए विभिन्न आकार के टोकरियों में रखेंगे। तुड़ाई को या तो हम लोग सुबह करेंगे, वही सबसे सही समय है, या फिर हम शाम के समय पे करेंगे, बीच में हम लोग नहीं करेंगे। और अगर हम लोग अच्छे से हम लोग खेती करते हैं बैगन का, तो किसान भाइयों को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दौर से तो उपज मिल ही सकता है। ये भी जो है ओपी वैरायटी जो है मुक्त परागित जो किस्म है उससे, और अगर संकर किस्म होता है तो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उपज मिल सकता है।
1: तो किसान भाई बहनों, अगर आप अच्छी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, सही देखभाल के साथ बैंगन की खेती करेंगे तो आपको काफी मुनाफा हो सकता है। और मैम ने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए अभी इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान, और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके
5: घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी

शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत सारी बातें खेती बाड़ी से जुड़ी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, तो उन सारी बातों को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं, जी हाँ, पार्थेनियम के बारे में हम जानेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम आपको विषय बता देते हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में पार्थेनियम का उपयोग, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एके जाम। मैं आपको बता दूं, ये मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बता दें कि वर्मी कम्पोस्ट क्या होता है।
1: ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊँ, वर्मी कम्पोस्ट, जैसा कि नाम ही है, वर्म के द्वारा बनाया गया कम्पोस्ट, यानी एक खास प्रकार का कम्पोस्ट है जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है।
0: जी,
1: बहुत सारी चीजें हम से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं या गोबर पुआल के मिक्सर से बना सकते हैं, वाटर हाइसिंथ यानी जिसको जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी और गोबर के मिश्रण से भी बना सकते हैं, पार्थेनियम से भी बना सकते हैं, यानी हम जिस चीज से भी बनाएं, लेकिन केचुआ की इसमें सहभागिता होती है। केचुआ इसे खाता है और अपने शरीर से निकालता है एक कास्ट, चाय की पत्ती जैसी संरचना, तो उसी चाय जैसी जो पत्ती जैसी संरचना है उसी को आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
0: जी, तो ये तो बातें हुई वर्मी कंपोस्ट की, और अब हम बात करते हैं पार्थेनियम की। तो सर, इसका जो पोषक मान्य है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
1: देखिए, पार्थेनियम तो एक खरपतवार है जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए भी, सब जगह। यदि वो बीज बन जाता है तो इतनी संख्या में उसका बीज बनता है।

0: है कि वह फसलों के लिए या दूसरी जगह भी बहुत बड़ी समस्या हो गई हुई है।
1: अच्छा,
0: अब यह है कि यदि हम इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में मुझे जानना होगा कि इसमें पोषक मान क्या है। अच्छा। यदि हम पार्थेनियम को देखें तो इसमें लगभग 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस भी 0.44% यानी 0.5% के आसपास इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, पोटास भी 0.25% के आसपास, 1.23% जो यहाँ जांच किया था तो 1.23% इसमें पोटास पाया गया, जस्ता भी 13.9 ppm पाया जाता है, लोहा 528 ppm पाया जाता है, तांबा 8 ppm पाया जाता है, मैग्नीज 161 ppm पाया गया। यह खास तरह का जो हमने जांच किया था उसमें पाया गया, दूसरा कोई जांच करता है तो हो सकता है उसमें कुछ अंतर हो, लेकिन हमने जो इसकी जांच किया था तो उस समय ये पोषक मान पाया गया।
1: जी, तो ये बातें हो गई हैं पार्थेनियम की। और अगर डॉक्टर साहब, यदि हमारे किसान भाई पुआल के स्थान पर पार्थेनियम का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या वर्मी कंपोस्ट के पोषक मान पर कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर हाँ पड़ता है तो कैसे, वो भी बता दें।
0: बिल्कुल सही बात आपने पूछा। ये किसान, एक चीज निश्चित रूप में इनको स्पष्ट करना जरूरी है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कहीं केचुआ बाहर से तो पोषक मान डालता नहीं। जो सब्सट्रेट हम प्रयोग करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट बनाने में पदार्थ प्रयोग करते हैं, उसी के पोषक मान के ऊपर या निर्भर करता है कि हमारा वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान क्या होगा।
1: जी।
0: अब यदि इसमें मान लीजिए कि आप ऐसा चीज प्रयोग कर रहे हैं जैसे अजोला प्रयोग करें, इसमें 4.5% नाइट्रोजन होगा, तो निश्चित रूप में जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वह ज्यादा नाइट्रोजन वाला वर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो इसी तरह से यदि हम पुआल की बात करते हैं तो पुआल में हम यदि देखते हैं तो पोषक मान समानता कम होता है पार्थेनियम की तुलना में।
1: जी।
0: तो इसी तरह से यदि हम पार्थेनियम प्रयोग करते हैं या जलकुंभी प्रयोग करते हैं, उसका पोषक मान ज्यादा होता है, तो उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसका पोषक मान निश्चित रूपेण ज्यादा होगा। जैसे हमने जो वर्मी कंपोस्ट बनाया था उस वर्मी कंपोस्ट में हमने 40% उसमें हमने लिया था पार्थेनियम, और जो 60% है वह गोबर का प्रयोग किया था। तो अब जो 40% हमने दूसरा वाला जो पुआल वाली बात आपने किया, यदि मान लीजिए 40% आप पुआल प्रयोग करते हैं और 60% गोबर प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इस सब के पोषक मान में अंतर आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बताऊं तब जाकर के आपको स्पष्ट होगा। जैसे मान लीजिए पुआल है, 40% पुआल आपने प्रयोग किया, 60% गोबर प्रयोग किया, इसमें यदि आप नाइट्रोजन देखें तो इसमें नाइट्रोजन आपको कम होगा, यानी 1.368% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। लेकिन वही पार्थेनियम में यदि प्रयोग हम करते हैं तो पार्थेनियम में 1.76% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यदि पुआल वाला है तो फास्फोरस उसमें आप देखेंगे कि पुआल यदि आप 40% प्रयोग करें और 60% उसमें गोबर प्रयोग करते हैं तो इसमें 0.757% के आसपास आपको फास्फोरस होगा। जबकि जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वो कहता है कि 0.8% के ऊपर उसमें फास्फोरस होना चाहिए। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 0.808%, यानी 0.8 के, यानी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन यह फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुरूप बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम उसमें ऐसी चीजें डालते हैं तो निश्चित रूपेण उसका पोषक मान बढ़ता है। इसी तरह से हम पोटास की बात करें तो पोटास में यदि हम देखते हैं कि यदि सिर्फ पुआल और गोबर से बनाते हैं तो इसमें 0.992% इसमें आपको पोटास पाया गया। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो पार्थेनियम के प्रयोग से देखा कि 0.966% इसमें हमारा पोटास पाया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम पुआल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि फॉस्फोरस मेरा थोड़ा कम हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए आपको कोई दूसरी विधा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप इंडिस्ट बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको 0.8% के ऊपर फॉस्फोरस रखना ही रखना है। यदि आप बर्मी कंपोस्ट बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूपेण आपको 0.8% से ऊपर फॉस्फोरस भी रखना है, 0.8% से ऊपर पोटास भी रखना है, नाइट्रोजन भी 1% के ऊपर रखना है। तो आप इसके लिए उसमें ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो कि आपको ऑर्गेनिक खेती में भी प्रयोग कर सकें, हार्म ना हो, और साथ ही साथ उसमें पोषक मान भी उतना रहे। तो आपने जो पूछा था कि इसमें कितना प्रतिशत हमको जो है क्या कहते हैं फायदा होगा, यानी कितना फायदा होगा, तो यह निश्चित रूपेण है कि अच्छा जलकुंभी प्रयोग करते हैं, जलकुंभी में आप देखेंगे कि पार्थेनियम से भी ज्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास पाया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हमने अजोला की बात किया, अजोला में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास,

0: या और ज्यादा है। तो यदि अजूला वाला आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप में उसमें पोषक मान ज्यादा होगा। इवन कार्बन की भी बात करते हैं तो कार्बन ज्यादा होगा। तो यदि हम इस ढंग का बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उससे हमारा मृदा स्वास्थ्य ज्यादा ठीक होगा। और इसी तरह के बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है, जिससे कम मात्रा में भी बर्मी कंपोस्ट हम बना करके हम ज्यादा से ज्यादा पोषक मान को ठीक कर सकें, हम अपनी मिट्टी की सेहत को ठीक कर सकें और ज्यादा पोषक मान की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें, ये ज्यादा जरूरी है
1: जी। डॉक्टर साहब, अब ये बात कर रहे हैं हम पार्थेनियम की, तो अगर हम इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो कैसे करें हम, वो भी बता दें।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने में यदि पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पार्थेनियम ऐसे ही डाल देते हैं
1: जी।
0: ऐसा नहीं करें, वो करें क्या कि इसको एक एक इंच के टुकड़े में काट लें।
1: अच्छा।
0: पार्थेनियम को एक एक इंच के टुकड़े में काट लिया, अब उसमें 40% पार्थेनियम आप रखिए और 60% गोबर, दोनों को आप मिला दीजिए। अब मिला करके उसको 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके पास कंपोस्टिंग कल्चर है तो कंपोस्टिंग कल्चर ऊपर से छिड़काव कर दीजिए, या पंचगव्य है तो पंचगव्य का छिड़काव कर दीजिए, वो और कुछ नहीं करेगा। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आंशिक अपघटन आपका तेजी से हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी बनाती है, नेफेड कंपनी भी बनाती है, आपका गाजियाबाद वाला है वो भी कंपोस्टिंग कल्चर बनाता है, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी कंपोस्टिंग कल्चर बनता है। तो वह थोड़ा सा आप डाल दें तो वो आपको बहुत बढ़िया से आपको सड़ जाएगा। तो 3-4 हफ्ते में कुछ आंशिक अपघटन हो गया, उसके बाद उसको आप ढेर लगा लें। ढेर लगा देने के बाद उसकी थोड़ी हल्की सिंचाई कीजिए और उसमें हाथ डाल करके देखिए, यदि वो ठंडा हो गया है ढेर तो उसमें आप केचुआ डाल दीजिए। कितना केचुआ डालेंगे? यदि आपके पास 1 टन मटेरियल है तो 1 टन मटेरियल में आपको 1,000 से 2,000 केचुआ डालना चाहिए। 1,000 से 2,000 केचुआ डाल दिया, अब उसकी सिंचाई आप प्रॉपरली कर रहे हैं जिससे 60-65% नमी उसका बरकरार रहे कम से कम, तो 65% के आसपास नमी बरकरार है, उसी ढंग का आप सिंचाई करते रहिए ऊपर से। और वो जो सिंचाई आप कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद, 3-4 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ऊपर में चाय की पत्ती जैसी संरचना बन गई है, यानी कि महीन महीन बन गया हुआ। उसके बाद आप सिंचाई को 3-4 दिन के लिए रोक दीजिए, और सिंचाई रोक करके ऊपर से वो जो चाय की पत्ती जैसी संरचना है उसको हाथ से या किसी लकड़ी से उसको आप हटा देंगे।
1: अच्छा।
0: वहीं तक हटाइएगा जहां तक केचुआ आपको नहीं दिखे। जब केचुआ दिखा इसका मतलब कि अभी इधर प्रक्रिया चल रही है, यहां पर बर्मी कंपोस्ट बन रहा है। हाँ, ऊपर वाला बन चुका हुआ है, तो ऊपर वाला आप हटाते जाएंगे तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनेगा, नहीं हटाएंगे तो थोड़ा धीमा बनेगा। इसीलिए आप उसको हटा करके साइड में कर लीजिए और उसके बाद आप 4 mm की जाली से उसे छान करके पैक कर लीजिए, तो बर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया। तो ये जो है क्या कहते हैं आप उसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, जहां आप ढेर लगाते हैं वो थोड़ा सा यदि ढालू हो तो ज्यादा बढ़िया है, कि धोखा से यदि ज्यादा पानी पड़ गया तो वो वहां से बह करके निकल जाएगा। तो इस ढंग से आप करेंगे, हाँ वहां पर वायु का संचार भी ठीक ठाक रहे। इसीलिए जिस शेड में आप बना रहे हैं वहां पर आप देखिएगा कि ऊपर कुछ जगह खाली हो, 1-2 हाथ जगह खाली हो जिसमें कि वायु का संचार प्रॉपरली वहां पर हो सके। कुल मिलाकर के आप क्या करते हैं, वह व्यवस्था देते हैं जो केचुआ के लिए ठीक ठाक है, जिस पर केचुआ बढ़िया से चल सके वही व्यवस्था आप करते हैं, तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनता है। तो यही चीज आपको करना है, इस ढंग से करके जब आपने हाँ, इसमें एक चीज बताएं, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में यह भी है कि 15-25% नमी हो, इसीलिए जब बर्मी कंपोस्ट आप पैक करने लगे तो उसमें निश्चित रूप में आप देख लें कि 15-25% के बीच में हमारी नमी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हार्मोन इस सब की एक्टिविटी तभी होती है जब उसमें नमी बरकरार हो। तो इसीलिए आप नमी का भी ध्यान देंगे और नमी की व्यवस्था आप देख करके उसके बाद आप इस ढंग से कर दीजिए, बिल्कुल आपका रेडी हो गया प्रयोग करने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब कभी भी पार्थेनियम का प्रयोग कीजिए, जब बीज बना उसके पहले ही आप पार्थेनियम का प्रयोग कीजिए। जब बीज बन जाएगा अब उसके बाद बर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो वो बीज आपके खेत में भी पहुंच जाएगा और वहां पर आपको फिर पार्थेनियम पैदा होने लगेगा। इसीलिए यह निश्चित रूप में विशेष ध्यान दीजिएगा कि उस समय आप नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि इसका प्रयोग आप उसी समय कीजिएगा जब बीज नहीं बना है, यानी बीज बनने के पहले का ही पार्थेनियम आपको प्रयोग करना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आज एक महत्वपूर्ण विषय आप सभी ने जाना, सभी किसान भाइयों की, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में आप पार्थेनियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, सारी विधि यहाँ पर आपको बताई गई है। आशा करते हैं कि आप जरूर अच्छे से इसका उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
2: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए और आइए

0: सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
1: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा।

0: तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
1: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
0: जी।
1: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही हैं।
0: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
1: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
0: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
1: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है।
0: जी,
1: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
0: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
1: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
0: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
1: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
0: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
1: जी,
0: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
1: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
0: जी,
1: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
0: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
0: जी,
1: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
0: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
1: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
0: जी,
1: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
0: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोता, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू

0: होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत डॉक्टर सुचिता। हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
2: वाह बहुत अच्छा सवाल। देखिए पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
2: आह क्या बात है
4: मैम।
2: हाँ बेटी।
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
2: देखो ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
2: तो बच्चों यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे। तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: हाँ, जी मैम।
4: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और

0: यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि बिल्कुल सही है, अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
3: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
6: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
7: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी

0: मिलजुल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
1: जंगल के साथी।
2: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
3: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनू।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
2: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं।

0: साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता,

0: बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भाई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में

0: साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
5: कब से?
4: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
5: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
4: खांसी?
5: हाँ।
4: इसको तो एक आध महीना हो गया,
5: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
4: डॉक्टर, खांसी तो है।
5: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
4: ठीक है।
5: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
7: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
6: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
9: जी सर, तो बिहार में कब

0: खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
1: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
0: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
1: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ये कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
0: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
1: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहाँ जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
0: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
1: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भूटा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे

0: तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भुट्टा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर, सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या?
0: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरब पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में। हाँ,
0: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है

0: पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है, फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पर अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। 2 छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो 2 छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है, तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पे बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिस पे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा, और चूंकि नाली पे किए हैं मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें।

0: ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा एक एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें, इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदते हैं, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदे, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदे, खुला हुआ बीज नहीं खरीदे, बीज पैकेट खरीदे, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इसे बचने के लिए जो हमने 2 दवा बताया, सिर्फ 2 ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें, कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं, 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर लें और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी के राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए एनो 53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित

रोज से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज।
1: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगेगा।
0: अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये क्या चल रहा है?
2: अरे प्रिया, आज बड़ा अच्छा दिन है, गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, गुड़िया। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया

टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया

0: है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थीं। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थीं। लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थीं, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बात है, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
1: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से बताइए।
0: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: मतलब ये सीधी सीधी जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
0: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानती हो प्रिया?
1: क्या सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
0: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
1: मतलब इंसान को पता नहीं चलता?
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
0: यही तो अच्छी खबर है प्रिया। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में? कैसे?
0: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग को भी अच्छे से समझ सके।
0: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
0: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
0: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है क्या?
0: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र की हो
0: तो भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर।
1: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों का क्या भूमिका है?
0: यही तो सबसे अहम बात है प्रिया। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइए।
0: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उससे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
0: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई तो वहीं हार जाएंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती है। कोई कहता है कि यह टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
0: देखो।

0: या यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
1: मतलब इनमें से किसी भी बात में सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
0: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही यह पहले से ही सुरक्षा देता है। जरा सोचो प्रिया, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंच सके। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसी कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया, उसने पूरे परिवार को हिला दिया। यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाइए, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और

0: अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ अनु और एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम। जी हाँ, हम बात करते हैं आज अपनी मृदा के बारे में और जल के बारे में। जी हाँ, अगर मृदा और जल नहीं रहेंगे तो हमारे किसान भाई फसल कहाँ से उगा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस जल से सिंचाई कर रहे हैं, आप जिस मृदा में फसलों को उगा रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता वाले हों। और इसीलिए समय समय पर मृदा परीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जिस जल से सिंचाई करते हैं हमारे किसान भाई उसका परीक्षण भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर मैं साफ तौर पर कहूँ तो आज हमारा विषय यही है, मृदा जल परीक्षण। और इसके बारे में आप सभी को विशेष जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर DK वर्मा, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद मैडम।
4: डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि मृदा परीक्षण कब करना चाहिए।
5: अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे जो होते हैं उनको ये हमें सही से अनुमान नहीं होता है कि हमें मृदा का जो है कि सैंपल कब इकट्ठा करना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। जब भी हमको मृदा का करना हो परीक्षण, उसके पहले हम जो है कि जब तक उसकी सॉइल सैंपलिंग यानी कि हमें नमूना का संग्रह ठीक से नहीं होगा तो हम उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट जो है कि वो सही से नहीं आ पाएगा। इस

0: इसलिए हमको ध्यान देना होता है कि पहले उसका नमूना कैसे संग्रह किया जाए। नमूना संग्रह करने के लिए हमें फर्स्ट होता है कि जब भी हमें क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है, कोई भी फसल हो, जैसे अभी हमारी धान की फसल की कटाई हो गई हो, हाँ, या तो गेहूं की फसल की जब कटाई हो जाती है, उसके बाद जो है कि हमको उसका संग्रह करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले जो है कि ऊपर परत जो है कि हमें, अगर हमारा 10 से 12 कट्ठे का ज़मीन है या एक बीघे का ज़मीन है, उसके अकॉर्डिंग हमको जो है कि सैंपल को इकट्ठा करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 4-5 जगहों से जिग जैग आकार में रैंडम विधि से कहीं से भी सैंपल को हमको इकट्ठा करना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करता है कि मिट्टी की ऊपरी सतह जो होती है उसको हमें अच्छे से, उसको खुरपी से, फावड़े से साफ कर देना चाहिए। फिर भी शेप में, आकार में जो है कि हमको मिट्टी का संग्रह करना चाहिए, ताकि वो 0 से 15 सेंटीमीटर का जो हमारा लेयर होता है वो उसमें आसानी से मिट्टी आ जाए।
1: जी जी।
0: और ये क्रिया हम लोग जो है कि 5-7 जगहों से करें, कम से कम 1 kg सैंपल हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं।
1: जी, समय की बात करते हैं, कब करना चाहिए, किन फसलों में समय भी एक एक्यूरेट समय होता हुआ कि विभिन्न फसलों के लिए इस समय करना चाहिए मृदा परीक्षण, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए।
0: जैसे हमारा हो गया कि बहुत सारी हमारी जो है कि ये फसलें होती हैं जो कि सीरियल्स हम लोग जिसको बोलते हैं, सीरियल्स वाली फसलों में क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए, हमारा कटिंग हो गया है और बुआई का कम से कम 1-2 महीना उसको हमारे मिट्टी जो है कि खुला रहती है, उसमें कोई क्रॉप हमारा नहीं को ग्रो किया जाता है, उस टाइम पे जो है कि हमको मृदा परीक्षण कर लेना चाहिए, और मृदा परीक्षण मतलब कि उसका सैंपलिंग कर लेना चाहिए, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई लोग जो है कि जुताई उताई कर देते हैं और उसको जो है कि खाद भी कभी कभी गोबर की खाद ये सब डाल देते हैं, तो इस कंडीशन में जो है कि हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप उसमें कोई भी खाद फर्टिलाइजर अगर डाल देते हैं तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, ताकि वो उसका वो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, और जो है कि वो आप जो अलग से डाले हुए हैं खाद है ये सब चीज़ें हैं उसमें अगर वो ऐड हो जाएंगे तो आपका नमूने का सही रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए जब भी कोई भी क्रॉप हो उसको बुआई से पहले हमारा जो है कि उसको हमें सैंपल को इकट्ठा कर लेना चाहिए, और जब भी हमें बुआई से हो तब तक अगर हम आप जो लेबोरेटरी है अगर वहाँ पे हमारा सैंपल चला जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग सोइंग के टाइम में अपना खाद का उपयोग कर सकते हैं।
1: जी, इससे क्या लाभ मिलेगा किसान भाइयों को?
0: हाँ, इसमें लाभ क्या होता है मैडम कि हमारा जितना भी फसल हो रही है उसमें किसान भाइयों का क्या हो रहा है कि लागत जो है कि हमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमारा उपज जो हो रहा है वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से उसका फसलों का जो है कि दाम मिलेगा, तो अगर हम लागत को ही पहले ही कम कर दें तो हमारे फायदे जो है कि और डबल हो सकते हैं। इसलिए क्या करना है कि वो उससे होता क्या है कि हमारा जो इनपुट यूज कर रहे हैं जो कि खाद है, अगर हमारे नाइट्रोजन चाहिए मान लीजिए कि 150 kg, हाँ, और लेकिन हम लोग फार्मर्स बिना उसको जांच किए हुए उसको जो है कि 200-250 kg हम लोग पर हेक्टेयर डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा इनपुट उसमें बढ़ जा रहा है।
1: जी।
0: क्योंकि सही आपको पता नहीं है, मिट्टी तो कभी ये नहीं कहेगी कि हमको मत डालो, जैसे ओवरडोज होने के बाद आदमी के शरीर में हाँ किसी चीज के हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी में रिएक्शन तो जो है हो रहे हैं वो दूसरे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी जो घट जा रही है उनको नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए और सही एक्यूरेसी देंगे तो हमारे लागत को जो है कि कम किया जा सकता है उससे।
1: जी, अभी आपने कहा था कि नमूना संग्रह का तरीका थोड़ा सावधानी से करना चाहिए, तो क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए नमूना संग्रह करते समय?
0: हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमें कैसे नमूना को संग्रह करना चाहिए। नमूना संग्रह करने के लिए मैडम जो है कि हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला होता है कि जो हम जब भी कहीं भी सैंपल लें, नमूना संग्रह कर रहे हैं, तो जो हमारे खेत की चारों दीवार होती है या मेड़ होती है, बंड बनाया जाता है चारों तरफ, उससे जब भी हो कम से कम 1 से 2 फीट दूरी बना के हमको सैंपल लेना चाहिए। मेड़ के नज़दीक कभी भी सैंपल नहीं लेना चाहिए, इससे क्या होता है कि बगल वाला फील्ड का भी जो है कि उसका जो है कि फर्टिलाइजर लीचिंग सीपेज हो रहा है पानी से हो रहा है, तो वो सब चीज़ें
1: आ सकती,
0: हाँ आ सकती, इससे उसका रीडिंग सही नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम फसल का सॉयल सैंपल ले रहे हैं किसी

0: किसी भी जगह का, उसमें हमको ये ध्यान देना चाहिए कि वो नमी ना हो उसमें। अगर मृदा में बहुत ज़्यादा नमी है उस समय भी अगर हम लोग ले रहे हैं सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसका जो है कि वो सही टाइमिंग नहीं होता है, उससे आपको बहुत सारी सुविधाएं जो है कि असुविधा हो सकती है, सैंपल को लेने में, उसको रखने में, सुखाने में, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसको हमें नमी के चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि जब मॉइस्चर ऑप्टिमम रहे, पैर उसमें आसानी से आ जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तभी हमको सैंपल लेना चाहिए। और तीसरा होता है कि आप जब भी सैंपल लें तो ऐसी जगह से सैंपल लें जहाँ पे कि कहीं पे खाद, या किसान भाई बंधु क्या करते हैं कि किसी खेत के कोने में जो है कि गोबर ओबर इकट्ठा करते हैं, बाद में उसी को उसी खेत में डाल देते हैं, तो उससे थोड़ा दूरी बना के हमको लेना चाहिए ताकि उसका इफेक्ट ना आए।
1: जी जी,
0: ठीक है
1: जी। तो यहाँ पर हमने मृदा परीक्षण के बारे में तो बहुत सारी बातें की, अब चलते हैं जल परीक्षण की तरफ। तो हम अभी खेती की बात कर रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे सिंचाई योग्य जल की। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि ये जो जल है ये उपयुक्त है सिंचाई के लिए?
0: बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं, ये जल की महत्ता को अभी लोग नहीं जान पाते। ऐसा नहीं है कि उनको पता चीज़ें नहीं होती हैं कि जल क्या है वो है, लेकिन वो केमिकली क्या है उस हिसाब से हम लोग जो है किसान अभी नहीं ध्यान दे पाते हैं, और उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म में होता है। सडनली जैसे हम लोग अगर कहीं पे फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमको दिखाई देता है कि इसका इफ़ेक्ट हो रहा है फसलों पर, लेकिन जल का जो ऐसा एक चीज़ है जो कि वो तुरंत उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो जल के जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे एरिया हैं जो कि जैसे आपका कोसी रीजन देखिए, वहाँ पे आयरन की बहुत टॉक्सिटी है। हाँ, और हमारा इस जगह पे हमारे भागलपुर में फ्लोराइड और आर्सेनिक की भी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें तो एक्चुअली क्या है कि हमारे फसलों के लिए नहीं है, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़्यादा जो है कि हानिकारक है। और कुछ जैसे फसलों के लिए जो मेन मुख्य होते हैं वो हम लोग देखते हैं हमारा ईसी, जिसको कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं, और उसमें जो है कि पीएच कितना हो रहा है, एसएआर कितना है, एसएआर मतलब क्या होता है सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, और होता है हमारा आरएससी रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। तो एसएआर जो होता है वो रिप्रेजेंट हमारा करता है कि सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है और कैल्शियम मैग्नीशियम के हिसाब से। तो इन चीज़ों से जो है कि जो हमारा ईसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या करता है कि आपका साल्ट कंसंट्रेशन जो हमारे सॉइल में वाटर में है वो आपको बताता है। अगर हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा है किसी भी जो है कि जल के जिसमें हम सिंचाई कर रहे हैं, तो वो हमारे फसलों के लिए लाभदायक नहीं है
1: जी।
0: ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और इसी प्रकार से एसएआर वैल्यू जो है, एसएआर वैल्यू को जो है कि हम लोग जो है कि कैलकुलेट करते हैं सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, इस हम लोग पहले एनालिसिस लैब में किया जाता है, उसके बाद हम लोग जो है कि उसका रीडिंग बता सकते हैं। अगर एसएआर वैल्यू आपका जो है कि मोर देन 18 है, 26 है, तो क्या होगा कि ये जल हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए ऐसे जल का हमें जो है कि अवॉइड करना चाहिए।
1: जी जी। अगर जो जल है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं, यानी कि सिंचाई योग्य नहीं है, तो फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
0: बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि अगर हम उस दूषित जल से, या तो जो हम कहेंगे कि हमारा जो सिंचाई का जो साधन है, जो जल है, अगर उसमें हमारा साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है या सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अगर कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं तो जो हमारी मृदा है उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि उसमें जो हमारे बहुत सारे सॉइल में मृदा में माइक्रोपोर्स मैक्रोपोर्स होते हैं, जिससे कि पानी का मूवमेंट होता है, क्योंकि जो हमारी मृदा है उसमें हवा का पानी का संचार उचित मात्रा में होता रहता है हमेशा। तो जैसे कि जल का, वर्षा का जल है वो पानी में नीचे जाता है, अगर कभी सूखा पड़ जाता है तो नीचे से पानी ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये जब अधिक साल्ट हो जाते हैं तो उसके जो मृदा के जो छिद्र होते हैं माइक्रोपोर्स मैक्रोपोर्स, वो सारे के सारे वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उसमें एक सतह मोटी पर्त की तरह भी बन सकती है अगर ज़्यादा हो रहा है तो। उससे क्या होगा कि आपका मूवमेंट पानी का रुक जाएगा, जिससे पौधों को जल की कमी होने शुरू हो जाती है। पानी रहने रहते हुए

0: भी वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी डिफिशेंसी होने लगेगी, जो कि उसमें हम लोग खाद अप्लाई करने के बाद भी वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। कभी कभी को होता है किसी चीज़ की टॉक्सिटी, जिसमें सोडियम की, कैल्शियम की, इसकी जो है कि टॉक्सिटी होने लगेगी, जिससे पौधा का जो है कि वो सूखने लग जाता है। तो इस टाइप का उसमें बहुत सारी कमियां धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता
1: जी।
0: है।
1: सर, अगर किसी किसान भाई के पास ये मजबूरी है कि वो सिंचाई योग्य जल उनके पास नहीं है, तो क्या कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिससे कि वो उस जल को सिंचाई योग्य बना सके, या कोई और तरीका जिससे कि वो पानी को उस तरीके से यूज़ करके, उस तरीके से ला करके, उपलब्ध करा करके सिंचाई कर सके?
0: जी, इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि अगर हम लोग जहाँ पे देखें कंटिन्यूस हम लोग सिंचाई का जल यूज कर रहे हैं, अगर हमारे पास साधन नहीं है, तो पहले तो फर्स्ट हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हमको उस जल का परीक्षण करना पड़ेगा, ताकि पता भी चल सकता है हमको कि उसमें क्या हमें कमियां हैं, या किस चीज़ की उसमें टॉक्सिटी हो रही है, पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि वर्षा का जल, जो कि बहुत ही शुद्ध जल होता है, वो अगर हम कहीं पर भी इकट्ठा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, साल्ट का कंसंट्रेशन जो होता है बहुत ही कम होता है, जिसको हम लोग जल संचय कर सकते हैं, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपना सकते हैं। इस पर भी गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है लोगों को, तालाब बना के उसके द्वारा जो है कि हम लोग सिंचाई के जल को कर सकते हैं। या तो ऐसा कुछ हो जहाँ पे नदी हो अगर, या आपका नहर का भी है तो उसमें कर सकते हैं, या तो फिर आपका जैसे हो सकता है कि जहाँ पे अगर बहुत ही कम आपको सिंचाई का है, तो एक दो आप जो है कि उस पानी से अपना दे जो आपका है, और बाकी एक दो अगर सिंचाई हो सके तो आप जो है कि वर्षा जल संचय जो किए हुए हैं उससे करके मिला के दोनों को करने से भी हमारा जो है कि उससे बहुत ही लाभ हो सकता है।
1: जी, तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मृदा जल परीक्षण, इस विशेष वार्ता, इस विषय पर विशेष वार्ता, और आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी।

0: कर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
5: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
2: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
5: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से, यानी FM ग्रीन, और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जहां पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं, और आज जो विषय है, जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद अनु।
7: मैम, बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के, जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
9: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार 4 तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
7: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं, और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
9: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं, और ऐसे इसका नाम कैलोशाइबा इंडिका है, और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर, यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं, और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम, ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी, तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती ख़त्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे, और यह विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे NRC सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है, यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है। इसका कुछ करैक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि, कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
7: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
9: अब इसकी जो तकनीकी है,

मिल्की मशरूम की खेती में, उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें, फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे, तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे। इसका पोषाधार आपका गेहूँ का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है, या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें, वो उसका चयन कर लें। उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके, पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे, तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं। फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में, जैसे डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीवकृत सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है, उसको छांव में फैला देते हैं। अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे। स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं। पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं। जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद, फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं। उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक ही उसके बाद ये दो तरीके में से, या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं, या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑयस्टर मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं, तो इसमें पूरे बैग में छेद, ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है, वैसे ही निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ नीचे पैंदा में 2 छेद हम लोग कर देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12-15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं, उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं, और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं। उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12-15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसेलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसेलियम अच्छे से रन कर जाता है, तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे। तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं, उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है, जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑयस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं, लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं। तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सरा हुआ गोबर लेते हैं, या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए, या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है। इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है, इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू, नदी की पेटी का जो बालू होता है, वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं। और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है, उस भूसा का राख भी हम लोग आते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें, तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते हैं, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और 2 सरा हुआ गोबर लेते हैं, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं, तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले लीजिए, सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको, यदि 2 साल सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है, तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है। नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं, फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटेलिक कुछ चीज़ हो, पत्थर हो या घास फूस हो, तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं। लेकिन

0: उसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है। लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है, ये सब है, तो वो सबको हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे। निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं, केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं और उसको नीचे छोड़ते हैं। यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बेंडाजिम 1 gram और 1 liter पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग तैयारी कर दें तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग कर दें, इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब अब मैसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में, तब उसका केसिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का को हम लोग थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं। और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केसिंग की लगभग 3 से 4 cm मोटी परत डाल देते हैं। और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं। और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन हम लोग को नमी देना होता है, और गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको 2 बार भी नमी देना पड़े, या फिर कम से कम 1 बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल फुहारे से देना है, और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 cm मोटा परत दिए हैं, सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए। इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा तैयार हो जाता है। और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद इसे यह तुराई योग्य हो जाता है, और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
1: मैम, केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
0: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग 2 साल सड़ा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में, जो बालू पाया जाता है वो रेतीला रहता है, उस बालू का उपयोग कर सकते हैं। प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं। प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन सब सामग्रियों को जैसे कि सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ ना पुराने ये पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं, तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिये लेंगे 1 भागिये लेंगे। और यदि हमारे पास 2 साल पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं। और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, टोकरी से, एक टोकरी है तो फिर एक टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर लेकर के हम लोग उसको मिलाते हैं। और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवीकृत करना, ये हम लोग करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं।
1: और अंत में मैम, मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, ये आपको बता दें, मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में, ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है, कीटाणु है, उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है। तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है, तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं, तो और दूसरा फंगस भी इसको ग्रो कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का, या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट, वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वह ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है, जो

0: हमारा फसल कक्ष है उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बेंडाजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाज़ा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें स्पॉन का चयन करें वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए ताज़ा होना चाहिए वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है चाहे वो मक्का हो सकता है वो धान हो सकता है वो गेहूं हो सकता है और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है तो इस पीरियड में चूहा से गिलहरी से ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए उसके लिए अलग अलग का है कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज़ और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा नीचे कि गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा और वो तेज़ी से लंबा होता है फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित तो उसको नोच करके ज़मीन के अंदर डाल देना है और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो को प्राइमस से बहुत सावधान रहिए। यदि यह आपके फसल में आ गया है निकल रहा है तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है खरपतवार है जिससे कि लोगों को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
1: जी तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जरूरी बात आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
6: कब से?
5: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
6: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बात।
5: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
6: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
5: डॉक्टर, खांसी तो है।
6: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
5: टीबी?
6: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
5: ठीक है।
6: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूले। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: page, here we can also find the picture of small kids wondering to solve the puzzle given here. Chapter 6 ends here.
1: Ganit Prakash, you are just listening to this audiobook, textbook of mathematics for grade 8. Narration, Swarnlata Sharma. Sound recordist, Prasoon Kumar. Production assistant, Amarjit Sarkar. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: नाटक देखो नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो नाटक देखो नाटक देखो
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं हाँ या ना
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे हाँ या ना
3: हाँ हाँ हाँ इसे ही कहते हैं खसरा जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई
6: समस्या तो गंभीर है चाचा पर इसका सरल है उपाय
7: क्या क्या क्या
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है
7: अच्छा
6: तो सबकी समझ में आ गया ना खसरा रुबेला बीमारी है घातक आइए इसे मिटाए जड़ तक
4: टीकू तेरे कितने दोस्त है
6: टीनू मीनू राजू पिन्नी और
4: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ
6: 11 दोस्त
4: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं
6: अच्छा इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी
4: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं
6: लेकिन ऐसा क्यों
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं
6: टीकी तो इसका हल क्या है
4: चलो बताती हूँ बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी UN पर रजिस्टर कराओ कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ
6: याद रखो आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों जब बाजार हम जाते हैं तो वहां पर हर तरह के फल मौजूद होते हैं और वो ज्यादातर फल ऐसे मौजूद होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए होते हैं लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि जो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं ऐसा क्यों होता है आपने कभी सोचा है और इसके पीछे क्या वजह है और अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो क्या ये सही है और अगर सही है तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने का सही तरीका क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से डॉक्टर कुमारी करुणा से मैम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से मैम है BSc सबौर से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में
9: धन्यवाद
8: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेड़ पे फल पक रहे हैं तो फिर उसे कृत्रिम रूप से पकाने की क्या जरूरत है
9: फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का मुख्य उद्देश्य परिवहन के दौरान उन्हें खराब होने से बचाना और बाजार की मांग को समय पर पूरा करना होता है यदि फलों को पेड़ पर ही पूरी तरह पकने दिया जाए तो वे बहुत मुलायम हो जाते हैं और दूर दराज के बाजारों तक पहुँचाने से पहले ही सड़ जाते हैं इसलिए फलों को कृत्रिम रूप से

0: पकाने के और भी कई कारण हैं। सर्वप्रथम सुरक्षित परिवहन एवं कम नुकसान का होना। पके फलों की तुलना में कच्चे फलों को तोड़कर आसानी से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फलों को देश या विदेश के दूरस्थ बाजारों का तक पहुंचाने के लिए कच्चा फल ही तोड़ा जाता है और बाजार पहुंचने के बाद उसे पकाया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है कच्चे फलों का, इसलिए कच्चे फलों को यदि तोड़कर कोल्ड स्टोर में जिसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षित आर्द्रता 85 से 90% पर लंबे समय तक बिना सड़े रखा जा सकता है। व्यापारी स्टोर किया हुआ फल को आवश्यकता अनुसार गोदामों से निकाल कर पकाते हैं और बाजार भेजते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने पर फल एक समान रंग और रूप का होता है, इसलिए इससे उनका रंग एक समान और चमकदार हो जाता है, जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। बाजार की मांग, जैसे कि शादी के समय में बाजार में अधिक फलों की आवश्यकता होती है, त्योहारों और शादियों के सीजन में अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
1: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है, तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
0: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं, जो कि कैंसर, चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है, इसलिए इस पर बैन लगाया गया है कैल्शियम कार्बाइड पे।
1: लेकिन मैम, अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
0: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है, जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 ppm को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है, क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
1: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
0: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन रैपनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है, वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 ppm की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90 से 95% रखी जाती है, जिससे फल 24 से 48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच, पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है, नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम, अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं, तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे

0: या अखबार में लपेट कर रख दे। इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है, तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है, क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है, जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
1: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से, कृत्रिम रूप से पका सकते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, घर साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
6: कब से?
5: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
6: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
5: खांसी?
6: हाँ।
5: इसको तो एक आध महीना हो गया,
6: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
5: डॉक्टर, खांसी तो है।
6: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
5: टीबी?
6: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
5: ठीक है,
6: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें बांका नवादा जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों आपको बता दें अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और

बुवाई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर लें और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुवाई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 cm की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान

कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं. उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं. तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ. सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं.
1: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है. जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको, वो एक लीफ ऑफर होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं. तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं. सफ़ेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफ़ेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं. और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुँचाता है. और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं.
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
1: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है. ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहाँ से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है. और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है. और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है.
0: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
1: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं.
0: और इससे बचने का कोई तरीका जिसे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सकें और अपने फसलों को बचा सकें?
1: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं. जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफ़ेद मक्खी है या जैसीड है. अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है.
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है.
1: बिल्कुल.
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
1: अच्छा, तो ये सारे जो

तो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास, जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना

0: प्रमाणित बीज को ले और उस बीज को उपचार करे, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिट 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें। समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छा। आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एक मतलब एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
1: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
0: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश ये देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11।

0: बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और मैं हूँ अनु। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान की बात करते हैं हम। जी हाँ, धान में हम बहुत सारी बातें आपको बताते हैं कि कैसे बुआई करनी चाहिए, कौन सा मेथड आपके लिए सही होगा, DSR के बारे में भी हमने आपको बताया, लेकिन आज कुछ उर्वरक की बात करेंगे हम। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान में जैविक उर्वरक का महत्व। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच है डॉक्टर AK झा, मृदा वैज्ञानिक और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप जैव उर्वरक के बारे में बता दें कि ये क्या है।
4: देखिए, जैसे नाम बताता है, जैव उर्वरक यानी जीवित पदार्थ जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सके उसको आप जैव उर्वरक कहते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे राइजोबियम की बात करते हैं, या एजोटोबैक्टर की बात करते हैं, या एजोस्पर्म की बात करते हैं, या अजोला की बात करते हैं, या BGA की बात करते हैं, ये सब के सब जितने हैं, सब के सब जीवित पदार्थ हैं और उर्वरक की तरह पोषक तत्व इनको देने का काम करते हैं, इसीलिए इसको जैव उर्वरक कहा जाता है।
3: जी, मतलब पोषक तत्व देते हैं। और साथ ही साथ ये जो जैव उर्वरक हैं, क्या धान में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर किया जाता है तो किन किन जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है?
4: अभी जैसे मैंने नाम बताया कि धान के केस में यदि आप देखें तो धान के केस में आप जो प्रयोग करते हैं एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं, खास करके नाइट्रोजन प्रदायक की बात करें जो नाइट्रोजन देता है, तो उसमें आप एजोस्पर्म प्रयोग करते हैं। वैसे कुछ जगहों पर एजोटोबैक्टर भी लोग यूज करते हैं, लेकिन एजोटोबैक्टर से बढ़िया आपको एजोस्पर्म होगा, तो एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं। फॉस्फोरस यदि आपको प्रदान करना है तो आप PSB का प्रयोग कर सकते हैं। ये बीज में जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, वैसे तो सीडलिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप। और इसके अतिरिक्त नील हरित शैवाल ये भी 30-40 kg नाइट्रोजन की बचत करता है, तो नील हरित शैवाल का भी प्रयोग धान के केस में किया जाता है। और एक जो हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिस पर करता है, अजोला बड़ा ही फायदे की चीज़ है, तो ये अजोला का भी प्रयोग आप इस खेती में कर सकते हैं।
3: जी, अजोला का प्रयोग इस खेती में किया जाता है, तो क्या इससे क्या फ़ायदा मिलेगा धान की खेती में सर?
4: देखिए, अभी तक लोग ये कहते थे कि अजोला के प्रयोग से नाइट्रोजन की बचत होती है 30-40 किलोग्राम, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शोध करके देखा कि नाइट्रोजन ही नहीं, फास्फोरस भी, पोटास भी, ये सब की बचत करता है। क्योंकि इसमें देखिए तो नाइट्रोजन इसमें 4.5% से 5% के बीच में नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटास भी इसमें 2.5% से लेकर 4.5% तक इसमें पोटास भी पाया जाता है, 1% के आसपास इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। तो इसका यदि आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं या डुअल क्रॉपिंग के रूप में करते हैं, तो जो कुछ भी आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास धान को दिया उसकी मात्रा आधी कर दीजिए, और आधी मात्रा कर देने के बावजूद भी आपके उपज में कोई कमी नहीं होगी। यदि मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपये का आप खर्चा करते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर, यानी 2-3 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर आपको बचत हो जाता है यदि आप अजोला का प्रयोग करते हैं, तो ये फायदा है।
3: ठीक है, मतलब

0: जो है आय जो है उसमें बचत हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो पैसा हम लगा रहे हैं उसमें बचत हो जाता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और अजोला का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है जानना।
1: अभी आपने कहा कि हमें बचत हो जाता है, बचत ही नहीं होता है, आज ज़रूरत है टिकाऊ खेती की।
0: बिल्कुल,
1: टिकाऊ खेती के लिए उसमें कार्बन को देने के काम की ज़रूरत है। और यह जो पौधा है ये हरा पौधा है, और हरा पौधा है तो ये वातावरण से कार्बन को लेकर के आपकी मिट्टी में डालता है, क्योंकि कार्बन बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है। यह आपके मिट्टी में होना चाहिए 0.75% के ऊपर, लेकिन बहुत सारी मिट्टियों में देखेंगे तो कहीं 2%, 0.2%, 0.3%, 0.4% ऐसे ऐसे है। जबकि 0.5% के नीचे यदि जैविक कार्बन है आपकी मिट्टी में, तो उसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि यह निम्न है, लो है। 0.5 से 0.75% के बीच में है तो इसको कहते हैं कि मध्यम है, और 0.75% के ऊपर है तो कहते हैं उच्च है। और ये कार्बन जो है आपके सारे भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि भौतिक गुण का क्या मतलब, यानी कि जल धारण क्षमता कितनी बढ़िया है, वायु संचार कितना बढ़िया हो रहा है, तो ये सारे आते हैं आपके भौतिक गुणों में। रासायनिक गुणों में जो हमारा पोषक तत्व तो लॉस कर जा रहा है, तो वह पोषक तत्व तो हमारा लॉस कैसे नहीं करे, वह कैसे हमारे मिट्टी में बचा हुआ रहे। जैसे आप जिंक ही यूज करते हैं, वह आप देखते हैं कि बह के चला जाता है, वो लीच हो जाता है या परकुलेट हो जाता है, वह कैसे नहीं हो, उसका कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे हो, तो ये सारी चीज़ें कार्बन के ऊपर निर्भर करता है। और तीसरी बात हमने कहा जैविक गुण, तो जैविक गुण का मतलब होता है कि उसमें जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या कितनी अच्छी है। अब आज आपके मिट्टी में बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिस सबकी संख्या घटती जा रही है, यदि उसमें कार्बन है तो उसकी संख्या ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि इसकी जलधारण क्षमता बढ़ाएगा, और साथ ही साथ जो उस जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उसके लिए खाने का भी काम वो देगा, तो इसीलिए उसकी संख्या अच्छी होगी, तो ऐसी स्थिति में वह आपको ज़्यादा बढ़िया होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कार्बन को बढ़ाइए यदि टिकाऊ खेती चाहते हैं, क्योंकि हमको इसी पीढ़ी की नहीं सोचना, आने वाली पीढ़ी को भी भोजन मुहैया कर सके, हमारी खेती टिकाऊ बनी रहे, यह ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए कार्बन बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाने में आपको ये जो हमने अजोला का नाम लिया ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, और जितना भी हरा पदार्थ है ये वायुमंडल से कार्बन को लेकर के ट्रैप करके ये सॉइल में डालने का काम करता है, तो इसीलिए ये काफी फायदेमंद चीज है, तो इसका प्रयोग तो किसान भाई जरूर करें। दूसरा आपका क्या प्रश्न था कि इसका प्रयोग हम कैसे करें,
0: कैसे करें?
1: तो इसका प्रयोग करने की बात ऐसा है कि अजोला का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो दो ढंग से धान के खेत में कर सकते हैं, एक तो हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा डुअल क्रॉपिंग के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के रूप में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना लीजिए, और 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना करके, खास करके जहां पर पानी आपका रुकता है बरसात के दिनों में, तो वैसे भी खेत में पानी रहता, कोई समस्या नहीं है, तो जब भी 3-4 हफ्ते के बाद आपको धान की रुपाई करनी है तो उसके पहले ही आप इसको क्यारी बना लीजिए, और क्यारी बना करके आप पानी है ही खेत में या बोर्डिंग के पास कीजिए, जहां पर पानी यदि घटने लगे तो आप बोर्डिंग से पानी दे सकें, वो क्यारी बना करके उसमें आप 5 से 8 किलो गोबर को 10-15 लीटर पानी में घोल लीजिए, घोल करके उस गोबर के घोल को आप पूरे क्यारी में छिड़क दीजिए, और छिड़क करके उसमें आप कुछ अजोला डाल दीजिए, 4-5 किलो आप अजोला डाल दीजिए, वह अजोला जो छोटे क्यारी में हम बनाए हैं, पैदा किए हैं, वो ले जा करके वहां पर डाल देंगे। अब क्या है कि 3 हफ्ते तक आपको पानी का स्तर 2-4 इंची बरकरार रखना पड़ेगा, वह 2-4 इंच पानी उसमें यदि बरकरार है, और SSP ये 10 दिन के अंतराल पर 2 से 2.5 ग्राम SSP प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से यह छिड़कते रहिए, जिसे बढ़वार और तेजी से हो, ये आप कर देंगे तो क्या होगा कि 3 हफ्ते में आप देखेंगे कि पूरा आपका भर जाएगा, और अजोला कम से कम एक क्यारी से लगभग 1 क्विंटल तो आपको अजोला मिल ही जाएगा जो आपने 4-5 किलो डाला था, क्योंकि अजोला बढ़ता बड़ा तेजी से है, 2 से 5 दिन में यह अपने बायोमास को दूना कर लेता है, तो आपको तेजी से बढ़ जाएगा। अब उस अजोला को आप जैसे हरी खाद ढेंचा पलटते हैं उसी ढंग से आप खेत की जुताई के समय मिला दीजिए, तो यह तो एक तरीका है, लेकिन इसमें मात्रा ज्यादा चाहिए, इसमें 10 टन/हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा होती है। और दूसरी जो बात हमने कहा डुअल क्रॉपिंग, मान लीजिए उतना अजोला आपके पास नहीं है तो धान को रोप दीजिए, रोप देने के बाद जब वो 1 हफ्ते का हो गया उसी समय आप सिर्फ 1 टन/हेक्टेयर के हिसाब से वह अजोला को डाल दीजिए, और धान में पानी वैसे भी चाहिए, धान में पानी आप 2-4 इंच पानी आप मेंटेन रखिए, और जो आप फॉस्फोरस डालते हैं

0: जो भी उस फसल के लिए डालते हैं उसमें कम से कम 10-15-20 किलो ज्यादा एसएसपी पर हेक्टेयर के हिसाब से आप बढ़ा करके डाल दीजिए। अब क्या होगा कि ये 3 हफ्ते में पूरा आपके खेत में कवर कर लेगा। उसके बाद पानी को थोड़ा कम कर दीजिए या अपने आप यह जो है क्या कहते हैं आपको मिट्टी पकड़ लेगा और मिट्टी में चला जाएगा। और इसकी खासियत क्या है अजोला का कि यह मिनरलाइजेशन बड़ा तेजी से होता है, इसका खनिजन बहुत तेजी से होगा, तो उसमें जो कुछ उस अजोला में पोषक तत्व है वो पौधे को मिलने लगेगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जो आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास आप डालते हैं किसी फसल में, वह नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा आपको आधी ही डालनी पड़ेगी जितनी आपने मात्रा डाली है। मान लीजिए एक धान आप यहाँ बिहार के कंडीशन में करते हैं तो 100 केजी आप उसमें डालते हैं नाइट्रोजन, 40 केजी फॉस्फोरस, 20 केजी पोटास, तो इसकी मात्रा को आधी कर दीजिए और अजोला जो है क्या कहते हैं आप डालते हैं तो आपके उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, साथ ही साथ हमको उर्वरक पर होने वाला खर्चा भी बचेगा। यदि मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपया आपको खर्चा हो रहा है तो आपको 2-2.5 हज़ार रुपया उसमें खर्चा होगा, यानी 2-2.5 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर की बचत भी होगी और मृदा का सेहत भी ठीक ठाक होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसका फायदा ये है
1: जी। तो किसान भाइयों, आपने जाना जैव उर्वरक के बारे में, साथ ही अजोला कैसे फ़ायदा दिलाता है धान की खेती में, ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आप जैव उर्वरक जितना ज़्यादा हो सके आप उपयोग करें और अजोला भी बिल्कुल फ़ायदेमंद है आपकी खेती के लिए।
0: एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मेरी बात दिमाग में आ गई। हमने कहा था कि यदि आप जो स्पायरलम यूज करना चाहते हैं या पीएसबी यूज करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये यदि प्रयोग करना चाहे तो वो कैसे प्रयोग करें। तो उसमें देखिए सीधी सी बात है, ये जो स्पायरलम आप सॉइल में भी प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी में भी मिला सकते हैं, लेकिन उसमें यदि मिलाते हैं तो आपकी ज्यादा मात्रा उसमें डालनी पड़ती है। तो आपको सीधा करना क्या है कि आप ये जो मान लीजिए आपका कोई, क्योंकि उसमें भाई बिचड़ा बहुत वो करते हैं, बिहन लगाते हैं ना आप, तो उसमें जो है आप एक केजी मान लीजिए आपने लिया ये जो स्पायरलम या पीएसबी ही, और उसको आप डुबा दीजिए और डुबा करके उसके जड़ को डुबा रहने दीजिए 10-15 मिनट और 10-15 मिनट के बाद प्रयोग कीजिए। लेकिन यदि कोई किसान भाई पीएसबी प्रयोग करना चाह रहे हैं या जो स्पायरलम भी प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें सीक्वेंस ये होगा कि पहले आप पीएसबी से उपचारित करें, बाद में आप जो स्पायरलम से करें, ये चीज उसका तरीका होगा। और यदि आप बीजीए का प्रयोग करते हैं तो आपको 10 केजी के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीजीए का जो पपड़ी टाइप का वो आता है वह आपको प्रयोग करना पड़ता है। तो ये मैं इसकी भी मात्रा की बात थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता था
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है,
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियाँ लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें यह नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह की अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएँ लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं, तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी

महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है। और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लैशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखेगा। तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट

लेंगे और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएं, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम है हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहाँ पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग

0: काफी ज्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावना है, क्या चुनौतियां आती है, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
1: बेबी कॉर्न का काफी महत्व है, आज हम इस पे काफी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है, इसे सब्जी, सलाद, सूप इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं, और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं, तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
0: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है।
1: 1 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
0: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो।
1: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है और इसमें एक खास बात यह है

0: जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज्यादा होती है उसको भी हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियां हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीजोपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती, तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है और मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में NPK का जो रेशियो है 75:60:20 है प्रति हेक्टेयर की दर से NPK की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए, मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए, डिटैसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने के

0: व्यवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और वीपीकॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
0: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पे हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है BU सवार के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि
1: आप
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर लें और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं एनीमिया के बारे में एक विशेष भेंटवार्ता में। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर शालू गुप्ता और भेंट करता है सुजाता स्मार्ट से। तो आइए हम इस भेंटवार्ता को सुनते हैं और जानते हैं एनीमिया के बारे में विस्तार से। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
1: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना,

0: महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहें तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
1: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
0: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में, जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
1: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
0: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
0: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
1: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
0: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
1: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
0: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित

0: और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
0: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो पीएचसीज हो, सीएचसीज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो है दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जिसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
1: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
0: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है, और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब एक या दो घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
1: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
0: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो दो के लिए खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है, और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: मैं इसमें दो बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराए, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर छह महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन छह महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि

0: स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
1: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
0: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटे छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
0: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप को कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कोई दवा किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर एनीमिया हो, मॉडरेट एनीमिया हो, तो जरूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को? ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं

0: के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझिए ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर CSC PSC पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या ANMs हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
2: उम्मीद है दोस्तों कि आपने एनीमिया के बारे में और किस तरीके से एनीमिया से बचा जा सकता है इस बारे में आपको बहुत सी जानकारियां, उपयोगी जानकारियां मिली होगी। तो दोस्तों, सेहत सही लाभ कई के आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. किसान भाई बहनों अभी मौसम चल रहा है जब हमारे किसान भाई बहन धान की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें वो कर चुके हैं, लेकिन कई सारे किसान भाई बहन इस बात से परेशान रहते हैं कि पानी की समस्या है, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए. ऐसे में हमारे वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि हमें सीधी बुआई करनी चाहिए. सीधी बुआई क्या है, किन बातों का इस दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर SS आचार्य. सर हैं सस्य विज्ञान विभाग से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: थैंक यू.
0: सर सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सीधी बुआई जिसे कि DSR भी कहते हैं वो क्या है.
1: अगर सीधी बुआई के बारे में हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग जो धान लगाते थे, जो धान की खेती करते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले नर्सरी तैयार करते थे, फिर पौधे की रोपाई करते थे और खेत को कीचड़ युक्त करके उसके बाद रोपाई करते थे. इसमें क्या होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि धान की रोपाई, ठीक. और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, आज आप लोग देख रहे हैं कि बारिश नहीं है, बारिश की बहुत कमी है. अगर देखा जाएगा बिहार में 40-50% अभी तक बारिश हुई है. तो इसीलिए कम पानी अगर है तो आप फील्ड को कीचड़ कैसे कीजिएगा. तो कीचड़ करने के लिए तो आपको तो पानी चाहिए, आइदर आपके पास सिंचाई के साधन हो नहीं तो बारिश हो. तो ये दोनों जब नहीं है तो आप फील्ड में अगर धान लगाना चाहते हैं तो आपका एक नया टेक्नोलॉजी जो हुआ कि सीधी बुआई, उसको आप लोग कर सकते हैं. इसको अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, ये है पानी को बचाएगा, मजदूरी की जो लागत है उसको घटाएगा और फिर अच्छा उपज देने के लिए भी मदद कर सकता है, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं सीधी बुआई, कि मतलब बिना जो कि फील्ड प्रिपरेशन जैसे कि कीचड़ युक्त नहीं करके अगर डायरेक्टली हम ट्रैक्टर चला के, जब मानसून आने से पहले हम फील्ड में ट्रैक्टर चलाएंगे, जैसे गेहूं की बुआई जैसे करते हैं

0: सेम स्टाइल में हम लोग धान का बुआई करेंगे और उसमें क्या करेंगे कि मानसून आने से पहले, जब अभी तक भी मानसून ठीक से आया नहीं अभी तक, तो जब फील्ड में हल्का सा नमी हो या नमी भी ना हो, इसी समय में हम लोग फील्ड में जुताई करेंगे, दो तीन बार जुताई करेंगे। ऐसे जुताई करेंगे कि दो तीन बार के बाद, जैसे कि अगर जब हम धान का सीड वहाँ पर बुआई कर रहे हैं, तो सीड और जो मिट्टी, उसके साथ मिट्टी के साथ सीड पूरा एकदम मिल जाए, पूरा कंटेक्ट में आ जाए, और जिसके बाद जब बारिश होगा तब क्या होगा, उसमें से अंकुरण निकलेगा और उसमें से जो धान का पौधा निकलेगा उसको हम बोलेंगे सीधी बुआई।
1: तो सीधी बुआई के और क्या क्या फायदे होते हैं?
0: पहले हम लोग अगर देखेंगे सीधी बुआई, पहले मैं अभी बोल चुका हूं कि खेत को पहले ठीक से तैयार करना है। जब तैयार करना है उसमें पहला जो फायदा है कि पानी कम लगेगा। कम पानी मतलब अगर आप देखिएगा कि एक फील्ड को पडलिंग या जो कीचड़ युक्त करने के लिए 200 से 250 मिलीमीटर का जो पानी है उतना चाहिए, 25 सेंटीमीटर का पानी चाहिए। वो पानी अगर दो तीन दिन में बारिश होगा, जोर से ढेर से बारिश होगा, तब जाके हो सकता है, नहीं तो आपको उतना पानी देना पड़ेगा, तब जाके आप फील्ड को ट्रैक्टर रोटावेटर पानी भर के, उसके बाद ट्रैक्टर रोटावेटर चला के फील्ड को कीचड़ युक्त करेंगे, उसके बाद जाके रोपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको कुछ भी पानी का जरूरत ही नहीं है। सूखा में आप धान का बुआई कीजिएगा और वहाँ पर क्या होगा ना, आप जब सूखा में बुआई कर रहे हैं तो आप जब बारिश होगा, बारिश होने के बाद आपका धान का जो अंकुरण हो जाएगा, जिसके कारण आप बहुत पानी को बचा लिए। और एक चीज हुआ, और एक फायदा हुआ, जो कि धान में धान का रोपाई के लिए बहुत सारे लेबर लगते हैं। अगर देखा जाएगा एक एकड़ में 15 से 20 टो लेबर आपको लगाना पड़ेगा धान का रोपाई के लिए, प्लस 250 मिलीमीटर रेनफॉल का या इरिगेशन चाहिए, तो ये दोनों से बच जाएगा अगर आप सीधी बुआई किए तो।
1: तो सर सीधी बुआई कब करनी चाहिए किसान भाई बहन?
0: अगर सीधी बुआई का सही समय देखें तो मानसून आने का 7 से 10 दिन पहले। क्यों? क्योंकि अगर मानसून एक बार फुल फेज में आ गया, पानी भर जाएगा फील्ड में और सीधी बुआई नहीं हो पाएगा। इसलिए जब फील्ड सूखा है या फील्ड में आप जानते हैं कि 7 दिन के बाद मेरा बारिश होने वाला है, बारिश का तो फोरकास्टिंग हो जाता है, उसी समय आप फील्ड को तैयार करके बुआई कर दीजिए। अगर 2 दिन 3 दिन ऐसे फील्ड में सूखा रहा नो प्रॉब्लम, उसमें जब बारिश होगा उसके बाद वहाँ से वो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होके पौधा बड़ा होगा और वहाँ पर, इसीलिए सबसे बोला जाता है कि सबसे बेस्ट टाइम है 7 से 10 दिन पहले। तो जैसे कि बारिश होने के समय उसका जड़ मजबूत हो जाना चाहिए मिट्टी में, तब दैट इज द राइट टाइम।
1: जी सर, सर आप एक बार हमें विस्तार से बता दीजिए कि किस प्रकार से कैसे सीधी बुआई करनी चाहिए।
0: पहला है कि सीधी बुआई अगर देखेंगे, मैं जुताई के बारे में बोलूंगा। जुताई दो टाइप का है, एक है कन्वेंशनल जुताई, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि परंपरागत जुताई, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि फील्ड को गेहूं के टाइम में जैसे हम लोग खेत को तैयार करते हैं, उसी तरफ हम लोग धान का खेत को भी तैयार करेंगे। करने के बाद हम लोग इसको बढ़िया करके रोटावेटर चला के इसको, उसके बाद यहाँ पर हम लोग धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। और एक हुआ, अगर ये एक न्यू टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, जो कि शून्य जुताई या जीरो टिलेज। आपको पहले आपका फील्ड में तो घास या खरपतवार तो होगा ही, तो 10 से 15 दिन पहले आपको जो ग्लाइफोसेट है और पैराक्वाट है, ग्लाइफोसेट हो सकता है नहीं तो पैराक्वाट है, वहाँ पर अप्लाई कर देना है, वहाँ पर स्प्रे कर देना है। 15-20 दिन पहले अगर आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा तो आप पूरा फील्ड घास मुक्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप थोड़ा सा बारिश या थोड़ा सा जब बारिश होगा या बारिश नहीं भी होगा तो उसी समय आप डायरेक्टली हम लोग का जो सीड ड्रिल हम लोग बोलते हैं उसी में आप डायरेक्ट स्विंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जुताई का। इसके बाद अगर देखेंगे कि बिजाई का समय हम बोल दिए हैं 7 से 10 दिन पहले। इसके बाद हो गया कि अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे बुआई करें, तो हम लोगों का जो सीड है या बीज है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर नीचे गए।

0: गहराई में रहना चाहिए और उसके ऊपर एक मिट्टी थोड़ा अगर हम लोग दे देंगे तो वहाँ पर क्या होगा ना, वो जो जड़ है, जड़ अंदर में मजबूत रहेगा, चिड़िया भी खाएगा नहीं और आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। दूसरा चीज हुआ कि हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग बोलते हैं पंक्ति में शक्ति, मतलब कि अगर हम लोग लाइन सोइंग करेंगे तो लाइन में बुआई करेंगे तो वो और अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 20 सेंटीमीटर जो लाइन से लाइन या जो पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी में हम लोग अगर बुआई करेंगे, और जो अगर पौधा से पौधा देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर हम लोग ऐसे रोपाई के टाइम में हम लोग 15 सेंटीमीटर का जो स्पेसिंग लेते हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्पेसिंग अगर लेंगे तो वही हमारा सही रहेगा। इसके बाद देखेंगे कि बीज, किसी भी बीज हो, बीज को हम लोग उपचार कर लेना चाहिए। बीज को हम लोग बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट, बीज को शोधन कर लेना चाहिए, उपचार कर लेना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बेंडाजिम हो या थीराम हो, कैप्टन हो, इसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति एकड़ प्रति किलोग्राम बीज के साथ मिला के उसके बाद अगर बुआई करेंगे तो वहाँ पर रोग आने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि धान में बहुत तरह का रोग आते हैं। तो उसको अगर हम लोग बीज को शोधन करेंगे या बीज को उपचार करेंगे तो हमारा वहां पर रोग आने का चांसेस कम रहेगा।
1: सर, पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई बहनों को क्या उपाय करने चाहिए?
0: जो हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, मतलब हम लोगों का खाद, सीधी भाषा में बोलेंगे तो हम लोगों का खाद, खाद कब देना है, कितना देना है, उसके बारे में बोलेंगे तो शुरू में धान का जब बुआई करेंगे उसी समय हम लोग खाद देंगे नहीं, उसका 10 दिन या 10 से 15 दिन के बाद हम लोग खाद देंगे। तब क्या करेंगे कि हम लोगों का अगर देखा जाएगा तो एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, एक हेक्टर के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश, ठीक, 120 किलो नाइट्रोजन एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, इतना ही अगर हम लोग देंगे तो हम लोगों का प्रोडक्शन अच्छा होगा। और इसमें अगर देखेंगे पूरा फास्फोरस और पोटाश को हम लोग शुरू में, जो कि हम लोग बोलते हैं आधार खाद, बा जब हम लोग जो 10 से 14 दिन में बोला उसी समय हम लोग दे देंगे, थोड़ा जब उसका जड़ बन गया है उसी समय हम लोग उसको देंगे। और नाइट्रोजन को अगर देखेंगे बा नेत्रजन को अगर देखेंगे 120 किलो से 60 किलो नाइट्रोजन, मतलब कि 50% को हम लोग 10 से 14 दिन के अंदर में देंगे, बाकी जो 50% बचा उसको अगेन 2 भाग करेंगे, एक करेंगे जब टीलरिंग आ रहा है, जब उसका जो कल्ले निकल रहे हैं और जो बाली जब निकल रहा है उसी समय, ये 2 टाइम उसका सबसे माने पोषक तत्व के लिए संकट समय है, उसी समय अगर हम उसको आप देंगे खाद को छिड़काव करेंगे तो हमारा उपज ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए किसान भाइयों ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस पोटाश को आधार खाद और 50% नाइट्रोजन, मतलब कि 60 kg नाइट्रोजन आपका आधार खाद, और जो बाकी 50% या 60 किलो बचा उसको 2 भाग में भाग करके आधा देंगे कल्ले निकलने के समय और आधा देंगे बाली निकलने के समय, ऐसे अगर देंगे तो हमारा अच्छा उपज हो सकता है।
1: और अगर खरपतवार नियंत्रित करने की बात करें तो वो किस प्रकार कर सकते हैं?
0: ये एक फसल है, इसमें खरपतवार इतना होगा, बहुत सारे खरपतवार होंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग सीधी बुआई किए हैं, जैसे कि धान को मौका मिला उसको जर्मिनेशन के लिए, खरपतवार को भी मौका मिला उसको जर्मिनेशन के लिए। रोपाई का एक प्लस पॉइंट है कि रोपाई के समय जब हम कीचड़ कर देते हैं पूरा फील्ड को, तब क्या होता है खरपतवार ऐसे ही नियंत्रण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण इसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोगों को 1 से 2 बार हाथ से निकाल देना है, लेबर लगा के निकाल देना है, नहीं तो मैं कुछ दवाई का बोल रहा हूँ उसको अगर आप लोग दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वो जो दवाई है बिस्पेरीबैक सोडियम, याद रखिएगा बिस्पेरीबैक सोडियम, जो कि बाजार में बहुत सारे नाम में आता है, एक नाम है नोमिनी गोल्ड। सो बिस्पेरीबैक सोडियम को अगर देखा जाएगा तो एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ 250 ml एक हेक्टर के लिए 250 ml, और याद रखिएगा 500 लीटर पानी चाहिए, एक हेक्टर के लिए 500 से 600 लीटर तक पानी चाहिए। उसमें अगर 250

0: ml अगर हम देंगे तो छिड़काव करेंगे। कब छिड़काव करेंगे? 20 से 25 दिन समय, जिस समय जो खरपतवार है उसका 2 से 3 लीफ स्टेज है, जो पत्ता निकला है, उसी समय हम अगर अप्लाई करेंगे तो खरपतवार नियंत्रण होगा। और कुछ दवाई बोल रहा हूं, एक हुआ साइहैलोपॉप ब्यूटाइल प्लस पेनक्सुलाम, इसको 1000 मिलीलीटर अगर एक एकड़ के लिए 1000 मिलीलीटर और एक हेक्टर के लिए देखिएगा तो 2.5 लीटर अगर हम अप्लाई करेंगे वही 20 से 25 दिन में तो हमारा खरपतवार भी नियंत्रण हो सकता है। और है अगर चौड़े पत्ती वाले ज़्यादा खरपतवार है तो 2,4-D 1 लीटर पानी में 3 ml करके अगर हम स्प्रे करेंगे तो पूरा चौड़े पत्ती वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी सकरे पत्ती वाले मरेंगे नहीं। इसीलिए जहां पर चौड़े पत्ती वाले ज्यादा हैं वहां पर 2,4-D आप जो कि सबसे लो कॉस्ट हर्बिसाइड है उसको दे सकते हैं। और कुछ दवाई बोल रहा हूं, जैसे कि फेनोक्साप्रॉप प्लस इथॉक्सीसल्फुरन, मेटसल्फुरन मिथाइल प्लस क्लोरीमुरन इथाइल, ये सब दवाई भी दिया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है।
1: जी सर, और जल प्रबंधन की बात करें तो वो कैसे किया जा सकता
0: है? जल प्रबंधन देखिए, ये है धान की सीधी बुआई अगर देखेंगे, शुरू में तो पानी बारिश का पानी में ही जब हम बुआई कर दिए, बुआई के बाद 7-8 दिन के बाद जब बारिश होगा उसी पानी में हमारा काम चलेगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हुआ तो आपको ये जो कलने निकलने के समय, जिस समय बोला कि फर्टिलाइजर देने का, जो खाद देने का समय था वही समय एक है, और उसके बाद हर 7-8 दिन अंतर अंतर में पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा मैंने बारिश नहीं हुआ तब मतलब कि आपको पानी का थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा हम लोग पानी को ऐसे ही करेंगे कि 4 से 5 सेंटीमीटर का पानी हर टाइम जैसे फील्ड में बने रहे, तब क्या होगा आपका घास कम निकलेगा, इसीलिए उसको ध्यान में रख के अगर हम लोग सिंचाई करेंगे तो हमारा अच्छा उपज होगा। और एक चीज बोल रहा हूँ कि रोपाई में जो 250 mm हम बोले थे कि 250 mm पानी लगता है कि कीचड़ करने के लिए, वो हर लेकिन यहाँ पर पूरा बच गया, इसीलिए यहाँ पर रोपाई के बाद जो कि ट्रांसप्लांटेड राइस में रोपाई के बाद जितना पानी लगेगा यहाँ पर भी उतना पानी लगेगा, लेकिन रोपाई और रोपाई से पहले जो पानी वह यहाँ पर बच जाएगा।
1: और अगर हम DSR तकनीक में कुछ नवीनतम तकनीकों के बारे में बात करें तो किन तकनीकों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई बहन को करना चाहिए?
0: हाँ, देखा जाएगा कि कुछ कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम तो कुछ टेक्नोलॉजी जैसे बोले कि ये सीधी बुआई एक ही न्यू टेक्नोलॉजी है, और एक है सीधी बुआई के साथ हम लोग अगर फील्ड में अगर खेत को हम लोग थोड़ा ज़्यादा उर्वर करना चाहते हैं तो, और जहाँ की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको अगर कम करना चाहते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं हरी खाद या भूरी खाद। जैसे कि हरी खाद मतलब ग्रीन मैन्योरिंग, धैंचा को अगर हम धान लगाने से पहले धैंचा को दो टाइप का किया जा सकता है, एक हुआ 45 दिन पहले हम धैंचा को फील्ड में छिड़काव कर देंगे, उसके बाद क्या हुआ कभी कभी कभी थोड़ा पानी मानसून पानी ये वो करके वहाँ पर वो अच्छा सा उसका उसके लिए भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और वो क्या होगा जब 45 दिन का हो जाएगा उसी समय हम उसी फील्ड में उसी धैंचा को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, मतलब कि जुताई कर देंगे, और उसमें से हमको एक अच्छा खासा नाइट्रोजन मिल सकता है। नाइट्रोजन जो कि धान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अगर हम हरी खाद के हिसाब में हम हरी खाद धैंचा को का हरी खाद वहाँ पर उगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन को भी बचा सकते हैं। और एक हुआ भूरी खाद जिसको बोलते हैं ब्राउन मैनोरिंग, वो क्या हुआ कि धान जब हम लोग बुआई कर रहे हैं उसी समय धान के साथ भी और एक जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग धैंचा को ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, मतलब धान का बुआई भी हुआ धैंचा का ब्रॉडकास्टिंग भी हुआ, उसके बाद क्या होगा तो धान वहां पर निकला और धैंचा भी निकला, तो 25 दिन के बाद, याद रखिएगा 25 दिन से ज्यादा नहीं रखिएगा यहां।

0: पर 25 दिन के बाद हम लोग वहां पर 2,4-D स्प्रे कर देंगे। 2,4-D जो खरपतवार नाशी है उसको अगर स्प्रे करेंगे तो वहां पर क्या होगा, पूरा जमीन से का जो धैंचा है वो धैंचा सब मर जाएगा। मर जाएगा मतलब उसका जड़ में जो नाइट्रोजन है वो फील्ड में, उसी फील्ड में वो नाइट्रोजन आपको मिल गया। इसलिए वहां पर भी हम लोग 20 से 25 किलो नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा हम लोगों को हरी खाद या भूरी खाद के हिसाब में हम लोगों को मिल जाएगा। यही एक टेक्नोलॉजी है। और एक है कि अगर पोषक तत्व में जब हम बोले थे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसके साथ और एक पोषक तत्व जो कि हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व, वो है जो जिंक। जिंक मतलब कि जस्ता जो बोलते हैं, उसको अगर हम 20 से 25 किलो पर हेक्टर में अगर हम देंगे तो धान के लिए वो बहुत जरूरी है और धान का प्रोडक्शन बढ़ेगा अगर हम जिंक अप्लाई करेंगे तो। क्योंकि जिंक अगर नहीं रहेगा फील्ड में तो जिंक के लिए कुछ एक रोग होता है जिसको हम लोग खैरा रोग बोलते हैं, तो वह अब क्या करता है, पौधा को कमजोर कर देता है, पौधा बढ़ नहीं पाता है और उपज घट जाता है।
1: जी सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को अगर कुछ बातें कहना चाहें तो क्या कहेंगे?
0: किसान भाइयों, अभी अगर देखेंगे बारिश जैसे कम हुआ है तो इसी समय आप लोग अगर धान का बुआई चाहते हैं तो आप सीधी बुआई कर किए कीजिए। तो कैसे, जैसे कि गेहूं को जैसे बुआई करने के लिए जैसे ही फील्ड को प्रिपेयर कर रहे थे उसी टाइप का आपको खेत को बनाना है। उसके बाद लाइन स्विंग करके 20 सेंटीमीटर में लाइन स्विंग करके अगर आप धान का बुआई कीजिएगा तो भी आपका किया जा सकता है।
1: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिस प्रकार से सर ने बताया कि आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं और जिन तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में सर ने बताया, उन सारी बातों का आप ध्यान रखें और धान की सीधी बुआई करके भी आप अच्छी फसल उगा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो उर्वरकों का महत्व बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उर्वरक, लेकिन बाज़ार में बहुत सारे उर्वरक मौजूद हैं और उनमें से एक है जल विलय उर्वरक। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, आज इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रधान। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉयल साइंस डिपार्टमेंट से। सर, आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जल विलय उर्वरक क्या है?
2: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जल विलय उर्वरक या फिर जिनको हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादातर उस तरह के उर्वरक होते हैं जो पानी में पूर्णतः घुलनशील होते हैं और जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व त्वरित एवं संतुलित रूप में उपलब्ध कराते हैं। और जो आधुनिक कृषि है, विशेषकर संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई या फिर फर्टिगेशन जैसी प्रणालियों में इनका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।
1: सर, जैसे कि आपने बताया कि इसका उपयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसी कुछ विशेषताएं ज़रूर होंगी, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
2: जल विलय उर्वरकों की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले तो आता है कि ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं। इनमें ऐसे कोई पदार्थ नहीं होते हैं जो अघुलनशील होकर रह जाएं। शीघ्र अवशोषण या फिर तुरंत मिट्टी में जाने के बाद या फिर पौधों पर छिड़काव करने के बाद वो तुरंत उनमें घुल जाते हैं।
1: अच्छा।
2: सटीक मात्रा में इनका उपयोग करना ज़्यादा आसान होता है पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले। और ये अपने तरीके से मैक्रो, माइक्रो या फिर जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर प्राथमिक पोषक तत्व, उनकी उपलब्धता को बढ़ाता है।

0: इरिगेशन या फिर फोलियर स्प्रे जिसको हम पौधों में छिड़काव कहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी तरीके से उपयुक्त हैं।
1: सर, इनका महत्व क्या है कृषि में?
0: इनके कई सारे महत्व हैं, मैं कुछ ज़रूरी महत्व आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ हमारे किसान भाई बहनों के लिए। जो सबसे पहला इसका महत्व है वो है इसका त्वरित पोषण उपलब्धता। जल विलय उर्वरक पौधों की जड़ों या पत्तियों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो जाते हैं, जिससे फसल की प्रारंभिक वृद्धि, पुष्पन एवं फलन में तेजी आती है। उसके बाद इनकी उपयोगिता फर्टिगेशन जैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उर्वरकों की बचत भी होती है, श्रम की लागत में भी कमी आती है और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद पोषक तत्वों की जो उपयोग दक्षता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है, लीचिंग को कम करता है, वाष्पीकरण जो पोषक तत्व होते हैं जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं उसको भी रोकता है और सटीक समय पर पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। ये ज़्यादातर उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उन पे ज़्यादातर कारगर साबित होता है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, फलों की आकार और रंग को भी बढ़ाता है और अधिक उत्पादकता के साथ साथ बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी लाने की सक्षमता रखता है।
1: यानी कि मतलब ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसकी वजह से ये पौधों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है।
0: जी
1: सर, आप ये बताइए कि ये पारंपरिक उर्वरक से कैसे अलग है?
0: देखिए, हम जो पारंपरिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर बाजार में उपलब्ध हैं वो है यूरिया है, DAP है, पोटाश है, जिसको हमारे किसान भाई बहन यूज़ करते हैं। पारंपरिक उर्वरक जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका उपयोग फर्टिगेशन, संरक्षित खेती या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसी चीज़ों पर पौधों में छिड़काव करने के लिए उनका उपयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक जो उर्वरक होते हैं उनमें कुछ और कण भी होते हैं जिनका इसकी वजह से उसकी उपयोगिता में कमी आती है। तो जल विलय उर्वरक उस मुकाबले में उनसे बेहतर हैं, क्योंकि पूर्ण तरह से घुलनशील होते हैं और पौधों को अच्छी तरीके से हम उसको छिड़काव भी कर सकते हैं, फर्टिगेशन में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पोषक तत्वों की जो दक्षता है, उपयोग दक्षता है, वो पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पारंपरिक उर्वरकों में हम 20 से 25 या फिर 30% तक उपयोग दक्षता देखने को मिलता है हमें, लेकिन जब हम जल विलय उर्वरकों की बात करें वहाँ पे हम 80-90% तक उपयोग दक्षता बढ़ा सकते हैं पोषक तत्वों की, और लागत में भी उसके मुकाबले, पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले इसमें लागत भी कम है। भले ही इसकी जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है उससे थोड़ा अधिक है, लेकिन इसकी उपयोगिता भी कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हम इसको ले सकते हैं, अपने कृषि प्रणाली में इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: सर, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से उर्वरक, जल विलय उर्वरक बाजार में मौजूद है, इसके कुछ उदाहरण दे दीजिए।
0: कुछ प्राथमिक पोषक तत्वों के भी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के भी हैं, जैसे कि यूरिया फॉस्फेट एक उर्वरक है, जिससे हम 17% नाइट्रोजन, 44% तक फॉस्फरस का पौधों तक पहुँचा सकते हैं फॉस्फरस। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं जिसमें 16% तक नाइट्रोजन होते हैं और 19% तक कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं ज़्यादातर फल की फसलों में हमारे लिए बहुत उपयोगिता दिखाता है, उसमें 13% नाइट्रोजन और 46% पोटाश हैं। उसी प्रकार मोनोअमोनियम फॉस्फेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे और उर्वरक हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं।
1: सर, जब भी हम किसी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ सावधानियां अपनाते हैं। जब हम जल विलय उर्वरक की बात कर रहे हैं तो इनमें भी कुछ विशेष सावधानियां अपनानी पड़ती होगी।
0: जी, कुछ प्रमुख ऐसी सावधानियां हैं, जैसे कि हमें कभी भी किसी भी उर्वरक को प्रयोग करने से पहले, वो चाहे पारंपरिक उर्वरक हों या जल विलय उर्वरक हों, सबसे पहले हम कहते हैं अपने किसान भाइयों बहनों से कि मृदा का परीक्षण अवश्य करें। मृदा परीक्षण के आधार पर ही इनका उपयोग करें, अनुशंसित मात्रा में ही इसका उपयोग करें, और अत्यधिक सांद्रता से पत्तियां जलने की संभावना होती है, इसलिए उसका सांद्रता या फिर जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं उसको कम या फिर अनुशंसित मात्रा में ही उसका प्रयोग करें। स्वच्छ जल का प्रयोग करें सिंचाई के लिए, जिसमें लवण की मात्रा कम हो, जितनी कम होगी उतना अच्छी तरीके से हम सिंचाई का जल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलग अलग उर्वरकों को मिला के अगर हम कुछ तैयार कर रहे हैं तो उनका आपस में संगतता या फिर संगतता, जिसको हम कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं, कि आपस में वो एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना बना ले, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम

0: फर्टिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसे चीज़ों के लिए उसका उपयोग करें।
1: मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो कि पारंपरिक उर्वरक के समय भी हम ध्यान रखते हैं वो ज़रूरी है। सर और कुछ?
0: जैसे कि हम कहते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य है अधिक उत्पादन पाना, बेहतर गुणवत्ता और पोषक तत्वों की उच्च दक्षता का अगर हमारा लक्ष्य है तो जल विलय उर्वरक अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं, जबकि पारंपरिक उर्वरक व्यापक क्षेत्रीय खेती में जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं वहाँ पर उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है।
1: सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पारंपरिक उर्वरक से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है क्योंकि पौधों में इसका जो क्योंकि पौधे इसे बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं
0: जी, और इसमें दक्षता भी ज़्यादा होती है पारंपरिक उर्वरक के मुकाबले।
1: जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी,
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों आपको बता दें अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूले। ध्यान रखें कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित

निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो, और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए खास कार्यक्रम रेडियो रिविजन में, जो परीक्षा के पूर्व संध्या पर आपके लिए विशेष तौर पर प्रसारित किया जाता है। दोस्तों, कल आपके कोर्स AAG 1-1 का एग्जाम है और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर ज्योति माला साहू हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिविजन के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैम, आप रेडियो रिविजन शुरू कीजिए।
1: ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ हाउसिंग प्रिंसिपल स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड पोल्ट्री। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हाउसिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ

housing, and how it is, it should be classified for cattle, pig, and sheep, goat, and poultry. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैटल का, तो इसमें लूज हाउसिंग एंड कन्वेंशनल हाउसिंग आएगा. तो कन्वेंशनल में दो टाइप का होता है, टेल टू टेल सिस्टम एंड हेड टू हेड सिस्टम. और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. कौन सा बेस्ट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा बेस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट. तो स्पेस, अच्छा कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है. लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर ये एग्ज़ाम में आया हुआ था. कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में आ जाएगा, फ्लोर कैसा होना चाहिए, वॉल कैसा होना चाहिए, रूफ, मेंजर, वाटर ट्रफ, उसका विथ, हाइट एंड डेप्थ कितना होना चाहिए, गटर कैसा होना चाहिए, फीड एले कैसे होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ मैं. और नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट. तो स्पेस रिक्वायरमेंट में BIS के अकॉर्डिंग, जो बहुत इजी है याद करने में, मीटर स्क्वायर में याद करो आप और उसको फिर कन्वर्ट कर लेना फिट में, अगर फिट में एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो. तो कैटल बफेलो के लिए ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हीफर में कितना होगा, काफ में कितना होगा, है ना, काउ में कितना होगा, कवर्ड एरिया कितना होगा, ओपन एरिया कितना होगा. तो मैंने आपको ऑलरेडी टेबल दे दिया है इसके लिए, तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में. फॉर एग्ज़ाम्पल काफ में कितना मैक्सिमम एनिमल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल कितना होना चाहिए फॉर काफ, तो इट इज़ 30 एंड फॉर काउ इट इज़ 50. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड पोल्ट्री में अगर स्पेस रिक्वायरमेंट पूछा जाता है तो डीप लेटर का स्पेस रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एज वाइज होता है इसका रिक्वायरमेंट, है ना, 0 to 8 week एंड 9 to 12 week, 13 to 18 एंड मोर देन 18 अबव. तो लाइट बर्ड के लिए अलग होता है एंड हैवी बर्ड्स के लिए अलग होता है. ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर में है जो मैंने दिया है वो. ओके, तो स्पेस रिक्वायरमेंट में ये इम्पोर्टेंट है, एंड बाकी तो आपको पढ़ना ही है और दूसरी चीज़ें भी. ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए हाउस का, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. नाउ मैनेजमेंट ऑफ काफ्स, काफ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे. एक्चुअली काफ का मैनेजमेंट बर्थ से ही, उसके बर्थ के पहले से ही, प्रेगनेंसी के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है ना. हमको प्रेगनेंट एनिमल का बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा. अब जैसे ही बर्थ होता है, जैसे ही काविंग होती है, उसके बाद काफ को एक साफ प्लेस पे, क्लीन प्लेस पे रखा जाता है. जो भी फ्लूड उस पर लगा हुआ होता है वो अच्छे से क्लीन किया जाता है, वाइप किया जाता है सोक टॉवल से, जो कि क्लीन होना चाहिए, और उसको मदर के सामने रखा जाता है. तो क्या करती है, उसको पूरी तरह से लिक कर देती है. तो लिकिंग से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और वो साफ भी हो जाता है अच्छे से. तीसरा है रेस्पायरेशन, उसके रेस्पायरेटरी सिस्टम को एक्टिव करना होता है हमें जैसे ही बर्थ होता है उसका. तो रेस्पायरेशन भी उससे इजी हो जाता है. अगर रेस्पायरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उस यहाँ पर वेटनरी असिस्टेंट की नीड होगी. ओके, उसके बाद कोलेस्ट्रम फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि 15 मिनट टू हाफ एन, मतलब विद इन हाफ आवर आपको कोलेस्ट्रॉम फीडिंग करानी ही है. और इसका डोज कितना होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है. तो 1/10 ऑफ देयर बॉडी वेट, अगर बॉडी वेट 20 kg है तो कोलेस्ट्रॉम कितना देंगे, 2 kg. हाँ, और 2 kg भी फ्रिक्वेंटली देना है, मीन्स आप डिवाइड कर लो उसको कि सुबह कितना दोगे, फिर 2 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, इस तरह से देना है उसको. ये पर डे का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 1/10 ऑफ बॉडी वेट. कोलेस्ट्रॉम क्या है, कोलेस्ट्रॉम इज अ फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम. ओके, नेक्स्ट काफ का डिसीज मैनेजमेंट करना है. इसके बाद नेवल इल को ध्यान में रखना है. हाँ, अच्छा, उसका जो नेवल कॉर्ड होता है, जैसे ही वो बर्थ, जैसे ही काविंग हुई तो नेवल कॉर्ड होता है उसको कटिंग करनी होती है. तो अप्रोक्सीमेटली 4 inch, है ना, जो बॉडी से 4 inch में आप उसको कट करेंगे, उसके बाद
like

पहले लाइगेट करना है उसको, है ना। 4 इंच में आप लाइगेट करेंगे, लाइगेट करने का मतलब उसको बांधना है अच्छे से ताकि ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद उसके 1 सेंटीमीटर में उसको कट करना है। तो ये होता है नेवल, नेवल कॉर्ड की कटिंग, है ना। और यहाँ पर उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक लगा देना है, टिंचर आयोडीन, बीटाडीन, कुछ भी लगा देना उसमें एंटीबायोटिक।

में दिया हुआ है। हीफर, हीफर का मैनेजमेंट ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ अलग नहीं करते हैं इसमें। हीफर क्या होता है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, हीफर क्या होता है, मोर देन 6 मंथ एंड एबव देन एबव 6 मंथ और 1 ईयर दैट नॉट हैड काउंट, फीमेल एडल्ट फीमेल इज कॉल्ड हीफर। ना मिल्च एनिमल, मिल्च एनिमल में सबसे इम्पॉर्टेंट है फीडिंग, तो फीडिंग का थंब रूल मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ है, ये थंब रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें भी प्रोडक्टिव एनिमल का थंब रूल जिसमें मैंने बताया हुआ है कि 1 kg कॉन्सेंट्रेट देना है पर 2.5 kg मिल्क प्रोडक्शन इन केस ऑफ जेबू कैटल एंड 1 kg कॉन्सेंट्रेट पर 2 kg मिल्क इन केस ऑफ क्रॉस ब्रीड और बफेलो। तो ये याद रखना है। और दूसरा, मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, और दूसरा है ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो 2 to 2.5% ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ कैटल एंड 2.5 to 3% रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ क्रॉस ब्रीड एंड बफेलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड चिकन में अच्छा मिल्च एनिमल का भी मैनेजमेंट देख रहे थे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ शीप गोट, तो शीप एंड गोट में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस टेबल मैंने दे दिया, ये याद रखना है आपको। गोट ब्राउजर होता है एंड शीप ग्रेजर होता है। स्वाइन के मैनेजमेंट में पिगलेट एनीमिया ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, और ये क्यों होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से पिगलेट्स में होता है। और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम उसको एक जो भी हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कॉन्क्रीट ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक साइड उसको सॉइल पूरा जो फ्लोर है वो कॉन्क्रीट का नहीं होना चाहिए, सॉइल भी हमको वो प्रोवाइड करना है। दूसरा फेरस सल्फेट का या तो हम उसमें पेंट कर देंगे मदर की अडर में, और आयरन का इंजेक्शन देंगे, तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन हैचिंग ब्रूडिंग मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर एंड लेयर। तो फर्स्ट आप इसमें तो एग का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए अच्छे से, और मैनेजमेंट ऑफ चिक है ना, ब्रूडिंग का मैनेजमेंट, ब्रूडिंग मैनेजमेंट करके पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। तो ब्रूडिंग क्या है, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ चिक्स इज कॉल्ड ब्रूडिंग, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं लोग इसमें, तो ब्रूडिंग इसको कहते हैं ना, इंक्यूबेशन अलग है। तो पहले हम चिक का मैनेजमेंट देखते हैं, इसमें ब्रूडिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि चिक, सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया और बिल्डिंग हमने सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर चिक को लाना है हमें, तो वहाँ पर पहले फ्यूमिगेशन करेंगे है ना, बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, जितने भी पैथोजेंस हैं वो सबको रिमूव करने के लिए हम वहाँ पर फ्यूमिगेशन करेंगे। ओके, उसके बाद उसके 10 डेज बाद हम चिक को लाएंगे, और चिक को लाने के बाद हमें उसको एक पर्टिकुलर, क्योंकि चिक है उसमें फेदर्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, इसलिए उसको वार्म्थ चाहिए होता है फेदर्स के डेवलपमेंट के लिए, आगे डेवलपमेंट के लिए है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको वार्म्थ प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, हीटिंग सोर्स होगा बल्ब, जनरली हम बल्ब यूज़ करते हैं इसमें है ना, तो बल्ब उसमें प्रोवाइड करेंगे, और ऊपर उसमें रिफ्लेक्टर लगा होगा। रिफ्लेक्टर से क्या होता है कि पूरा जो लाइट होता है वो जो एरिया होता है उनका जहाँ पे चिक रखा होता है उसमें अच्छी तरह से फैल जाता है, और तो हीट अच्छे से प्रोवाइड होता है सारे एरिया में है ना। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम टेम्परेचर कितना देंगे, कितना टेम्परेचर हम इसमें रखें है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रूडर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 90 to 95 degrees Fahrenheit फॉर द फर्स्ट वीक है ना, अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 90 to 95 degrees Fahrenheit इन फर्स्ट वीक। तो हम रखते कितने दिन है इसको, ऑलमोस्ट 5 to 6 weeks रखते हैं, उसके बाद उसको सेल कर दिया जाता है अगर ब्रॉयलर हो तो ठीक है। तो फर्स्ट वीक में हम इसको, इसका टेम्परेचर होगा 90 to 95 degrees Fahrenheit, और डिग्री सेल्सियस में रखे तो 35 degrees Celsius। और हर सप्ताह इसके टेम्परेचर को कम करते जाना है ना, तो कितना कम करते जाएंगे, अगर फ़ारेनहाइट में है तो 5 degrees Fahrenheit हर सप्ताह कम करते जाना है, और अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 3 degrees Celsius पर वीक उसको कम करते जाना है।

है ना। तो लास्ट वीक, लास्ट 6th वीक कितना कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। और वैसे वही फ़ारेनहाइट में देखे तो 6th वीक में हो जाएगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये नोट्स में मैंने दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सब पूछा जाता है कि हर सप्ताह कितना फ़ारेनहाइट कम करना है हमको, है ना, या कितना डिग्री सेल्सियस कम करना है हमको। ब्रूडिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 92-95 डिग्री फ़ारेनहाइट। लाइट का मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें 24 आवर लाइट चाहिए इनको अगर चिक है तो, है ना। मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर में सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, है ना। रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग हम करते हैं इसमें, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यूनिफॉर्म ग्रोथ चाहिए। और रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग कैसे किया जाता है, डीबिगिंग करके। एक तो ये है कि फीड का क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, लेकिन डीबिगिंग इसमें किया जाता है। डीबिगिंग में पर्टिकुलर जो बर्ड्स है उसको सेलेक्ट किया जाता है जो कि ज़्यादा ओवर फीडिंग, ओवर ईटिंग कर रही है, तो यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होगा। तो उसमें क्या करते हैं, हम डीबिग कर देते हैं। डीबिगिंग से क्या होगा, तो फीड वो कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा, तो इस तरह से यूनिफॉर्म ग्रोथ हो जाएगा उसका, जितने बर्ड्स एक फ्लॉक में रखे हुए हैं उनका। ओके, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर, और जो बाकी जो नोट्स में दिया है वो तो पढ़ना ही है। लाइट कितना चाहिए इनको, तो 12 और लाइट चाहिए। देखो लाइट का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चिक को कितना लाइट का रिक्वायरमेंट चाहिए, ग्रोअर को कितना होना चाहिए, एंड लेयर को कितना होना चाहिए। तो लेयर को 16 आवर होना चाहिए, और लेयर का ज़्यादातर पूछा जाता है, तो लेयर के मैनेजमेंट में ये इम्पोर्टेंट है। और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए लेयर में, क्योंकि लेयर में ही कैल्शियम ज़्यादा दिया जाता है ना, 3%। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, हम सिलेक्शन कैसे करेंगे लेयर का, है ना। देखो सिलेक्शन एंड कलिंग दो टर्मिनोलॉजी होती है। सिलेक्शन कलिंग, कलिंग भी उसी बेसिस पे करेंगे जिस बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे। कलिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव एनिमल्स और बर्ड्स, है ना, इनके सब बर्ड्स, इट इज़ बर्ड्स। तो जो क्राइटेरिया हम सिलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही क्राइटेरिया हम कलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एब्डोमेन कैसा होना चाहिए, जो गुड लेयर होता है, गुड लेयर की क्या क्वालिटी होती है, बैड लेयर की या पुअर लेयर की क्या क्या क्वालिटी होती है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेंट कैसा होता है गुड लेयर में, लार्ज एंड मॉइस्ट, पुअर लेयर में स्मॉल, ड्राई वेंट होता है। उसके कॉम्ब कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, फुल होते हैं, रेड होते हैं, पुअर लेयर में लॉन्ग थिन और रेड भी नहीं होते हैं पूरी तरह से। ओके, तो ये पूछा जाता है बैक कैसे होना चाहिए, ब्रॉड और स्ट्रेट होता है गुड लेयर में, एंड पुअर लेयर में नैरो होता है। मोल्टिंग, मोल्टिंग का मतलब होता है कि वो जब अपना फेदर झड़ाना चालू कर देती है ना, तो इसमें एक टाइम ऐसा आता है लेयर में कि वो अपना सारे फेदर्स झड़ाना चालू कर देती है, उसके बाद वापस उसमें फेदर्स आते हैं, ठीक है। तो मोल्टिंग का मतलब यही होता है। तो गुड लेयर में मोल्टिंग कैसा होता है, लेट से होगा और जल्दी हो जाएगा, है ना। वही पुअर लेयर में बहुत जल्दी झड़ जाएगा और बहुत धीरे धीरे झड़ेगा, ठीक है, दैट मीन्स अर्ली एंड स्लो। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी ब्रीड्स तो है ही इम्पॉर्टेंट, और उसका क्लासिफिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डीप लिटर सिस्टम का मैनेजमेंट, एंड मीन्स उसका हाउसिंग का कितने टाइप के होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसको, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप हाउसिंग का मैनेजमेंट आता है, तो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आपको कितना पता है ना। एंड लाइट कितना होना चाहिए गुड लेयर में, तो 16 आवर लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। कैल्शियम होना चाहिए 3%। तो ये तो हो गया लेयर का मैनेजमेंट। एंड नाउ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर का अलग दिया हुआ है एंड ब्रॉयलर का अलग दिया हुआ है। तो फर्स्ट डे जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वो मरिक डिसीज़ का होता है, जो 0 डे में यूज़ किया जाता है। तो HVT स्ट्रेन यूज़ किया जाता है इसमें। HVT का मतलब होता है हर्पीस वायरस ऑफ टर्की स्ट्रेन। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 0 डे में कौन सा वैक्सीनेशन पोल्ट्री को लगाया जाता है, तो कौन सा डिसीज़ के लिए लगाया जाता है, मरक डिसीज़ के लिए। तो और वैक्सीनेशन का पूरा प्रॉपर शेड्यूल तो याद करना ही है आपको। नेक्स्ट है
ये एग्जॉटिक ब्रीड्स मैंने ऑलरेडी

बातों को बता दिया है क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री, तो क्या क्या ये ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रोवाइड किया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ज़्यादा कुछ उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट बताने लायक है नहीं, बस इसमें ब्रीडिंग है कि आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है, इन ब्रीडिंग किया जाता है, तो वो ब्रीडिंग का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लेना, क्योंकि ये उसमें पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता दिया है आपको। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ, तो इसमें रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है उसमें रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट इसका डिफरेंस, और ये डिफरेंस पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो रफेज किसको कहते हैं, फीड स्टफ दैट हैज़ मोर देन 18% क्रूड फाइबर एंड लेस देन 60% टेरियन, है ना, और इसका उल्टा हो गया कॉन्सेंट्रेट। तो ये जो ट्रिक है वो याद रखना है, उसी के बेसिस पे हम रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट को क्लासीफाई करते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है इसमें, तो कितने अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं, और ये ऑलरेडी मैंने नोट्स में दे दिया है। ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है इस टॉपिक से। नाउ नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन, तो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजेस, तो किसकी डेफिशिएंसी से, किस मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रेजी चिक डिजीज है, मोस्टली पोल्ट्री में होता है क्रेजी चिक डिजीज, है ना, तो ये होता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, या सेलेनियम, है ना, तो विटामिन ई एंड सेलेनियम ये दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है दोनों का। तो विटामिन ई या सेलेनियम अगर MCQ में दिया हुआ है ऑप्शन में आपको दोनों, तो विटामिन ई में लगाना है इसमें, ओके। नाउ नेक्स्ट है विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से कर्ल टू पैरालिसिस होता है, तो ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया हुआ है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, टॉक्सिसिटी से कौन सा डिजीज होता है ना, मिनरल की टॉक्सिसिटी से, तो जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर पढ़ के चाहिए। पैराकेरोटोसिस, है ना, जिंक की डेफिशिएंसी से पिग में पैराकेरोटोसिस डिजीज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फीड इंग्रेडिएंट्स फॉर रशियन फॉर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, तो जो क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे, जो आप फीड स्टेप का क्लासिफिकेशन किया है रफ एज एंड कॉन्सेंट्रेट, उसमें जो भी आएगा वो यही आएगा, इसमें फीड इंग्रेडिएंट में भी सेम आएगा ना। राशन क्या है, है ना, तो 24 आवर में जो भी फीड हम एनिमल को प्रोवाइड करते हैं उसको राशन कहते हैं। तो डेफिनेशन सबका याद रखिएगा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, तो थंब रूल इसमें याद रखना है, जेस्टेशन पीरियड के लिए हम कौन सा राशन देंगे, लैक्टेटिंग पीरियड के लिए हम कैसा राशन देंगे, एंड मेंटेनेंस के लिए कैसा राशन देंगे, वो पूरा टेबल जो मैंने दिया है वो याद रखना है आपको। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डिजीजेस, ओके, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और डिसीज़ को भी क्लासिफाई किया गया है, है ना, बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, प्रोटोजोअल डिसीज़, मेटाबॉलिक डिसीजेस, तो एटलीस्ट 4-5 एग्जांपल्स आप इसमें याद रखना है। तो बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन से हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डिजीज़ तो बहुत सारे हैं, तो बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन से हो गए, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, और वायरल डिजीज कौन कौन से होंगे, FMD, रेबीज, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा गोट में देखा जाए तो PPR, और पोल्ट्री में मरग डिजीज हो गया, न्यूकैसल डिजीज, कोक्सिडियोसिस, तो बहुत डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। डीप में अगर जो डिजीजेस पढ़ना है वो मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया है, तो वो डिसीजेस को थोड़ा सा डीप में देख लेना है, जैसे कि FMD, तो FMD में क्या सिम्टम होते हैं इसमें, तो नोड्यूल्स बन जाते हैं माउथ में एंड उसके फीट में, तो ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स में होता है, जिनके जो खुर है वो दो भागों में बटे होते हैं उसको क्लोवन फुटेड कहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स में FMD होता है ना। FMD में क्या इसका सिम्टम है, हाई फीवर होता है और सलाइवेशन,

एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, वायरल डिसीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये वायरस से होता है, एप्थो वायरस से होता है, और वायरल डिसीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे ना, और जो लीजन्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे माउथ में लीजन्स बन गए तो ब्यूरोग्लिसरीन लगाएंगे, है ना, फुट में लीजन है तो कैमेनोफोर से उसको वॉशिंग करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। एंटीबायोटिक तो देना ही है, वायरल डिजीज़ है, बट एंटीबायोटिक हम इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ में आ गया मेस्टाइटिस। देखो, किसी भी डिजीज़ में आइटिस अगर लास्ट में लगा है, सफिक्स लगा है, दैट मीन्स उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। मेस्टाइटिस का मतलब हो गया अर्डर का इन्फ्लामेशन। तो ये तो मल्टीपल कॉजिटिव डिसीज़ है, बहुत सारे कारण होते हैं इस डिसीज़ के। तो मेटाबॉलिक डिसीज़ में भी आएगा ये, और क्योंकि और इसके अलावा है मिल्क फीवर एंड किटोसिस। तो मिल्क फीवर में ये ज़रूर याद रखना है, इसका बस नाम में फीवर है बट इसमें फीवर नहीं होता, इसमें होता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है। कीटोसिस, मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस, ये तीनों ऐसे डिसीज हैं जो हाई यील्डिंग एनिमल्स में होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम? एक जनरल मैनेजमेंट होता है प्रिवेंशन का, बायोसिक्योरिटी फॉलो करेंगे। बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमको कैसे डिसीज़ आने से रोकना है अपने फार्म पे, है ना। तो क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे उसके लिए, फूड बाथ बनाएंगे, कैमेनोफोर उसमें उसका घोल डालेंगे उसमें, है ना, या तो लाइम स्प्रेड करेंगे पोल्ट्री हाउसेस में, कोई भी इन्वेडर्स को आने नहीं देंगे, कोई भी प्रीडेटर्स को भी हम इनवाइट नहीं करेंगे, उसके लिए भी प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, वैक्सीनेशन फॉलो करेंगे, और जितने भी इक्विपमेंट है फार्म पे उस सब की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है रूटीनली। ओके, रूटीनली सारे एनिमल्स को चेक करना है, कहीं कोई सिम्टम तो नहीं दिख रहा है। अगर सिम्टम दिख रहा है तो फिर उस एनिमल को आइसोलेट करना है। कोई भी एनिमल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फार्म में न्यू एनिमल, तो फिर उसको क्वारंटाइन करना है ना। तो क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन क्या है, इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेना है। और एक प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन होता है जो कि है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल मैंने पूरी दी हुई है, कैटल का, बफेलो का। कैटल बफेलो का सेम होता है, कैटल बफेलो शीप गोट का सेम होता है, और पोल्ट्री का, तो पोल्ट्री में लेयर का अलग होता है, ब्रॉयलर का अलग होता है, क्योंकि ब्रॉयलर को हम 5-6 वीक तक ही रखते हैं तो उसमें ज़्यादा है नहीं। लेयर में बहुत सारे डिजीज़ के लिए दिया गया है, और फर्स्ट वैक्सीन किसके लिए लगाते हैं तो वो भी याद रखना है। और है आइडेंटिफिकेशन, है ना, एनिमल का आइडेंटिफिकेशन। तो कितने मेथड्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के, कौन सा मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ईयर नॉचिंग है पिक के लिए किया जाता है, ब्रांडिंग है वो कैटल के लिए, वो भी एडल्ट एनिमल के लिए किया जाता है, यंग एनिमल के लिए नहीं। और उसमें ब्रांडिंग में भी दो टाइप का होता है, कोल्ड ब्रांडिंग या फ्रिज ब्रांडिंग, केमिकल ब्रांडिंग, हॉट ब्रांडिंग। तो कौन सा मेथड किस पर्टिकुलर एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। पोल्ट्री के लिए कैसा आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो और आइडेंटिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है ना, किसी का कोई प्रॉपर पर्टिकुलर मेथड है उसका क्या लिमिटेशंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये पढ़ना है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, एंड मिल्किंग मेथड्स, है ना। तो तीन टाइप, एक्चुअली दो टाइप के मिल्किंग मेथड्स होते हैं, एक मैनुअल होता है एंड एक मशीन मिल्किंग होता है। तो मशीन मिल्किंग में तो हम मशीन का यूज़ करते हैं, जो मैनुअल मेथड होता है उसके तीन मेथड होते हैं। तो मैनुअल में हम हैंड का यूज़ करते हैं, एंड तो फर्स्ट मेथड होता है फुल हैंड मिल्किंग, दूसरा है नकलिंग, तीसरा है स्ट्रिपिंग, है ना। तो फुल हैंड मिल्किंग में हम पूरा फिस्ट का यूज़ करेंगे, नकलिंग में थंब का यूज़ किया जाता है, एंड स्ट्रिपिंग में फोर फिंगर एंड थंब का यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रिपिंग हम हमेशा जैसे ही मिल्किंग स्टार्ट करते हैं एनिमल की, तो फर्स्टली स्ट्रिपिंग करते हैं, उसके बाद फुल हैंड मिल्किंग करते हैं। यानी फुल हैंड मिल्किंग किस में करते हैं, जो जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जिनका टीट्स बड़े होते हैं, तो उनके लिए फुल हैंड मिल्किंग का यूज़ किया जाता है, है ना। ऑब्वियसली अगर हीफर है तो उसका टीट्स बड़े नहीं होंगे, तो फुल हैंड वो तो पूरे हाथ में आएगा नहीं, तो हम उसमें पूरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, स्ट्रिपिंग, है ना। और नकलिंग सबसे वर्स्ट मेथड होता है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा बेस्ट मेथड होता है। अगर मशीन मिल्किंग भी दिया है इन सब के साथ में, तो ऑब्वियसली पहले मशीन मिल्किंग आएगा, और अगर तीनों मेथड दिया हुआ है तो फिर फुल हैंड मिल्किंग बेस्ट मेथड होता है, एंड वर्स्ट नकलिंग।

0: इसके अलावा इकोनॉमिक्स खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। और कलिंग का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, कास्टिंग है ना, कास्टिंग के दो मेथड होते हैं और वो मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है, रूप्स मेथड एंड मॉडिफाइड रूप्स मेथड, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इसमें ये देखना है कि जो प्रैक्टिकल में जितने कोर्सेज हैं, जितने चैप्टर हैं, वो सब भी थ्योरी में पूछे जाते हैं, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लेना। ब्रीड्स ब्रीड्स पूछा जाता है, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो ब्रीड्स से आएंगे। और हैबिटेट, ब्रीड्स में सबका हैबिटेट याद रखना ज़रूरी है, बहुत सारे ब्रीड्स हैं और कुछ भी उठा के पूछ सकता है उसमें से, तो उसका हैबिटेट पढ़ना, और हैबिटेट ही पूछा जाता है तो हैबिटेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स है उन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे मुर्रा का कर्व्ड हॉर्न होता है, कर्ल्ड होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली कर्ल्ड होता है, तो वो उसका है। और जेड ब्लैक है, जेड ब्लैक कलर का होता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है उसका। इस तरह से बाकी सारे ब्रीड्स का भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो वो पढ़ना, वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बाकी ब्रीड का क्लासिफिकेशन है ना, कैटल का क्लासिफिकेशन करते हैं कैसे करते हैं, बफेलो का कैसे करते हैं, शिप गोट का कैसे करते हैं, पिग का कैसे करते हैं, तो वो सब। केवल एग्जॉटिक एंड इंडिजिनस ये नहीं लिखना है, इंडिजिनस में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो इंडिजिनस का क्लासिफिकेशन भी देखना है पूरी तरह से। बाकी रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, कल के एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा

कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों आप तो जानते हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं, इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन

0: जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए खास कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में, जो परीक्षा के पूर्व संध्या पर आपके लिए विशेष तौर पर प्रसारित किया जाता है। दोस्तों, कल आपके कोर्स AAG 1-1 का एग्जाम है और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर ज्योति माला साहू हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आपके रेडियो रिवीजन के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: मैम, आप रेडियो रिवीजन शुरू कीजिए।
3: ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ हाउसिंग प्रिंसिपल स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड पोल्ट्री। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हाउसिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाउसिंग एंड हाउ इट इज इट शुड बी क्लासिफाइड फॉर कैटल, पिग एंड शीप, गोट एंड पोल्ट्री कोसा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैटल का, तो इसमें लूज हाउसिंग एंड कन्वेंशनल हाउसिंग आएगा। तो कन्वेंशनल में दो टाइप का होता है, टेल टू टेल सिस्टम एंड हेड टू हेड सिस्टम। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा बेस्ट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा बेस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट। तो स्पेस, अच्छा, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर ये एग्ज़ाम में आया हुआ था, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में आ जाएगा। फ्लोर कैसा होना चाहिए, वॉल कैसा होना चाहिए, रूफ, मेंजर, वाटर ट्रफ, उसका विथ, हाइट एंड डेप्थ कितना होना चाहिए, गटर कैसा होना चाहिए, फीड एले कैसा होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ मैं। और नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट। तो स्पेस रिक्वायरमेंट में BIS के अकॉर्डिंग, जो बहुत इजी है याद करने में।

स्क्वायर में याद करो आप, और उसको फिर कन्वर्ट कर लेना फिट में, अगर फिट में एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो। कैटल बफेलो के लिए ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीफर में कितना होगा, काफ में कितना होगा, है ना, काऊ में कितना होगा, कवर्ड एरिया कितना होगा, ओपन एरिया कितना होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी टेबल दे दिया है इसके लिए, तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फॉर एग्ज़ाम्पल काफ में कितना मैक्सिमम एनिमल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल कितना होना चाहिए फॉर काफ, तो इट इज़ 30 एंड फॉर काऊ इट इज़ 50। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड पोल्ट्री में अगर स्पेस रिक्वायरमेंट पूछा जाता है तो डीप लेटर का स्पेस रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एज वाइज होता है इसका रिक्वायरमेंट, है ना, 0 to 8 week एंड 9 to 12 week, 13 to 18 एंड मोर देन 18 अबव। तो लाइट बर्ड के लिए अलग होता है एंड हैवी बर्ड्स के लिए अलग होता है। ये भी स्पेस स्क्वायर सेंटीमीटर में है जो मैंने दिया है वो। तो स्पेस रिक्वायरमेंट में ये इम्पॉर्टेंट है, एंड बाकी तो आपको पढ़ना ही है, और दूसरे दूसरी चीज़ें भी, ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए हाउस का, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ काफ्स, काफ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एक्चुअली काफ का मैनेजमेंट बर्थ से ही, उसके बर्थ के पहले से ही, प्रेगनेंसी के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है ना। हमको प्रेग्नेंट एनिमल का बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा। अब जैसे ही बर्थ होता है, जैसे ही काविंग होती है, उसके बाद काफ को एक साफ प्लेस पे, क्लीन प्लेस पे रखा जाता है। जो भी फ्लूड उस पर लगा हुआ होता है वो अच्छे से क्लीन किया जाता है, वाइप किया जाता है सोक टॉवल से, जो कि क्लीन होना चाहिए, और उसको मदर के सामने रखा जाता है। तो क्या करती है, उसको पूरी तरह से लिक कर देती है। तो लिकिंग से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और वो साफ भी हो जाता है अच्छे से। तीसरा है रेस्पायरेशन, उसके रेस्पायरेटरी सिस्टम को एक्टिव करना होता है हमें जैसे ही बर्थ होता है उसका, तो रेस्पायरेशन भी उससे इजी हो जाता है ना? अगर रेस्पायरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उस यहाँ पर वेटनरी असिस्टेंट की नीड होगी। ओके उसके बाद कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 15 मिनट to 1 आवर, मतलब विद इन 1/2 आवर आपको कोलेस्ट्रॉम फीडिंग करानी ही है। और इसका डोज कितना होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो 1/10 ऑफ देयर बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट 20 kg है तो कोलेस्ट्रॉम कितना देंगे, 2 kg, हाँ, और 2 kg भी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंटली देना है, मीन्स आप डिवाइड कर लो उसको कि सुबह कितना दोगे, फिर 2 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, इस तरह से देना है उसको। ये पर डे का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 1/10 ऑफ बॉडी वेट। कोलेस्ट्रॉम क्या है, कोलेस्ट्रॉम इज अ फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। ओके नेक्स्ट, काफ का डिसीज मैनेजमेंट करना है, इसके बाद नेवल इल को ध्यान में रखना है। हाँ अच्छा, उसका जो नेवल कॉर्ड होता है, जैसे ही वो बर्थ, जैसे ही काविंग हुई तो नेवल कॉर्ड होता है उसको कटिंग करनी होती है ना? तो अप्रोक्सीमेटली 4 इंच, है ना, जो बॉडी से 4 इंच में आप उसको कट करेंगे। उसके बाद एक्चुअली पहले लाइगेट करना है उसको, है ना, 4 इंच में आप लाइगेट करेंगे। लाइगेट करने का मतलब उसको बांधना है अच्छे से ताकि ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद उसके 1 cm में उसको कट करना है। तो ये होता है नेवल, नेवल कॉर्ड की कटिंग। और यहाँ पर उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक लगा देना है, टिंक्चर आयोडीन, बीटाडीन, कुछ भी लगा देना उसमें एंटीबायोटिक, ताकि उसमें किसी भी तरह का असेंडिंग इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इन्फेक्शन हुआ तो फिर काफ बीमार हो जाएगा, फीवर आएगा उसको, इसी को कहते हैं नेवल इल। और वैक्सीनेशन वगैरह, वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो ये देखना है। डीवर्मिंग, डीवर्मिंग का शेड्यूल भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है। हीफर, हीफर का मैनेजमेंट ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ अलग नहीं करते हैं इसमें। हीफर क्या होता है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, हीफर क्या होता है, मोर देन

month and above, then above 6 month or 1 year that not had count. Female, adult female, is called heifer. Okay. Now milch animal. Milch animal में सबसे important है feeding. तो feeding का thumb rule मैंने already notes में दिया हुआ है. ये thumb rule बहुत important है और उसमें भी productive animal का thumb rule जिसमें मैंने बताया हुआ है कि 1 kg concentrate देना है पर 2.5 kg milk production in case of Jebu cattle and 1 kg concentrate पर 2 kg milk in case of crossbreed और buffalo. तो ये याद रखना है. और दूसरा मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. और दूसरा है ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट कितना होता है. तो 2 to 2.5% ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ कैटल एंड 2.5 to 3% रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ क्रॉसब्रीड एंड बफेलो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. एंड चिकन में अच्छा मिल्स एनिमल का भी मैनेजमेंट देख रहे थे. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ शीप गोट. तो शीप एंड गोट में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस टेबल मैंने दे दिया है, ये याद रखना है आपको. गोट ब्राउजर होता है एंड शीप ग्रेजर होता है. स्वाइन के मैनेजमेंट में पिगलेट एनीमिया ये टर्मिनोलॉजी याद रखना. और ये क्यों होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से पिगलेट्स में होता है. और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम उसको एक जो भी हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कॉन्क्रीट ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक साइड उसको सॉइल पूरा जो फ्लोर है वो कॉन्क्रीट का नहीं होना चाहिए, सॉइल भी हमको वो प्रोवाइड करना है. दूसरा फेरस सल्फेट का या तो हम उसमें पेंट कर देंगे मदर की अडर में और आयरन का इंजेक्शन देंगे. तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया. नेक्स्ट है इंक्यूबेशन हैचिंग ब्रूडिंग मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर एंड लेयर. तो फर्स्ट आप इसमें तो एग का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए अच्छे से. और मैनेजमेंट ऑफ चिक है ना, ब्रूडिंग का मैनेजमेंट, ब्रूडिंग मैनेजमेंट करके पूछा जाएगा आपको एग्जाम में. तो ब्रूडिंग क्या है, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ चिक्स इज कॉल्ड ब्रूडिंग. तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें, तो ब्रूडिंग इसको कहते हैं ना, इंक्यूबेशन अलग है. तो पहले हम चिक का मैनेजमेंट देखते हैं. इसमें ब्रूडिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि चिक सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया और बिल्डिंग हमने सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर चिक को लाना है हमें, तो वहाँ पर पहले फ्यूमिगेशन करेंगे है ना, बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, जितने भी पैथोजेंस हैं वो सबको रिमूव करने के लिए हम वहाँ पर फ्यूमिगेशन करेंगे. ओके, उसके बाद उसके 10 days बाद हम चिक को लाएंगे. और चिक को लाने के बाद हमें उसको एक पर्टिकुलर, क्योंकि चिक है उसमें फेदर्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, इसलिए उसको वार्म्थ चाहिए होता है फेदर्स के डेवलपमेंट के लिए, आगे डेवलपमेंट के लिए है ना. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको वार्म्थ प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे. कैसे करेंगे, हीटिंग सोर्स होगा बल्ब, जनरली हम बल्ब यूज़ करते हैं इसमें, तो बल्ब उसमें प्रोवाइड करेंगे. और ऊपर उसमें रिफ्लेक्टर लगा होगा. रिफ्लेक्टर से क्या होता है कि पूरा जो लाइट होता है वो जो एरिया होता है उनका जहाँ पे चिक रखा होता है उसमें अच्छी तरह से फैल जाता है और तो हीट अच्छे से प्रोवाइड होता है सारे एरिया में है. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम टेम्परेचर कितना देंगे, कितना टेम्परेचर हम इसमें रखें है ना. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ब्रूडर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 90 to 95 degrees Fahrenheit फॉर द फर्स्ट वीक है ना. अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 90 to 95 degrees Fahrenheit इन फर्स्ट वीक. तो हम रखते कितने दिन हैं इसको, ऑलमोस्ट 5 to 6 weeks रखते हैं, उसके बाद उसको सेल कर दिया जाता है ना, अगर ब्रॉयलर हो तो. ठीक है, तो फर्स्ट वीक में हम इसको, इसका टेम्परेचर होगा 90 to 95 degrees Fahrenheit और डिग्री सेल्सियस में रखे तो 35 degrees Celsius है ना. और हर सप्ताह इसके टेम्परेचर को कम करते जाना है ना. तो कितना कम करते जाएंगे, अगर फ़ारेनहाइट में है तो 5 degrees Fahrenheit हर सप्ताह कम करते जाना है. और अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 3 degrees Celsius पर वीक उसको कम करते जाना है ना. तो लास्ट सिक्स्थ वीक कितना हो जाएगा, 20 degrees Celsius है ना. और वैसे वही फ़ारेनहाइट में देखें तो 6th week में हो जाएगा 70 degrees Fahrenheit. तो ये नोट्स में मैंने दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यह सब पूछा जाता है कि हर सप्ताह कितना फ़ारेनहाइट कम

करना है हमको, है ना, या कितना डिग्री सेल्सियस कम करना है हमको, ब्रूडिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 92-95 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। लाइट का मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें 24 आवर लाइट चाहिए इनको अगर चिक है तो, है ना। मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर में सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, है ना। रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग हम करते हैं इसमें, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यूनिफॉर्म ग्रोथ चाहिए। और रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग कैसे किया जाता है, डीबिगिंग करके। एक तो ये है कि फीड का क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, लेकिन डीबिगिंग इसमें किया जाता है। डीबिगिंग में पर्टिकुलर जो बर्ड्स है उसको सेलेक्ट किया जाता है जो कि ज़्यादा ओवर फीडिंग, ओवर ईटिंग कर रही है, तो यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होगा। तो उसमें क्या करते हैं, हम डीबिग कर देते हैं। डीबिगिंग से क्या होगा, तो फीड वो कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा, तो इस तरह से यूनिफॉर्म ग्रोथ हो जाएगा उसका, जितने बर्ड्स एक फ्लॉक में रखे हुए उनका। ओके, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर, और जो बाकी जो नोट्स में दिया है वो तो पढ़ना ही है। लाइट कितना चाहिए इनको, तो 12 और लाइट चाहिए। देखो लाइट का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चिक को कितना लाइट का रिक्वायरमेंट चाहिए, ग्रोअर को कितना होना चाहिए, एंड लेयर को कितना होना चाहिए। तो लेयर को 16 आवर होना चाहिए, और लेयर का ज़्यादातर पूछा जाता है, तो लेयर के मैनेजमेंट में ये इम्पॉर्टेंट है। और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए लेयर में, क्योंकि लेयर में ही कैल्शियम ज़्यादा दिया जाता है ना, 3%। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, हम सिलेक्शन कैसे करेंगे लेयर का, है ना। देखो सिलेक्शन एंड कलिंग दो टर्मिनोलॉजी होती है। सिलेक्शन कलिंग भी उसी बेसिस पे करेंगे जिस बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे। कलिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव एनिमल्स और बर्ड्स, है ना, इनके सब बर्ड्स, इट इज बर्ड्स। तो जो क्राइटेरिया हम सिलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही क्राइटेरिया हम कलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एब्डोमेन कैसा होना चाहिए, जो गुड लेयर होता है, गुड लेयर की क्या क्वालिटी होती है, बैड लेयर की या पुअर लेयर की क्या क्वालिटी होती है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेंट कैसा होता है गुड लेयर में, लार्ज एंड मॉइस्ट, पुअर लेयर में स्मॉल, ड्राई वेंट होता है। उसके कॉम्ब कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, फुल होते हैं, रेड होते हैं, पुअर लेयर में लॉन्ग थिन और रेड भी नहीं होते हैं पूरी तरह से। ओके, तो ये पूछा जाता है। बैक कैसे होना चाहिए, ब्रॉड और स्ट्रेट होता है गुड लेयर में, एंड पुअर लेयर में नैरो होता है। मोल्टिंग का मतलब होता है कि वो जब अपना फेदर्स झड़ाना चालू कर देती है ना, तो इसमें एक टाइम ऐसा आता है लेयर में कि वो अपना सारे फेदर्स झड़ाना चालू कर देती है, उसके बाद वापस उसमें फेदर्स आते हैं, ठीक है। तो मोल्टिंग का मतलब यही होता है। तो गुड लेयर में मोल्टिंग कैसा होता है, लेट से होगा और जल्दी हो जाएगा, है ना। वही पुअर लेयर में बहुत जल्दी झड़ जाएगा और बहुत धीरे धीरे झड़ेगा, ठीक है, दैट मीन्स अर्ली एंड स्लो। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें, बाकी ब्रीड्स तो है ही इम्पॉर्टेंट, और उसका क्लासिफिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डीप लिटर सिस्टम का मैनेजमेंट, एंड मीन्स उसका हाउसिंग का कितने टाइप के होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसको, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप हाउसिंग का मैनेजमेंट आता है, तो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आपको कितना पता है ना, एंड लाइट कितना होना चाहिए गुड लेयर में, तो 16 आवर लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। कैल्शियम होना चाहिए 3%। तो ये तो हो गया लेयर का मैनेजमेंट, एंड नाउ वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर का अलग दिया हुआ है एंड ब्रॉयलर का अलग दिया हुआ है। तो फर्स्ट डे जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वो मरिक डिसीज़ का होता है, जो 0 डे में यूज़ किया जाता है। तो HVT स्ट्रेन यूज़ किया जाता है इसमें। HVT का मतलब होता है हर्पीस वायरस ऑफ टर्की स्ट्रेन। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 0 डे में कौन सा वैक्सीनेशन पोल्ट्री को लगाया जाता है, तो कौन सा डिसीज़ के लिए लगाया जाता है, मरिक डिसीज़ के लिए। तो और वैक्सीनेशन का पूरा प्रॉपर शेड्यूल तो याद करना ही है आपको। नो नेक्स्ट है, ये एक्जॉटिक ब्रीड्स मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री, तो क्या क्या ये ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रोवाइड किया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ज़्यादा कुछ उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट बताने लायक है नहीं, बस इसमें ब्रीडिंग है कि आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है, इन ब्रीडिंग किया जाता है, तो वो

ग्रीन का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लेना, क्योंकि ये उसमें पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता दिया है आपको। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ, तो इसमें रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है उसमें रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट इसका डिफरेंस, और ये डिफरेंस पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो रफेज किसको कहते हैं? फीड स्टफ दैट हैज़ मोर देन 18% क्रूड फाइबर एंड लेस देन 60% टेडियन, है ना, और इसका उल्टा हो गया कॉन्सेंट्रेट। तो ये जो ट्रिक है वो याद रखना है, उसी के बेसिस पे हम रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट को क्लासीफाई करते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है इसमें, तो कितने अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं, और ये ऑलरेडी मैंने नोट्स में दे दिया है। ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है इस टॉपिक से। नाउ नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन। तो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजेस, तो किसकी डेफिशिएंसी से, किस मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रेजी चिक डिजीज़ है, मोस्टली पोल्ट्री में होता है क्रेजी चिक डिजीज़, है ना, तो ये होता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, या सेलेनियम, है ना। तो विटामिन ई एंड सेलेनियम, ये दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है दोनों का। तो विटामिन ई या सेलेनियम अगर एमसीक्यू में दिया हुआ है ऑप्शन में आपको दोनों, तो विटामिन ई में लगाना है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट है B2, विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से कर्ल टो पैरालिसिस होता है। तो ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया हुआ है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, टॉक्सिसिटी से कौन सा डिजीज़ होता है ना, मिनरल की टॉक्सिसिटी से। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर पढ़ के चाहिए। पैराकिरोटोसिस, है ना, जिंक की डेफिशिएंसी से पिग में पैराकिरोटोसिस डिजीज़ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फीड इंग्रेडिएंट्स फॉर राशन फॉर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। तो जो क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे, जो आप फीड स्टफ का क्लासिफिकेशन किया है, रफ एज एंड कॉन्सेंट्रेट, उसमें जो भी आएगा वो यही आएगा, इसमें फीड इंग्रेडिएंट में भी सेम आएगा ना। राशन क्या है ना, तो 24 आवर में जो भी फीड हम एनिमल को प्रोवाइड करते हैं उसको राशन कहते हैं। तो डेफिनेशन सबका याद रखिएगा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, तो थंब रूल इसमें याद रखना है, जेस्टेशन पीरियड के लिए हम कौन सा राशन देंगे, लैक्टेटिंग पीरियड के लिए हम कैसा राशन देंगे, एंड मेंटेनेंस के लिए कैसा राशन देंगे, वो पूरा टेबल जो मैंने दिया है वो याद रखना है आपको। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डिसीजेस। ओके, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और डिसीज़ को भी क्लासिफाई किया गया है ना, बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, प्रोटोजोअल डिसीज़, मेटाबॉलिक डिसीजेस। तो एटलीस्ट 4-5 एग्जाम्पल्स आप इसमें याद रखना है। तो बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजीज़ तो बहुत सारे हैं। तो बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन से हो गए, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, और वायरल डिजीज़ कौन कौन से हो गए, FMD, रेबीज, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा गोट में देखा जाए तो PPR, और पोल्ट्री पोल्ट्री में मरिक डिजीज़ हो गया, न्यूकैसल डिजीज़, कोक्सीडियोसिस। तो बहुत डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, डीप में अगर जो डिजीज़ पढ़ना है वो मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया है, तो वो डिसीजेस को थोड़ा थोड़ा सा डीप में देख लेना है। जैसे कि FMD, तो FMD में क्या सिम्टम होते हैं, इसमें तो नोड्यूल्स बन जाते हैं माउथ में एंड उसके फीट में, तो ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स में होता है, जिनके जो खुर है वो दो भागों में बटे होते हैं, उसको क्लोवन फुटेड कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स में FMD होता है ना। FMD में क्या इसका सिम्टम है, हाई फीवर होता है और सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो वायरल डिसीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये वायरस से होता है, एप्थो वायरस से होता है, और वायरल डिसीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे ना? और
जो लीजन्स हैं उसके

ये ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे माउथ में लीजन्स बन गए तो ब्यूरोग्लिसरीन लगाएंगे, है ना, फुट में लीजन है तो कैमेनोफोर से उसको वॉशिंग करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। एंटीबायोटिक तो देना ही है, वायरल डिजीज़ है, बट एंटीबायोटिक हम इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ में आ गया मेस्टाइटिस। देखो किसी भी डिजीज़ में आइटिस अगर लास्ट में लगा है, सफिक्स लगा है, दैट मीन्स उसका मतलब होता है इन्फ्लॉमेशन। मेस्टाइटिस का मतलब हो गया अर्डर का इन्फ्लामेशन। तो ये तो मल्टीपल कॉजिटिव डिसीज़ है, बहुत सारे कारण होते हैं इस डिसीज़ के। तो मेटाबॉलिक डिसीज़ में भी आएगा ये, और क्योंकि और इसके अलावा है मिल्क फीवर एंड किटोसिस। तो मिल्क फीवर में ये जरूर याद रखना है, इसका बस नाम में फीवर है बट इसमें फीवर नहीं होता है, इसमें होता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है। कीटोसिस, मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस, ये तीनों ऐसे डिसीज हैं जो हाई यील्डिंग एनिमल्स में होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम, एक जनरल मैनेजमेंट होता है प्रिवेंशन का, ना बायो सिक्योरिटी फॉलो करेंगे। बायो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमको कैसे डिसीज़ आने से रोकना है अपने फार्म पे, है ना। तो क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे उसके लिए, फूड बाथ बनाएंगे, कैमेनोफोर उसमें उसका घोल डालेंगे उसमें, है ना, या तो लाइम स्प्रेड करेंगे पोल्ट्री हाउसेस में, कोई भी इन्वेडर्स को आने नहीं देंगे, कोई भी प्रीडेटर्स को भी हम इनवाइट नहीं करेंगे, उसके लिए भी प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, वैक्सीनेशन फॉलो करेंगे, और जितने भी इक्विपमेंट है फार्म पे उस सब की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है रूटीनली। ओके, रूटीनली सारे एनिमल्स को चेक करना है, कहीं कोई सिम्टम तो नहीं दिख रहा है, अगर सिम्टम दिख रहा है तो फिर उस एनिमल को आइसोलेट करना है। कोई भी एनिमल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फार्म में न्यू एनिमल, तो फिर उसको क्वारंटाइन करना है ना। तो क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन क्या है, इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेना है। और एक प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन होता है जो कि है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल मैंने पूरी दी हुई है कैटल का, बफेलो का, कैटल बफेलो का सेम होता है, कैटल बफेलो शीप गोट का सेम होता है, और पोल्ट्री का, तो पोल्ट्री में लेयर का अलग होता है, ब्रॉयलर का अलग होता है, क्योंकि ब्रॉयलर को हम 5-6 वीक तक ही रखते हैं तो उसमें ज़्यादा है नहीं। लेयर में बहुत सारे डिजीज़ के लिए दिया गया है, और फर्स्ट वैक्सीन किसके लिए लगाते हैं तो वो भी याद रखना है। और है आइडेंटिफिकेशन, है ना, एनिमल का आइडेंटिफिकेशन। तो कितने मेथड्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के, कौन सा मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ईयर नॉचिंग है पिक के लिए किया जाता है, ब्रांडिंग है वो कैटल के लिए, वो भी एडल्ट एनिमल के लिए किया जाता है, यंग एनिमल के लिए नहीं। और उसमें ब्रांडिंग में भी दो टाइप का होता है, कोल्ड ब्रांडिंग या फ्रिज ब्रांडिंग, केमिकल ब्रांडिंग, हॉट ब्रांडिंग। तो कौन सा मेथड किस पर्टिकुलर एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। पोल्ट्री के लिए कैसा आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो और आइडेंटिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है ना, किसी का कोई प्रॉपर पर्टिकुलर मेथड है उसका क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये पढ़ना है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, एंड मिल्किंग मेथड्स, है ना। तीन टाइप, एक्चुअली दो टाइप के मिल्किंग मेथड्स होते हैं, एक मैनुअल होता है एंड एक मशीन मिल्किंग होता है। तो मशीन मिल्किंग में तो हम मशीन का यूज़ करते हैं, जो मैनुअल मेथड होता है उसके तीन मेथड होते हैं। तो मैनुअल में हम हैंड का यूज़ करते हैं, एंड तो फर्स्ट मेथड होता है फुल हैंड मिल्किंग, दूसरा है नकलिंग, तीसरा है स्ट्रिपिंग, है ना। तो फुल हैंड मिल्किंग में हम पूरा फिस्ट का यूज़ करेंगे, नकलिंग में थंब का यूज़ किया जाता है, एंड स्ट्रिपिंग में फोर फिंगर एंड थंब का यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रिपिंग हम हमेशा जैसे ही मिल्किंग स्टार्ट करते हैं एनिमल की, तो फर्स्टली स्ट्रिपिंग करते हैं, उसके बाद फुल हैंड मिल्किंग करते हैं। यानी फुल हैंड मिल्किंग किसमें करते हैं, जो जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जिनका टीट्स बड़े होते हैं, तो उनके लिए फुल हैंड मिल्किंग का यूज़ किया जाता है ना। ऑब्वियसली अगर हीफर है तो उसका टीट्स बड़े नहीं होंगे, तो फुल हैंड वो तो पूरे हाथ में आएगा नहीं, तो हम उसमें पूरा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, स्ट्रिपिंग, है ना। और नकलिंग सबसे वर्स्ट मेथड होता है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा बेस्ट मेथड होता है। अगर मशीन मिल्किंग भी दिया है इन सब के साथ में, तो ऑब्वियसली पहले मशीन मिल्किंग आएगा, और अगर तीनों मेथड दिया हुआ है तो फिर फुल हैंड मिल्किंग बेस्ट मेथड होता है, एंड वर्स्ट नकलिंग। इसके अलावा इकोनॉमिक्स खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। और कलिंग का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, कास्टिंग, है ना। कास्टिंग के दो मेथड होते हैं, और वो मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है, रूप्स मेथड एंड मॉडिफाइड रूप्स मेथड।

तो वो अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इसमें ये देखना है कि जो प्रैक्टिकल में जितने कोर्सेज हैं, जितने चैप्टर हैं, वो सब भी थ्योरी में पूछे जाते हैं, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लेना। ब्रीड्स ब्रीड्स पूछा जाता है, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो ब्रीड्स से आएंगे। और

0: कर्ल्ड होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली कर्ल्ड होता है, तो वो उसका है, और जेट ब्लैक है, जेट ब्लैक कलर का होता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है उसका। इस तरह से बाकी सारे ब्रीड्स का भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो वो पढ़ना, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी ब्रीड का क्लासिफिकेशन है ना, कैटल का क्लासिफिकेशन करते हैं कैसे करते हैं, बफेलो का कैसे करते हैं, शिप गोट का कैसे करते हैं, पिग का कैसे करते हैं, तो वो सब। केवल एग्जॉटिक एंड इंडिजिनस ये नहीं लिखना है, इंडिजिनस में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो इंडिजिनस का क्लासिफिकेशन भी देखना है पूरी तरह से। बाकी रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, कल के एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा,

नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे अनु को, और अभी आप सभी सुन रहे उन्नत कृषि कार्यक्रम. इस कार्यक्रम में हम हमारे किसान भाइयों के लिए खेती से जुड़ी बातें लाते हैं, और आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है अरहर की खेती कैसे करें. तो वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बताएंगे श्रोताओं. इस विषय को लेकर हमारे साथ हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद. मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है.
1: धन्यवाद.
0: सबसे पहले तो

0: सर हम ये जानना चाहेंगे कि अरहर कौन सा फसल है और इसकी खासियत के बारे में थोड़ा बताएं।
1: बहुत अच्छा प्रश्न मैडम। आप सभी हम सभी परिचित हैं अरहर से और सब लोगों को पता है कि ये अरहर दलहन समूह का फसल है और इसको हम लोग तूर, राहर और अंग्रेजी में रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं। चना के बाद यह दूसरा प्रमुख दलहनी फसल है और ये काफ़ी खासियत को धारण करने वाली फसल है। खासकर दलहनी समूह का फसल है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है और इसमें लगभग 22.3% प्रोटीन, 3.5% मिनरल्स, 1.7% वसा और 57.6% कार्बोहाइड्रेट के अलावे बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं, जैसे आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। इन सारी चीज़ों की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहती है अरहर में।
0: जी जी, आगे बढ़ते हुए हम अरहर की खेती कब की जाती है इसके बारे में जानना चाहेंगे और इसके लिए किस प्रकार का खेत होना चाहिए।
1: जहाँ तक अरहर की खेती की बात है तो बिहार में अरहर की खेती जो की जाती है वो खास करके जून जुलाई महीने में इसकी खेती की जाती है, परंतु विशेष परिस्थिति में अगर जून जुलाई में इसकी बुआई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश तो विलम्ब की स्थिति में इसकी बुआई सितंबर माह में भी की जाती है और इसका जो उपयुक्त समय है बोने का सितंबर माह में वो लगभग 25 अगस्त से 15 सितंबर है और इसके लिए उपयुक्त तापक्रम जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जहाँ तक खेत या मिट्टी का प्रश्न है तो इसके लिए ऊपर वाली ज़मीन जहाँ वर्षा के पानी का जमाव नहीं होता हो वह काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। खेत बलुई दोमट से दोमट जिसका पीएच मान 7 से लेकर 8.5 तक हो वह अरहर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है।
0: और अरहर के प्रभेद कौन कौन से उपयुक्त हैं और साथ ही बीज की कितनी मात्रा का प्रयोग होना चाहिए इसके भी जानकारी दें।
1: जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अरहर की खेती खरीफ और सितंबर दोनों समय की जाती है तो दोनों के लिए अलग अलग प्रभेद हैं और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर जून जुलाई माह में अगर अरहर की बुआई करनी होती है तो उसके लिए उपयुक्त प्रभेद हैं बहार, नरेंद्र अरहर 2, DA 11, आज़ाद। इस तरह के काफ़ी अच्छे प्रभेद हैं और सितंबर माह में अगर इसकी बुआई करनी है तो उसके लिए उपयुक्त प्रभेद हैं पूसा 9 और दूसरा है शरद। तो दोनों मौसम में, दोनों समय में अरहर की बुआई के लिए बीज की मात्रा और उसके लिए दूरी जो है अलग अलग है। खरीफ मौसम में अगर इसकी बुआई हम करना चाहेंगे तो उसके लिए लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की ज़रूरत पड़ती है और जो अनुशंसित दूरी है पंक्ति से पंक्ति की दूरी ये लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम इसको सितंबर माह में बोएंगे या अगस्त से 25 अगस्त से 15 सितंबर तक बोएंगे तो इसमें बीज की मात्रा बदल जाती है क्योंकि उसमें पौधों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। तो इसके लिए लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है और इस बीज को पंक्ति से पंक्ति 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और पौधा से पौधा की दूरी 16 से 20 सेंटीमीटर रखते हुए पंक्ति से पंक्ति में बुआई करते हैं। तो इस तरह से दोनों स्थिति में, दोनों समय में अलग अलग मात्रा में बीज का प्रयोग होता है और अनुशंसित दूरी भी अलग अलग है।
0: जी, क्या इसमें बीज उपचार करना ज़रूरी है?
1: जी हाँ, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीज को बोने से 48 घंटे पूर्व फफूंदनाशी दवा से अरहर के बीज को उपचारित करना चाहिए और इसके लिए जो सबसे अच्छी दवा है वो दवा है ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसकी 5 से 7 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर बोना चाहिए और अगर ये दवा उपलब्ध नहीं हो तो बीज को कार्बेंडाजिम दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा

0: को प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर आप बो सकते हैं। बीज को बोने से ठीक आधा घंटा पहले राइजोबियम कल्चर जो अरहर के लिए है उससे निश्चित रूप से उपचारित करना चाहिए, और साथ ही साथ पीएसबी कल्चर से भी बीज को अनिवार्य रूप से उपचारित कर लेना चाहिए, और इससे काफ़ी फायदा होता है किसानों को, किसान भाइयों को, और अच्छी उपज मिलती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अरहर में पोषक प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
0: जैसा कि अभी हमने बताया कि राइजोबियम कल्चर से उपचार करना और पीएसबी कल्चर से उपचार करना निहायत ज़रूरी है, और ऐसा इसलिए कि दलहनी फसल, दलहनी समूह का फसल होने के कारण इसमें राइजोबियम फिक्सेशन की क्रिया होती है, जिसके वजह से वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके ये जड़ों में जमा करता है, एकत्रित करता है। तो राइजोबियम कल्चर से अगर हम उपचारित करते हैं तो लगभग 15-20% उपज में वृद्धि हो जाती है, और ये हमारे नाइट्रोजन की मांग को भी कम कर देता है, क्योंकि दलहनी ग्रुप का है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो इस वजह से फसल की जो बढ़वार के लिए नाइट्रोजन की डिमांड है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ हम पीएसबी कल्चर से भी इसको उपचार करते हैं, तो पीएसबी कल्चर के कारण मिट्टी में जो अनुपलब्ध रूप में फास्फोरस है उसको पीएसबी जो कल्चर है उसमें जो बैक्टीरिया हैं उसको घुला करके पौधे को उपलब्ध कर देता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मांग को बहुत हद तक ये कम कर देता है। फिर भी स्टार्टर डोज के रूप में पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय उसमें 40 किलोग्राम डीएपी और 8 किलोग्राम गंधक यानी सल्फर को प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में समान रूप से छींट कर अच्छी तरह से मिला देने से जो अरहर फसल की जो भोजन की व्यवस्था है, मांग है, वो पूरी हो जाती है।
1: अब इसके बाद हम कीट और रोगों की बात करते हैं, तो अरहर में कीट और रोगों का प्रकोप भी देखा जाता है, तो इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं?
0: जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है अरहर की खेती में, और अरहर में मुख्य रूप से फली छेदक, फल मक्खी एवं प्लूम मौत कीट का प्रकोप होता है, और जिसके कारण फसल को काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इसे बचाव के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप जो 5 की संख्या में 1 एकड़ में लगाना है उसको लगाना चाहिए, और इसके अलावे इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG दवा का 88 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, अथवा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट की 5% का छिड़काव फूल आने के पहले, दूसरा छिड़काव 50% फूल आने पर तथा तीसरा छिड़काव 50% फली लगने पर करना चाहिए। ऐसा करने से इन तमाम कीटों से अरहर की सुरक्षा हो जाती है और नुकसान से बचा जा सकता है। रोग हेतु उपचार के लिए हमने जो पहले बताया बीजोपचार के लिए, अगर उससे उपचारित कर देंगे ट्राइकोडर्मा से या राइजोबियम ये कार्बेंडाजिम से, तो किसान भाई रोग की समस्या से अपने फसल को मुक्त कर पाएंगे, और बीजोपचार ही रोग नियंत्रण के लिए सबसे अहम चीज़ होता है, तो उसको निश्चित रूप से अपनाएं। और जहां तक खरपतवार की बात है तो खरपतवार के लिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि अपने फसल को 40 से 45 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रखें, और इसके लिए 25 से 30 दिन बाद यानी बोने के 25 से 30 दिनों बाद एक बार निराई अवश्य करवाएं। अगर श्रमिकों की समस्या है, उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में 1.2 लीटर मतलब 1.25 लीटर पेंडीमेथिलीन दवा का प्रयोग बुआई के दूसरे दिन 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर खेत की सतह पर छींटें, और इस प्रकार छींटें, छिड़काव करें कि उस पर दोबारा पैर नहीं पड़े। तो इस तरह से अगर करेंगे तो खरपतवार से उनको 40 से 50 दिनों तक फसल की सुरक्षा वो कर पाने में सक्षम होंगे, और फिर उन्हें अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि फसल की कटाई में भी थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है। जब आपकी फसल लगभग 80% पक जाए तो उसमें यानी छीमी 80% पक जाए तो उसमें फसल को काटकर बंडल बना लें, और बंडल को खड़ा रखें, सुलाकर या लिटाकर नहीं रखें, और 1 सप्ताह बाद उसकी झराई ठीक से कर लें और दाने को

0: अलग कर लें, दाने को अच्छी तरह से धूप में सुखा लें, और जिसमें उस दाने में जिसमें 10 से 12 प्रतिशत तक नमी रहती है, उस दाने को अच्छी तरह से साफ करके धातु कोठला में अच्छी तरह से एयर टाइट करके बंद कर दें, और बंद करने से पूर्व एक क्विंटल बीज में एक EDB एम्पल डालकर मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दें। और अगर इस तरह से किसान भाई खेती करेंगे तो निश्चित रूप से अरहर का की अच्छी पैदावार मिलेगी, और उन्हें 20 से 25 मन प्रति एकड़ का जुलाई माह में, और सितंबर माह में अगर करते हैं तो 16 से 18 मन प्रति एकड़ का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए।
0: जी धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन एक अलग विषय के साथ। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: लेडीज फर्स्ट।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो महिलाएं होती है ना, ये जो लेडीज होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लेडीज फर्स्ट कहने की नौबत क्यों आई? और क्या अभी भी समाज में ये लोग मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट यानी कि स्त्रियों को पहले मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, आज भी हमारा समाज उसी पुरानी सोच में जकड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि समाज ने अपने सोच के ऊपर एक बदले हुए रवैया का परत चढ़ा लिया है, लेकिन आज भी उसके अंदर सोच वही है। अगर ये सच नहीं है तो ये भी सच नहीं होता कि घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर लेडीज फर्स्ट जैसी बातों को हमने स्वीकार कर लिया होता, स्त्रियों को हमने बराबर का सम्मान दिया होता, ज्यादा की बात नहीं हो रही, बराबर की, बराबरी का सम्मान दिया होता, बराबरी का मौका दिया होता, घरेलू हिंसा

वजह से, दहेज की वजह से आज भी बहुत सारी स्त्रियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आए दिन हम नए नए केस सुनते हैं। पढ़े लिखे घरों में भी घरेलू हिंसा से तंग आकर स्त्रियां खुद को खत्म कर लेती है या फिर घरेलू हिंसा इस कदर बढ़ जाती है कि उस स्त्री की मौत हो जाती है। तो इन सारी बातों को सोचकर जरा भी लगता है कि आज भी हमारा समाज लेडीज फर्स्ट को समझ पाया है? चलो लेडीज फर्स्ट ना सही, पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिल पाया है? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का हक मिलता है तो आप जमीनी सच्चाई से बहुत दूर हैं। हाँ, वक्त बदल रहा है। बहुत जगहों पर स्त्रियां अपना परचम लहरा रही हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है और कुछ जगहों पर तो वो काफी आगे निकल चुकी हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी भी काम करना बाकी है। लोगों को ये समझना बाकी है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों एक समान होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार 2012 से 2022 के बीच करीब घरेलू हिंसा के 13 लाख मामले सामने आए और लगातार ऐसी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये तो वो महिलाएं हैं जो थाने तक पहुंची। बहुत सारी महिलाएं तो थाने तक पहुंचती ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। अगर घर पर उनके साथ घरेलू हिंसा होती भी है तो वो सह लेती हैं घर की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन घर की इज्जत बचाते बचाते वो अपना स्वाभिमान खो बैठती हैं और इन महिलाओं के लिए उनका घर भी सुरक्षित नहीं रहता। उन्हें पता नहीं होता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक हिंसा की दीवारें आज भी उतनी मजबूत है, समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ने का दावा करता हो। दोस्तों, घरेलू हिंसा के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि आज भी लोगों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से कम है। ज्यादा ना हो पर बराबर की तो है, बराबर का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, दहेज प्रथा। दहेज के बारे में कितने कानून हैं, दहेज से जुड़े हुए बच्चे स्कूल में कितना पढ़ते हैं लेकिन वही बच्चे बड़े होकर दहेज लेते हैं। और विडंबना ये है कि लड़की वाले खुशी खुशी दहेज देते हैं। लड़की के जन्म के साथ ही उनके दिमाग में जो पहली सोच होती है कि इसके लिए मुझे इतने दहेज इकट्ठा करने होंगे। हमने दहेज जैसी समस्या को कितना आम बना दिया है कि ये हमें अब समस्या लगती ही नहीं है। कोई समस्या तभी खत्म होगी जब उसे हम समस्या समझेंगे। दहेज की वजह से बहुत सारी औरतें आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है और कई औरतें तो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसके बाद आता है शराब या नशा। शराब या नशे की वजह से भी घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है क्योंकि नशे की हालत में फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो वो जानवर से भी बदतर हो जाता है और फिर वो हिंसक व्यवहार करता है। और जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष नशे की हालत में ही घरेलू हिंसा को अंजाम देते हैं और कई बार पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी घरेलू हिंसा का कारण बन। महिलाएं जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो फिर उनके साथ कुछ भी हो वो सहती रह जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो जाएंगी कहाँ, करेंगी क्या। और कई बार जागरूकता की भी कमी होती है। हम अपने आसपास जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे माहौल को देखते हैं, हमें लगता है कि वही सच है। और जब आसपास घरेलू हिंसा आम हो तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि यही जीने का तरीका है, वो इसे मानकर अपने जीवन को जीने लगती है। और अगर कुछ महिलाओं को ये पता है कि ये गलत है, जो हो रहा है उनके साथ वो सही नहीं है, तो भी वो चुप रह जाती हैं क्योंकि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर की इज्जत को बचाना है। ये तो कारण हो गए कि किन किन वजहों से घरेलू हिंसा होते हैं। और घरेलू हिंसा से बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो जागरूकता। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उसी चीज में ढल जाएं। उन्हें आवाज उठाना चाहिए और ये बात कि अगर हम बाहर जाएंगे तो घर की इज्जत उछलेगी। कौन से घर की इज्जत? घर तो वो होता है ना जहाँ आप सुरक्षित महसूस करते हैं। घर तो वो होता है ना जहाँ आप थके मांदे आते हैं और कोई आपको पुचकारने वाला मिलता है, कोई आपका ख्याल रखने वाला मिलता है। लेकिन ये कैसा घर है कि जहाँ हर रोज हर पल आप आतंक में जीते हैं कि न जाने अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाए, न जाने कौन आपको क्या बोल दे, न जाने कौन आप पर हाथ उठा दे। उस घर को घर कहना उचित है क्या? यकीन मानिए समाज आपका साथ देगा जब आप अपने लिए आवाज उठाएंगी। यकीन मानिए आपके या आपके घर की इज्जत खराब नहीं होगी अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, बल्कि आपके आसपास की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। ना जाने कितनी सारी लड़कियां, अगर आपकी कोई बेटी है या फिर आपकी बहन है तो उसे भी ये समझ आएगा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आप चुप रहती हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास की लड़कियों को

वो भी चुप रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा शिक्षा बहुत जरूरी है। जब लड़कियां पढ़ती है और उनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वो अपने बल पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं, तो फिर वो मजबूर नहीं होती है घरेलू हिंसा को सहने के लिए। इसके अलावा परिवार और समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आपको भी आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं। समाज के तौर पर भी हमारा फर्ज बनता है कि अगर अपने आसपास ऐसी कोई स्थिति देखे, ऐसी किसी औरत को देखे, तो उसके हक के लिए, उसकी मदद के लिए आगे आए हम, तभी एक बेहतर समाज बनेगा ना। कल को आपके साथ ये हो सकता है, कल के आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ये हो सकता है। इसे रोकने के लिए आपको एक बेहतर समाज बनाना ही होगा। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके आसपास किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप महिला हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 181, 112। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में एक नंबर है 9771468006, यानी कि 9771468006। इस पर आप फोन कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 181, 112, इन नंबरों पर भी आप फोन कर सकते हैं। आप एनजीओ से मदद ले सकते हैं, आप महिला संगठन से जुड़ सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। और कई बार ये होता है कि काउंसलिंग से भी चीज़ें ठीक हो जाती है। जी हाँ, कई बार घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा नहीं होती है और घर के लोगों की और स्त्रियों की काउंसलिंग करके भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है समय पर शिकायत दर्ज कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो आप किसी अपने परिचित के साथ, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए। इसके अलावा अगर लगे कि आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए, तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसके आगे क्या, कितना बुरा, कितना बड़ा हो सकता है, आप नहीं जानती हैं। घरेलू हिंसा में स्त्रियों की मौत तक हो जाती है, इसलिए समय पर शिकायत दर्ज कराना बहुत जरूरी है। अगर हम कानूनों के बारे में बात करें, हालांकि कानून तक पहुंचने से पहले महिलाओं को अपनी सोच से लड़ना होगा, समाज को अपनी सोच से लड़ना होगा, और ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि हमारे समाज में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना ज्यादा करना पड़ता है, और महिलाओं को ये समझना होगा कि ये उनकी किस्मत नहीं है, ये उन्होंने खुद चुना है। आप अगर अभी एक कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी किस्मत खुद बदल लेंगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर हम कानूनों की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में एक कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं को ये भी डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, फिर वो जाएंगी कहाँ, वो रहेंगी कहाँ। तो ये कानून महिलाओं को घर में रहने का अधिकार देता है और ये कानून महिलाओं को संरक्षण देता है। इसके अलावा ये कानून महिला को भरण पोषण और मुआवजा से जुड़े भी सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के जंजीर को तोड़ें, हम अपने अंदर के बंधन को तोड़ें कि हमें चुप नहीं रहना है, हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। अगर आज आप चुप रह जाएंगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपके आसपास की लड़कियां भी कल को चुप रह जाएंगी कि उनके साथ भी तो यही हुआ था, वो चुप रही और उनका जीवन चल तो गया। उस इंसान के साथ, उस घर में रहकर क्या फायदा जिनके साथ आप सुरक्षित ही नहीं है। याद रखिए कि घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं है कि घर की बात है, घर में निपटा लेंगे, नहीं है। ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है। चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आप शुरुआत में ही आवाज उठाएंगी तो ये बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सलाह कि स्त्रियों को अपने से कम आंकना बंद करें, और वो जो पिता हैं, भाई हैं, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस काबिल बनाएं कि कल को उन्हें घरेलू हिंसा चुप होकर ना सहना पड़े। तो आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। सुरक्षित रहें, खुश रहें और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। Ladies first.

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे। हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ

0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन जैसे कि सालों भर पैदा होने वाली बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, मैम है उद्यान सब्जी विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद उमा।
5: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैंगन किस तरह की सब्जी है, और अगर हम प्रभेदों का जब चयन करते हैं तो किन प्रभेदों का हमें चयन करना चाहिए?
6: जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंगन सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद है, और विशेषतः हम लोग जैसे देखते हैं उजला बैंगन जो है वो मधुमेह की रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और इसके अलावा बैंगन में विटामिन ए और बी के काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और लोह जैसे खनिज पदार्थ भी जो है बैंगन में होते हैं, और ये सब्जी जैसे लिट्टी चोखा के साथ में जो बैंगन की चोखा, लिट्टी के साथ में बैंगन की चोखा हमारी जो है एक डेलिकेसी है, बिहार का एक बहुत ही उम्दा खाद्य हम लोग बोल सकते हैं। और इसके लिए जो है बिहार में बैंगन की हर थाली में एक व्यंजन जो है, और वो व्यंजन में बैंगन भी आता ही है, और इसीलिए बिहार के किसान भी बैंगन खूब उगाते हैं। और बैंगन सालों भर चलती है, ऐसे सब्जी है, और इसको हम लोग साल के विभिन्न समय पर लगाते हैं। प्रभेदों का चयन भी उस हिसाब से करना होता है, और ये भी हम लोग देखते हैं कि बैंगन काफ़ी रंगों में होता है, हरे रंग में मिलता है, उजले रंग में मिलता है, या बैंगनी रंग में मिलता है, गोल होता है, लंबा होता है, और हर 20 से 25 किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि बैंगन का जो प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का वो चेंज होता है। कहीं पे आप

0: देखेंगे कि हरे वाले को प्रेफर करते हैं, कहीं गोल वाले को, बैगनी वाले को, भरता के लिए तो बैगनी वाला गोल वाला ही प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जैसे है जो किस्म है उसमें गोल में से पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, पूसा उत्तम है, स्वर्णमणि है, पूसा बिंदु है, काशी संदेश है, पंत ऋतुराज है, सबोर सदाबहार है, ये हमारी किस्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की। साथ साथ में लंबाई किस्में अगर बोलेंगे तो उसमें राजेंद्र बैगन 2 है, पूसा हाइब्रिड 5 है, अर्का शीरीष है, अर्का कुसुमाकार है, अर्का नीलकंठ है, अर्का आनंद है, और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय की सबोर कृष्णकली भी शामिल है।
1: मैम अगर अब हम बुवाई की बात करें तो बुवाई करने की क्या विधि होती है?
0: बैगन को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर फसल के लिए लगभग लगभग 400 ग्राम की बीज चाहिए होता है, अगर वो बीज मुक्त परागित किस्म की हो। यहीं पे अगर ये संकर किस्म की होती है तो बीज की मात्रा लगभग लगभग 250 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बीजों को पहले पौधशाले में लगाया जाता है। पौधशाले में लगाने के लिए जो है लगभग लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची पौधशाला बनाया जाता है जो कि 1 मीटर चौड़ा होता है। और क्यारियों में लगाया जाता है बीज को, और 2 जो जैसे क्यारी बनती है तो 2 लाइन के बीच में लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। और बीज क्योंकि बैगन के बीज काफ़ी छोटे होते हैं तो लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई पे उनको लगाया जाता है। और जो फसल हम लोग लगाते हैं, अभी बरसात शुरू होने वाली है तो अभी का जो फसल है वो खरीफ फसल कहलाता है और यही शरद काल तक चलता है। तो इसमें बुआई हम लोग करते हैं लगभग मध्य जून से शुरू करके हम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक में उसको बुआई करते हैं। और ये जो पौधा है उसका रुपाई का समय होता है 1 महीना लगभग बाद में, यानी कि जुलाई मध्य से लेके अगस्त अंत या सितंबर की पहली हफ्ते तक। और जो ग्रीष्म की फसल है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म की फसल है, उसके लिए हम लोग बीज की बुआई करते हैं नवंबर के मध्य में। और इसके जो फसल जो रुपाई करते हैं इसका, क्योंकि ठंडा आ जाता है उसके बाद में तो बीजों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है, धीरे धीरे जो सीडलिंग है वो बढ़ती है, इसीलिए जो है उसका रुपाई हम लोग लगभग जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में करते हैं। और वर्षा ऋतु का भी जो फसल होता है जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है तो उस फसल को हम लोग लगभग लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में जिसकी बुआई करते हैं, और 1 महीने बाद में यानी कि अप्रैल तक में, मार्च एंड में या अप्रैल में जो है उसकी रुपाई करते हैं।
1: मैम अगर हम बात करें खेत की तैयारी की तो बैंगन के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है?
0: तो बैंगन का पहले तो हम लोग नर्सरी में बीजों को बना लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में रुपाई करते हैं मेन फील्ड में यानी कि खेत में। तो उसके लिए भूमि को 2 से 3 बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, और जुताई जब करते हैं उसमें आखिरी जुताई के वक्त में जो है 25 से 30 टन सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसमें मिला देते हैं, और या फिर जो है कंपोस्ट भी हम लोग मिला सकते हैं। और लास्ट में लगाने से पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है वो 80 किलोग्राम, और पोटैश भी 80 किलोग्राम हम लोग खेत में मिला देते हैं बेसल फर्टिलाइजर 2 डोज के तहत में।
1: जी, और रुपाई की विधि क्या होती है?
0: बैगन की बिजड़ा जब 1 महीने के लगभग हो जाते हैं उस समय पे हम लोग उनको पौधशाला से मेन फील्ड में ले जाके रुपाई करते हैं। तो रुपाई जो हम लोग करते हैं वो साधारण तो हम जो है शाम के वक्त में करते हैं, क्योंकि सुबह में अगर रुपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक की बात होती है, तो पौध बहुत सारे उसमें मुरझा जाते हैं और मरने की भी आशंका रहती है। तो इसीलिए शाम के वक्त में रुपाई करते हैं, और रुपाई करने से पहले अच्छे से खेत तो बना लेते हैं, लेआउट अच्छे से बना लेते हैं, और बैगन की जो पौधे हैं उनको पंक्तियों में रुपाई करेंगे और 2 पंक्तियों में दूरी रखते हैं लगभग लगभग 75 सेंटीमीटर, और पौध से पौध में 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। ये लगभग जो भारी आकार वाली किस्म है इनके लिए है। और थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो अगर संकर किस्म है तो उसके लिए जो ज़्यादा फैलने वाला किस्म है या संकर किस्म है उसके लिए जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं 2 पंक्तियों के बीच में, और 2 पौध के बीच में 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अगर छोटे आकार वाले किस्म होते हैं या जो बौना

0: किस्म होते हैं उसके लिए जो है हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और गर्मी की फसल में भी थोड़ा सा बढ़वार क्योंकि कम होती है इसीलिए हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक चलता है। तो हम लोग ऑलरेडी बुआई जैसे करते हैं उसके एक महीने बाद में जो है उसको रुपाई करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
1: मैम, खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वो किस तरीके से करना चाहिए?
0: जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे लगभग 25 से 30 टन की गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है, साथ साथ में 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 किलोग्राम पोटाश। तो खेत के तैयारी के समय पे जो आधा मात्रा नाइट्रोजन के होते हैं यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरे मात्रा फॉस्फेट और पोटाश का हम लोग दे देते हैं, और जो बाकी आधा मात्रा नाइट्रोजन बची रहती है यानी कि 60 किलोग्राम जो बचा होता है उसको 3 बराबर खुराकों में टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग रुपाई के 30 दिन 45 दिन और 60 दिन बाद में दे सकते हैं।
1: मैम, सूक्ष्म पोषक तत्व भी काफी महत्वपूर्ण होता है, तो किसान भाई बहन सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें?
0: बैगन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि फल की गुणवत्ता और पौधे की वृद्धि जो है ये उस सूक्ष्म पोषक की जो उपयोग है उसी पर निर्भर होता है, निर्भर करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 0.15% जो प्रतिशत कॉपर की प्रयोग से फूल या फलों में जो है संख्या इनका फूल का और फलों का भी बढ़ता है, और साथ साथ में अगर 0.5% जिंक का उपयोग करते हैं तो फलों की वजन भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो है हम लोग पौध के रोपाई के 4 से 6 हफ्ते बाद में जो है माइक्रोन्यूट्रेंट का मिक्सचर मिलता है, उसका काफ़ी सारा ट्रेड नेम में मिलता है, एक मिक्सटालोल होता है, उसका 4 PPM के डोज से छिड़काव हम लोग कर सकते हैं, और सारे पौधों में जो है 1 हफ्ते के अंतराल पर जब रुपाई करते हैं उसके 60 से 70 दिन से शुरू होने के बाद में 2,4-D के 2 PPM का भी 2 छिड़काव अगर हम करते हैं 1-1 हफ्ते के अंतराल पर, तब फलों का संख्या अधिक हो सकता है और साथ साथ में उपज भी जल्दी मिलने लगता है।
1: जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मैम बैगन के फसल के लिए?
0: बैगन के फसल के लिए पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो रुपाई के तुरंत बाद करना ज़रूरी है क्योंकि उस समय पे रुपाई के बाद में हम लोग अगर जल अच्छे से देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसको हल्के मात्रा में ही देना चाहिए, तो उसमें फसल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है। उसके बाद में फसल की ज़रूरत अनुसार में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं, और जो खरीफ फसल है इसमें वर्षा को देखते हुए पानी देना ज़रूरी है, अगर वर्षा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि खेत से जल निकासी का व्यवस्था अच्छे से रहे, और जब शरतकालीन जो फसल होता है जब हार्वेस्ट होने लगते हैं फसल काफ़ी 2-3 महीने के हो जाता है, खरीफ फसल ही नवंबर दिसंबर के समय से जो है उस समय पे जो है 7 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम लोगों को एक एक सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पे जब ग्रीष्मकालीन जो फसल है उस समय पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उस समय पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर एक एक सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और जब हम लोग नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद एक सिंचाई हल्का सिंचाई देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
1: मैम, किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि खर पतवार बहुत उगाते हैं, तो खर पतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: बैगन में खरपतवार की प्रबंधन करने के लिए हम लोग लगाने के लगभग 45 दिन बाद से जो है मैनुअल अगर निराई गुड़ाई से उसमें फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार को मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग पौध रोपण से पहले प्री इमर्जेंस स्प्रे के तहत से जो है पेंडीमिथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे अगर हम लोग उसको छिड़काव करते हैं ये पौध रोपण से पहले तो भी जो है काफ़ी हद तक जो है ये शुरुआती जो है 2-3 महीने तक में जो है खरपतवार का नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके बाद में हल्का फुल्का निराई गुड़ाई करना आवश्यक रहता है। लगभग 60 से 90 दिन तक अगर हम लोग फसल को

0: खरपतवार से मुक्त रखते हैं तब जो है उसमें अच्छे हिसाब से उपज आ सकता है।
1: कीटों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को, तो कीटों से बचाव कैसे करना चाहिए?
0: बैंगन में कीट का बहुत ज़्यादा ही इन्फेस्टेशन रहता है। सबसे भयानक जो कीट हम लोग बोल सकते हैं बैंगन का, वो है तना एवं फल छेदक। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तना एवं फल छेदक के

हैं या फिर कोई मटर वगैरह ये सब भी फसल लगा सकते हैं, लेकिन बैगन को हम लोग फिर जो है 2 से 3 साल ना लगाएंगे तो एक ही खेत में, तो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है कीड़ा जब लगता है, पहले तो वो पौधे के तना में लगता है, तो जब पौधे के तना में लगेगा तो ऊपरी भाग हम देखेंगे कि उसमें हल्का सा मुरझा हुआ रहता है, तो जहाँ तक मुरझा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे तक हम अगर काट देते हैं, उसको तना को छांट देते हैं, तो

0: कि उसमें हल्का सा मुरझा हुआ रहता है। तो जहां तक मुरझा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे तक हम अगर काट देते हैं, उसको तना को छांट देते हैं, तो उसमें देखेंगे उसके अंदर में जो है कीड़ा है। तो उतने भर हम तना को छांट देंगे और तना को खेत में फेंक के नहीं रखेंगे, उसको एक गमले में या किसी में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और सारे खेत में वो तना की छटाई अच्छे से करने के बाद में जो है उसको एक मिट्टी के अंदर में दफना देंगे। तो उससे भी जो है ये कीड़ा का मैनुअल जो है हम लोग मैनुअली कलेक्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा भी जो है बैगन के कीड़े के भी ये तना और फल छेदक का फेरोमोन ट्रैप आता है, तो फेरोमोन ट्रैप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग लगभग 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग 12 ट्रैप की इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है तना एवं फल छेदक का अच्छे से सप्रेशन हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें साइपरमेथ्रिन 5% प्लस क्लोरपाइरीफॉस 50% का जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दवा आता है, तो उसको हम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करेंगे। इसको हम लोग ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इंडोक्सा कार्ब मिलता है एक दवा, उससे वो भी 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं, या फिर स्पाइनोसैड करके एक दवा आता है, उसके आधा मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। याद हमको रखना पड़ेगा कि अभी हम लोग अगर केमिकल की छिड़काव करते हैं तो तुरंत ही हम लोग जो है उसका कटाई या फल की तोड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम केमिकल की छिड़काव कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोग 5 दिन रुक के फिर फल की तोड़ाई करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमने आज फल की तोड़ाई किया सुबह में, शाम में इसके छिड़काव कर दिया, फिर 5 दिन रुक गए, उसके बाद में तोड़ाई किया।
1: और मैम, रोग भी काफी लगते हैं बैंगन के फसल में, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: बैगन के फसल में शुरुआती एक जो रोग है नर्सरी का, वो है डैम्पिंग ऑफ, वो काफ़ी लगता है। तो इसके लिए जो है नर्सरी को हम लोगों को पहले तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बीजों को लगाने से पहले बीज की उपचार करना पड़ेगा। बीज को हम लोग थाइरम या कैप्टन 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करके लगा सकते हैं, या फिर जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से कार्बन डाइजिम से भी हम लोग बीज की उपचार कर सकते हैं। लेकिन डैम्पिंग ऑफ अगर जो सीडलिंग जब लगाए बीजड़ों पे अगर आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग मेटालाक्सिल प्लस मैंकोजेब नाम की केमिकल है वो मिलता है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करेंगे। जब फसल बड़े होने लगते हैं तो बैगन में बैक्टीरियल विल्ट की प्रकोप होती है, जो कि जीवाणु मुरझा रोग बोलते हैं। तो इस समय पे हम देखेंगे कि बैगन में जब फूल आने लगते हैं, इस समय पे मैक्सिमम टाइम पे देखते हैं ये रोग पहली बार फील्ड में देखा जाता है। तो इसके लिए जो है खेत की तैयारी के समय पे ही जो है जुताई के समय पे अगर 15 से 20 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब क्रॉप खत्म हो गई पिछली तो उस समय पे डीप प्लाउइंग करते हैं, तो उसमें गहरी जुताई करके नीचे की जो मिट्टी है ऊपर लाते हैं, तो उससे भी जो है नीचे की जिसे भी जो भी कीटाणु जीवाणु मिट्टी का था वो सूर्य की किरणों से जो है हाई सनलाइट जब पड़ता है उसकी जो ताप होती है उससे भी वो मर जाता है, तो उससे भी वो कीटाणु जीवाणु खत्म होते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, और 4.5 क्विंटल चूना भी उसके साथ साथ में मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इससे जो है मिट्टी का शोधन होता है, क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट का जो जीवाणु है वो उसी में रहता है, तो उससे वो खत्म हो जाता है। और साथ साथ में खेत का जल निकासी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, और अगर फिर भी फसल में आ जाता है तब जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम के साथ साथ में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, उसके साथ साथ में 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में, ये साथ में घोल करके हम लोग उसका अच्छे से पर्णीय छिड़काव करेंगे। और साथ साथ में ये भी देखना होगा कि जो पौध के जड़ के पास में इसका छिड़काव अच्छे से होना चाहिए, जिसको ड्रेंचिंग हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ करना ज़रूरी है।
1: मैम, अब बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। अगर हम बात करें तुड़ाई की, सबसे पहले तो

0: तुड़ाई किस तरीके से और कब करनी चाहिए, और उपज कितना होता है बैंगन का?
1: हाँ, तो बैंगन का तुड़ाई हम तब करेंगे जब फल अच्छे से मुलायम रहे, पूरे साइज आ गया लेकिन फल मुलायम हो और कड़ा ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि कड़ा अगर हो जाता है बैंगन में बीज भी ज़्यादा भर जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छा नहीं रहता है। तो ध्यान देना होगा कि सही स्टेज पे इसकी तुड़ाई किया जाए। तो फल को जो है हम लोग चाकू से या कोई तेज यंत्र से या हाथ से भी जो है तोड़ेंगे, और तुड़ाई करने के बाद में फलों को छटाई करके विपणन के लिए विभिन्न आकार के टोकरियों में रखेंगे। तुड़ाई को या तो हम लोग सुबह करेंगे, वही सबसे सही समय है, या फिर हम शाम के समय पे करेंगे, बीच में हम लोग नहीं करेंगे। और अगर हम लोग अच्छे से हम लोग खेती करते हैं बैंगन का, तो किसान भाइयों को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दौर से तो उपज मिल ही सकता है। ये भी जो है ओपी वैरायटी जो है, मुक्त परागित जो किस्म है उससे, और अगर संकर किस्म होता है तो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उपज मिल सकता है।
0: तो किसान भाई बहनों, अगर आप अच्छी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, सही देखभाल के साथ बैंगन की खेती करेंगे तो आपको काफी मुनाफा हो सकता है। और मैम ने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
1: धन्यवाद उमा।
0: तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अभी इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना। टीकों, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान के सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले

बच्चों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बेंडाइजीन के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों के स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और

रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।

0: ഭാരത് കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़. मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जी हाँ, बहुत सारी बातें खेती बाड़ी से जुड़ी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, तो उन सारी बातों को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए. तो आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं. जी हाँ, पार्थेनियम के बारे में हम जानेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम आपको विषय बता देते हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में पार्थेनियम का उपयोग, इसके बारे में आज हम जानेंगे. और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ए के झा. मैं आपको बता दूं, ये मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बता दें कि वर्मी कम्पोस्ट क्या होता है.
1: ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊँ, वर्मी कम्पोस्ट, जैसा कि नाम ही है, वर्म के द्वारा बनाया गया कम्पोस्ट, यानी एक खास प्रकार का कम्पोस्ट है जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है.
0: जी,
1: बहुत सारी चीजें हम से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं या गोबर पुआल के मिक्सर से बना सकते हैं. वाटर हाइसिंथ यानी जिसको जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी और गोबर के मिश्रण से भी बना सकते हैं, पार्थेनियम से भी बना सकते हैं, यानी हम जिस चीज से भी बनाएं, लेकिन केचुआ की इसमें सहभागिता होती है. केचुआ इसे खाता है और अपने शरीर से निकालता है एक कास्ट, चाय की पत्ती जैसी संरचना. तो उसी चाय जैसी जो पत्ती जैसी संरचना है, उसी को आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं.
0: जी, तो ये तो बातें हो गई वर्मी कंपोस्ट की, और अब हम बात करते हैं पार्थेनियम की. तो सर, इसका जो पोषक मान्य है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें.
1: देखिए, पार्थेनियम तो एक खरपतवार है जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए भी, सब जगह. यदि वो बीज बन जाता है तो इतनी संख्या में उसका बीज बनता है कि वह फसलों के लिए या दूसरे जगह भी बहुत बड़ी समस्या हो गई हुई है.
0: अच्छा,
1: अब यह है कि यदि हम इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में मुझे जानना होगा कि इसमें पोषक मान क्या है. अच्छा, यदि हम पार्थेनियम को देखें तो इसमें लगभग 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस भी 0.44% यानी 0.5% के आसपास इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, पोटास भी 0.25% के आसपास, 1.23% जो यहाँ जांच किया था तो 1.23% इसमें पोटास पाया गया, जस्ता भी 13.9 PPM पाया जाता है, लोहा 528 PPM पाया जाता है, तांबा 8 PPM पाया जाता है, मैग्नीज 161 PPM पाया गया. यह खास तरह का जो हमने जांच किया था उसमें पाया गया, दूसरा कोई जांच करता है तो हो सकता है उसमें कुछ अंतर हो, लेकिन हमने जो इसकी जांच किया था तो उस समय यह पोषक मान पाया गया.
0: जी, तो ये बातें हो गई हैं पार्थेनियम की. और अगर डॉक्टर साहब, यदि हमारे किसान भाई पुआल के स्थान पर पार्थेनियम का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या वर्मी कंपोस्ट के पोषक मान पर कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर हाँ पड़ता है तो कैसे, वो भी बता दें.
1: बिल्कुल सही बात आपने पूछा. ये किसान, एक चीज निश्चित रूप में इनको स्पष्ट करना जरूरी है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कहीं केचुआ बाहर से तो पोषक मान डालता नहीं. जो सब्सट्रेट हम प्रयोग करते हैं, जो बर्मी कंपोस्ट बनाने में पदार्थ प्रयोग करते हैं, उसी के पोषक मान के ऊपर यह निर्भर करता है कि हमारा बर्मी कंपोस्ट का पोषक मान क्या होगा.
0: जी,
1: अब यदि इसमें मान लीजिए कि आप ऐसा चीज प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अजोला प्रयोग करें, इसमें 4.5% नाइट्रोजन होगा, तो निश्चित रूप में जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा वह ज्यादा नाइट्रोजन वाला बर्मी कंपोस्ट बनेगा. तो इसी तरह से यदि हम पुआल की बात करते हैं तो पुआल में हम यदि देखते हैं तो पोषक मान समानतया कम होता है पार्थेनियम की तुलना में.
0: जी,
1: तो इसी तरह से यदि हम पार्थेनियम प्रयोग करते हैं या जलकुंभी प्रयोग करते हैं, उसका पोषक मान ज्यादा होता है, तो उससे जो बर्मी

0: कंपोस्ट बनेगा उसका पोषक मान निश्चित रूपेण ज्यादा होगा। जैसे हमने जो वर्मी कंपोस्ट बनाया था उस वर्मी कंपोस्ट में हमने 40% उसमें हमने लिया था पार्थेनियम और जो 60% है वो गोबर का प्रयोग किया था। तो अब जो 40% हमने दूसरा वाला जो पुआल वाली बात आपने किया, यदि मान लीजिए 40% आप पुआल प्रयोग करते हैं और 60% गोबर प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इस सब के पोषक मान में अंतर आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बताऊं तब जाकर के आपको स्पष्ट होगा। जैसे मान लीजिए पुआल है, 40% पुआल आपने प्रयोग किया, 60% गोबर प्रयोग किया, इसमें यदि आप नाइट्रोजन देखें तो इसमें नाइट्रोजन आपको कम होगा, यानी 1.368% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। लेकिन वही पार्थेनियम में यदि प्रयोग हम करते हैं तो पार्थेनियम में 1.76% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यदि पुआल वाला है तो फास्फोरस उसमें आप देखेंगे कि पुआल यदि आप 40% प्रयोग करें और 60% उसमें गोबर प्रयोग करते हैं तो इसमें 0.757% के आसपास आपको फास्फोरस होगा। जबकि जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वो कहता है कि 0.8% के ऊपर उसमें फास्फोरस होना चाहिए। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 0.808%, यानी 0.8 के यानी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन यह फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुरूप बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम उसमें ऐसी चीजें डालते हैं तो निश्चित रूपेण उसका पोषक मान बढ़ता है। इसी तरह से हम पोटास की बात करें तो पोटास में यदि हम देखते हैं कि यदि सिर्फ पुआल और गोबर से बनाते हैं तो इसमें 0.992% इसमें आपको पोटास पाया गया। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो पार्थेनियम के प्रयोग से देखा कि 0.966% इसमें हमारा पोटास पाया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम पुआल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि फास्फोरस मेरा थोड़ा कम हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए आपको कोई दूसरी विधा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप इंडिस्ट बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको 0.8% के ऊपर फास्फोरस रखना ही रखना है। यदि आप बर्मी कंपोस्ट बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूपेण आपको 0.8% से ऊपर फास्फोरस भी रखना है, 0.8% से ऊपर पोटास भी रखना है, नाइट्रोजन भी 1% के ऊपर रखना है। तो आप इसके लिए उसमें ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो कि आपको ऑर्गेनिक खेती में भी प्रयोग कर सकें, हार्म ना हो और साथ ही साथ उसमें पोषक मान भी उतना रहे। तो आपने जो पूछा था कि इसमें कितना प्रतिशत हमको जो है क्या कहते हैं फायदा होगा, यानी कितना फायदा होगा, तो यह निश्चित रूपेण है कि अच्छा जलकुंभी प्रयोग करते हैं, जलकुंभी में आप देखेंगे कि पार्थेनियम से भी ज्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास पाया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हमने अजोला की बात किया, अजोला में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास या और ज्यादा है। तो यदि अजोला वाले आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप में उसमें पोषक मान ज्यादा होगा। इवन कार्बन की भी बात करते हैं तो कार्बन ज्यादा होगा। तो यदि हम इस ढंग का बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उससे हमारा मृदा स्वास्थ्य ज्यादा ठीक होगा। और इसी तरह के बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है, जिससे कम मात्रा में भी बर्मी कंपोस्ट हम बना करके हम ज्यादा से ज्यादा पोषक मान को ठीक कर सकें, हम अपनी मिट्टी की सेहत को ठीक कर सकें और ज्यादा पोषक मान की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें, ये ज्यादा जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब ये बात कर रहे हैं हम पार्थेनियम की, तो अगर हम इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो कैसे करें हम, वो भी बता दें।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने में यदि पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पार्थेनियम ऐसे ही डाल देते हैं।
1: जी
0: ऐसा नहीं करें, वो करें क्या कि इसको एक एक इंच के टुकड़े में काट लें।
1: अच्छा।
0: पार्थेनियम को एक एक इंच के टुकड़े में काट लिया, अब उसमें 40% पार्थेनियम आप रखिए और 60% गोबर, दोनों को आप मिला दीजिए। अब मिला करके उसको 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके पास कंपोस्टिंग कल्चर है तो कंपोस्टिंग कल्चर ऊपर से छिड़काव कर दीजिए, या पंचगव्य है तो पंचगव्य का छिड़काव कर दीजिए, वो और कुछ नहीं करेगा। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, उसके परिणाम से क्या होगा कि आंशिक अपघटन आपका तेजी से हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी बनाती है, नेफेड कंपनी भी बनाती है, आपका गाजियाबाद वाला है वो भी कंपोस्टिंग कल्चर बनाता है, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी कंपोस्टिंग कल्चर बनता है। तो वह थोड़ा सा आप डाल दें तो वो आपको बहुत बढ़िया से आपको सड़ जाएगा। तो 3-4 हफ्ते में कुछ आंशिक अपघटन हो गया, उसके बाद उसको आप ढेर लगा लें। ढेर लगा देने के बाद उसकी थोड़ी हल्की सिंचाई कीजिए और उसमें हाथ डाल करके देखिए, यदि वो ठंडा हो गया है ढेर तो उसमें आप केचुआ डाल दीजिए। कितना केचुआ डालेंगे, यदि आपके पास 1 टन मटेरियल है तो 1 टन मटेरियल में आपको 1000 से 2000 केचुआ डालना चाहिए।

0: 1000 से 2000 केचुआ डाल दिया, अब उसकी सिंचाई आप प्रॉपरली कर रहे हैं जिससे 60-65% नमी उसका बरकरार रहे, कम से कम तो 65% के आसपास नमी बरकरार है, उसी ढंग का आप सिंचाई करते रहिए ऊपर से। और वो जो सिंचाई आप कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद, लगभग 2-3 4 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ऊपर में चाय की पत्ती जैसी संरचना बन गई है, यानी कि महीन महीन बन गया हुआ। उसके बाद आप सिंचाई को 3-4 दिन के लिए रोक दीजिए, और सिंचाई रोक करके ऊपर से वो जो चाय की पत्ती जैसी संरचना है उसको हाथ से या किसी लकड़ी से उसको आप हटा देंगे। अच्छा। वहीं तक हटाइएगा जहां तक केचुआ आपको नहीं दिखे। जब केचुआ दिखा इसका मतलब कि अभी इधर प्रक्रिया चल रही है, यहां पर वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। हाँ, ऊपर वाला बन चुका हुआ है, तो ऊपर वाला आप हटाते जाएंगे तो आपका वर्मी कंपोस्ट तेजी से बनेगा, नहीं हटाएंगे तो थोड़ा धीमा बनेगा, इसीलिए आप उसको हटा करके साइड में कर लीजिए। और उसके बाद आप 4 mm की जाली से उसे छान करके पैक कर लीजिए, तो वर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया। तो ये जो है क्या कहते हैं आप उसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, जहां आप ढेर लगाते हैं वो थोड़ा सा यदि ढालू हो तो ज्यादा बढ़िया है, कि धोखा से यदि ज्यादा पानी पड़ गया तो वो वहां से बह करके निकल जाएगा। तो इस ढंग से आप करेंगे, हाँ, वहाँ पर वायु का संचार भी ठीक ठाक रहे, इसीलिए जिस शेड में आप बना रहे हैं वहाँ पर आप देखिएगा कि ऊपर कुछ जगह खाली हो, 1-2 हाथ जगह खाली हो जिसमें कि वायु का संचार प्रॉपरली वहाँ पर हो सके। कुल मिलाकर के आप क्या करते हैं, वह व्यवस्था देते हैं जो केचुआ के लिए ठीक ठाक है, जिस पर केचुआ बढ़िया से चल सके वही व्यवस्था आप करते हैं, तो आपका वर्मी कंपोस्ट तेजी से बनता है। तो यही चीज आपको करना है इस ढंग से करके। जब आपने हाँ, इसमें एक चीज बताएं, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में यह भी है कि 15-25% नमी हो, इसीलिए जब वर्मी कंपोस्ट आप पैक करने लगे तो उसमें निश्चित रूप से आप देख लें कि 15-25% के बीच में हमारी नमी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हार्मोन इस सब की एक्टिविटी तभी होती है जब उसमें नमी बरकरार हो। तो इसीलिए आप नमी का भी ध्यान देंगे और नमी की व्यवस्था आप देख करके उसके बाद आप इस ढंग से कर दीजिए, बिल्कुल आपका रेडी हो गया प्रयोग करने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब कभी भी पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए, जब बीज बना उसके पहले ही आप पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए। जब बीज बन जाएगा और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो वो बीज आपके खेत में भी पहुंच जाएगा और वहां पर आपको फिर पार्थिनियम पैदा होने लगेगा। इसीलिए यह निश्चित रूप में विशेष ध्यान दीजिएगा कि उस समय आप नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि इसका प्रयोग आप उसी समय कीजिएगा जब बीज नहीं बना है, यानी बीज बनने के पहले का ही पार्थिनियम आपको प्रयोग करना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आज एक महत्वपूर्ण विषय आप सभी ने जाना, सभी किसान भाइयों की, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में आप पार्थिनियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, सारी विधि यहाँ पर आपको बताई गई है। आशा करते हैं कि आप जरूर अच्छे से इसका उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम

0: परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की?

0: और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
1: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
0: जी।
1: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
0: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
1: जी।
0: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
1: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
0: जी,
1: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
0: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
0: जी।
1: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो तो
0: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
1: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
0: जी,
1: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
0: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोता, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: आहा, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक

0: कूंचे होते हैं।
1: बिल्कुल कहा।
0: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
0: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
4: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
4: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
4: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
4: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
4: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: हाँ, जी मैम।
0: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
0: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
6: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
2: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
2: सचिन जी, पक्षियों

0: में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन।

0: एक हिरन भाई एक हिरन, क्यों जी दीपू कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा।

0: कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: राम जी, अब तुम सो जाओ। दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
3: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
3: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
3: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
3: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
3: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
3: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम। मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
3: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
6: जगबंधु,
5: चेतना
6: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
5: नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग।

0: खांसी।
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं। और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं। और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
5: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
7: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
5: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
7: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है। लेकिन अब हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादक

0: की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है। इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी क्या मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से, अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं, वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
1: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी, उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
0: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं, तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है, वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है, उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी, जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
1: जी सर। सर, बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया, तो बुआई का उचित समय क्या है?
0: बुआई का तो उचित समय, जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है, 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है, बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है। आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में, बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद, यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। तो बेबी कॉर्न जो है ना, बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं, उसको हरे फसल के रूप में, जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत, जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक भूटा 10 रुपये से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपये में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर। सर, बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या?
0: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेढ़ बना लेना है, मेढ़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है।

0: और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिम, तो हवा बीच से दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में
0: हाँ, देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हर एक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है इसमें, उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वेराइटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें, तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं, कॉब बोरर आता है बाद में भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा

0: जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है, ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं, तो पानी निकल ही जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए, फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं, वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए। लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है, और इस एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है, तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वेराइटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें, बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें, और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए, और बीज का कुछ सैंपल रखिए,

0: पांच दस दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है, और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवे का उपचार कीजिए, और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना?
0: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूले। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज।
1: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगेगा।
0: अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये क्या चल रहा है?
2: अरे प्रिया, आज बड़ा अच्छा दिन है, गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, गुड़िया। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थीं। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थीं। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए

0: सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थीं, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थीं, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बात है, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
1: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से बताइए।
0: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: मतलब ये सीधी सीधी जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
0: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानती हो प्रिया?
1: क्या सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
0: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
1: मतलब इंसान को पता नहीं चलता?
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है, इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
0: यही तो अच्छी खबर है प्रिया, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में? कैसे?
0: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग को भी अच्छे से समझ सके।
0: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
0: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
0: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है क्या?
0: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र की हो?
0: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर।
1: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों का क्या भूमिका है?
0: यही तो सबसे अहम बात है प्रिया, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइए।
0: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उससे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
0: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई तो वहीं हार जाएंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती है। कोई कहता है कि यह टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
0: देखो प्रिया, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
1: मतलब इनमें से किसी बात में सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
0: वो भी

0: पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही यह पहले से ही सुरक्षा देता है। जरा सोचो प्रिया, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंच सके। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसी कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहां रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाईं, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाइए, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, यह कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए, जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत

0: समृद्ध बनेगा, सेहत सही तो लाभ कई।
1: तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
1: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बात।
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
3: डॉक्टर खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz। मैं हूँ अनु और एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम। जी हाँ, हम बात करते हैं आज अपनी मृदा के बारे में और जल के बारे में। जी हाँ, अगर मृदा और जल नहीं रहेंगे तो हमारे किसान भाई फसल कहाँ से उगा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस जल से सिंचाई कर रहे हैं, आप जिस मृदा में फसलों को उगा रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता वाले हों। और इसीलिए समय समय पर मृदा परीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जिस जल से सिंचाई करते हैं हमारे किसान भाई उसका परीक्षण भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर मैं साफ तौर पर कहूँ तो आज हमारा विषय यही है, मृदा जल परीक्षण। और इसके बारे में आप सभी को विशेष जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर DK वर्मा, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद मैडम।
5: डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि मृदा परीक्षण कब करना चाहिए।
6: अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे जो होते हैं उनको ये हमें सही से अनुमान नहीं होता है कि हमें मृदा का जो है कि सैंपल कब इकट्ठा करना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। जब भी हमको मृदा का करना हो परीक्षण, उसके पहले हम जो है कि जब तक उसकी सॉइल सैंपलिंग यानी कि हमें नमूना का संग्रह ठीक से नहीं होगा तो हम उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट जो है कि वो सही से नहीं आ पाएगा। इसलिए हमको ध्यान देना होता है कि पहले उसका नमूना कैसे संग्रह किया जाए। नमूना संग्रह करने के लिए हमें फर्स्ट होता है कि जब भी हमें क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है, कोई भी फसल हो, जैसे अभी हमारी धान की फसल की कटाई हो गई हो, हाँ, या तो गेहूं की फसल की जब कटाई हो जाती है, उसके बाद जो है कि हमको उसका संग्रह करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले जो है कि ऊपर परत जो है कि हमें अगर हमारा 10 से 12 कट्ठे का ज़मीन है या 1 बीघे का ज़मीन है, उसके अकॉर्डिंग हमको जो है कि सैंपल को इकट्ठा करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 4-5 जगहों से जिग जैग आकार में

0: रैंडम विधि से कहीं से भी सैंपल को हमको इकट्ठा करना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करता है कि मिट्टी के ऊपरी सतह जो होती है उसको हमें अच्छे से उसको खुरपी से फावड़े से साफ कर देना चाहिए, फिर भी शेप में आकार में जो है कि हमको मिट्टी का संग्रह करना चाहिए ताकि वो 0 से 15 सेंटीमीटर का जो हमारा लेयर होता है वो उसमें आसानी से मिट्टी आ जाए।
1: जी जी।
0: और ये क्रिया हम लोग जो है कि 5-7 जगहों से करें, कम से कम 1 kg सैंपल हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं।
1: जी, समय की बात करते हैं, कब करना चाहिए, किन फसलों में समय भी एक एक्यूरेट समय होता होगा कि विभिन्न फसलों के लिए इस समय करना चाहिए मृदा परीक्षण, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए।
0: जैसे हमारा हो गया कि बहुत सारी हमारी जो है कि ये फसलें होती हैं जो कि सीरियल्स हम लोग जिसको बोलते हैं, सीरियल्स वाली फसलों में क्या होता है जनरली हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए, हमारा कटिंग हो गया है और बुआई का कम से कम 1-2 महीना उसको हमारी मिट्टी जो है कि खुला रहती है, उसमें कोई क्रॉप हमारा नहीं ग्रो किया जाता है, उस टाइम पे जो है कि हमको मृदा परीक्षण कर लेना चाहिए और मृदा परीक्षण मतलब कि उसका सैंपलिंग कर लेना चाहिए, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई लोग जो है कि जुताई उताई कर देते हैं और उसको जो है कि खाद भी कभी कभी गोबर की खाद ये सब डाल देते हैं, तो इस कंडीशन में जो है कि हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप उसमें कोई भी खाद फर्टिलाइजर अगर डाल देते हैं तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए ताकि वो उसका वो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा और जो है कि वो आप जो अलग से डाले हुए हैं खाद है ये सब चीज़ें हैं उसमें अगर वो ऐड हो जाएंगी तो आपका नमूने का सही रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए जब भी कोई भी क्रॉप हो उसको बुआई से पहले हमारा जो है कि उसको हमें सैंपल को इकट्ठा कर लेना चाहिए और जब भी हमें बुआई से हो तब तक अगर हम आप जो लेबोरेटरी है अगर वहाँ पे हमारा सैंपल चला जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग सोइंग के टाइम में अपना खाद का उपयोग कर सकते हैं।
1: जी, इससे क्या लाभ मिलेगा किसान भाइयों को?
0: हाँ, इसमें लाभ क्या होता है मैडम कि हमारा जितना भी फसल हो रही है उसमें किसान भाइयों का क्या हो रहा है कि लागत जो है कि हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हमारा उपज जो हो रहा है वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से उसका फसलों का जो है कि दाम मिलेगा, तो अगर हम लागत को ही पहले ही कम कर दें तो हमारे फायदे जो है कि और डबल हो सकते हैं। इसलिए क्या करना है कि वो उससे होता क्या है कि हमारा जो इनपुट यूज कर रहे हैं जो कि खाद है, अगर हमारा नाइट्रोजन चाहिए मान लीजिए कि 150 kg, हाँ, और लेकिन हम लोग फार्मर्स बिना उसको जांच किए हुए उसको जो है कि 200-250 kg हम लोग पर हेक्टेयर डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा इनपुट उसमें बढ़ जा रहा है क्योंकि सही आपको पता नहीं है। मिट्टी तो कभी ये नहीं कहेगी कि हमको मत डालो, जैसे ओवर डोज होने के बाद आदमी के शरीर में किसी चीज के हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी में रिएक्शन तो जो है हो रहे हैं वो दूसरे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी जो घट जा रही है उनको नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान रखते हुए और सही एक्यूरेसी देंगे तो हमारे लागत को जो है कि कम किया जा सकता है।
1: अभी आपने कहा था कि नमूना संग्रह का तरीका थोड़ा सावधानी से करना चाहिए, तो क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए नमूना संग्रह करते समय?
0: हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो कि हमें कैसे नमूना को संग्रह करना चाहिए। नमूना संग्रह करने के लिए मैडम जो है कि हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला होता है कि जो हम जब भी कहीं भी सैंपल लें नमूना संग्रह कर रहे हैं तो जो हमारे खेत की चारों दीवार होती है मेड़ होती है बंड बनाया जाता है चारों तरफ, उससे जब भी हो कम से कम 1 से 2 फीट दूरी बना के हमको सैंपल लेना चाहिए। मेड़ के नज़दीक कभी भी सैंपल नहीं लेना चाहिए, इससे क्या होता है कि बगल वाला फील्ड का भी जो है कि उसका जो है कि फर्टिलाइजर लीचिंग सीपेज हो रहा है पानी से हो रहा है तो वो सब चीज़ें
1: आ सकती,
0: इससे उसका रीडिंग सही नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम फसल का सॉइल सैंपल ले रहे हैं किसी भी जगह का, उसमें हमको ये ध्यान देना चाहिए कि वो नमी ना हो उसमें। अगर मृदा में बहुत ज़्यादा नमी है उस समय भी अगर हम लोग ले रहे हैं सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी उसका जो है कि वो सही टाइमिंग नहीं होता है, उससे आपको बहुत सारी सुविधाएं जो है कि असुविधा हो सकती है सैंपल को लेने में, उसको रखने में, सुखाने में, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसको हमें नमी के चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि जब मॉइस्चर ऑप्टिमम रहे, पैर उसमें आसानी से आ जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तभी हमको सैंपल लेना चाहिए। और तीसरा होता है कि आप जब भी सैंपल लें तो ऐसी जगह से सैंपल

0: पल्ले जहाँ पे कि कहीं पे खाद या किसान भाई बंधु क्या करते हैं कि किसी खेत के कोने में जो है कि गोबर ओबर इकट्ठा करते हैं, बाद में उसी को उसी खेत में डाल देते हैं, तो उससे थोड़ा दूरी बना के हमको लेना चाहिए ताकि उसका इफेक्ट ना आए।
1: जी जी
0: ठीक है
1: जी। तो यहाँ पर हमने मृदा परीक्षण के बारे में तो बहुत सारी बातें की, अब चलते हैं जल परीक्षण की तरफ। तो हम अभी खेती की बात कर रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे सिंचाई योग्य जल की। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि ये जो जल है ये उपयुक्त है सिंचाई के लिए?
0: बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं ये जल की महत्ता को भी लोग नहीं जान पाते। ऐसा नहीं है कि उनको पता चीज़ें नहीं होती हैं कि जल क्या है वो है, लेकिन वो केमिकली क्या है उस हिसाब से हम लोग जो है किसान अभी नहीं ध्यान दे पाते हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म में होता है। सडनली जैसे हम लोग अगर कहीं पे फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमको दिखाई देता है कि इसका इफ़ेक्ट हो रहा है फसलों पे, लेकिन जल का जो ऐसा एक चीज़ है जो कि वो तुरंत उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो जल के जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे एरिया हैं जो कि जैसे आपका कोसी रीजन देखिए, वहाँ पे आयरन की बहुत टॉक्सिटी है। हाँ, और हमारा इस जगह पे हमारे भागलपुर में फ्लोराइड और आर्सेनिक की भी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें तो एक्चुअली क्या है कि हमारे फसलों के लिए नहीं है, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़्यादा जो है कि हानिकारक है। और कुछ जैसे फसलों के लिए जो मेन मुख्य होते हैं वो हम लोग देखते हैं हमारा ईसी, जिसको कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं, और उसमें जो है कि पीएच कितना हो रहा है, एसएआर कितना है। एसएआर मतलब क्या होता है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, और होता है हमारा आरएससी, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। तो एसएआर जो होता है वो रिप्रेजेंट हमारा करता है कि सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है और कैल्शियम मैग्नीशियम के हिसाब से। तो इन चीज़ों से जो है कि जो हमारा ईसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या करता है कि आपका साल्ट कंसंट्रेशन जो हमारे सॉयल में वाटर में है वो आपको बताता है। अगर हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा है किसी भी जो है कि जल के जिसमें हम सिंचाई कर रहे हैं, तो वो हमारे फसलों के लिए लाभदायक नहीं है
1: जी।
0: ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और इसी प्रकार से एसएआर वैल्यू जो है, एसएआर वैल्यू को जो है कि हम लोग जो है कि कैलकुलेट करते हैं सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, इस हम लोग पहले एनालिसिस लैब में किया जाता है, उसके बाद हम लोग जो है कि उसका रीडिंग बता सकते हैं। अगर एसएआर वैल्यू आपका जो है कि मोर देन 18 है, 26 है, तो क्या होगा कि ये जल हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए ऐसे जल का हमें जो है कि अवॉइड करना चाहिए।
1: जी जी। अगर जो जल है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं यानी कि सिंचाई योग्य नहीं है तो फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
0: बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि अगर हम उस दूषित जल से, या तो जो हम कहेंगे कि हमारा जो सिंचाई का जो साधन है, जो जल है, अगर उसमें हमारा साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है या सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अगर कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं तो जो हमारी मृदा है उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि उसमें जो हमारे बहुत सारे सॉइल में मृदा में माइक्रोपोर्स मैक्रोपोर्स होते हैं, जिससे कि पानी का मूवमेंट होता है, क्योंकि जो हमारी मृदा है उसमें हवा का पानी का संचार उचित मात्रा में होता रहता है हमेशा। तो जैसे कि जल का वर्षा का जल है वो पानी में नीचे जाता है, अगर कभी सूखा पड़ जाता है तो नीचे से पानी ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये जब अधिक साल्ट हो जाते हैं तो उसके जो मृदा के जो छिद्र होते हैं माइक्रोपोर्स मैक्रोपोर्स, वो सारे के सारे वो ब्लॉक हो जाते हैं और उसमें एक सतह मोटी पर्त की तरह भी बन सकती है अगर ज़्यादा हो रहा है तो। उससे क्या होगा कि आपका मूवमेंट पानी का रुक जाएगा, जिससे पौधों को जल की कमी होने शुरू हो जाती है, पानी रहते हुए भी वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा और न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी डिफिशेंसी होने लगेगी, जो कि उसमें हम लोग खाद अप्लाई करने के बाद भी वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। कभी कभी होता है कि किसी चीज़ की टॉक्सिटी, जिसमें सोडियम की कैल्शियम की, इसकी जो है कि टॉक्सिटी होने लगेगी, जिससे पौधा का जो है कि वो सूखने लग जाता है। तो इस टाइप का उसमें बहुत सारी कमियां धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता है।
1: सर, अगर किसी किसान भाई के पास ये मजबूरी है कि वो सिंचाई योग्य जल उनके पास

0: नहीं है, तो क्या कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिससे कि वो उस जल को सिंचाई योग्य बना सकें, या कोई और तरीका जिससे कि वो पानी को उस तरीके से यूज़ करके, उस तरीके से ला करके, उपलब्ध करा करके सिंचाई कर सके?
1: जी, इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि अगर हम लोग जहाँ पे देखें कंटिन्यूस हम लोग सिंचाई का जल यूज कर रहे हैं, अगर अगर हमारे पास साधन नहीं है

पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि वर्षा का जल जो कि बहुत ही शुद्ध जल होता है, वो अगर हम कहीं पर भी इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या होता है, साल्ट का कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसको हम लोग जल संचय कर सकते हैं, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपना सकते हैं। इस पर भी गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है लोगों को, तालाब बना के उसके द्वारा जो है कि हम लोग सिंचाई के जल को कर सकते हैं।

0: कि जहाँ पे अगर बहुत ही कम आपको सिंचाई का है तो एक दो आप जो है कि उस पानी से अपना दे जो आपका है, और बाकी एक दो अगर सिंचाई हो सके तो आप जो है कि रस जो है कि वर्षा जल संचय जो किए हुए हैं उससे करके मिला के दोनों को करने से भी हमारा जो है कि उससे बहुत ही लाभ हो सकता है
1: जी। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मृदा जल परीक्षण, इस विशेष वार्ता, इस विषय पर विशेष वार्ता, और आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
8: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से

0: خوشحالی تا.
1: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी एफएम ग्रीन और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहां पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु।
1: मैम, बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
2: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
2: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं और ऐसे इसका नाम कैलोसाइबा इंडिका है और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती ख़त्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे और ये विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे NRC सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है, इसका कुछ करैक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
1: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
2: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे, इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें वो उसका चयन कर लें, उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके, पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में जैसे डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीवकृत सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छांव में फैला देते हैं, अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे, स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं, पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं, जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का

12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं, उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक ही उसके बाद ये दो तरीके में से, या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं, या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑस्टन मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं, तो इसमें पूरे बैग में छेद, ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नीचे पैंदा में दो छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12 से 15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं, और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं, उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12 से 15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसेलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसेलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे, तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं, लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं, तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सरा हुआ गोबर लेते हैं, या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए, या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू नदी की पेटी का जो बालू होता है, वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग आते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते हैं, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और 2 सरा हुआ गोबर लेते हैं, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं, तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले ली, ये सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको, यदि 2 साल सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं, ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटेलिक कुछ चीज़ हो, पत्थर हो या घास फूस हो, तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है, लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है, ये सब है, तो वो सब को हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे, निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए, और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं। केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं, उसको नीचे छोड़ते हैं, यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाजिम 1 ग्राम और 1 लीटर पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग तैयारी कर दें, तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग कर दें, इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब मैसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में, तब उसका केसिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का को हम लोग थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं, और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केसिंग की लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी परत डाल देते हैं, और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं। और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन पानी हम लोग को नमी देना होता है, और
गर्मी के अनुसार, कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार, हो सकता है कभी आपको दो बार भी नमी देना पड़े या फिर कम से कम एक बार तो प्रतिदिन देना होगा, लेकिन

0: ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, बिल्कुल फुहारे से देना है, और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा, वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा परत दिए हैं, सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए। इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है, और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद यह तुराई योग्य हो जाता है, और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
1: मैम, केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
0: केसिंग के रूप में, जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग दोसा सरा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, बाग की मिट्टी नहीं, पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है, नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है, वो रेतीला रहता है, उस बालू का उपयोग कर सकते हैं। प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं, प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन सब सामग्रियों को, जैसे कि सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ ना पुराने, ये पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं, तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिए लेंगे, 1 भागिए लेंगे। और यदि हमारे पास 2 सास है पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है, तो बराबर बराबर ले सकते हैं। और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, हम टोकरी से, एक टोकरी है तो फिर एक टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर लेकर के हम लोग उसको मिलाते हैं। और फिर केसिंग हमारा, उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवित करना, ये हम लोग करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं।
1: और अंत में मैम, मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, ये आपको बता दें, मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में, ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका, हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन, खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है, कीटाणु है, उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है। तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है, तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं, तो और दूसरा फंगस भी उसको ग्रो कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का, या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट, वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वो ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वो पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाहर में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है, जो हमारा फसल कक्ष है, उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बेंडाजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें, ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा, छुछुंदर, गिलहरी है, ये सबसे हमको, जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है, तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है, तो इस पीरियड में चूहा से, गिलहरी से, ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग का है कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें, आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा, जैसे कि गेहूं को जब हम लोग बोते हैं तो गेहूं का डिब्बी निकलता है, वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा, और वो तेजी से लंबा होता है, फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके, जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित, तो उसको नोच करके जमीन के अंदर डाल देना है, और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से, वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा, पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो को प्राइमस से बहुत सावधान रहिए, यदि यह आपके फसल में आ गया है, निकल रहा है, तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए।

0: ये और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए, बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि हम लोग को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
6: कब से?
5: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
6: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
5: खांसी?
6: हाँ।
5: इसको तो एक आध महीना हो गया,
6: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
5: डॉक्टर, खांसी तो है।
6: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
5: टीबी?
6: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
5: ठीक है।
6: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूले। ध्यान रखें कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें उचास जमीन में

अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना?
6: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
7: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब बाजार हम जाते हैं तो वहां पर हर तरह के फल मौजूद होते हैं, और वो ज्यादातर फल ऐसे मौजूद होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए होते हैं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि जो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? और इसके पीछे क्या वजह है? और अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से डॉक्टर कुमारी करुणा से। मैम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से। मैम है BSc सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद।
9: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेड़ पे फल पक रहे हैं तो फिर उसे कृत्रिम रूप से पकाने की क्या जरूरत है?
10: फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का मुख्य उद्देश्य परिवहन के दौरान उन्हें खराब होने से बचाना और बाजार की मांग को समय पर पूरा करना होता है। यदि फलों को पेड़ पर ही पूरी तरह पकने दिया जाए तो वे बहुत मुलायम हो जाते हैं और दूर दराज के बाजारों तक पहुँचाने से पहले ही सड़ जाते हैं। इसलिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के और भी कई कारण हैं। सर्वप्रथम, सुरक्षित परिवहन एवं कम नुकसान का होना। पके फलों की तुलना में कच्चे फलों को तोड़कर आसानी से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फलों को देश या विदेश के दूरस्थ बाजारों का तक पहुंचाने के लिए कच्चा फल ही तोड़ा जाता है और बाजार पहुँचने के बाद उसे पकाया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है कच्चे फलों का। इसलिए कच्चे फलों को यदि तोड़कर कोल्ड स्टोर में जिसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षित आर्द्रता 85 से 90% पर लंबे समय तक बिना सड़े रखा जा सकता है। व्यापारी स्टोर किया हुआ फल को आवश्यकता अनुसार गोदामों से निकाल कर पकाते हैं और बाजार भेजते हैं। कृत्रिम रूप से

0: पकाने पर फल एक समान रंग और रूप का होता है, इसलिए इसके इससे उनका रंग एक समान और चमकदार हो जाता है, जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। बाजार की मांग, जैसे कि शादी के समय में बाजार में अधिक फलों की आवश्यकता होती है, त्योहारों और शादियों के सीजन में अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं, इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
1: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है, तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
0: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं, जो कि कैंसर, चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है, इसलिए इस पर बैन लगाया गया है कैल्शियम कार्बाइड पे।
1: लेकिन मैम, अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
0: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है, जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 ppm को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है, क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
1: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
0: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन चैम्बर, इथिलीन रैपेनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है, वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 ppm की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90-95% रखी जाती है, जिससे फल 24-48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच, पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है, नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम, अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं, तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज़ के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें, इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है, तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है, क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है, जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
1: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से

0: कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, घर साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारी किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
1: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना। टीकों, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया,
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों आपको बता दें अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन

किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ಉನ್ನತ್ ಕೃಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं. उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं. तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ. सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं.
1: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है. जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं. तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं. सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं. और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है. और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं.
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
1: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है. ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है. और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है. और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है.
0: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
1: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं.
0: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सकें और अपने फसलों को बचा सकें?
1: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं. जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है. अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है.
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है.
1: बिल्कुल.
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
1: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए. और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं. तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है. लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे. तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे?

0: हम लोग प्रमाणित बीज को ले और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छा। आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
1: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
0: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे

0: प्यारा दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
4: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और मैं हूँ अनु। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान की बात करते हैं हम। जी हाँ, धान में हम बहुत सारी बातें आपको बताते हैं कि कैसे बुआई करनी चाहिए, कौन सा मेथड आपके लिए सही होगा, DSR के बारे में भी हमने आपको बताया। लेकिन आज कुछ उर्वरक की बात करेंगे हम। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान में जैविक उर्वरक का महत्व। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच है डॉक्टर AK झा, मृदा वैज्ञानिक और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप जैव उर्वरक के बारे में बता दें कि ये क्या है।
5: देखिए, जैसे नाम बताता है, जैव उर्वरक यानी जीवित पदार्थ जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सके उसको आप जैव उर्वरक कहते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे राइजोबियम की बात करते हैं, या एजोटोबैक्टर की बात करते हैं, या एजोस्पर्म की बात करते हैं, या अजोला की बात करते हैं, या BGA की बात करते हैं, ये सब के सब जितने हैं, सब के सब जीवित पदार्थ हैं और उर्वरक की तरह पोषक तत्व इनको देने का काम करते हैं, इसीलिए इसको जैव उर्वरक कहा जाता है।
4: जी जी, मतलब पोषक तत्व देते हैं। और साथ ही साथ ये जो जैव उर्वरक हैं, क्या धान में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर किया जाता है तो किन किन जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है?
5: अभी जैसे मैंने नाम बताया कि धान के केस में यदि आप देखें तो धान के केस में आप जो प्रयोग करते हैं, जो एस्पायरलम का प्रयोग कर सकते हैं, खास करके नाइट्रोजन प्रदायक की बात करें, जो नाइट्रोजन देता है, तो उसमें आप जो एस्पायरलम प्रयोग करते हैं। वैसे कुछ जगहों पर एजोटोबैक्टर भी लोग यूज करते हैं, लेकिन एजोटोबैक्टर से बढ़िया आपको जो एस्पायरलम होगा तो जो एस्पायरलम का प्रयोग कर सकते हैं। फॉस्फोरस यदि आपको प्रदान करना है तो आप PSB का प्रयोग कर सकते हैं। ये बीज में जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे तो सीडलिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप। और इसके अतिरिक्त नील हरित शैवाल ये भी 30 से 40 kg नाइट्रोजन की बचत करता है, तो नील हरित शैवाल का भी प्रयोग धान के केस में किया जाता है। और एक जो हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिस पर करता है, अजोला बड़ा ही फायदे की चीज है, तो ये अजोला का भी प्रयोग आप इस खेती में कर सकते हैं।
4: जी, अजोला का प्रयोग इस खेती में किया जाता है, तो क्या इससे क्या फायदा मिलेगा धान की खेती में सर?
5: देखिए, अभी तक लोग ये कहते थे कि अजोला के प्रयोग से नाइट्रोजन की बचत होती है 30 से 40 किलोग्राम, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शोध करके देखा कि नाइट्रोजन ही नहीं, फास्फोरस भी, पोटास भी, ये सब की बचत करता है। क्योंकि इसमें देखिए तो नाइट्रोजन इसमें 4.5% से 5.5% के बीच में नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटास भी इसमें 2.5% से 4.5% तक इसमें पोटास भी पाया जाता है, 1% के आसपास इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। तो इसका यदि आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं या डुअल क्रॉपिंग के रूप में करते हैं, तो जो कुछ भी आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास धान को दिया उसकी मात्रा आधी कर दीजिए, और आधी मात्रा कर देने के बावजूद भी आपके उपज में कोई कमी नहीं होगी। यदि मान लीजिए 5-6 हजार रुपये का आप खर्चा करते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर, यानी 2-3 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर आपको बचत हो जाता है यदि आप अजोला का प्रयोग करते हैं तो ये फायदा है।
4: ठीक है,

0: मतलब जो है आय जो है उसमें बचत हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो पैसा हम लगा रहे हैं उसमें बचत हो जाता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और अजोला का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है जानना।
1: अभी आपने कहा कि हमें बचत हो जाता है, बचत ही नहीं होता है, आज जरूरत है टिकाऊ खेती की।
0: बिल्कुल,
1: टिकाऊ खेती के लिए उसमें कार्बन को देने के काम की जरूरत है। और यह जो पौधा है ये हरा पौधा है, और हरा पौधा है तो ये वातावरण से कार्बन को लेकर के आपकी मिट्टी में डालता है, क्योंकि कार्बन बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है। यह आपकी मिट्टी में होना चाहिए 0.75% के ऊपर, लेकिन बहुत सारी मिट्टियों में देखेंगे तो कहीं 2%, 0.02%, 0.03%, 0.04% ऐसे ऐसे है। जबकि 0.5% के नीचे यदि जैविक कार्बन है आपकी मिट्टी में, तो उसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि यह निम्न है, लो है। 0.5 से 0.75% के बीच में है तो इसको कहते हैं कि मध्यम है, और 0.75% के ऊपर है तो कहते हैं उच्च है। और ये कार्बन जो है आपके सारे भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि भौतिक गुण का क्या मतलब, यानी कि जल धारण क्षमता कितनी बढ़िया है, वायु संचार कितना बढ़िया हो रहा है, तो ये सारे आते हैं आपके भौतिक गुणों में। रासायनिक गुणों में जो हमारा पोषक तत्व लॉस कर जा रहा है, तो वह पोषक तत्व हमारा लॉस कैसे नहीं करे, वह कैसे हमारे मिट्टी में बचा हुआ रहे। जैसे आप जिंक ही यूज करते हैं, वह आप देखते हैं कि बह के चला जाता है, वो लीच हो जाता है या परकुलेट हो जाता है, वह कैसे नहीं हो, उसका कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे हो, तो ये सारी चीजें कार्बन के ऊपर निर्भर करता है। और तीसरी बात हमने कहा जैविक गुण, तो जैविक गुण का मतलब होता है कि उसमें जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या कितनी अच्छी है। अब आज आपके मिट्टी में बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिस सबकी संख्या घटती जा रही है, यदि उसमें कार्बन है तो उसकी संख्या ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि इसकी जलधारण क्षमता बढ़ाए, और साथ ही साथ जो उस जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उसके लिए खाने का भी काम वो देगा, तो इसीलिए उसकी संख्या अच्छी होगी, तो ऐसी स्थिति में वह आपको ज़्यादा बढ़िया होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कार्बन को बढ़ाइए यदि टिकाऊ खेती चाहते हैं, क्योंकि हमको इसी पीढ़ी की नहीं सोचना, आने वाली पीढ़ी को भी भोजन मुहैया कर सके, हमारी खेती टिकाऊ बनी रहे, यह ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए कार्बन बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाने में आपको ये जो हमने अजोला का नाम लिया ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, और जितना भी हरा पदार्थ है ये वायुमंडल से कार्बन को लेकर के ट्रैप करके ये सॉइल में डालने का काम करता है, तो इसीलिए ये काफी फायदेमंद चीज है, तो इसका प्रयोग तो किसान भाई जरूर करें। दूसरा आपका क्या प्रश्न था कि इसका प्रयोग हम कैसे करें,
0: कैसे करें?
1: तो इसका प्रयोग करने की बात ऐसा है कि अजोला का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो दो ढंग से धान के खेत में कर सकते हैं, एक तो हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा डुअल क्रॉपिंग के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के रूप में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना लीजिए, और 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना करके, खास करके जहां पर पानी आपका रुकता है बरसात के दिनों में, तो वैसे भी खेत में पानी रहता है, कोई समस्या नहीं है, तो जब भी 3-4 हफ्ते के बाद आपको धान की रुपाई करनी है तो उसके पहले ही आप इसको क्यारी बना लीजिए, और क्यारी बना करके आप पानी है ही खेत में या बोर्डिंग के पास कीजिए, जहां पर पानी यदि घटने लगे तो आप बोर्डिंग से पानी दे सकें, वो क्यारी बना करके उसमें आप 5 से 8 किलो गोबर को 10-15 लीटर पानी में घोल लीजिए, घोल करके उस गोबर के घोल को आप पूरे क्यारी में छिड़क दीजिए, और छिड़क करके उसमें आप कुछ अजोला डाल दीजिए, 4-5 किलो आप अजोला डाल दीजिए, वह अजोला जो छोटे क्यारी में हम बनाए हैं, पैदा किए हैं, वो ले जा करके वहां पर डाल देंगे। अब क्या है कि 3 हफ्ते तक आपको पानी का स्तर 2-4 इंची बरकरार रखना पड़ेगा, वह 2-4 इंच पानी उसमें यदि बरकरार है, और SSP ये हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2 से 2.5 ग्राम SSP प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से यह छिड़कते रहिए, जिसे बढ़वार और तेजी से हो, ये आप कर देंगे तो क्या होगा कि 3 हफ्ते में आप देखेंगे कि पूरा आपका भर जाएगा, और अजोला कम से कम एक क्यारी से लगभग 1 क्विंटल तो आपको अजोला मिल ही जाएगा, जो आपने 4-5 किलो डाला था, क्योंकि अजोला बढ़ता बड़ा तेजी से है, 2 से 5 दिन में ये अपने बायोमास को दूना कर लेता है, तो आपको तेजी से बढ़ जाएगा। अब उस अजोला को आप जैसे हरी खाद ढेंचा पलटते हैं उसी ढंग से आप खेत की जुताई के समय मिला दीजिए, तो यह तो एक तरीका है, लेकिन इसमें मात्रा ज़्यादा चाहिए, इसमें 10 टन/हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा होती है। और दूसरी जो बात हमने कहा डुअल क्रॉपिंग, मान लीजिए उतना अजोला आपके पास नहीं है तो धान को रोप दीजिए, रोप देने के बाद जब वो 1 हफ्ते का हो गया उसी समय आप सिर्फ 1 टन/हेक्टेयर के हिसाब से वह अजोला को डाल दीजिए, और धान में पानी वैसे भी चाहिए, धान में पानी आप 2-4 इंच पानी आप मेंटेन रखिए, और जो आप फास्फोरस डाल

0: डालते हैं, जो भी उस फसल के लिए डालते हैं उसमें कम से कम 10-15-20 किलो ज्यादा एसएसपी पर हेक्टेयर के हिसाब से आप बढ़ा करके डाल दीजिए। अब क्या होगा कि ये 3 हफ्ते में पूरा आपके खेत में कवर कर लेगा। उसके बाद पानी को थोड़ा कम कर दीजिए या अपने आप यह जो है क्या कहते हैं आपको मिट्टी पकड़ लेगा और मिट्टी में चला जाएगा। और इसकी खासियत क्या है अजोला का कि यह मिनरलाइजेशन बड़ा तेजी से होता है, इसका खनिजन बहुत तेजी से होगा, तो उसमें जो कुछ उस अजोला में पोषक तत्व है वो पौधे को मिलने लगेगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जो आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास आप डालते हैं किसी फसल में, वह नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा आपको आधी ही डालनी पड़ेगी जितनी आपने मात्रा डाली है। मान लीजिए एक धान आप यहाँ बिहार के कंडीशन में करते हैं तो 100 केजी आप उसमें डालते हैं नाइट्रोजन, 40 केजी फॉस्फोरस, 20 केजी पोटास, तो इसकी मात्रा को आधी कर दीजिए और अजोला जो है क्या कहते हैं आप डालते हैं तो आपके उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, साथ ही साथ हमको उर्वरक पर होने वाला खर्चा भी बचेगा। यदि मान लीजिए 4,000-5,000 रुपया आपको खर्चा हो रहा है तो आपको 2,500 रुपया उसमें खर्चा होगा, यानी 2,500 रुपया प्रति हेक्टेयर की बचत भी होगी और मृदा का सेहत भी ठीक ठाक होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसका फायदा ये है
1: जी। तो किसान भाइयों, आपने जाना जैव उर्वरक के बारे में, साथ ही अजोला कैसे फ़ायदा दिलाता है धान की खेती में, ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आप जैव उर्वरक जितना ज़्यादा हो सके आप उपयोग करें और अजोला भी बिल्कुल फ़ायदेमंद है आपकी खेती के लिए।
0: एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मेरी बात दिमाग में आ गई। हमने कहा था कि यदि आप जो स्पायरलम यूज करना चाहते हैं या पीएसबी यूज करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये यदि प्रयोग करना चाहें तो वो कैसे प्रयोग करें। तो उसमें देखिए सीधी सी बात है, ये जो स्पायरलम आप सॉइल में भी प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी में भी मिला सकते हैं, लेकिन उसमें यदि मिलाते हैं तो आपकी ज्यादा मात्रा उसमें डालनी पड़ती है। तो आपको सीधा करना क्या है कि आप ये जो मान लीजिए आपका कोई, क्योंकि उसमें भाई बिचड़ा बहुत वो करते हैं, बिहन लगाते हैं ना आप, तो उसमें जो है आप एक केजी मान लीजिए आपने लिया ये जो स्पायरलम या पीएसबी ही, और उसको आप डुबा दीजिए और डुबा करके उसके जड़ को डुबा रहने दीजिए 10-15 मिनट और 10-15 मिनट के बाद प्रयोग कीजिए। लेकिन यदि कोई किसान भाई पीएसबी प्रयोग करना चाह रहे हैं या जो स्पायरलम भी प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें सीक्वेंस ये होगा कि पहले आप पीएसबी से उपचारित करें, बाद में आप जो स्पायरलम से करें, ये चीज उसका तरीका होगा। और यदि आप बीजीए का प्रयोग करते हैं तो आपको 10 केजी के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीजीए का जो पपड़ी टाइप का वो आता है वह आपको प्रयोग करना पड़ता है। तो ये मैं इसकी भी मात्रा की बात थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता था
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है,
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियाँ लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें यह नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएं लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं, तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर

हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियाँ कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से यह नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, आपका जेंडर नहीं देखेगा, तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे, वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पे संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं।
तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हार्मोन्स को

0: परफेक्ट कर दिया जाकर। ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएं, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफी ज्यादा है, और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: नमस्कार।
6: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम, आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है?
8: बेबी कॉर्न का काफी महत्व है, आज हम इस पे काफी डिस्कस करेंगे कि

0: बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं, और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा, एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं। इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं, और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
1: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
0: जी जी जी।
1: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
0: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है। और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
1: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
0: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फ़ी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: इसमें जैसे कि मृदा के

0: तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीजोपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बबाद आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके, एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है, एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 केजी नाइट्रोजन एवं 20 केजी पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए, मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए, डिटैसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई पिंक बोरर तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, क्योंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है। और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम बेबी कॉर्न

0: से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है, और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
0: मैम आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तोड़ाई कैसे की जाती है?
1: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है, और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है, और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पर हार्वेस्टिंग करते हैं।
0: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
1: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन, और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं, इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीयू सवर की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से। बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार, बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
0: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए, और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर

भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूले। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों के स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं।

कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं एनीमिया के बारे में एक विशेष भेंट वार्ता में। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर शालू गुप्ता और भेंट करता है सुजाता स्मार्ट से। तो आइए हम इस भेंट वार्ता को सुनते हैं और जानते हैं एनीमिया के बारे में विस्तार से। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
1: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
1: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
2: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी

0: भूल सकती है, चेहरे पे छोट पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
1: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
0: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में, जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
1: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
0: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
0: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
1: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
0: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
1: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
0: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जैसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की

0: वजह से होता है, इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
0: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो पीएचसीज हो, सीएचसीज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
1: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
0: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है, और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब एक या दो घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
1: अच्छा, हमें ये भी बताया डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
0: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो दो केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है, और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: मैं इसमें दो बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराए, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सके, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करे तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है

0: वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
1: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
0: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके, आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
0: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप को कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवा किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM, एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर अनीमिया हो, मॉडरेट अनीमिया हो, तो जरूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को? ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी

0: एस्पिरिन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो एफसीएम का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो एफसीएम का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर सीएससीपीएससी पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या एएनएम्स हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
2: उम्मीद है दोस्तों कि आपने एनीमिया के बारे में और किस तरीके से एनीमिया से बचा जा सकता है इस बारे में आपको बहुत सी जानकारियां, उपयोगी जानकारियां मिली होगी। तो दोस्तों, सेहत सही लाभ कई के आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।

0: ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. किसान भाई बहनों अभी मौसम चल रहा है जब हमारे किसान भाई बहन धान की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें वो कर चुके हैं, लेकिन कई सारे किसान भाई बहन इस बात से परेशान रहते हैं कि पानी की समस्या है, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए. ऐसे में हमारे वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि हमें सीधी बुआई करनी चाहिए. सीधी बुआई क्या है, किन बातों का इस दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर SS आचार्य. सर हैं सस्य विज्ञान विभाग से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: थैंक यू.
0: सर सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सीधी बुआई जिसे कि DSR भी कहते हैं वो क्या है.
1: अगर सीधी बुआई के बारे में हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग जो धान लगाते थे, जो धान की खेती करते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले नर्सरी तैयार करते थे, फिर पौधे की रोपाई करते थे और खेत को कीचड़ युक्त करके उसके बाद रोपाई करते थे. इसमें क्या होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि धान की रोपाई, ठीक. और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, आज आप लोग देख रहे हैं कि बारिश नहीं है, बारिश की बहुत कमी है. अगर देखा जाएगा बिहार में 40-50% अभी तक बारिश हुई है. तो इसीलिए कम पानी अगर है तो आप फील्ड को कीचड़ कैसे कीजिएगा. तो कीचड़ करने के लिए तो आपको तो पानी चाहिए, आइदर आपके पास सिंचाई के साधन हो नहीं तो बारिश हो. तो ये दोनों जब नहीं है तो आप फील्ड में अगर धान लगाना चाहते हैं तो आपका एक नया टेक्नोलॉजी जो हुआ कि सीधी बुआई, उसको आप लोग कर सकते हैं. इसको अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, ये है पानी को बचाएगा, मजदूरी की जो लागत है उसको घटाएगा और फिर अच्छा उपज देने के लिए भी मदद कर सकता है, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं सीधी बुआई, कि मतलब बिना जो कि फील्ड प्रिपरेशन

0: जैसे कि कीचड़ युक्त नहीं करके अगर डायरेक्टली हम ट्रैक्टर चला के जब मानसून आने से पहले हम फील्ड में ट्रैक्टर चलाएंगे, जैसे गेहूं की बुआई जैसे करते हैं सेम स्टाइल में हम लोग धान का बुआई करेंगे। और उसमें क्या करेंगे कि मानसून आने से पहले, जब अभी तक भी मानसून ठीक से आया नहीं अभी तक, तो जब फील्ड में हल्का सा नमी हो या नमी भी ना हो, इसी समय में हम लोग फील्ड में जुताई करेंगे, दो तीन बार जुताई करेंगे। ऐसे जुताई करेंगे कि दो तीन बार के बाद, जैसे कि अगर जब हम धान का सीड वहां पर बुआई कर रहे हैं तो सीड और जो मिट्टी उसके साथ, मिट्टी के साथ सीड पूरा एकदम मिल जाए, पूरा कॉन्टैक्ट में आ जाए, और जिसके बाद जब बारिश होगा तब क्या होगा, उसमें से अंकुरण निकलेगा और उसमें से जो धान का पौधा निकलेगा उसको हम बोलेंगे सीधी बुआई।
1: तो सीधी बुआई के और क्या क्या फायदे होते हैं?
0: पहले हम लोग अगर देखेंगे सीधी बुआई, पहले मैं अभी बोल चुका हूं कि खेत को पहले ठीक से तैयार करना है। जब तैयार करना है उसमें पहला जो फायदा है कि पानी कम लगेगा, कम पानी, मतलब अगर आप देखिएगा कि एक फील्ड को पडलिंग या जो कीचड़ युक्त करने के लिए 200 से 250 मिलीमीटर का जो पानी है उतना चाहिए, 25 सेंटीमीटर का पानी चाहिए। वो पानी अगर दो तीन दिन में बारिश होगा, जोर से ढेर से बारिश होगा तब जाके हो सकता है, नहीं तो आपको उतना पानी देना पड़ेगा, तब जाके आप फील्ड को ट्रैक्टर रोटावेटर पानी भर के, उसके बाद ट्रैक्टर रोटावेटर चला के फील्ड को कीचड़ युक्त करेंगे, उसके बाद जाके रोपाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा ना, आपको कुछ भी पानी का जरूरत ही नहीं है, सूखा में आप धान का बुआई कीजिएगा। और वहां पर क्या होगा ना, आप जब सूखा में बुआई कर रहे हैं तो आप जब बारिश होगा, बारिश होने के बाद आपका धान का जो अंकुरण हो जाएगा, जिसके कारण आप बहुत पानी को बचा लिए। और एक चीज हुआ, और एक फायदा हुआ, जो कि धान में, धान का रोपाई के लिए बहुत सारे लेबर लगते हैं। अगर देखा जाएगा एक एकड़ में 15 से 20 टो लेबर आपको लगाना पड़ेगा धान का रोपाई के लिए, प्लस 250 मिलीमीटर रेनफॉल का या इरिगेशन चाहिए, तो ये दोनों से बच जाएगा अगर आप सीधी बुआई किए तो।
1: तो सर सीधी बुआई कब करनी चाहिए किसान भाई बहन?
0: अगर सीधी बुआई का सही समय देखें तो मानसून आने का 7 से 10 दिन पहले। क्यों? क्योंकि अगर मानसून एक बार फुल फेज में आ गया, पानी भर जाएगा फील्ड में और सीधी बुआई नहीं हो पाएगा। इसलिए जब फील्ड सूखा है या फील्ड में आप जानते हैं कि 7 दिन के बाद मेरा बारिश होने वाला है, बारिश का तो फोरकास्टिंग हो जाता है, उसी समय आप फील्ड को तैयार करके बुआई कर दीजिए। अगर 2 दिन 3 दिन ऐसे फील्ड में सूखा रहा नो प्रॉब्लम, उसमें जब बारिश होगा उसके बाद वहां से वो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होके पौधा बड़ा होगा। और वहां पर इसीलिए सबसे बोला जाता है कि सबसे बेस्ट टाइम है 7 से 10 दिन पहले। तो जैसे कि बारिश होने के समय उसका जड़ मजबूत हो जाना चाहिए मिट्टी में, तब दैट इज द राइट टाइम।
1: जी सर। सर आप एक बार हमें विस्तार से बता दीजिए कि किस प्रकार से कैसे सीधी बुआई करनी चाहिए।
0: पहला है कि सीधी बुआई अगर देखेंगे, मैं जुताई के बारे में बोलूंगा। जुताई दो टाइप का है, एक है कन्वेंशनल जुताई, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि परंपरागत जुताई, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि फील्ड को गेहूं के टाइम में जैसे हम लोग खेत को तैयार करते हैं उसी तरफ हम लोग धान का खेत को भी तैयार करेंगे। करने के बाद हम लोग इसको बढ़िया करके रोटावेटर चला के इसको, उसके बाद यहाँ पर हम लोग धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। और एक हुआ, अगर ये एक न्यू टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, जो कि शून्य जुताई या जीरो टिलेज। आपको पहले आपका फील्ड में तो घास या खरपतवार तो होगा ही, तो 10 से 15 दिन पहले आपको जो ग्लाइफोसेट है और पैराक्वाट है, ग्लाइफोसेट हो सकता है नहीं तो पैराक्वाट है, वहां पर अप्लाई कर देना है, वहां पर स्प्रे कर देना है। 15-20 दिन पहले अगर आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा तो आप पूरा फील्ड घास मुक्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप थोड़ा सा बारिश या थोड़ा सा जब बारिश होगा या बारिश नहीं भी होगा तो उसी समय आप डायरेक्टली हम लोगों का जो सीड ड्रिल हम लोग बोलते हैं उसी में आप डायरेक्ट स्विंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जुताई का। इसके बाद अगर देखेंगे कि बिजाई का समय हम बोल दिए हैं 7 से 10 दिन पहले। इसके बाद

0: 20 सेंटीमीटर दूरी में हम लोग अगर बुआई करेंगे, और जो अगर पौधा से पौधा देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर हम लोग ऐसे रोपाई के टाइम में हम लोग 15 सेंटीमीटर का जो स्पेसिंग लेते हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्पेसिंग अगर लेंगे तो वही हमारा सही रहेगा। इसके बाद देखेंगे कि बीज, किसी भी बीज हो, बीज को हम लोग उपचार कर लेना चाहिए। बीज को हम लोग बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। बीज को शोधन कर लेना चाहिए, उपचार कर लेना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बेंडाजिम हो या थीराम हो, कैप्टन हो, इसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति एकड़ प्रति किलोग्राम बीज के साथ मिला के उसके बाद अगर बुआई करेंगे तो वहाँ पर रोग आने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि धान में बहुत तरह का रोग आते हैं। तो उसको अगर हम लोग बीज को शोधन करेंगे या बीज को उपचार करेंगे तो हमारा वहां पर रोग आने का चांसेस कम रहेगा।
1: सर, पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई बहनों को क्या उपाय करने चाहिए?
0: जो हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, मतलब हम लोगों का खाद, सीधी भाषा में बोलेंगे तो हम लोगों का खाद, खाद कब देना है, कितना देना है, उसके बारे में बोलेंगे तो शुरू में धान का जब बुआई करेंगे उसी समय हम लोग खाद देंगे नहीं, उसका 10 दिन या 10 से 15 दिन के बाद हम लोग खाद देंगे। तब क्या करेंगे कि हम लोगों का अगर देखा जाएगा तो एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, एक हेक्टर के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश। ठीक, 120 किलो नाइट्रोजन एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, इतना ही अगर हम लोग देंगे तो हम लोगों का प्रोडक्शन अच्छा होगा। और इसमें अगर देखेंगे पूरा फास्फोरस और पोटाश को हम लोग शुरू में, जो कि हम लोग बोलते हैं आधार खाद, बा जब हम लोग जो 10 से 14 दिन में बोला उसी समय हम लोग दे देंगे, थोड़ा जब उसका जड़ बन गया है उसी समय हम लोग उसको देंगे। और नाइट्रोजन को अगर देखेंगे बा नेत्रजन को अगर देखेंगे 120 किलो से 60 किलो नाइट्रोजन, मतलब कि 50% को हम लोग 10 से 14 दिन के अंदर में देंगे, बाकी जो 50% बचा उसको अगेन 2 भाग करेंगे। एक करेंगे जब टीलरिंग आ रहा है, जो जब उसका जो कल्ले निकल रहे हैं और जो बाली जब निकल रहा है उसी समय, ये 2 टाइम उसका सबसे माने पोषक तत्व के लिए संकट समय है, उसी समय अगर हम उसको आप देंगे खाद को छिड़काव करेंगे तो हमारा उपज ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए किसान भाइयों ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस पोटाश को आधार खाद और 50% नाइट्रोजन, मतलब कि 60 kg नाइट्रोजन आपका आधार खाद, और जो बाकी 50% या 60 किलो बचा उसको 2 भाग में भाग करके आधा देंगे कल्ले निकलने के समय और आधा देंगे बाली निकलने के समय, ऐसे अगर देंगे तो हमारा अच्छा उपज हो सकता है।
1: और अगर खरपतवार नियंत्रित करने की बात करें तो वो किस प्रकार कर सकते हैं?
0: ये एक फसल है, इसमें खरपतवार इतना होगा, बहुत सारे खरपतवार होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सीधी बुआई किए हैं, जैसे कि धान को मौका मिला उसको जर्मिनेशन के लिए, खरपतवार को भी मौका मिला उसको जर्मिनेशन के लिए। रोपाई का एक प्लस पॉइंट है कि रोपाई के समय जब हम कीचड़ कर देते हैं पूरा फील्ड को, तब क्या होता है खरपतवार ऐसे ही नियंत्रण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण इसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोगों को 1 से 2 बार हाथ से निकाल देना है, लेबर लगा के निकाल देना है, नहीं तो मैं कुछ दवाई का बोल रहा हूँ उसको अगर आप लोग दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वो जो दवाई है बिस्पेरीबैक सोडियम, याद रखिएगा बिस्पेरीबैक सोडियम, जो कि बाजार में बहुत सारे नाम में आता है, एक नाम है नोमिनी गोल्ड। सो बिस्पेरीबैक सोडियम को अगर देखा जाएगा तो एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ 250 ml, एक हेक्टर के लिए 250 ml, और याद रखिएगा 500 लीटर पानी चाहिए, एक हेक्टर के लिए 500 से 600 लीटर तक पानी चाहिए। उसमें अगर 250 ml अगर हम देंगे तो छिड़काव करेंगे, कब छिड़काव करेंगे 20 से 25 दिन समय, जिस समय जो खरपतवार है उसका 2 से 3 लीफ स्टेज है, जो पत्ता निकला है उसी समय हम अगर अप्लाई करेंगे तो खरपतवार नियंत्रण होगा। और कुछ दवाई बोल रहा हूँ, एक हुआ साइहलोफॉप ब्यूटाइल प्लस पेनक्सुलम, इसको 1000 मिलीलीटर अगर एक एकड़ के लिए 1000 मिलीलीटर और एक हेक्टर के लिए देखिएगा तो 2.5

0: लीटर अगर हम अप्लाई करेंगे वही 20 से 25 दिन में, तो हमारा खरपतवार पर नियंत्रण हो सकता है। और है अगर चौड़े पत्ती वाले ज्यादा खरपतवार है तो 2,4-D एक लीटर पानी में 3 ml करके अगर हम स्प्रे करेंगे तो पूरा चौड़े पत्ती वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी सक्रिय पत्ती वाले मरेंगे नहीं। इसीलिए जहां पर चौड़े पत्ती वाले ज्यादा हैं वहां पर 2,4-D आप जो कि सबसे लो कॉस्ट हर्बिसाइड है उसको दे सकते हैं। और कुछ दवाई बोल रहा हूं जैसे कि फेनोक्साप्रॉप प्लस इथॉक्सीसल्फुरन, मेटसल्फुरन मिथाइल प्लस क्लोरीमुरन इथाइल, ये सब दवाई भी दिया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है।
1: जी सर, और जल प्रबंधन की बात करें तो वो कैसे किया जा सकता
0: है? जल प्रबंधन देखिए, ये है धान की सीधी बुआई अगर देखेंगे, शुरू में तो पानी बारिश का पानी में ही जब हम बुआई कर दिए, बुआई के बाद 7-8 दिन के बाद जब बारिश होगा उसी पानी में हमारा काम चलेगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हुआ तो आपको ये जो कलने निकलने के समय, जिस समय बोला कि फर्टिलाइजर देने का जो खाद देने का समय था वही समय एक है, और उसके बाद हर 7-8 दिन अंतर अंतर में पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा मैंने बारिश नहीं हुआ तब मतलब कि आपको पानी का थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा हम लोग पानी को ऐसे ही करेंगे कि 4-5 cm का पानी हर टाइम जैसे फील्ड में बने रहे, तब क्या होगा आपका घास कम निकलेगा। इसीलिए उसको ध्यान में रख के अगर हम लोग सिंचाई करेंगे तो हमारा अच्छा उपज होगा। और एक चीज बोल रहा हूँ कि रोपाई में जो 250 mm हम बोले थे कि 250 mm पानी लगता है कि कीचड़ करने के लिए, वो हर लेकिन यहाँ पर पूरा बच गया। इसीलिए यहाँ पर रोपाई के बाद जो कि ट्रांसप्लांटेड राइस में रोपाई के बाद जितना पानी लगेगा यहाँ पर भी उतना पानी लगेगा, लेकिन रोपाई और रोपाई से पहले जो पानी वह यहाँ पर बच जाएगा।
1: और अगर हम DSR तकनीक में कुछ नवीनतम तकनीकों के बारे में बात करें तो किन तकनीकों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई बहन को करना चाहिए?
0: हाँ, देखा जाएगा कि कुछ कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम तो कुछ टेक्नोलॉजी जैसे बोले कि ये सीधी बुआई एक ही न्यू टेक्नोलॉजी है, और एक है सीधी बुआई के साथ हम लोग अगर फील्ड में अगर खेत को हम लोग थोड़ा ज़्यादा उर्वर करना चाहते हैं तो, और जहाँ की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है उसको अगर कम करना चाहते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं हरी खाद या भूरी खाद। जैसे कि हरी खाद मतलब ग्रीन मैन्योरिंग, धैंचा को अगर हम धान लगाने से पहले धैंचा को दो टाइप का किया जा सकता है। एक हुआ 45 दिन पहले हम धैंचा को फील्ड में छिड़काव कर देंगे, उसके बाद क्या हुआ कभी कभी कभी थोड़ा पानी मनसून पानी ये वो करके वहाँ पर वो अच्छा सा उसका उसके लिए भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और वो क्या होगा जब 45 दिन का हो जाएगा उसी समय हम उसी फील्ड में उसी धैंचा को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, मतलब कि जुताई कर देंगे, और उसमें से हमको एक अच्छा खासा नाइट्रोजन मिल सकता है। नाइट्रोजन जो कि धान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अगर हम हरी खाद के हिसाब में हम हरी खाद धैंचा को का हरी खाद वहाँ पर उगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन को भी बचा सकते हैं। और एक हुआ भूरी खाद जिसको बोलते हैं ब्राउन मैनोरिंग, वो क्या हुआ कि धान जब हम लोग बुआई कर रहे हैं उसी समय धान के साथ भी और एक जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग धैंचा को ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, मतलब धान का बुआई भी हुआ धैंचा का ब्रॉडकास्टिंग भी हुआ, उसके बाद क्या होगा तो धान वहां पर निकला और धैंचा भी निकला। तो 25 दिन के बाद, याद रखिएगा 25 दिन से ज्यादा नहीं रखिएगा, यहां पर 25 दिन के बाद हम लोग वहां पर 2,4-D स्प्रे कर देंगे। 2,4-D जो खरपतवार नाशी है उसको अगर स्प्रे करेंगे तो वहां पर क्या होगा पूरा जमीन से का जो धैंचा है वो धैंचा सब मर जाएगा, मतलब उसका जड़ में जो नाइट्रोजन है वो फील्ड में उसी फील्ड में वो नाइट्रोजन आपको मिल गया। इसलिए वहां पर भी हम लोग 20 से 25 किलो नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा हम लोगों को हरी खाद या भूरी खाद के हिसाब में हम लोगों को मिल जाएगा।

0: यही एक टेक्नोलॉजी है। और एक है कि अगर पोषक तत्व में जब हम बोले थे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसके साथ और एक पोषक तत्व जो कि हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व, वो है जो जिंक, जिंक मतलब कि जस्ता जो बोलते हैं, उसको अगर हम 20 से 25 किलो पर हेक्टर में अगर हम देंगे तो धान के लिए वो बहुत जरूरी है और धान का प्रोडक्शन बढ़ेगा अगर हम जिंक अप्लाई करेंगे तो। क्योंकि जिंक अगर नहीं रहेगा फील्ड में तो जिंक के लिए कुछ एक रोग होता है जिसको हम लोग खैरा रोग बोलते हैं, तो वह अब क्या करता है, पौधा को कमजोर कर देता है, पौधा बढ़ नहीं पाता है और उपज घट जाता है।
1: जी सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को अगर कुछ बातें कहना चाहें तो क्या कहेंगे?
0: किसान भाइयों, अभी अगर देखेंगे बारिश जैसे कम हुआ है तो इसी समय आप लोग अगर धान का बुआई चाहते हैं तो आप सीधी बुआई कर किए कीजिए। तो कैसे, जैसे कि गेहूं को जैसे बुआई करने के लिए जैसे ही फील्ड को प्रिपेयर कर रहे थे उसी टाइप का आपको खेत को बनाना है। उसके बाद लाइन स्विंग करके 20 सेंटीमीटर में लाइन स्विंग करके अगर आप धान का बुआई कीजिएगा तो भी आपका किया जा सकता है।
1: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिस प्रकार से सर ने बताया कि आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं और जिन तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में सर ने बताया, उन सारी बातों का आप ध्यान रखें और धान की सीधी बुआई करके भी आप अच्छी फसल उगा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो उर्वरकों का महत्व बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उर्वरक, लेकिन बाजार में बहुत सारे उर्वरक मौजूद हैं और उनमें से एक है जल विलय उर्वरक। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, आज इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रधान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉयल साइंस डिपार्टमेंट से। सर, आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जल विलय उर्वरक क्या है?
2: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जल विलय उर्वरक, या फिर जिनको हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादातर उस तरह के उर्वरक होते हैं जो पानी में पूर्णतः घुलनशील होते हैं और जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व त्वरित एवं संतुलित रूप में उपलब्ध कराते हैं। और जो आधुनिक कृषि है, विशेषकर संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई या फिर फर्टिगेशन जैसी प्रणालियों में इनका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।
1: सर, जैसे कि आपने बताया कि इसका उपयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसी कुछ विशेषताएं ज़रूर होंगी, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
2: जल विलय उर्वरकों की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले तो आता है कि ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं। इनमें ऐसे कोई पदार्थ नहीं होते हैं जो अघुलनशील होकर रह जाएं। शीघ्र अवशोषण या फिर तुरंत मिट्टी में जाने के बाद या फिर पौधों पर छिड़काव करने के बाद वो तुरंत उनमें घुल जाते हैं।
1: अच्छा।
2: सटीक मात्रा में इनका उपयोग करना ज़्यादा आसान होता है पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले। और ये अपने तरीके से मैक्रो, माइक्रो या फिर जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर प्राथमिक पोषक तत्व, उनकी उपलब्धता को बढ़ाता है। फर्टिगेशन या फिर फोलियर स्प्रे, जिसको हम पौधों में छिड़काव कहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी तरीके से उपयुक्त हैं।
1: सर, इनका महत्व क्या है कृषि में?
2: इनके कई सारे महत्व हैं, मैं कुछ ज़रूरी महत्व आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ हमारे किसान भाई बहनों के लिए। जो सबसे पहला इसका महत्व है वो है इसका त्वरित पोषण उपलब्धता। जल विलय उर्वरक पौधों की जड़ों या पत्तियों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो जाते हैं, जिससे फसल की प्रारंभिक वृद्धि, पुष्पन एवं फलन में तेज़ी आती है। उसके बाद इनकी उपयोगिता फर्टिगेशन जैसी चीज़ों में

0: काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उर्वरकों की बचत भी होती है, श्रम की लागत में भी कमी आती है और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद पोषक तत्वों की जो उपयोग दक्षता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है, लीचिंग को कम करता है, वाष्पीकरण जो पोषक तत्व होते हैं जो बाष्प बन के उड़ जाते हैं उसको भी रोकता है, और सटीक समय पर पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। ये ज़्यादातर उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उन पर ज़्यादातर कारगर साबित होता है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, फलों की आकार और रंग को भी बढ़ाता है और अधिक उत्पादकता के साथ साथ बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी लाने की सक्षमता रखता है।
1: यानी कि मतलब ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसकी वजह से ये पौधों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है।
0: जी
1: सर, आप ये बताइए कि ये पारंपरिक उर्वरक से कैसे अलग है?
0: देखिए, हम जो पारंपरिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो है यूरिया है, DAP है, पोटाश है, जिसको हमारे किसान भाई बहन यूज़ करते हैं। पारंपरिक उर्वरक जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका उपयोग फर्टिगेशन, संरक्षित खेती या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसी चीज़ों पर पौधों में छिड़काव करने के लिए उनका उपयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक जो उर्वरक होते हैं उनमें कुछ और कण भी होते हैं जिनका इसकी वजह से उसकी उपयोगिता में कमी आती है। तो जल विलय उर्वरक उस मुकाबले में उनसे बेहतर हैं, क्योंकि पूर्ण तरह से घुलनशील होते हैं और पौधों को अच्छी तरीके से हम उसको छिड़काव भी कर सकते हैं, फर्टिगेशन में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पोषक तत्वों की जो दक्षता है, उपयोग दक्षता है, वो पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पारंपरिक उर्वरकों में हम 20-25 या फिर 30% तक उपयोग दक्षता देखने को मिलता है हमें, लेकिन जब हम जल विलय उर्वरकों की बात करें वहाँ पे हम 80-90% तक उपयोग दक्षता बढ़ा सकते हैं पोषक तत्वों की, और लागत में भी उसके मुकाबले, पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले इसमें लागत भी कम है, भले ही इसकी जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है उससे थोड़ा अधिक है, लेकिन इसकी उपयोगिता भी कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हम इसको ले सकते हैं, अपने कृषि प्रणाली में इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: सर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से उर्वरक, जल विलय उर्वरक बाजार में मौजूद है, इसके कुछ उदाहरण दे दीजिए।
0: कुछ प्राथमिक पोषक तत्वों के भी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के भी हैं, जैसे कि यूरिया फॉस्फेट एक उर्वरक है, जिससे हम 17% नाइट्रोजन 44% तक फॉस्फरस का पौधों तक पहुँचा सकते हैं फॉस्फरस। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं जिसमें 16% तक नाइट्रोजन होते हैं और 19% तक कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं, ज़्यादातर फल की फसलों में हमारे लिए बहुत उपयोगिता दिखाता है, उसमें 13% नाइट्रोजन और 46% पोटाश हैं। उसी प्रकार मोनोअमोनियम फॉस्फेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे और उर्वरक हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं।
1: सर जब भी हम किसी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ सावधानियां अपनाते हैं, जब हम जल विलय उर्वरक की बात कर रहे हैं तो इनमें भी कुछ विशेष सावधानियां अपनानी पड़ती होगी।
0: जी, कुछ प्रमुख ऐसी सावधानियां हैं, जैसे कि हमें कभी भी किसी भी उर्वरक को प्रयोग करने से पहले, वो चाहे पारंपरिक उर्वरक हों या जल विलय उर्वरक हों, सबसे पहले हम कहते हैं अपने किसान भाइयों बहनों से कि मृदा का परीक्षण अवश्य करें, मृदा परीक्षण के आधार पर ही इनका उपयोग करें, अनुशंसित मात्रा में ही इसका उपयोग करें, और अत्यधिक सांद्रता से पत्तियां जलने की संभावना होती है, इसलिए उसका सांद्रता या फिर जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं उसको कम या फिर अनुशंसित मात्रा में ही उसका प्रयोग करें। स्वच्छ जल का प्रयोग करें सिंचाई के लिए, जिसमें लवण की मात्रा कम हो, जितनी कम होगी उतना अच्छी तरीके से हम सिंचाई का जल इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलग अलग उर्वरकों को मिला के अगर हम कुछ तैयार कर रहे हैं तो उनका आपस में संगतता या फिर संगतता, जिसको हम कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं, कि आपस में वो एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना बना ले, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम फर्टिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसे चीज़ों के लिए उसका उपयोग करें।
1: मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो कि पारंपरिक उर्वरक के समय भी हम ध्यान रखते हैं, वो ज़रूरी है। सर और कुछ?
0: जैसे कि हम कहते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य है अधिक उत्पादन पाना, बेहतर गुणवत्ता और पोषक तत्वों की उच्च दक्षता का अगर हमारा लक्ष्य है, तो जल विलय उर्वरक अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं, जबकि पारंपरिक उर्वरक व्यापक क्षेत्रीय खेती में, जहां पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं, वहां पर उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है।

0: ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पारंपरिक उर्वरक से काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि पौधों में इसका जो क्योंकि पौधे इसे बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं
1: जी, और इसमें दक्षता भी ज्यादा होती है पारंपरिक उर्वरक के मुकाबले।
0: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी,
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों आपको बता दें अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 cm की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए एनो 53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिरा

करने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए खास कार्यक्रम रेडियो रिविजन में, जो परीक्षा के पूर्व संध्या पर आपके लिए विशेष तौर पर प्रसारित किया जाता है। दोस्तों, कल आपके कोर्स AAG 1-1 का एग्जाम है और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर ज्योति माला साहू हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिविजन के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैम, आप रेडियो रिविजन शुरू कीजिए।
1: ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ हाउसिंग प्रिंसिपल स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड पोल्ट्री। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हाउसिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाउसिंग एंड हाउ इट इज इट शुड बी क्लासिफाइड फॉर कैटल, पिग एंड शीप, गोट एंड पोल्ट्री कोसा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैटल का। तो इसमें लूज हाउसिंग एंड कन्वेंशनल हाउसिंग आएगा। तो कन्वेंशनल में दो टाइप का होता है, टेल टू टेल सिस्टम एंड हेड टू हेड सिस्टम। और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सा बेस्ट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा बेस्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट। तो स्पेस, अच्छा, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर ये

एग्ज़ाम में आया हुआ था, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में आ जाएगा, फ्लोर कैसा होना चाहिए, वॉल कैसा होना चाहिए, रूफ, मेंजर, वाटर ट्रफ, उसका विथ, हाइट एंड डेप्थ कितना होना चाहिए, गटर कैसा होना चाहिए, फीड एले कैसे होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ मैं। और नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट। तो स्पेस रिक्वायरमेंट में BIS के अकॉर्डिंग जो बहुत इजी है याद करने में, मीटर स्क्वायर में याद करो आप और उसको फिर कन्वर्ट कर लेना फिट में, अगर फिट में एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कैटल बफेलो के लिए ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हीफर में कितना होगा, काफ में कितना होगा, है ना, काउ में कितना होगा, कवर्ड एरिया कितना होगा, ओपन एरिया कितना होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी टेबल दे दिया है इसके लिए, तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फॉर एग्ज़ाम्पल काफ में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल कितना होना चाहिए फॉर काफ, तो इट इज़ 30 एंड फॉर काउ इट इज़ 50, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड पोल्ट्री में अगर स्पेस रिक्वायरमेंट पूछा जाता है तो डीप लेटर का स्पेस रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एज वाइज होता है इसका रिक्वायरमेंट, है ना, 0 to 8 week एंड 9 to 12 week, 13 to 18 एंड मोर देन 18 अबव। तो लाइट बर्ड के लिए अलग होता है एंड हैवी बर्ड्स के लिए अलग होता है, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर में है जो मैंने दिया है वो। ओके, तो स्पेस रिक्वायरमेंट में ये इम्पॉर्टेंट है एंड बाकी तो आपको पढ़ना ही है, और दूसरी चीज़ें भी, ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए हाउस का, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ काफ्स, काफ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एक्चुअली काफ का मैनेजमेंट बर्थ से ही, उसके बर्थ के पहले से ही, प्रेगनेंसी के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है ना, हमको प्रेगनेंट एनिमल का बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा। अब जैसे ही बर्थ होता है, जैसे ही काविंग होती है, उसके बाद काफ को एक साफ प्लेस पे, क्लीन प्लेस पे रखा जाता है, जो भी फ्लूड उस पर लगा हुआ होता है वो अच्छे से क्लीन किया जाता है, वाइप किया जाता है सोक टॉवल से जो कि क्लीन होना चाहिए, और उसको मदर के सामने रखा जाता है। तो क्या करती है, उसको पूरी तरह से लिक कर देती है, तो लिकिंग से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और वो साफ भी हो जाता है अच्छे से। तीसरा है रेस्पायरेशन, उसके रेस्पायरेटरी सिस्टम को एक्टिव करना होता है हमें जैसे ही बर्थ होता है उसका, तो रेस्पायरेशन भी उससे ईजी हो जाता है। अगर रेस्पायरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उस यहाँ पर वेटनरी असिस्टेंट की नीड होगी। ओके, उसके बाद कोलेस्ट्रम फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि 15 minutes to half an hour, मतलब विद इन हाफ आवर आपको कोलेस्ट्रम फीडिंग करानी ही है, और इसका डोज कितना होना चाहिए ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो 1/10 ऑफ देयर बॉडी वेट, अगर बॉडी वेट 20 kg है तो कोलेस्ट्रम कितना देंगे, 2 kg, हाँ, और 2 kg भी फ्रिक्वेंटली देना है, मीन्स आप डिवाइड कर लो उसको कि सुबह कितना दोगे, फिर 2 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, इस तरह से देना है उसको, ये पर डे का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 1/10 ऑफ बॉडी वेट। कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम इज अ फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ओके, नेक्स्ट काफ का डिसीज मैनेजमेंट करना है, इसके बाद नेवल इल को ध्यान में रखना है। हाँ, अच्छा, उसका जो नेवल कॉर्ड होता है, जैसे ही वो बर्थ, जैसे ही काविंग हुई तो नेवल कॉर्ड होता है उसको कटिंग करनी होती है, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 4 inch, है ना, जो बॉडी से 4 inch में आप उसको कट करेंगे, उसके बाद एक्चुअली पहले लाइगेट करना है उसको, है ना, 4 inch में आप लाइगेट करेंगे, लाइगेट करने का मतलब उसको बांधना है अच्छे से ताकि ब्लीडिंग ना हो, उसके बाद उसके 1 cm में उसको कट करना है, तो ये होता है नेवल कॉर्ड की कटिंग। और यहाँ पर उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक लगा देना है, टिंक्चर आयोडीन, बीटाडीन, कुछ भी लगा देना उसमें एंटीबायोटिक, ताकि उसमें किसी भी तरह का असेंडिंग इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, अगर इन्फेक्शन हुआ तो फिर काफ बीमार हो जाएगा,
फीवर आएगा उसको, इसी को कहते हैं नेवल।

और वैक्सीनेशन वगैरह, वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो ये देखना है। डीवर्मिंग, डीवर्मिंग का शेड्यूल भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है। हीफर, हीफर का मैनेजमेंट वो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ अलग नहीं करते हैं इसमें। हीफर क्या होता है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। हीफर क्या होता है ना, मोर देन 6 मंथ एंड एबव देन एबव 6 मंथ और 1 ईयर दैट नॉट हैड काउंट, फीमेल, एडल्ट फीमेल इज कॉल्ड हीफर। ना मिल्च एनिमल, मिल्च एनिमल में सबसे इम्पोर्टेंट है फीडिंग। तो फीडिंग का थंब रूल मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ है, ये थंब रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी प्रोडक्टिव एनिमल का थंब रूल, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि 1 kg कॉन्सेंट्रेट देना है पर 2.5 kg मिल्क प्रोडक्शन इन केस ऑफ जेबू कैटल, एंड 1 kg कॉन्सेंट्रेट पर 2 kg मिल्क इन केस ऑफ क्रॉस ब्रीड और बफेलो। तो ये याद रखना है। और दूसरा, मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। और दूसरा है ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो 2 to 2.5% ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ कैटल एंड 2.5 to 3% रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ क्रॉस ब्रीड एंड बफेलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड चिकन में, अच्छा मिल्च एनिमल का भी मैनेजमेंट देख रहे थे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ शीप गोट। तो शीप एंड गोट में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस टेबल मैंने दे दिया है, ये याद रखना है आपको। गोट ब्राउजर होता है एंड शीप ग्रेजर होता है। स्वाइन के मैनेजमेंट में पिगलेट एनीमिया, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। और ये क्यों होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से पिगलेट्स में होता है। और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, उसको एक जो भी हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंक्रीट ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक साइड उसको सॉइल, पूरा जो फ्लोर है वो कंक्रीट का नहीं होना चाहिए, सॉइल भी हमको वो प्रोवाइड करना है। दूसरा फेरस सल्फेट का, या तो हम उसमें पेंट कर देंगे मदर की अडर में, और आयरन का इंजेक्शन देंगे। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन, हैचिंग, ब्रूडिंग, मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर लेयर, ग्रोअर एंड लेयर। तो फर्स्ट आप इसमें तो एग का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए अच्छे से। और मैनेजमेंट ऑफ चिक है ना, ब्रूडिंग का मैनेजमेंट, ब्रूडिंग मैनेजमेंट, ब्रूडिंग मैनेजमेंट करके पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। तो ब्रूडिंग क्या है, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ चिक्स इज कॉल्ड ब्रूडिंग। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं लोग इसमें, तो ब्रूडिंग इसको कहते हैं ना, इंक्यूबेशन अलग है। तो पहले हम चिक का मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें ब्रूडिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि चिक, सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया और बिल्डिंग हमने सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर चिक को लाना है हमें, तो वहाँ पर पहले फ्यूमिगेशन करेंगे है ना, बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, जितने भी पैथोजेंस हैं वो सबको रिमूव करने के लिए हम वहाँ पर फ्यूमिगेशन करेंगे। ओके, उसके बाद, उसके 10 डेज बाद हम चिक को लाएंगे। और चिक को लाने के बाद हमें उसको एक पर्टिकुलर, क्योंकि चिक है उसमें फेदर्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, इसलिए उसको वार्म्थ चाहिए होता है फेदर्स के डेवलपमेंट के लिए, आगे डेवलपमेंट के लिए है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसको वार्म्थ प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, हीटिंग सोर्स होगा बल्ब, जनरली हम बल्ब यूज़ करते हैं इसमें, तो बल्ब उसमें प्रोवाइड करेंगे। और ऊपर उसमें रिफ्लेक्टर लगा होगा, रिफ्लेक्टर से क्या होता है कि पूरा जो लाइट होता है वो जो एरिया होता है उनका जहाँ पे चिक रखा होता है उसमें अच्छी तरह से फैल जाता है, और तो हीट अच्छे से प्रोवाइड होता है सारे एरिया में है ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम टेम्परेचर कितना देंगे, कितना टेम्परेचर हम इसमें रखें है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। ब्रूडर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर द फर्स्ट वीक है ना। अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फर्स्ट वीक। तो हम रखते कितने दिन है इसको, ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक रखते हैं, उसके बाद उसको सेल कर दिया जाता है ना, अगर ब्रॉयलर हो तो ठीक है। तो फर्स्ट वीक में हम इसको, इसका टेम्परेचर होगा 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में रखे तो 35 डिग्री सेल्सियस। और हर सप्ताह इसके टेम्परेचर को कम करते जाना है
है ना, तो कितना कम करते जाएंगे अगर

में है तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हर सप्ताह कम करते जाना है, और अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 3 डिग्री सेल्सियस पर वीक उसको कम करते जाना है ना। तो लास्ट वीक, लास्ट 6th वीक कितना कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। और उसे वही फ़ारेनहाइट में देखें तो 6th वीक में हो जाएगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये नोट्स में मैंने दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सब पूछा जाता है कि हर सप्ताह कितना फ़ारेनहाइट कम करना है हमको, है ना, या कितना डिग्री सेल्सियस कम करना है हमको। ब्रूडिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। लाइट का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 24 आवर लाइट चाहिए इनको अगर चिक है तो, है ना। मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर में सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, है ना। रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग हम करते हैं इसमें, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यूनिफॉर्म ग्रोथ चाहिए। और रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग कैसे किया जाता है, डीबिगिंग करके, है एक तो ये है कि फीड का क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, लेकिन डीबिगिंग इसमें किया जाता है। डीबिगिंग में पर्टिकुलर जो बर्ड्स है उसको सेलेक्ट किया जाता है जो कि ज़्यादा ओवर फीडिंग, ओवर ईटिंग कर रही है, तो यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होगा, तो उसमें क्या करते हैं, हम डीबिग कर देते हैं। डीबिगिंग से क्या होगा, तो फीड वो कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा, तो इस तरह से यूनिफॉर्म ग्रोथ हो जाएगा उसका, जितने बर्ड्स एक फ्लॉक में रखे हुए उनका। ओके, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर, और जो बाकी जो नोट्स में दिया है वो तो पढ़ना ही है। लाइट कितना चाहिए इनको, तो 12 आवर लाइट चाहिए। देखो लाइट का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चिक को कितना लाइट का रिक्वायरमेंट चाहिए, ग्रोअर को कितना होना चाहिए, एंड लेयर को कितना होना चाहिए। तो लेयर को 16 आवर होना चाहिए, और लेयर का ज़्यादातर पूछा जाता है, तो लेयर के मैनेजमेंट में ये इम्पॉर्टेंट है। और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए लेयर में, क्योंकि लेयर में ही कैल्शियम ज़्यादा दिया जाता है ना, 3%। ओके, नेक्स्ट है हाँ, हम सिलेक्शन कैसे करेंगे लेयर का, है ना। देखो सिलेक्शन एंड कलिंग दो टर्मिनोलॉजी होती है। सिलेक्शन कलिंग, कलिंग भी उसी बेसिस पे करेंगे जिस बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे। कलिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव एनिमल्स और बर्ड्स, है ना, इनके सब बर्ड्स, इट इज बर्ड्स। तो जो क्राइटेरिया हम सिलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वही क्राइटेरिया हम कलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एब्डोमेन कैसा होना चाहिए, जो गुड लेयर होता है, गुड लेयर की क्या क्वालिटी होती है, बैड लेयर की या पुअर लेयर की क्या क्वालिटी होती है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेंट कैसा होता है गुड लेयर में, लार्ज एंड मॉइस्ट, पुअर लेयर में स्मॉल, ड्राई वेंट होता है ना? उसके कॉम्ब कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, फुल होते हैं, रेड होते हैं, पुअर लेयर में लॉन्ग थिन और रेड भी नहीं होते हैं पूरी तरह से। ओके, तो ये पूछा जाता है बैक कैसे होना चाहिए, ब्रॉड और स्ट्रेट होता है गुड लेयर में, एंड पुअर लेयर में नैरो होता है। मोल्टिंग, मोल्टिंग का मतलब होता है कि वो जब अपना फेदर्स झड़ाना चालू कर देती है ना, तो इसमें एक टाइम ऐसा आता है लेयर में कि वो अपना सारे फेदर्स झड़ाना चालू कर देती है, उसके बाद वापस उसमें फेदर्स आते हैं, ठीक है। तो मोल्टिंग का मतलब यही होता है। तो गुड लेयर में मोल्टिंग कैसा होता है, लेट से होगा और जल्दी हो जाएगा, है ना। वही पुअर लेयर में बहुत जल्दी झड़ जाएगा और बहुत धीरे धीरे झड़ेगा, ठीक है, दैट मीन्स अर्ली एंड स्लो। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें, बाकी ब्रीड्स तो है ही इम्पॉर्टेंट, और उसका क्लासिफिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डीप लिटर सिस्टम का मैनेजमेंट, एंड मीन्स उसका हाउसिंग का कितने टाइप के होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसको, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप हाउसिंग का मैनेजमेंट आता है तो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आपको कितना पता है ना, एंड लाइट कितना होना चाहिए गुड लेयर में, तो 16 आवर लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। कैल्शियम होना चाहिए 3%। तो ये तो हो गया लेयर का मैनेजमेंट, एंड नाउ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर का अलग दिया हुआ है एंड ब्रॉयलर का अलग दिया हुआ है। तो फर्स्ट डे जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वो मरिक डिसीज़ का होता है, जो 0 डे में यूज़ किया जाता है। तो HVT स्ट्रेन यूज़ किया जाता है इसमें। HVT का मतलब होता है हर्पीस वायरस ऑफ टर्की स्ट्रेन। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 0 डे में कौन सा वैक्सीनेशन पोल्ट्री को लगाया जाता है, तो कौन सा डिसीज़ के लिए लगाया जाता है, मरिक डिसीज़ के लिए।

तो और वैक्सीनेशन का पूरा प्रॉपर शेड्यूल तो याद करना ही है आपको। नो नेक्स्ट ईयर ये एक्सोटिक ब्रीड्स मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री, तो क्या क्या ये ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रोवाइड किया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ज़्यादा कुछ उसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट बताने लायक है नहीं, बस इसमें ब्रीडिंग है कि आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है, इन ब्रीडिंग किया जाता है, तो वो ब्रीडिंग का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लेना, क्योंकि ये उसमें पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता दिया है आपको। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ, तो इसमें रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है उसमें रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट इसका डिफरेंस, और ये डिफरेंस पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो रफेज किसको कहते हैं, फीड स्टफ दैट हैज़ मोर देन 18% क्रूड फाइबर एंड लेस देन 60% टीडीएन, है ना, और इसका उल्टा हो गया कॉन्सेंट्रेट। तो ये जो ट्रिक है वो याद रखना है, उसी के बेसिस पे हम रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट को क्लासिफाई करते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है अप्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है इसमें, तो कितने अप्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल होते हैं, और ये ऑलरेडी मैंने नोट्स में दे दिया है। ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाता है इस टॉपिक से। नो नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन, तो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजेस, तो किसकी डेफिशिएंसी से, किस मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रेजी चिक डिजीज है, मोस्टली पोल्ट्री में होता है क्रेजी चिक डिजीज, है ना, तो ये होता है विटामिन डी, विटामिन ई की, सॉरी विटामिन ई की डेफिशियंसी से, या सेलेनियम, है ना, तो विटामिन ई एंड सेलेनियम ये दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है दोनों का। तो विटामिन ई या सेलेनियम अगर एमसीक्यू में दिया हुआ है ऑप्शन में आपको दोनों, तो विटामिन ई में लगाना है इसमें। ओके नाउ नेक्स्ट है B2, विटामिन बी टू, विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से कर्ल टू पैरालिसिस होता है ना, तो ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया हुआ है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, टॉक्सिसिटी से कौन सा डिजीज होता है ना, मिनरल की टॉक्सिसिटी से, तो जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर पढ़ के चाहिए। पैराकेरोटोसिस, है ना, जिंक की डेफिशिएंसी से पिग में पैराकेरोटोसिस डिजीज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फीड इंग्रेडिएंट्स फॉर राशन फॉर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, तो जो क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे, जो आप फीड स्टफ का क्लासिफिकेशन किया है, रफ एज एंड कॉन्सेंट्रेट, उसमें जो भी आएगा वो यही आएगा, इसमें फीड इंग्रेडिएंट में भी सेम आएगा ना। राशन क्या है ना, तो 24 आवर में जो भी फीड हम एनिमल को प्रोवाइड करते हैं उसको राशन कहते हैं। तो डेफिनेशन सबका याद रखिएगा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, तो थंब रूल इसमें याद रखना है, जेस्टेशन पीरियड के लिए हम कौन सा राशन देंगे, लैक्टेटिंग पीरियड के लिए हम कैसा राशन देंगे, एंड मेंटेनेंस के लिए कैसा राशन देंगे, वो पूरा टेबल जो मैंने दिया है वो याद रखना है आपको। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डिसीजेस, ओके, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और डिसीज़ को भी क्लासिफाई किया गया है ना, बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, प्रोटोजोअल डिसीज़, मेटाबॉलिक डिसीजेस, तो एटलीस्ट 4-5 एग्जांपल्स आप इसमें याद रखना है। तो बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजीज़ तो बहुत सारे हैं, तो बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन से हो गए, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, और वायरल डिजीज कौन कौन से हो गए, FMD, रेबीज, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा गोट में देखा जाए तो PPR, और पोल्ट्री पोल्ट्री में मरिक डिजीज हो गया, न्यू कैसल डिजीज, कोक्सीडियोसिस, तो बहुत डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। डीप में अगर जो डिजीजेस पढ़ना है वो मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया है, तो वो डिसीजेस को थोड़ा थोड़ा सा डीप में देख लेना है। जैसे कि FMD, तो FMD में क्या सिम्टम होते हैं इसमें, तो नोड्यूल्स बन जाते हैं माउथ में एंड उसके फीट में, तो ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स में होता है जिनके

जो खुर है वो दो भागों में बटे होते हैं, उसको क्लोवन फुटेड कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स में एफएमडी होता है ना। एफएमडी में क्या इसका सिम्टम है, हाई फीवर होता है और सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो वायरल डिसीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये वायरस से होता है, एप्थो वायरस से होता है, और वायरल डिसीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे ना? और जो लीजन्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे माउथ में लीजन्स बन गए तो ब्यूरोग्लिसरीन लगाएंगे, है ना। फुट में लीजन है तो केमेनोफोर से उसको वॉशिंग करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। एंटीबायोटिक तो देना ही है, वायरल डिजीज़ है, बट एंटीबायोटिक हम इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीजेस में आ गया मेस्टाइटिस। देखो किसी भी डिजीज़ में आइटिस अगर लास्ट में लगा है, सफिक्स लगा है, दैट मीन्स उसका मतलब होता है इन्फ्लॉमेशन। मेस्टाइटिस का मतलब हो गया अर्डर का इन्फ्लामेशन। तो ये तो मल्टीपल कॉजिटिव डिसीज़ है, बहुत सारे कारण होते हैं इस डिसीज़ के। तो मेटाबॉलिक डिसीज़ में भी आएगा ये, और क्योंकि और इसके अलावा है मिल्क फीवर एंड किटोसिस। तो मिल्क फीवर में ये ज़रूर याद रखना है, इसका बस नाम में फीवर है, बट इसमें फीवर नहीं होता है, इसमें होता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है। कीटोसिस, मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस, ये तीनों ऐसे डिसीज है जो हाई यील्डिंग एनिमल्स में होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम, एक जनरल मैनेजमेंट होता है प्रिवेंशन का, बायो सिक्योरिटी फॉलो करेंगे। बायो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमको कैसे डिसीज़ आने से रोकना है अपने फार्म पे, है ना। तो क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे उसके लिए, फूड बाथ बनाएंगे, केमनोफोर उसमें उसका घोल डालेंगे उसमें, है ना, या तो लाइम स्प्रेड करेंगे पोल्ट्री हाउसेस में, कोई भी इन्वेडर्स को आने नहीं देंगे, कोई भी प्रीडेटर्स को भी हम इनवाइट नहीं करेंगे, उसके लिए भी प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए। वैक्सीनेशन फॉलो करेंगे, और जितने भी इक्विपमेंट है फार्म पे उस सब की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है रूटीनली। ओके रूटीनली सारे एनिमल्स को चेक करना है, कहीं कोई सिम्टम तो नहीं दिख रहा है। अगर सिम्टम दिख रहा है तो फिर उस एनिमल को आइसोलेट करना है। कोई भी एनिमल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फार्म में न्यू एनिमल, तो फिर उसको क्वारंटाइन करना है ना। तो क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन क्या है, इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेना है। और एक प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन होता है जो कि है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल मैंने पूरी दी हुई है, कैटल का, बफेलो का। कैटल बफेलो का सेम होता है, कैटल बफेलो शीप गोट का सेम होता है, और पोल्ट्री का। तो पोल्ट्री में लेयर का अलग होता है, ब्रॉयलर का अलग होता है, क्योंकि ब्रॉयलर को हम 5-6 वीक तक ही रखते हैं, तो उसमें ज़्यादा है नहीं। लेयर में बहुत सारे डिजीज़ के लिए दिया गया है, और फर्स्ट वैक्सीन किसके लिए लगाते हैं तो वो भी याद रखना है। और है आइडेंटिफिकेशन, है ना, एनिमल का आइडेंटिफिकेशन। तो कितने मेथड्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के, कौन सा मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ईयर नॉचिंग है, पिक के लिए किया जाता है, ब्रांडिंग है वो कैटल के लिए, वो भी एडल्ट एनिमल के लिए किया जाता है, यंग एनिमल के लिए नहीं। और उसमें ब्रांडिंग में भी दो टाइप का होता है, कोल्ड ब्रांडिंग या फ्रिज ब्रांडिंग, है ना, केमिकल ब्रांडिंग, हॉट ब्रांडिंग। तो कौन सा मेथड किस पर्टिकुलर एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। पोल्ट्री के लिए कैसा आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो और आइडेंटिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है ना। किसी का कोई प्रॉपर पर्टिकुलर मेथड है, उसका क्या लिमिटेशंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये पढ़ना है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, एंड मिल्किंग मेथड्स, है ना। तो तीन टाइप, एक्चुअली दो टाइप के मिल्किंग मेथड्स होते हैं, एक मैनुअल होता है एंड एक मशीन मिल्किंग होता है। तो मशीन मिल्किंग में तो हम मशीन का यूज़ करते हैं, जो मैनुअल मेथड होता है उसके तीन मेथड होते हैं। तो मैनुअल में हम हैंड का यूज़ करते हैं, एंड तो फर्स्ट मेथड होता है फुल हैंड मिल्किंग, दूसरा है नकलिंग, तीसरा है स्ट्रिपिंग, है ना। तो फुल हैंड मिल्किंग में हम पूरा फिस्ट का यूज़ करेंगे, नकलिंग में थंब का यूज़ किया जाता है, एंड स्ट्रिपिंग में फोर फिंगर एंड थंब का यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रिपिंग हम हमेशा जैसे ही मिल्किंग स्टार्ट करते हैं एनिमल की, तो फर्स्टली स्ट्रिपिंग करते हैं, उसके बाद फुल हैंड मिल्किंग करते हैं। यानी फुल हैंड मिल्किंग किसमें करते हैं, जो जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जिनका टीट्स बड़े होते हैं, तो उनके लिए फुल हैंड मिल्किंग का यूज़ किया जाता है, है ना। ऑब्वियसली अगर हीफर है तो उसका टीट्स बड़े नहीं होंगे, तो फुल हैंड वो तो पूरे हाथ में आएगा नहीं, तो हम उसमें पूरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, स्ट्रिपिंग, है ना। और नकलिंग सबसे वर्स्ट मैथड होता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा बेस्ट मैथड होता है,
अगर मशीन मिल्किंग भी दिया

0: है इन सब के साथ में, तो ऑब्वियसली पहले मशीन मिल्किंग आएगा, और अगर तीनों मेथड दिया हुआ है तो फिर फुल हैंड मिल्किंग बेस्ट मेथड होता है एंड वर्स्ट नकलिंग। इसके अलावा इकोनॉमिक्स खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। और कलिंग का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, कास्टिंग है ना, कास्टिंग के दो मेथड होते हैं और वो मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है, रूप्स मेथड एंड मॉडिफाइड रूप्स मेथड, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इसमें ये देखना है कि जो प्रैक्टिकल में जितने कोर्सेज हैं, जितने चैप्टर हैं, वो सब भी थ्योरी में पूछे जाते हैं, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लेना। ब्रीड्स, ब्रीड्स पूछा जाता है, एटलीस्ट दो तीन क्वेश्चन तो ब्रीड्स से आएंगे। और हैबिटेट, ब्रीड्स में सबका हैबिटेट याद रखना ज़रूरी है, बहुत सारे ब्रीड्स हैं और कुछ भी उठा के पूछ सकता है उसमें से, तो उसका हैबिटेट पढ़ना, और हैबिटेट ही पूछा जाता है तो हैबिटेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स है उनका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे मुर्रा का कर्व्ड हॉर्न होता है, कर्ल्ड होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली कर्ल्ड होता है, तो वो उसका है। और जेट ब्लैक है, जेट ब्लैक कलर का होता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है उसका। इस तरह से बाकी सारे ब्रीड्स का भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो वो पढ़ना, वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बाकी ब्रीड का क्लासिफिकेशन है ना, कैटल का क्लासिफिकेशन करते हैं कैसे करते हैं, बफेलो का कैसे करते हैं, शिप गोट का कैसे करते हैं, पिक का कैसे करते हैं, तो वो सब। केवल एग्जॉटिक एंड इंडिजिनस ये नहीं लिखना है, इंडिजिनस में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो इंडिजिनस का क्लासिफिकेशन भी देखना है पूरी तरह से। बाकी रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, कल के एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार

0: दिल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार।
1: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आदमी ना हो गया।
2: खुद की

0: 81 को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
0: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हंसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए खास कार्यक्रम रेडियो रिविजन में, जो परीक्षा के पूर्व संध्या पर आपके लिए विशेष तौर पर प्रसारित किया जाता है। दोस्तों, कल आपके कोर्स AAG 1-1 का एग्जाम है और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर ज्योति माला साहू हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिविजन के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू
5: मैम। आप रेडियो रिविजन शुरू कीजिए।
6: Okay, students, let's start with housing principle space requirement for different species of animal and poultry. So, इसमें सबसे important है housing principle, what is the importance of housing and how it is, it should be classified for cattle, pig and sheep, goat and poultry. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैटल का, तो इसमें लूज हाउसिंग एंड कन्वेंशनल हाउसिंग आएगा। तो कन्वेंशनल में दो टाइप का होता है, टेल टू टेल सिस्टम एंड हेड टू हेड सिस्टम। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा बेस्ट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा बेस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट। तो स्पेस, अच्छा, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर ये एग्ज़ाम में आया हुआ था, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में आ जाएगा। फ्लोर कैसा होना चाहिए, वॉल कैसा होना चाहिए, रूफ, मेंजर, वाटर ट्रफ, उसका विथ, हाइट एंड डेप्थ कितना होना चाहिए, गटर कैसा होना चाहिए, फीड एले कैसे होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ मैं। और नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट। तो स्पेस रिक्वायरमेंट में BIS के अकॉर्डिंग, जो बहुत इजी है याद करने में, मीटर स्क्वायर में याद करो आप और उसको फिर कन्वर्ट कर लेना फिट में, अगर फिट में एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो। तो कैटल बफेलो के लिए ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हीफर में कितना होगा, काफ में कितना होगा, है ना, काउ में कितना होगा, कवर्ड एरिया कितना होगा, ओपन एरिया कितना होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी टेबल दे दिया है इसके लिए, तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल काफ में कितना मैक्सिमम एनिमल मैक्सिमम नंबर

एनिमल कितना होना चाहिए, फॉर काफ तो इट इज़ 30 एंड फॉर काउ इट इज़ 50। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड पोल्ट्री में अगर स्पेस रिक्वायरमेंट पूछा जाता है तो डीप लेटर का स्पेस रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एज वाइज होता है इसका रिक्वायरमेंट, है ना, 0 to 8 week एंड 9 to 12 week, 13 to 18 एंड मोर देन 18 अबव। तो लाइट बर्ड के लिए अलग होता है एंड हैवी बर्ड्स के लिए अलग होता है। ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर में है जो मैंने दिया है वो। ओके, तो स्पेस रिक्वायरमेंट में ये इम्पॉर्टेंट है एंड बाकी तो आपको पढ़ना ही है, और दूसरी चीज़ें भी। ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए हाउस का, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ काफ्स, काफ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एक्चुअली काफ का मैनेजमेंट बर्थ से ही, उसके बर्थ के पहले से ही, प्रेगनेंसी के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है ना। हमको प्रेग्नेंट एनिमल का बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा। अब जैसे ही बर्थ होता है, जैसे ही काविंग होती है, उसके बाद काफ को एक साफ प्लेस पे, क्लीन प्लेस पे रखा जाता है। जो भी फ्लूड उस पर लगा हुआ होता है वो अच्छे से क्लीन किया जाता है, वाइप किया जाता है सोक टॉवल से, जो कि क्लीन होना चाहिए, और उसको मदर के सामने रखा जाता है। तो क्या करती है, उसको पूरी तरह से लिक कर देती है। तो लिकिंग से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और वो साफ भी हो जाता है अच्छे से। तीसरा है रेस्पायरेशन, उसके रेस्पायरेटरी सिस्टम को एक्टिव करना होता है हमें जैसे ही बर्थ होता है उसका, तो रेस्पायरेशन भी उससे ईजी हो जाता है। अगर रेस्पायरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उस यहाँ पर वेटनरी असिस्टेंट की नीड होगी। ओके, उसके बाद कोलेस्ट्रम फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि 15 minutes to half an hour, मतलब विद इन हाफ आवर आपको कोलेस्ट्रम फीडिंग करानी ही है। और इसका डोज कितना होना चाहिए, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो 1/10 ऑफ देयर बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट 20 kg है तो कोलेस्ट्रम कितना देंगे, 2 kg। हाँ, और 2 kg भी फ्रिक्वेंटली देना है, मीन्स आप डिवाइड कर लो उसको कि सुबह कितना दोगे, फिर 2 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, इस तरह से देना है उसको। ये पर डे का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 1/10 ऑफ बॉडी वेट। कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम इज अ फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ओके, नेक्स्ट काफ का डिसीज मैनेजमेंट करना है। इसके बाद नेवल इल को ध्यान में रखना है। हाँ, अच्छा, उसका जो नेवल कॉर्ड होता है, जैसे ही वो बर्थ, जैसे ही काविंग हुई तो नेवल कॉर्ड होता है उसको कटिंग करनी होती है। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली 4 inch, जो बॉडी से 4 inch में आप उसको कट करेंगे। उसके बाद एक्चुअली पहले लाइगेट करना है उसको, है ना, 4 inch में आप लाइगेट करेंगे। लाइगेट करने का मतलब उसको बांधना है अच्छे से ताकि ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद उसके 1 centimeter में उसको कट करना है। तो ये होता है नेवल कॉर्ड की कटिंग। और यहाँ पर उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक लगा देना है, टिंक्चर आयोडीन, बीटाडीन, कुछ भी लगा देना उसमें एंटीबायोटिक, ताकि उसमें किसी भी तरह का असेंडिंग इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इन्फेक्शन हुआ तो फिर काफ बीमार हो जाएगा, फीवर आएगा उसको, इसी को कहते हैं नेवल इल। और वैक्सीनेशन वगैरह, वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो ये देखना है। डीवर्मिंग का शेड्यूल भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है। हीफर का मैनेजमेंट ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ अलग नहीं करते हैं इसमें। हीफर क्या होता है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। हीफर क्या होता है, मोर देन 6 months एंड अबव 6 months और 1 year दैट नॉट हैड काउंट, फीमेल, एडल्ट फीमेल, इज कॉल्ड हीफर। ना मिल्च एनिमल में सबसे इम्पॉर्टेंट है फीडिंग। तो फीडिंग का थंब रूल मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ है, ये थंब रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें भी प्रोडक्टिव एनिमल का थंब रूल, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि 1 kg कॉन्सेंट्रेट देना है पर 2.5 kg मिल्क प्रोडक्ट।

reaction in case of zebu cattle and 1 kg concentrate per 2 kg milk in case of crossbred or buffalo. तो ये याद रखना है. और दूसरा मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. और दूसरा है ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट कितना होता है. तो 2 to 2.5% ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ कैटल एंड 2.5 to 3% रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ क्रॉसब्रीड एंड बफेलो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. एंड चिकन में अच्छा मिल से एनिमल का भी मैनेजमेंट देख रहे थे. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ शीप गोट. तो शीप एंड गोट में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस टेबल मैंने दे दिया है, ये याद रखना है आपको. गोट ब्राउजर होता है एंड शीप ग्रेजर होता है. स्वाइन के मैनेजमेंट में पिगलेट एनीमिया ये टर्मिनोलॉजी याद रखना. और ये क्यों होता है, आयरन की डेफिशियंसी से पिगलेट्स में होता है. और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम उसको एक जो भी हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कॉन्क्रीट ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक साइड उसको सॉइल पूरा जो फ्लोर है वो कॉन्क्रीट का नहीं होना चाहिए, सॉइल भी हमको वो प्रोवाइड करना है. दूसरा फेरस सल्फेट का या तो हम उसमें पेंट कर देंगे मदर की अर्डर में, और आयरन का इंजेक्शन देंगे. तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया. नेक्स्ट है इंक्यूबेशन हैचिंग ब्रूडिंग मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर लेयर ग्रोअर एंड लेयर. तो फर्स्ट आप इसमें तो एग का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए अच्छे से. और मैनेजमेंट ऑफ चिक है ना, ब्रूडिंग का मैनेजमेंट, ब्रूडिंग मैनेजमेंट करके पूछा जाएगा आपको एग्जाम में. तो ब्रूडिंग क्या है, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ चिक्स इज कॉल्ड ब्रूडिंग. तो इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं लोग इसमें, तो ब्रूडिंग इसको कहते हैं ना, इंक्यूबेशन अलग है. तो पहले हम चिक का मैनेजमेंट देखते हैं. इसमें ब्रूडिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि चिक सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया और बिल्डिंग हमने सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर चिक को लाना है हमें. तो वहाँ पर पहले फ्यूमिगेशन करेंगे है ना, बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, जितने भी पैथोजेंस हैं वो सबको रिमूव करने के लिए हम वहाँ पर फ्यूमिगेशन करेंगे. ओके उसके बाद उसके 10 डेज बाद हम चिक को लाएंगे. और चिक को लाने के बाद हमें उसको एक पर्टिकुलर, क्योंकि चिक है उसमें फेदर्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, इसलिए उसको वार्मथ चाहिए होता है फेदर्स के डेवलपमेंट के लिए, आगे डेवलपमेंट के लिए है ना. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको वार्मथ प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे. कैसे करेंगे, हीटिंग सोर्स होगा बल्ब, जनरली हम बल्ब यूज़ करते हैं इसमें. तो बल्ब उसमें प्रोवाइड करेंगे और ऊपर उसमें रिफ्लेक्टर लगा होगा. रिफ्लेक्टर से क्या होता है कि पूरा जो लाइट होता है वो जो एरिया होता है उनका जहाँ पे चिक रखा होता है उसमें अच्छी तरह से फैल जाता है, और तो हीट अच्छे से प्रोवाइड होता है सारे एरिया में है. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम टेम्परेचर कितना देंगे, कितना टेम्परेचर हम इसमें रखें है ना. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ब्रूडर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 90 to 95 degree Fahrenheit फॉर द फर्स्ट वीक है ना. अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 90 to 95 degree Fahrenheit इन फर्स्ट वीक. तो हम रखते कितने दिन हैं इसको, ऑलमोस्ट 5 to 6 weeks रखते हैं, उसके बाद इसको सेल कर दिया जाता है अगर ब्रॉयलर हो तो. ठीक है, तो फर्स्ट वीक में हम इसको, इसका टेम्परेचर होगा 90 to 95 degree Fahrenheit, और डिग्री सेल्सियस में रखे तो 35 degree Celsius. और हर सप्ताह इसके टेम्परेचर को कम करते जाना है ना. तो कितना कम करते जाएंगे, अगर फ़ारेनहाइट में है तो 5 degree Fahrenheit हर सप्ताह कम करते जाना है, और अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 3 degree Celsius पर वीक उसको कम करते जाना है ना. तो लास्ट वीक, लास्ट 6th वीक कितना हो जाएगा, 20 degree Celsius है ना. और उसे वही फ़ारेनहाइट में देखें तो 6th वीक में हो जाएगा 70 degree Fahrenheit. तो ये नोट्स में मैंने दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यह सब पूछा जाता है कि हर सप्ताह कितना फ़ारेनहाइट कम करना है हमको है ना, या कितना डिग्री सेल्सियस कम करना है हमको. ब्रूडिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 90 to 95 degree Fahrenheit है ना. लाइट का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 24 आवर लाइट चाहिए इनको अगर चिक है तो. मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर में सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग है ना. रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग हम करते हैं इसमें, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यूनिफॉर्म ग्रोथ चाहिए. और रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग कैसे किया जाता है, डीबिगिंग करके

ये है कि फीड का क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, लेकिन डीबेगिंग इसमें किया जाता है। डीबेगिंग में पर्टिकुलर जो बर्ड्स है उसको सेलेक्ट किया जाता है जो कि ज़्यादा ओवर फीडिंग ओवर ईटिंग कर रही है, तो यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होगा। तो उसमें क्या करते हैं, हम डीबेग कर देते हैं। डीबेगिंग से क्या होगा, तो फीड वो कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा, तो इस तरह से यूनिफॉर्म ग्रोथ हो जाएगा उसका, जितने बर्ड्स एक फ्लॉक में रखे हुए हैं उनका। ओके, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ ग्रोअर, और जो बाकी जो नोट्स में दिया है वो तो पढ़ना ही है। लाइट कितना चाहिए इनको, तो 12 और लाइट चाहिए। देखो लाइट का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चिक को कितना लाइट का रिक्वायरमेंट चाहिए, ग्रोअर को कितना होना चाहिए एंड लेयर को कितना होना चाहिए। तो लेयर को 16 आवर होना चाहिए, और लेयर का ज़्यादातर पूछा जाता है, तो लेयर के मैनेजमेंट में ये इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए लेयर में, क्योंकि लेयर में ही कैल्शियम ज़्यादा दिया जाता है ना, 3%। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, हम सिलेक्शन कैसे करेंगे लेयर का, है ना। देखो सिलेक्शन एंड कलिंग दो टर्मिनोलॉजी होती है। सिलेक्शन कलिंग, कलिंग भी उसी बेसिस पे करेंगे जिस बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे। कलिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव एनिमल्स और बर्ड्स, है ना, इनके सब बर्ड्स, इट इज बर्ड्स। तो जो क्राइटेरिया हम सिलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वही क्राइटेरिया हम कलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एब्डोमेन कैसा होना चाहिए, जो गुड लेयर होता है, गुड लेयर की क्या क्वालिटी होती है, बैड लेयर की या पुअर लेयर की क्या क्या क्वालिटी होती है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेंट कैसा होता है गुड लेयर में, लार्ज एंड मॉइस्ट, पुअर लेयर में स्मॉल, ड्राई वेंट होता है उसके कॉम्ब कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, फुल होते हैं, रेड होते हैं, पुअर लेयर में लॉन्ग थिन और रेड भी नहीं होते हैं पूरी तरह से। तो ये पूछा जाता है बैक कैसे होना चाहिए, ब्रॉड और स्ट्रेट होता है गुड लेयर में एंड पुअर लेयर में नैरो होता है। मोल्टिंग, मोल्टिंग का मतलब होता है कि वो जब अपना फेदर्स झड़ाना चालू कर देती है ना, तो इसमें एक टाइम ऐसा आता है लेयर में कि वो अपना सारे फेदर्स झड़ाना चालू कर देती है, उसके बाद वापस उसमें फेदर्स आते हैं, ठीक है। तो मोल्टिंग का मतलब यही होता है। तो गुड लेयर में मोल्टिंग कैसा होता है, लेट से होगा और जल्दी हो जाएगा, है ना। वही पुअर लेयर में बहुत जल्दी झड़ जाएगा और बहुत धीरे धीरे झड़ेगा, ठीक है, दैट मीन्स अर्ली एंड स्लो। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी ब्रीड्स तो है ही इम्पॉर्टेंट, और उसका क्लासिफिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डीप लिटर सिस्टम का मैनेजमेंट एंड मीन्स उसका हाउसिंग का कितने टाइप के होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसको, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप हाउसिंग का मैनेजमेंट आता है तो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट जरूर लिखेंगे, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आपको कितना पता है ना, एंड लाइट कितना होना चाहिए गुड लेयर में, तो 16 आवर लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। कैल्शियम होना चाहिए 3%। तो ये तो हो गया लेयर का मैनेजमेंट। एंड देन नाउ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर का अलग दिया हुआ है एंड ब्रॉयलर का अलग दिया हुआ है। तो फर्स्ट डे जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वो मरिक डिसीज का होता है, जो 0 डे में यूज़ किया जाता है। तो HVT स्ट्रेन यूज़ किया जाता है इसमें। HVT का मतलब होता है हर्पीस वायरस ऑफ टर्की स्ट्रेन। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 0 डे में कौन सा वैक्सीनेशन पोल्ट्री को लगाया जाता है, तो कौन सा डिसीज़ के लिए लगाया जाता है, मर्ग डिसीज के लिए। तो और वैक्सीनेशन का पूरा प्रॉपर शेड्यूल तो याद करना ही है आपको। नो नेक्स्ट है, ये एक्सोटिक ब्रीड, ब्रीड्स मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री, तो क्या क्या ये ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रोवाइड किया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ज़्यादा कुछ उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट बताने लायक है नहीं, बस इसमें ब्रीडिंग है कि आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है, इन ब्रीडिंग किया जाता है, तो वो ब्रीडिंग का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लेना, क्योंकि ये उसमें पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता दिया है आपको। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ, तो इसमें रफेज एंड कॉन्सनट्रेट, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है उसमें रफेज एंड कॉन्सनट्रेट इसका डिफरेंस, और ये डिफरेंस पूछा जाता है और ये एग्जाम में भी आता है। तो रफेज किसको कहते हैं, फीड स्टफ दैट हैज मोर देन 18% कॉन्सनट्रेट
क्रूड फाइबर

लेस देन 60% TDN है ना, और इसका उल्टा हो गया कॉन्सेंट्रेट। तो ये जो ट्रिक है वो याद रखना है, उसी के बेसिस पे हम रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट को क्लासीफाई करते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ फेट स्टब लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है इसमें, तो कितने अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं, और ये ऑलरेडी मैंने नोट्स में दे दिया है। ज़्यादा कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है इस टॉपिक से। नाउ नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन। तो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजेस। तो किसकी डेफिशिएंसी से, किस मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन से डिसीज़ होते हैं, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन से डिसीज़ होते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रेजी चिक डिजीज़ है, मोस्टली पोल्ट्री में होता है क्रेजी चिक डिजीज़, है ना, तो ये होता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, या सेलेनियम, है ना। तो विटामिन ई एंड सेलेनियम, ये दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है दोनों का। तो विटामिन ई या सेलेनियम अगर एमसीक्यू में दिया हुआ है ऑप्शन में आपको दोनों, तो विटामिन ई में लगाना है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट है विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से कर्ल टू पैरालिसिस होता है। तो ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया हुआ है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, टॉक्सिसिटी से कौन सा डिजीज़ होता है ना, मिनरल की टॉक्सिसिटी से। तो जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर पढ़ के चाहिए। पैराकेरोटोसिस है ना, जिंक की डेफिशिएंसी से पिग में पैराकेरोटोसिस डिजीज़ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फीड इंग्रेडिएंट्स फॉर रशियन फॉर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। तो जो क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे, जो आप फीड स्टब का क्लासिफिकेशन किया है रफ एज एंड कॉन्सेंट्रेट, उसमें जो भी आएगा वो यही आएगा, इसमें फीड इंग्रेडिएंट में भी सेम आएगा ना। राशन क्या है ना, तो 24 आवर में जो भी फीड हम एनिमल को प्रोवाइड करते हैं उसको राशन कहते हैं। तो डेफिनेशन सबका याद रखिएगा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, तो थंब रूल इसमें याद रखना है, जेस्टेशन पीरियड के लिए हम कौन सा राशन देंगे, लैक्टेटिंग पीरियड के लिए हम कैसा राशन देंगे, एंड मेंटेनेंस के लिए कैसा राशन देंगे, वो पूरा टेबल जो मैंने दिया है वो याद रखना है आपको। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डिसीजेस। ओके, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और डिसीज़ को भी क्लासीफाई किया गया है ना, बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, प्रोटोजोअल डिसीज, मेटाबॉलिक डिसीजेस। तो एटलीस्ट 4-5 एग्जाम्पल्स आप इसमें याद रखना है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन से हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डिजीज़ तो बहुत सारे हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन से हो गए, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, और वायरल डिजीज़ कौन कौन से हो गए, FMD, रेबीज, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा गोट में देखा जाए तो PPR, और पोल्ट्री में मरिक डिजीज़ हो गया, न्यूकैसल डिजीज़, कोक्सीडियोसिस। तो बहुत डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, डीप में अगर जो डिजीज़ पढ़ना है वो मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया है, तो वो डिजीज़ को थोड़ा सा डीप में देख लेना है। जैसे कि FMD, तो FMD में क्या सिम्टम होते हैं इसमें, तो नोड्यूल्स बन जाते हैं माउथ में एंड उसके फीट में, तो ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स में होता है, जिनके जो खुर है वो दो भागों में बटे होते हैं उसको क्लोवन फुटेड कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स में FMD होता है ना, FMD में क्या इसका सिम्टम है, हाई फीवर होता है और सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो वायरल डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये वायरस से होता है, एप्थो वायरस से होता है, और वायरल डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे ना? और जो लीजन्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे माउथ में लीजन्स बन गए तो ब्यूरोग्लिसरीन लगाएंगे, है ना, फुट में लीजन है तो कैमेनोफोर से उसको वॉशिंग करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। एंटीबायोटिक तो देना ही है, वायरल डिजीज़ है, बट एंटीबायोटिक हम इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीजेस में आ गया मेस्टाइटिस। देखो किसी भी डिजीज़ में आइटिस अगर लास्ट में लगा है, सफिक्स लगा है, दैट मीन्स उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। मेस्टाइटिस का मतलब हो गया अर्डर का इन्फ्लामेशन। तो ये तो मल्टीपल कॉजिटिव डिजीज़ है,

बहुत सारे कारण होते हैं इस डिसीज के, तो मेटाबॉलिक डिसीज में भी आएगा ये। और क्योंकि और इसके अलावा है मिल्क फीवर एंड किटोसिस, तो मिल्क फीवर में ये जरूर याद रखना है, इसका बस नाम में फीवर है बट इसमें फीवर नहीं होता है, इसमें होता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है। कीटोसिस, मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस, ये तीनों ऐसे डिसीज है जो हाई यील्डिंग एनिमल्स में होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम, एक जनरल मैनेजमेंट होता है प्रिवेंशन का, है ना। बायो सिक्योरिटी फॉलो करेंगे, बायो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमको कैसे डिसीज़ आने से रोकना है अपने फार्म पे, है ना। तो क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे उसके लिए, फूड बाथ बनाएंगे, केमनोफोर उसमें उसका घोल डालेंगे उसमें, है ना, या तो लाइम स्प्रेड करेंगे पोल्ट्री हाउसेस में, कोई भी इन्वेडर्स को आने नहीं देंगे, कोई भी प्रीडेटर्स को भी हम इनवाइट नहीं करेंगे, उसके लिए भी प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए। वैक्सीनेशन फॉलो करेंगे, और जितने भी इक्विपमेंट है फार्म पे उस सब की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है रूटीनली। ओके, रूटीनली सारे एनिमल्स को चेक करना है, कहीं कोई सिम्टम तो नहीं दिख रहा है, अगर सिम्टम दिख रहा है तो फिर उस एनिमल को आइसोलेट करना है। कोई भी एनिमल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फार्म में न्यू एनिमल, तो फिर उसको क्वारंटाइन करना है ना। तो क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन क्या है, इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेना है। और एक प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन होता है जो कि है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल मैंने पूरी दी हुई है कैटल का, बफेलो का, कैटल बफेलो का सेम होता है, कैटल बफेलो शीप गोट का सेम होता है, और पोल्ट्री का, तो पोल्ट्री में लेयर का अलग होता है, ब्रॉयलर का अलग होता है, क्योंकि ब्रॉयलर को हम 5-6 वीक तक ही रखते हैं, तो उसमें ज़्यादा है नहीं। लेयर में बहुत सारे डिजीज़ के लिए दिया गया है, और फर्स्ट वैक्सीन किसके लिए लगाते हैं तो वो भी याद रखना है। और है आइडेंटिफिकेशन, है ना, एनिमल का आइडेंटिफिकेशन, तो कितने मेथड्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के, कौन सा मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ईयर नॉचिंग है पिक के लिए किया जाता है, ब्रांडिंग है वो कैटल के लिए, वो भी एडल्ट एनिमल के लिए किया जाता है, यंग एनिमल के लिए नहीं। और उसमें ब्रांडिंग में भी दो टाइप का होता है, कोल्ड ब्रांडिंग या फ्रिज ब्रांडिंग, है ना, केमिकल ब्रांडिंग, हॉट ब्रांडिंग, तो कौन सा मेथड किस पर्टिकुलर एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। पोल्ट्री के लिए कैसा आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो और आइडेंटिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है ना, किसी का कोई प्रॉपर पर्टिकुलर मेथड है उसका क्या लिमिटेशंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये पढ़ना है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, एंड मिल्किंग मेथड्स, है ना। तीन टाइप, एक्चुअली दो टाइप के मिल्किंग मेथड्स होते हैं, एक मैनुअल होता है एंड एक मशीन मिल्किंग होता है। तो मशीन मिल्किंग में तो हम मशीन का यूज़ करते हैं, जो मैनुअल मेथड होता है उसके तीन मेथड होते हैं। तो मैनुअल में हम हैंड का यूज़ करते हैं, एंड तो फर्स्ट मेथड होता है फुल हैंड मिल्किंग, दूसरा है नकलिंग, तीसरा है स्ट्रिपिंग, है ना। तो फुल हैंड मिल्किंग में हम पूरा फिस्ट का यूज़ करेंगे, नकलिंग में थंब का यूज़ किया जाता है, एंड स्ट्रिपिंग में फोर फिंगर एंड थंब का यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रिपिंग हम हमेशा जैसे ही मिल्किंग स्टार्ट करते हैं एनिमल की, तो फर्स्टली स्ट्रिपिंग करते हैं, उसके बाद फुल हैंड मिल्किंग करते हैं। यानी फुल हैंड मिल्किंग किसमें करते हैं, जो जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जिनका टीट्स बड़े होते हैं, तो उनके लिए फुल हैंड मिल्किंग का यूज़ किया जाता है, है ना। ऑब्वियसली अगर हीफर है तो उसका टीट्स बड़े नहीं होंगे, तो फुल हैंड वो तो पूरे हाथ में आएगा नहीं, तो हम उसमें पूरा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, स्ट्रिपिंग, है ना। और नकलिंग सबसे वर्स्ट मेथड होता है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा बेस्ट मेथड होता है। अगर मशीन मिल्किंग भी दिया है इन सब के साथ में, तो ऑब्वियसली पहले मशीन मिल्किंग आएगा, और अगर तीनों मेथड दिया हुआ है तो फिर फुल हैंड मिल्किंग बेस्ट मेथड होता है, एंड वर्स्ट नकलिंग। इसके अलावा इकोनॉमिक्स खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। और कलिंग का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, कास्टिंग, है ना, कास्टिंग के दो मेथड होते हैं, और वो मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है, रूप्स मेथड एंड मॉडिफाइड रूप्स मेथड, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इसमें ये देखना है कि जो प्रैक्टिकल में जितने कोर्सेज हैं, जितने चैप्टर हैं, वो सब भी थ्योरी में पूछे जाते हैं, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लेना। ब्रीड्स, ब्रीड्स पूछा जाता है, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो ब्रीड्स से आएंगे। और हैबिटेट, ब्रीड्स में सबका हैबिटेट याद रखना ज़रूरी है, बहुत सारे ब्रीड्स हैं और कुछ भी उठा के पूछ सकता है उसमें से, तो उसका हैबिटेट

0: पढ़ना और हैबिटेट ही पूछा जाता है, तो हैबिटेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स है उन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे मुर्रा का कर्व्ड हॉर्न होता है, कर्ल्ड होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली कर्ल्ड होता है, तो वो उसका है, और जेड ब्लैक है, जेड ब्लैक कलर का होता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है उसका। इस तरह से बाकी सारे ब्रीड्स का भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो वो पढ़ना, वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बाकी ब्रीड का क्लासिफिकेशन है ना, कैटल का क्लासिफिकेशन करते हैं कैसे करते हैं, बफेलो का कैसे करते हैं, शिप गोट का कैसे करते हैं, पिक का कैसे करते हैं, तो वो सब। केवल एग्जॉटिक एंड इंडिजिनस ये नहीं लिखना है, इंडिजिनस में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो इंडिजिनस का क्लासिफिकेशन भी देखना है पूरी तरह से। बाकी रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, कल के एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान के सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की

तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करे और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे अनु को, और अभी आप सभी सुन रहे हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम हमारे किसान भाइयों के लिए खेती से जुड़ी बातें लाते हैं, और आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है अरहर की खेती कैसे करें। तो वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बताएंगे श्रोताओं। इस विषय को लेकर हमारे साथ हैं डॉक्टर

0: प्रसाद, मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अरहर कौन सा फसल है और इसकी खासियत के बारे में थोड़ा बताएं।
1: बहुत अच्छा प्रश्न मैडम। हम सभी परिचित हैं अरहर से और सब लोगों को पता है कि ये अरहर दलहन समूह का फसल है और इसको हम लोग तूर, राहर और अंग्रेजी में रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं। चना के बाद यह दूसरा प्रमुख दलहनी फसल है और ये काफ़ी खासियत को धारण करने वाली फसल है। खासकर दलहनी समूह का फसल है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है और इसमें लगभग 22.3% प्रोटीन, 3.5% मिनरल्स, 1.7% वसा और 57.6% कार्बोहाइड्रेट के अलावे बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं, जैसे आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। इन सारी चीज़ों की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहती है अरहर में।
0: जी जी, आगे बढ़ते हुए हम अरहर की खेती कब की जाती है इसके बारे में जानना चाहेंगे और इसके लिए किस प्रकार का खेत होना चाहिए।
1: जहाँ तक अरहर की खेती की बात है तो बिहार में अरहर की खेती जो की जाती है वो खास करके जून जुलाई महीने में इसकी खेती की जाती है, परंतु विशेष परिस्थिति में अगर जून जुलाई में इसकी बुआई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश तो विलम्ब की स्थिति में इसकी बुआई सितंबर माह में भी की जाती है और इसका जो उपयुक्त समय है बोने का सितंबर माह में वो लगभग 25 अगस्त से 15 सितंबर है और इसके लिए उपयुक्त तापक्रम जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जहाँ तक खेत या मिट्टी का प्रश्न है तो इसके लिए ऊपर वाली ज़मीन जहाँ वर्षा के पानी का जमाव नहीं होता हो वह काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। खेत बलुई दोमट से दोमट जिसका पीएच मान 7 से लेकर 8.5 तक हो वह अरहर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है।
0: और अरहर के प्रभेद कौन कौन से उपयुक्त हैं और साथ ही बीज की कितनी मात्रा का प्रयोग होना चाहिए इसके भी जानकारी दें।
1: जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अरहर की खेती खरीफ और सितंबर दोनों समय की जाती है तो दोनों के लिए अलग अलग प्रभेद हैं और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर जून जुलाई माह में अगर अरहर की बुआई करनी होती है तो उसके लिए उपयुक्त प्रभेद हैं बहार, नरेंद्र अरहर 2, DA 11, आज़ाद। इस तरह के काफ़ी अच्छे प्रभेद हैं और सितंबर माह में अगर इसकी बुआई करनी है तो उसके लिए उपयुक्त प्रभेद हैं पूसा 9 और दूसरा है शरद। तो दोनों समय में अरहर की बुआई के लिए बीज की मात्रा और उसके लिए दूरी जो है अलग अलग है। खरीफ मौसम में अगर इसकी बुआई हम करना चाहेंगे तो उसके लिए लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की ज़रूरत पड़ती है और जो अनुशंसित दूरी है पंक्ति से पंक्ति की दूरी ये लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम इसको सितंबर माह में बोएंगे या अगस्त से 25 अगस्त से 15 सितंबर तक बोएंगे तो इसमें बीज की मात्रा बदल जाती है क्योंकि उसमें पौधों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। तो इसके लिए लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है और इस बीज को पंक्ति से पंक्ति 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और पौधा से पौधा की दूरी 16 से 20 सेंटीमीटर रखते हुए पंक्ति से पंक्ति में बुआई करते हैं। तो इस तरह से दोनों स्थिति में दोनों समय में अलग अलग मात्रा में बीज का प्रयोग होता है और अनुशंसित दूरी भी अलग अलग है।
0: जी, क्या इसमें बीज उपचार करना ज़रूरी है?
1: जी हाँ, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीज को बोने से 48 घंटे पूर्व फफूंदनाशी दवा से अरहर के बीज को उपचारित करना चाहिए और इसके लिए जो सबसे अच्छी दवा है वो दवा है ट्राइकोडर्मा बीडीडी। इसकी 5

0: अनिवार्य रूप से उपचारित कर लेना चाहिए और इससे काफ़ी फायदा होता है किसानों को, किसान भाइयों को, और अच्छी उपज मिलती है
1: जी। डॉक्टर साहब, अरहर में पोषक प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
0: जैसा कि अभी हमने बताया कि राइजोबियम कल्चर से उपचार करना और पीएसबी कल्चर से उपचार करना निहायत ज़रूरी है, और ऐसा इसीलिए कि दलहनी फसल, दलहनी समोक का फसल होने के कारण इसमें राइजोबियम फिक्सेशन की क्रिया होती है, जिसके वजह से वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके ये जड़ों में जमा करता है, एकत्रित करता है। तो राइजोबियम कल्चर से अगर हम उपचारित करते हैं तो लगभग 15-20% उपज में वृद्धि हो जाती है, और ये हमारे नाइट्रोजन की मांग को भी कम कर देता है, क्योंकि दलहनी ग्रुप का है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो इस वजह से फसल की जो बढ़वार के लिए नाइट्रोजन की डिमांड है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ हम पीएसबी कल्चर से भी इसको उपचार करते हैं, तो पीएसबी कल्चर के कारण मिट्टी में जो अनुपलब्ध रूप में फास्फोरस है उसको पीएसबी जो कल्चर है उसमें जो बैक्टीरिया हैं उसको घुला करके पौधे को उपलब्ध कर देता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मांग को बहुत हद तक ये कम कर देता है। फिर भी स्टार्टर डोज के रूप में पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय उसमें 40 किलोग्राम डीएपी और 8 किलोग्राम गंधक यानी सल्फर को प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में समान रूप से छींटकर अच्छी तरह से मिला देने से जो अरहर फसल की जो भोजन की व्यवस्था है, मांग है, वो पूरी हो जाती है।
1: अब इसके बाद हम कीट और रोगों की बात करते हैं, तो अरहर में कीट और रोगों का प्रकोप भी देखा जाता है, तो इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं?
0: जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है अरहर की खेती में, और अरहर में मुख्य रूप से फली छेदक, फल मक्खी एवं प्लूम मौत कीट का प्रकोप होता है, और जिसके कारण फसल को काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इससे बचाव के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप जो 5 की संख्या में 1 एकड़ में लगाना है उसको लगाना चाहिए, और इसके अलावे इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG दवा का 88 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, अथवा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट की 5% का छिड़काव फूल आने के पहले, दूसरा छिड़काव 50% फूल आने पर, तथा तीसरा छिड़काव 50% फली लगने पर करना चाहिए। ऐसा करने से इन तमाम कीटों से अरहर की सुरक्षा हो जाती है और नुकसान से बचा जा सकता है। रोग हेतु उपचार के लिए हमने जो पहले बताया बीजोपचार के लिए, अगर उससे उपचारित कर देंगे ट्राइकोडर्मा से या राइजोबियम ये कार्बेंडाजिम से, तो किसान भाई रोग की समस्या से अपने फसल को मुक्त कर पाएंगे, और बीजोपचार ही रोग नियंत्रण के लिए सबसे अहम चीज़ होता है, तो उसको निश्चित रूप से अपनाएं। और जहां तक खरपतवार की बात है तो खरपतवार के लिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि अपने फसल को 40 से 45 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रखें, और इसके लिए 25 से 30 दिन बाद यानी बोने के 25 से 30 दिनों बाद एक बार निराई अवश्य करवाएं। अगर श्रमिकों की समस्या है, उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में 1.2 लीटर मतलब 1.25 लीटर पेंडीमेथिलीन दवा का प्रयोग बुआई के दूसरे दिन 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर खेत की सतह पर छींटें, और इस प्रकार छींटें, छिड़काव करें कि उस पर दोबारा पैर नहीं पड़े। तो इस तरह से अगर करेंगे तो खरपतवार से उनको 40 से 50 दिनों तक फसल की सुरक्षा वो कर पाने में सक्षम होंगे, और फिर उन्हें अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि फसल की कटाई में भी थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है। जब आपकी फसल लगभग 80% पक जाए तो उसमें, यानी छीमी 80% पक जाए तो उसमें फसल को काट कर बंडल बना लें, और बंडल को खड़ा रखें, सुलाकर या लिटा कर नहीं रखें, और 1 सप्ताह बाद उसकी झराई ठीक से कर लें और दाने को अलग कर लें, दाने को अच्छी तरह से धूप में सुखा लें, और जिसमें उस दाने में जिसमें 10-12% तक नमी रहती है उस दाने को अच्छी तरह से साफ करके धातु कोठला में अच्छी तरह से एयर टाइट करके बंद कर दें, और

0: बंद करने से पूर्व एक क्विंटल बीज में एक ईडीवी एम्पल डालकर मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दें। और अगर इस तरह से किसान भाई खेती करेंगे तो निश्चित रूप से अरहर का की अच्छी पैदावार बार मिलेगी और उन्हें 20 से 25 मन प्रति एकड़ का जुलाई माह में और सितंबर माह में अगर करते हैं तो 16 से 18 मन प्रति एकड़ का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए।
0: जी धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन एक अलग विषय के साथ। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो महिलाएं होती है ना, ये जो लेडीज होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लेडीज फर्स्ट कहने की नौबत क्यों आई? और क्या अभी भी समाज में ये लोग मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट यानी कि स्त्रियों को पहले मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, आज भी हमारा समाज उसी पुरानी सोच में जकड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि समाज ने अपने सोच के ऊपर एक बदले हुए रवैया का परत चढ़ा लिया है, लेकिन आज भी उसके अंदर सोच वही है। अगर ये सच नहीं है तो ये भी सच नहीं होता कि घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर लेडीज फर्स्ट जैसी बातों को हमने स्वीकार कर लिया होता, स्त्रियों को हमने बराबर का सम्मान दिया होता, ज्यादा की बात नहीं हो रही, बराबर की, बराबरी का सम्मान दिया होता, बराबरी का मौका दिया होता, घरेलू हिंसा की वजह से, दहेज की वजह से आज भी बहुत सारी स्त्रियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आए दिन हम नए नए केस सुनते हैं, पढ़े लिखे घरों में भी घरेलू हिंसा से तंग आकर स्त्रियां खुद को खत्म कर लेती है या फिर घरेलू हिंसा इस कदर बढ़ जाती है।

कि उस स्त्री की मौत हो जाती है। तो इन सारी बातों को सोचकर जरा भी लगता है कि आज भी हमारा समाज लेडीज फर्स्ट को समझ पाया है? चलो लेडीज फर्स्ट ना सही, पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिल पाया है? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का हक मिलता है तो आप जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। हाँ, वक्त बदल रहा है, बहुत जगहों पर स्त्रियां अपना परचम लहरा रही हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है और कुछ जगहों पर तो वो काफी आगे निकल चुकी हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी भी काम करना बाकी है। लोगों को ये समझना बाकी है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों एक समान होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार 2012 से 2022 के बीच करीब घरेलू हिंसा के 13 लाख मामले सामने आए और लगातार ऐसी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये तो वो महिलाएं हैं जो थाने तक पहुंची। बहुत सारी महिलाएं तो थाने तक पहुंचती ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। अगर घर पर उनके साथ घरेलू हिंसा होती भी है तो वो सह लेती हैं घर की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन घर की इज्जत बचाते बचाते वो अपना स्वाभिमान खो बैठती हैं और इन महिलाओं के लिए उनका घर भी सुरक्षित नहीं रहता। उन्हें पता नहीं होता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक हिंसा की दीवारें आज भी उतनी मजबूत है, समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ने का दावा करता हो। दोस्तों, घरेलू हिंसा के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि आज भी लोगों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से कम है। ज्यादा ना हो पर बराबर की तो है, बराबर का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, दहेज प्रथा। दहेज के बारे में कितने कानून हैं, दहेज से जुड़े वे बच्चे स्कूल में कितना पढ़ते हैं लेकिन वही बच्चे बड़े होकर दहेज लेते हैं। और विडंबना ये है कि लड़की वाले खुशी खुशी दहेज देते हैं। लड़की के जन्म के साथ ही उनके दिमाग में जो पहली सोच होती है कि इसके लिए मुझे इतने दहेज इकट्ठा करने होंगे। हमने दहेज जैसी समस्या को कितना आम बना दिया है कि ये हमें अब समस्या लगती ही नहीं है। कोई समस्या तभी खत्म होगी जब उसे हम समस्या समझेंगे। दहेज की वजह से बहुत सारी औरतें आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है और कई औरतें तो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसके बाद आता है शराब या नशा। शराब या नशे की वजह से भी घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है क्योंकि नशे की हालत में फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो वो जानवर से भी बदतर हो जाता है और फिर वो हिंसक व्यवहार करता है। और जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष नशे की हालत में ही घरेलू हिंसा को अंजाम देते हैं और कई बार पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी घरेलू हिंसा का कारण बनती है। महिलाएं जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो फिर उनके साथ कुछ भी हो वो सहती रह जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो जाएंगी कहाँ, करेंगी क्या। और कई बार जागरूकता की भी कमी होती है। हम अपने आसपास जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे माहौल को देखते हैं, हमें लगता है कि वही सच है। और जब आसपास घरेलू हिंसा आम हो तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि यही जीने का तरीका है, वो इसे मानकर अपने जीवन को जीने लगती है। और अगर कुछ महिलाओं को ये पता है कि ये गलत है, जो हो रहा है उनके साथ वो सही नहीं है, तो भी वो चुप रह जाती हैं क्योंकि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर की इज्जत को बचाना है। ये तो कारण हो गए कि किन किन वजहों से घरेलू हिंसा होते हैं। और घरेलू हिंसा से बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो जागरूकता। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उसी चीज में ढल जाएं। उन्हें आवाज उठाना चाहिए और ये बात कि अगर हम बाहर जाएंगे तो घर की इज्जत उछलेगी। कौन से घर की इज्जत? घर तो वो होता है ना जहाँ आप सुरक्षित महसूस करते हैं। घर तो वो होता है ना जहाँ आप थके मांदे आते हैं और कोई आपको पुचकारने वाला मिलता है, कोई आपका ख्याल रखने वाला मिलता है। लेकिन ये कैसा घर है कि जहाँ हर रोज हर पल आप आतंक में जीते हैं कि न जाने अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाए, न जाने कौन आपको क्या बोल दे, न जाने कौन आप पर हाथ उठा दे। उस घर को घर कहना उचित है क्या? यकीन मानिए समाज आपका साथ देगा जब आप अपने लिए आवाज उठाएंगी। यकीन मानिए आपके या आपके घर की इज्जत खराब नहीं होगी अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, बल्कि आपके आसपास की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। ना जाने कितनी सारी लड़कियां, अगर आपकी कोई बेटी है या फिर आपकी बहन है तो उसे भी ये समझ आएगा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आप चुप रहती हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास की लड़कियों को भी चुप रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा
शिक्षा बहुत जरूरी है। जब लड़कियां पढ़ती है और उनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वो अपने बल पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं, तो फिर वो मजबूर नहीं होती है घरेलू हिंसा को सहने के लिए। इसके अलावा परिवार और समाज

0: का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं। समाज के तौर पर भी हमारा फर्ज बनता है कि अगर अपने आसपास ऐसी कोई स्थिति देखे, ऐसी किसी औरत को देखे, तो उसके हक के लिए, उसकी मदद के लिए आगे आए हम, तभी एक बेहतर समाज बनेगा ना। कल को आपके साथ ये हो सकता है, कल के आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ये हो सकता है। इसे रोकने के लिए आपको एक बेहतर समाज बनाना ही होगा। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके आसपास किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप महिला हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 181, 112। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में एक नंबर है 9771468006, यानी कि 9771468006। इस पर आप फोन कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 181, 112, इन नंबरों पर भी आप फोन कर सकते हैं। आप एनजीओ से मदद ले सकते हैं, आप महिला संगठन से जुड़ सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। और कई बार ये होता है कि काउंसलिंग से भी चीज़ें ठीक हो जाती है। जी हाँ, कई बार घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा नहीं होती है और घर के लोगों की और स्त्रियों की काउंसलिंग करके भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है समय पर शिकायत दर्ज कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो आप किसी अपने परिचित के साथ जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए। इसके अलावा अगर लगे कि आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसके आगे क्या, कितना बुरा, कितना बड़ा हो सकता है, आप नहीं जानती हैं। घरेलू हिंसा में स्त्रियों की मौत तक हो जाती है, इसलिए समय पर शिकायत दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कानूनों के बारे में बात करें, हालांकि कानून तक पहुंचने से पहले महिलाओं को अपनी सोच से लड़ना होगा, समाज को अपनी सोच से लड़ना होगा, और ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि हमारे समाज में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, और महिलाओं को ये समझना होगा कि ये उनकी किस्मत नहीं है, ये उन्होंने खुद चुना है। आप अगर अभी एक कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी किस्मत खुद बदल लेंगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर हम कानूनों की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में एक कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं को ये भी डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, फिर वो जाएंगी कहाँ, वो रहेंगी कहाँ। तो ये कानून महिलाओं को घर में रहने का अधिकार देता है और ये कानून महिलाओं को संरक्षण देता है। इसके अलावा ये कानून महिला को भरण पोषण और मुआवजा से जुड़े भी सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के जंजीर को तोड़े, हम अपने अंदर के बंधन को तोड़े कि हमें चुप नहीं रहना है, हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। अगर आज आप चुप रह जाएंगे तो आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपके आसपास की लड़कियां भी कल को चुप रह जाएंगी कि उनके साथ भी तो यही हुआ था, वो चुप रही और उनका जीवन चल तो गया। उस इंसान के साथ, उस घर में रहकर क्या फायदा जिनके साथ आप सुरक्षित ही नहीं है। याद रखिए कि घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं है कि घर की बात है, घर में निपटा लेंगे, नहीं है। ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है। चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आप शुरुआत में ही आवाज उठाएंगी तो ये बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सलाह कि स्त्रियों को अपने से कम आंकना बंद करें, और वो जो पिता हैं, भाई हैं, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस काबिल बनाएं कि कल को उन्हें घरेलू हिंसा चुप होकर ना सहना पड़े। तो आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। सुरक्षित रहे, खुश रहे और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहे। नमस्कार।
1: Ladies first.

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक